ओम शांति। हमें बाप समान महान बनना है। ब्रह्मा बाबा ने जिस तरह स्वयं को तपस्या में तपाकर खरा सोना बना दिया, संपूर्ण बना दिया, हमें भी त्याग तपस्या के बल से, वैराग्य के बल से स्वयं को वैसा ही बना देना है। अपना शरीर भी शिव बाबा को दे दिया, ये भान ही मिटा दिया कि ये मेरा शरीर है। वैसे ही हम भी अपने देह को ऐसा ही मान लें कि ये बाबा ने हमें सेवा अर्थ दिया है, बाकी इससे हमारा और कुछ लेना देना नहीं, ये बाबा की अमानत है। सेवा पूर्ण होगी और हम ये बाबा को वापिस दे देंगे, तो इस तरह हमारा देह भान मिटता जाएगा, देह का आकर्षण समाप्त होता जाएगा और हम ऐसी स्थिति में बहुत सहज स्थित होते जाएंगे। ब्रह्मा बाबा सचमुच बाप समान बने, शिव बाबा जैसे बने, नेक्स्ट टू गॉड हो गए। सोच लें उन्होंने क्या क्या किया होगा। संपूर्ण प्योरिटी अपना ली, संपूर्ण निरहंकारी बन गए, किसी के लिए भी मन में अशुभ भावना नहीं रही, शुभ भावनाओं का दान सबको मिलता रहा। कई बच्चे ऐसे भी आते थे जो बाबा का भी सामना करते थे, लेकिन बाबा ने उन्हें भी बहुत प्यार दिया और बुजुर्ग होते हुए भी अंत तक बहुत बड़ी सेवा निरंतर करते रहे। सेवा में कभी भी मैंपन आने नहीं दिया। बाबा का अपने पर कितना कंट्रोल था, ये इस बात से पता चलता है कि आखिरी दिन 18 जनवरी सवेरे जब बाबा को छाती में बहुत पेन था, तो भाई जो भी थे वहाँ उन्होंने कहा कि बाबा डॉक्टर को बुला लें। देखिए बाबा ने कितने नशे से जवाब दिया था, बच्चे बाप तो सुप्रीम सर्जन

से बात कर रहा है, डॉक्टर आकर क्या करेगा? तो बाबा को एक देहभान से न्यारे होने की बहुत ग्रेट फीलिंग थी। पेन तो बाबा को जैसे सता ही नहीं रहा था, और वो संसार की पहला नंबर की आत्मा है, उन्हें ये आभास था आज इस धरा पर साकार रूप में मेरा ये आखिरी दिन है। वो इस देहभान से पूरी तरह डिटैच हो गए थे। मन खुशियों से इतना भरा था कि अपने भविष्य को याद करके अकेले में डांस करते रहते थे। वाह, मैं ये बूढ़ा शरीर छोड़कर अब जाकर छोटा श्री कृष्ण बनूंगा, गद्दी पर बैठूंगा। बाबा ने उन्हें कितने जन्मों के राजभाग का उन्हें साक्षात्कार करा दिया था कि अनेक जन्म तुम्हारे सिर पर ताज आए हैं, तुमने अनेक जन्म राजभाग्य का सुख भोगा है, तो अपने भाग्य की खुशी भी बाबा को निरंतर थी। हम भी उसी तरह अपने भाग्य की खुशी को कायम रखें। यदि बाबा का भाग्य बहुत महान था, तो उसके बच्चों का भाग्य भी तो बहुत महान है। हम भी तो इस सृष्टि के हीरो एक्टर हैं, हम मास्टर क्रिएटर भी हैं। तो ये नहीं भूलना है कि हम महान से महान देव पद प्राप्त करने वाले हैं। हमें कितनी प्राप्तियां होंगी सतयुग में, उसकी तो शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा देह ही कितना कांतिवान, कितना तेजस्वी, कितना चमकीला होगा, जिसमें रोग दुख शोक का तो नाम ही नहीं होगा। तो बाबा हमें कितना बड़ा भाग्य देकर जाते हैं। आओ बाबा के हम सारा दिन गुणगान करते हुए उन्हें थैंक्स देते रहें। हे बाबा, आपने इस समय आकर हमें क्या क्या दिया, और भविष्य में हमें क्या देने जा रहे हो? इतना योग्य बना देते हो कि अपना स्वर्ग हमारे हाथों में सौंप कर निश्चिंत होकर घर में जाकर विश्राम करते हो। तो आज सारा दिन बाबा को थैंक्स देते हुए, उसका गुणगान करते हुए हम व्यतीत करेंगे, और फॉलो फादर करने का संकल्प रखेंगे। विशेष रूप से जैसे ब्रह्मा बाबा हमारे सामने बैठा है, और जिस तरह वे तपस्या में मग्न हैं, बुद्धि निरंतर शिव बाबा के स्वरूप पर स्थिर है, वैसे ही मुझे भी तपस्या में मग्न रहना है। ओम शांति।

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। इटली के अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो परेटो ने 1897 में 80/20 का सिद्धांत खोजा था, जिसे अब परेटो का सिद्धांत कहा जाता है। उनकी खोज थी कि 20% योगदान से 80% उत्पादन होता है, 20% कारणों से 80% परिणाम निकलते हैं और 20% प्रयास से 80% फल प्राप्त होता है। जोसेफ जुरान ने उन 20% को कम लेकिन महत्वपूर्ण और 80% को ज्यादा लेकिन मामूली की संज्ञा दी। आशुलिपि शॉर्ट हैंड के आविष्कारक सर आइजैक पिटमैन की खोज थी कि हमारी 2/3 बातचीत को केवल 700 प्रचलित शब्द ही पूरा कर देते हैं। उन्होंने पाया कि हमारी 80% सामान्य बातचीत में यही शब्द काम आते हैं। एक छात्र अपनी 80% पाठ्यक्रम को अपने अध्ययन के 20% समय में पूरा कर लेता है। परीक्षा में प्रश्न पत्र के 80% प्रश्न 20% पाठ्यक्रम से लिए जाते हैं। 80% विकास, लाभ और प्रतिफल में 20% ग्राहकों का योगदान रहता है। 80% व्यवसाय 20% उत्पादन व सेवाओं से चलता है। 20% कर्मचारी 80% उत्पादन करते हैं। 20% लोगों की राय समाज को परिभाषित कर देती है और किसी देश की जनसंख्या के 20% का योगदान उस देश की अर्थव्यवस्था को परिभाषित कर देता है। अगर आपके बिक्री विभाग में 20% लोग हैं तो उनमें 4 बहुत बढ़िया होंगे, 6 साधारण होंगे और 10 तो बस यूं ही टहल रहे होंगे। बिक्री प्रबंधक गलती यह करते हैं कि वे उन अनुत्पादक और निष्क्रिय लोगों के साथ इस कोशिश में लगे रहते हैं कि उन्हें उत्पादक बनाया जाए, लेकिन इस वजह से सबसे बढ़िया काम करने वाले उपेक्षित रह जाते हैं।

नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सबसे बढ़िया काम करने वालों को खोने का सबसे आसान तरीका है कि उन्हें उन ज्यादा लेकिन मामूली लोगों के लिए उपेक्षित कर दिया जाए। सक्षम पर ध्यान दें और उन्हें और अधिक सक्षम बनाएं। 80x20 की विचारधारा न्यून से अधिक पाने का रहस्य है। औसत प्रयासों को बढ़ाने के बजाय विशिष्ट उत्पादकता को महत्व देना शुरू करें। हर स्तर पर ठीक ठाक प्रदर्शन करने के बजाय कुछ स्तरों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रयत्नशील रहें। व्यर्थ की मात्रा हर जगह त्रासद रूप से अत्यधिक है। आपके जीवन में जो हो रहा है उसमें से 4x5 आपको ना के बराबर दे रहा है। जिस 80% पर आपका बहुत अधिक ध्यान रहता है वह आपको केवल 20% ही प्रतिफल दे रहा होता है। अपनी सोच को बदलें, अपने दृष्टिकोण का पुनः निरीक्षण करें, काम के बंटवारे का निर्धारण दोबारा करें, इसे ज्यादा लेकिन मामूली से कम लेकिन महत्वपूर्ण की ओर ले जाएं। प्रभाव उत्पादकता इस बात से नहीं आती है कि उस 80% का क्या हुआ, बल्कि इस बात से आती है कि आपने 20% का प्रबंधन, नियंत्रण व उपयोग कैसे किया। आपका 20% समय सचमुच यह बता देता है कि आप जीवन में क्या हैं और क्या होंगे। इस 20% पर ध्यान दें और आपके जीवन का 80% अपने आप ही बेहतर हो जाएगा।

मीठे बच्चे, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: Life is a dance, a dance with joy and enthusiasm. अर्थात ये जीवन को हमेशा उमंग और उत्साह के साथ जियो। That is the purpose of life. English में एक बहुत अच्छा स्लोगन है जिसे हमको प्रेरणा मिलती है कि हर पल हर क्षण हमें उमंग उत्साह में रहना है। और वो बहुत सुंदर स्लोगन है, I always complained that I had no shoes until I saw a man who had no feet. मैंने हमेशा कंप्लेन की कि मेरे पास जूते नहीं हैं, जब तक मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। तो देखो, हमें अपने भाग्य पर कितना नशा होना चाहिए, कितना नाज होना चाहिए कि ईश्वर ने हमें इतना सुंदर जीवन दिया है। तो क्या हमें दुखी होना चाहिए क्या? नहीं, हर पल हर क्षण वी हैव टू डांस विद जॉय एंड एंथुसियाज्म। तो आज मैं आपको एक बहुत सुंदर डांस सिखाने वाला हूँ। सभी करेंगे डांस? इसको कहते हैं पीकॉक डांस। पीकॉक जब खुशी में होता है ना तो कितना वंडरफुल डांस करते हैं, वही डांस मैं आपको भी सिखाता हूँ। और वो कैसे करना है? वाह मेरा जीवन वाह। जब आप ये डांस करते हो तो एक तो इट पंप्स इन अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू योर लंग्स, और दूसरा मन में भी जो आपको विचार मिलते हैं वो बहुत एंथुसियास्टिक और मोटिवेटिंग होते हैं। तो मैं आपको एक एक बोलता रहूंगा, वैसे आप करते रहना, ठीक है? करेंगे सभी? ओके, चलिए। वाह ईश्वर वाह, वाह मेरा जीवन वाह, वाह मेरे फैमिली मेंबर्स वाह, वाह मेरे मम्मी डैडी वाह, वाह मेरे ब्रदर सिस्टर्स वाह, वाह मेरा ऑर्गेनाइजेशन वाह। स्टूडेंट्स बहुत खुशी से कह सकते हैं वाह एग्जाम्स वाह, वाह मेरी पढ़ाई वाह, वाह ये दिन वाह, वाह वाह वाह। तालियां बजाइए। तो हर दिन सुबह उठकर ये पीकॉक डांस जरूर जरूर करना।

इससे पहले कि वह कुछ अपने अधिकार में लेना सीखती, उसे साझा करने, सहभागी होने को कहा गया। जब वह मुश्किल से 5 वर्ष की रही होगी, तभी से उसे अपने भाई के लिए त्याग व बलिदान का पाठ पढ़ा दिया गया, जो कि मात्र 2 साल का था। वह अभी बच्ची ही थी, लेकिन उसके माता पिता उससे एक बड़ी बहन की भूमिका अदा करने की अपेक्षा रखते थे। 30 साल बाद अब उसका अपना परिवार है और उसके भाई का भी। वह अपने छोटे भाई के लिए अब भी वही जिम्मेदारी महसूस करती है। वह अब भी उसे सलाह देने में लगी रहती है। उसके भाई के वैवाहिक जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो वह हस्तक्षेप करती है। वह भाई की पत्नी को यह बताने में लगी रहती है कि बच्चे को क्या खिलाएं, उसका लालन पालन कैसे करें। वह अब भी त्याग बलिदान करने में लगी है, लेकिन उसे क्या मिल रहा है? अपने प्रति किए जा रहे उदासीनता और बेरुखी

के द्वारा केवल इस आधार पर हस्तक्षेप किए जाने से उसे चिढ़ है कि वह उम्र में बड़ा है। इस किस्से में यही सीख मिलती है कि हमें सम्मान की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत से यह जरूरत बहुत बड़ी है। आप एक बहन तो हमेशा बनी रहें, लेकिन हर समय बहन की भूमिका न निभाती रहें। हम अपने विचारों को, अपनी सोच को जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं थोप सकते, बस सिर्फ इस कारण से क्योंकि हम उम्र में उनसे बड़े हैं। भले ही बचपन में हमने उनके लिए बहुत ख्याल रखा हो, बहुत कुछ किया हो, लेकिन बड़े होने के बाद हर व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है, अपनी समझ होती है, और हर व्यक्ति अपने लिए, अपने जीवन के लिए कुछ स्वतंत्रता चाहता है। तो बेहतर यही होता है कि अगर हम बिना मतलब अपनी सलाह देते रहेंगे तो हम निश्चित रूप से अपमानित होते रहेंगे, लेकिन अगर हम सम्मान से जीना चाहते हैं तो इन बातों से न्यारे हो जाएं और किसी को भी बिना मांगे सलाह न दें, चाहे वह हमारे कितने भी नजदीकी रिश्तेदार।

की हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है। रेडियो मधुबन

एक बेटे द्वारा पहला शब्द बोलने में, पहला अक्षर लिखने में और पहला कदम चलने में, सभी में उसके पिता की सक्रिय भूमिका रही। उस बेटे के लिए उसका पिता हमेशा एक सुपरमैन, एक हीरो और आदर्श व्यक्ति रहा है। यहाँ तक कि उसके करियर के लिए सलाहकार का काम भी उसके पिता ने किया। बेटा आगे चलकर युवा उद्यमी बन गया, लेकिन इसमें भी उसके पिता का मार्गदर्शन था। आज वह बेटा एक प्रतिष्ठित उद्योगपति है, लेकिन आज भी वह पिता रोजाना शाम को यह पूछने और जानने का इंतजार करता रहता है कि कारखाने में क्या क्या हुआ। इससे उसका बेटा बड़ी घुटन महसूस करता है और उसे लगता है कि पिता को उसे थोड़ा खुलापन देना चाहिए। पिता अब अवसाद के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि अपने बेटे से उसे जितनी तवज्जो पहले मिला करती थी, अब उतनी नहीं मिल रही है। पिता को लग रहा है जैसे अब उसकी जरूरत ही नहीं रह गई। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है और वह तेजी से बूढ़ा होता जा रहा है। आप एक अभिभावक के रूप में हमेशा प्यार पाएंगे, लेकिन आप हमेशा अभिभावक ही न बने रहें। एक दौर के बाद कोई भी आपके मैं तुमसे अधिक अनुभवी के रूप को स्वीकार नहीं करेगा। 3 साल की एक बच्ची भी चाहती है कि एक विशेष ढंग से उसका भी मान रखा जाए, और दरअसल यह उसकी जरूरत भी है। 3 वर्ष की आयु में वह जो कपड़े पहनना चाहती है, यदि उसे वो कपड़े ना पहनने दिए जाएं, तो इसका अर्थ वह यही निकालती है कि उसका मान नहीं रखा जा रहा है। 10 साल का बेटा मेन्यू कार्ड पढ़कर खुद ऑर्डर देना चाहता है, वह इसी को अपना मान रखा जाना मानता है। एक किशोर लड़की अपनी पसंद से सहेलियां बनाना चाहती है, और उसके लिए अपना मान रखे जाने का अर्थ है कि माता पिता उसकी पसंद का स्वागत करें। एक व्यक्ति चूंकि आपके साथ कई साल से काम कर रहा है, इसीलिए अब कुछ निर्णय वह खुद लेना चाहता है, और उन निर्णयों को आपके द्वारा न बदलना या नकारा न जाना उसकी नजर में उसका मान रखा जाना है। हर आयु और जीवन की हर अवस्था अपने साथ मान सम्मान के लिए एक भावना रखती है, और आपको उस भावना का आदर करना चाहिए। भले ही हमारे इरादे नेक हों, लेकिन कभी कभी लोगों का मार्गदर्शन करने से, विशेष रूप से बिना उनके मांगे ऐसा करने से, उन्हें लगता है कि उनके सम्मान को ठेस लगी है। सम्मान की जरूरत मार्गदर्शन की जरूरत से बड़ी होती है। दूसरों को सम्मानित होने का एहसास कराएं, यह आपका काम है। वे आपसे मार्गदर्शन मांगे, यह उनका काम है। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी हैं और स्टेबल भी हैं, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर। उसको जब पूरा ख़त्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल हैं। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड हैं कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो प्रायः हम ये भूल जाते हैं कि हम जब भी धनोपार्जन या अपने किसी भी क्रियाकलाप में रहते हैं या पैसे कमाने के लिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों में हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना आवश्यक है। कभी कभार हम अपनी तबीयत को दरकिनार करके पैसे कमाने में या धनोपार्जन के कार्य में लगे रहते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि शरीर का ध्यान न रखने के कारण या स्वास्थ्य पर ध्यान न देने के कारण कमाए हुए उन्हीं पैसों को फिर स्वास्थ्य को कमाने में लगाना पड़ता है। एक ऐसा कुचक्र बन जाता है कि अगर हम इसको सही अर्थों में न समझें तो फिर जिंदगी भर किसी बीमारी को अपना मेहमान बना के रखना पड़ता है। ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखने के बारे में सही जानकारी पहले से हो तो शायद हम ये गलतियां करने से बचें। सेहत स्वास्थ्य पर रेडियो मधुबन पर हम यही कोशिश करते हैं कि हम सही मार्ग पर आप सबको ले चलें, ताकि हम सभी स्वस्थ रहें और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मार्गदर्शन करने के लिए स्वास्थ्य जगत के ही एक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी, जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं। आइए करते हैं उनसे चर्चा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो हम ये कहावत सुनते आए हैं कि भाई हम वेल्थ के लिए हेल्थ को खो देते हैं और फिर बाद में जब वेल्थ आ जाता है और देखते हैं हेल्थ हमने गवा दिया है, बहुत बड़ा हिस्सा हेल्थ का, तो फिर उसी हेल्थ को रीगेन करने के लिए हम अपना वेल्थ लगाते हैं। यानी पैसे कमाने की होड़ में हम अपना स्वास्थ्य भूल जाते हैं। जब स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है तो कमाए हुए उन्हीं पैसों को फिर स्वास्थ्य को वापस पाने के लिए हमें खर्चना पड़ता है। तो ये बड़ा कुचक्र जैसा लगता है कि हम एक के पीछे दूसरे को खो दे रहे हैं, फिर बाद में उसे पाने के लिए जो कमाया है उसे खोने की जरूरत पड़ रही है। आप क्या राय रखते हैं?
1: ये भैया आपने बोला ना कि सबसे पहले पैसा कमाना बहुत जरूरी है, और जब आदमी इस पैसा कमाने की होड़ में लगा रहता है तो वो भूल जाता है कि पैसा जो हम कमा रहे हैं उसके लिए हम क्या करें, और हम सुख, चैन, नींद, भोजन सब कुछ भूल कर पैसा कमाने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है पैसा कमाना एक अंधी दौड़ है, क्योंकि हम अंधा व्यक्ति की तरह, पागलों की तरह उस पैसे के पीछे भागते चले जाते हैं। और जब हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पाते। हमें क्या खाना है, क्या खाने से ज्यादा जरूरी चीज कब खाना है, कब नहीं खाना है, इन सब चीजों को भी भूल जाते हैं। हम बहुत सारी जो कहते हैं ना सोशल जो गलतियां हैं, जैसे जिसमें अल्कोहल इनटेक हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, इन सब की भी हम आदि बन जाते हैं। और जब मैं मरीजों से पूछता हूं कि आप क्यों सिगरेट पीते हैं, आप क्यों अल्कोहल या आप शराब पीते हैं, तो यही बात बोलते हैं, अरे हम नहीं बट बिजनेस के लिए पीना पड़ता है। तो क्या आप बिजनेस के लिए अपने शरीर का किसी अंग को खराब करेंगे? ये बहुत गलत बात है। मैं एक बात हाईलाइट करना चाहूंगा कि जितने भी व्यक्ति जो जीवन में कुछ अचीव किए हैं, जिन्होंने कुछ पाया है, जो सक्सेसफुल हैं, उनमें सबसे कॉमन एक चीज है, वो है डिसिप्लिन। वो हमेशा अच्छा खाते हैं, और अच्छा खाने का मतलब है हेल्दी खाते हैं। दूसरा, वो कोई भी वॉकिंग, व्यायाम, मेडिटेशन, योगा, इसको रेगुलरली करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी दिनचर्या जल्दी शुरू करें, और वो अपने शरीर का, मन का और अपने रूटीन तीनों का ध्यान रखते हैं। मैं आप व्यापार करने के चलते आप अपने जीवन में भयंकर स्ट्रेस भर लीजिए, उस स्ट्रेस से आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाए, आपकी गलत खान पान से, आपके नशा करने से आपकी लिवर खराब हो जाए, आपकी किडनी खराब हो जाए, आपकी पैंक्रियास खराब हो जाए, तो उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। एक बात कही जाती है कि आपके पास जितना भी पैसा क्यों ना हो, आप एक भी क्षण एक्स्ट्रा अपने जीवन में जोड़ नहीं सकते हैं। मगर ये हमेशा कहा जाता है कि यदि आप अच्छा खाएंगे, अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे, तो आपको एक लंबा स्वस्थ और मानसिक रूप से खुशहाल जीवन मिलेगा। प्लीज पैसा कमाने की होड़ में अपना शरीर मत थोप दीजिए, क्योंकि थोड़े दिनों बाद आपको वही पैसा अपने शरीर को वापस कमाने के लिए खर्च करना पड़ेगा।
0: ये बात सुनकर समझ में आता है कि जो चीज हमारे पास है उसको वैल्यू देकर, उसकी कीमत को समझकर, उस कीमत के साथ कॉम्प्रोमाइज न करते हुए हमें एक्स्ट्रा कमाई करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हम जो चीज हमारे पास है उसे दाव पर लगाकर कुछ और हासिल करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो ये रिस्क लेना हमारे लिए हानिकारक तो है ही, मगर साथ साथ हमारे लिए कमाए हुए पैसे को वापस खोने के बराबर हो जाता है। आजकल एक चीज जो अक्सर लोग कहते हैं वो है बीमारियां जो ऐसी हैं जो उम्र के साथ हो रही हैं, या लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे घर में इनको ये बीमारी थी तो हमको भी ये बीमारी हुई है। और बहुत आम रीति से जो चीज सुनने को मिलती है वो है शुगर की बीमारी, यानी डायबिटीज की बीमारी। और डायबिटीज कहते ही लोग कहते हैं कि भाई ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं था, परिवार में है इसलिए हमें भी हो ही गया, हम क्या कर सकते हैं। प्रायः ये भी चीज समझा जाता है कि डायबिटीज में डाइट एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, कि हमारा आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तो है ही, मगर खासकर डायबिटीज के मरीजों को अपने आहार के प्रति सजग होने की जरूरत है। और अगर वो अपने खान पान, अपने आहार व्यवहार को और विहार को सही करते हैं तो वो ठीक हो सकता है, बहुत हद तक हम डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं। और कई जगहों पर तो डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है, उसको रिवर्स करने के बारे में भी बातें होती हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि डायबिटीज और डाइट का जो संबंध है उसके बारे में बताएं, क्या डायबिटीज के मरीजों के लिए कोई विशेष डाइट है, कोई डायबिटिक डाइट है, उसके बारे में बताएं।
1: डायबिटीज एक मतलब क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारा ब्लड शुगर जो है वो बहुत बढ़ जाता है। हमारे दिमाग को हमेशा ब्लड शुगर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, हमारे शरीर के जितने भी अंग काम कर रहे हैं उनको हमेशा शुगर चाहिए, और वो जो शुगर है या शकरा है वो आपकी कोशिकाओं के अंदर इंसुलिन नामक हार्मोन की वजह से ही अंदर जाती है। एक चीज हमेशा याद रखिए, ये जो इसके डेफिनेशन में ही बोला गया है कि ये क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारा जो शरीर में भोजन से प्राप्त होने वाली जो ताकत है, जो मेटाबॉलिज्म है, उसकी वजह से होने वाली परेशानी। तो यदि हम अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक कर लेंगे तो हमको कोई परेशानी नहीं होगी। यदि हम अपने भोजन को ठीक कर लेंगे, यदि हम अपने रहन सहन को ठीक कर लेंगे, तो हमको हो सकता है जो डायबिटीज है उसके साइड इफेक्ट ना हो। आपने श्री भैया बोला कि बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो हमारे परिवार में चली आ रही है, ये आपको अगर हमको हुई है, अगर मेरे पिताजी को है तो हमको भी होगी। मैं जो लोग भी ये बात बोलते हैं मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि आपको सजग होने की बहुत जरूरत है। कल ही मैंने भैया अपने ओपीडी में एक 16 साल के बच्चे को देखा जिसको डायबिटीज है। उनके बड़े भाई को डायबिटीज नहीं है, जो कि करीब 24 साल के थे, और उनके पिताजी को डायबिटीज है। बड़े भाई ने बोला कि जब मेरे पिताजी को मालूम चला कि डायबिटीज है, मैंने उसी दिन से शुगर खाना बंद कर दिया, प्रोसेस्ड फूड खाना बंद कर दिया और जंक फूड खाना बंद कर दिया, और मैं रेगुलर 45 मिनट्स तक स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन करता हूं और मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसी के अवैध में देखिए, वो 16 साल का बच्चा उन्होंने, जो मेरे पास लेकर आए थे बड़े भाई, उन्होंने बोला कि इसने एकदम हमारी बात नहीं सुनी। इसके भोजन में सिर्फ 3 चीज थी, पिज्जा, बर्गर और नूडल्स, और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक। इस बच्चे ने अपने भोजन में दिन में 2 टाइम यही खाया और इसने कोल्ड ड्रिंक को पानी की तरह पिया। और अब ये सब देखने के बाद 16 साल की उम्र में उस बच्चे की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसको, उसका यूरिन पे कंट्रोल खत्म हो गया था और उसके त्वचा में अब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के सेंसेशंस, और जैसे चीटी चलना है, रगड़, झुनझुनाना है, कांपना है, ये सारे उसको सिम्टम्स लगने लगे थे। और उसका अपने यूरिनेशन, मतलब पच, जो पेशाब का रास है, पेशाब, उस पे कंट्रोल खत्म हो गया था। तो आप देखिए, डाइट, एक ही घर में 2 भाई, दोनों के माता पिता सेम, एक ने अपने भोजन को कंट्रोल कर रखा है, एक्सरसाइज का सहारा ले रखा है, इसीलिए वो अभी तक बचे हुए हैं। और उनका छोटा भाई, जिसने इसमें जिसने कोई भी कंट्रोल नहीं किया, वो इस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। अगर मैं कॉमन कहना चाहूं तो डायबिटीज अक्सर थोड़ा मोटे व्यक्तियों को होती है, और जो ओवरवेट और लेस एक्सरसाइज, मतलब ओबेसिटी विद लिथार्जी, मतलब मोटापा के साथ साथ आप आलसी भी हैं, तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो आपको हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का भोजन करना चाहिए। हाई प्रोटीन मतलब आप जितने भी, और इसके साथ हाई फाइबर डाइट का आपको भोजन करना चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपको छोड़नी चाहिए वो है प्रोसेस्ड वाइट शुगर, जो हमें बाजार में चीनी मिलती है, सबसे पहले उसको छोड़ना चाहिए। और दूसरी चीज, जो भी सामान बाजार में पाम ऑयल से बना है, पामोलिव ऑयल से बना है, उसको हमको अपने भोजन में एकदम एकदम एकदम बंद कर देना चाहिए। हमको हाई फाइबर डाइट, मतलब सारे फल, सारी सब्जियां, उसको सैलेड, सलाद, इसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। सलाद में भी ये बोला जाता है कि यदि आप टमाटर का सेवन बहुत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फलों में डायबिटीज का जो सबसे अच्छा फल माना जाता है वो है जामुन। जामुन में बहुत ज्यादा वो तत्व हैं जो आपके शुगर को नीचे लाते हैं। हाई प्रोटीन डाइट मतलब जो भी दाल आप खाते हैं अच्छे से खाइए, प्रोटीन जिन भी चीजों में आपको मिलता है उनका आप सेवन करिए। और आपको लो कार्बोहाइड्रेट मतलब जो भी चीजें जिसमें, जो जैसे मैदा हुआ, आपको छना हुआ आटा हुआ, इन सब चीज की आपको कमी करनी चाहिए। आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आप ये मिक्स ग्रेन, मतलब 4-5 तरह का आटा मिला के उसका भी सेवन ना करें। आपको सिंगल ग्रेन, सिंगल प्रोटीन एंड लॉट्स ऑफ सैलेड, मतलब बहुत सारा सलाद, कोई भी एक दाल, कोई भी एक कार्बोहाइड्रेट, मतलब या कोई भी एक अनाज, कहने का मेरा मतलब है, इसको अपने भोजन में करना चाहिए। अगर आप इतना करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और इस डाइट करने से भी अगर आपकी डायबिटीज एकदम शुरुआती दौर में है तो आपका डायबिटीज रिवर्सल हो सकता है।
0: डायबिटीज रिवर्सल की आप ये बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो बहुत सारे लोग इस बात से अचंभित होंगे क्योंकि अक्सर ये चीजें लोग सुनते नहीं हैं। लोग ये समझ लेते हैं कि डायबिटीज मतलब अब जिंदगी भर की बीमारी हो गई है, अब जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, हर दिन हमको ये दवाई शुगर की खानी है, या कई लोग जिनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है तो वो खाने से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लेंगे और उसके साथ ही उनको जीना है, ऐसा ही लोग सोच लेते हैं। तो ऐसे में समझ में आ रहा है कि वास्तविकता में संभव है कि अगर हम अपने भोजन में थोड़ा बहुत बदलाव लाएंगे, इन चीजों का ध्यान रखेंगे, तो ये चीज पॉसिबल है कि हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। क्या चिकित्सा के दृष्टिकोण से हम सभी इस बात को ऐसा मान सकते हैं कि हाँ ये संभव है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अगर ये हमारे पीढ़ियों में आया है, हमारे माता पिता से हमको मिला है, तो फिर हमें भी इसके साथ ही जीना पड़ता है, ऐसा सोच लेते हैं। क्या एक अवधारणा मात्र है?
1: ये कहा जाता है कि जेनेटिक्स गवर्न, और माता और पिता दोनों को अगर डायबिटीज है तो बच्चों में 90% चांसेस हैं कि वो होंगी, और अगर माता या पिता में से किसी एक को है तो वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको अगर थोड़ा बहुत भी उनका ब्लड शुगर गड़बड़ है और उन्होंने अपने को एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल पे रखा है तो उनको कोई परेशानी नहीं होती है। मेरे आरोग्य मंदिर में बहुत सारे पेशेंट पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं। मैंने ये नोटिस किया कि ग्रैंडफादर जो थे और ग्रैंड मदर थे, उनको कोई डायबिटीज नहीं थी। उनके चार बेटों में से जो सबसे छोटा बेटा था, सिर्फ उसको डायबिटीज हुई, और उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, जो जिस बेटे को डायबिटीज हुई, उनके भी बच्चों में डायबिटीज नहीं थी। तो ये मैं ये मानता हूं कि अगर दोनों माता पिता को है तब तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, पर अगर दोनों में से किसी एक को नहीं है और जो उनका सिबलिंग है या जो बच्चा है या भाई बहन है वो बहुत अच्छे से अपना अगर ख्याल रखते हैं तो उनको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर आप अपने भोजन पे कंट्रोल करते हैं तो बहुत सारे लोग अपने डायबिटीज को सिर्फ अपने भोजन से ही ठीक करने की कोशिश करते हैं।
0: अब ये बात समझ में आ रही है कि हाँ, डायबिटीज को भोजन से ठीक किया जा सकता है। एक और प्रश्न जो डायबिटीज से जुड़ी हुई लोग अक्सर पूछते हैं वो ये है, वो है फास्टिंग के बारे में। ये प्रश्न उठता है कि क्या डायबिटीज के मरीजों को फास्टिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जबकि हम प्रकृति चिकित्सा में देखते हैं कि फास्टिंग एक चिकित्सा के रूप में जो उपवास है वो रेकमेंड किया जाता है। तो डायबिटीज के मरीजों के लिए क्या एडवाइस देंगे?
1: अगर आपको सीवियर डायबिटीज है, मतलब आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 250 से ऊपर है, आपका HbA1c जो है वो करीब 9-10-11 तक ऊंचा है, तो प्लीज फास्टिंग मत करिएगा। मैं एक और रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि प्लीज घर पे तो ये एकदम मत करिएगा। आप किसी डॉक्टर की एडवाइस के बिना कभी भी फास्टिंग मत करिएगा, क्योंकि डायबिटीज में शुगर लेवल बढ़ जाता है और जब हम खाते नहीं है तो हमको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपो मतलब जो शुगर है वो कम हो सकती है, और कम शुगर होने की वजह से हमको बेहोशी छा सकती है, कमजोरी छा सकती है, और हमारा जो शरीर है उसके ऊपर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ये कहा जाता है कि आप इसको अगर मेडिकल सुपरविजन में करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको अपने शरीर के बारे में सुनना पड़ेगा। अगर आपको हल्का, मतलब बहुत लो डायबिटीज है, बहुत सब कुछ वेल अंडर कंट्रोल है, तो प्लीज फास्टिंग करना आप शुरू कर सकते हैं। और इसमें भी इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की जाती है कि दिन में आप करीब 14 से 16 घंटे तक कुछ मत खाइए, और उसके बाद जो हल्का आपके पास 8 घंटे बचे हैं उसमें आप हल्का भोजन कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सालयों में, आयुर्वेदिक सेंटर्स में लोगों को शहद, नींबू, पानी के साथ फास्टिंग कराई जाती है, जिसमें उनको कोई भी ठोस चीज है या ठोस अन्न है या फल है या सब्जियां हैं वो नहीं दिया जाता है, सिर्फ पानी दिया जाता है, शहद दिया जाता है और नींबू दिया जाता है। इसमें हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कम रहते हैं, और इसमें जो आपका शरीर है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। पर मैं फिर बोलना चाहूंगा कि अपने ब्लड शुगर को मॉनिटर करिए, और किसी न किसी जानकार व्यक्ति के अंडर में सुपरविजन में ही करना चाहिए। आप अगर फुल 24 आवर्स फास्ट नहीं कर सकते हैं तो इंटरमिटेंट या मतलब थोड़ा लंबे समय तक बिना भोजन के रहिए और फिर आप हल्का भोजन करिए, ये भी आप कर सकते हैं और इससे भी आपके शरीर को बहुत फायदा होगा।
0: जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं डॉक्टर साहब, तो एक सहज सा प्रश्न उठता है कि कितने लंबी देर तक हम उपवास कर सकते हैं एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में, कितना अंतराल एक व्यक्ति कम से कम रखे या ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए, एक आइडिया रहे?
1: ये भैया कहीं भी ये कहा जाता है कि आप दिन में दो भोजन के बीच में 12 से 16 घंटे तक का गैप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग विदेश में करते हैं कि वो रात में 7-8 बजे भोजन कर लेते हैं और फिर अगले दिन जो करीब 9 बजे 9:30 बजे तक सवेरे तक खाली पेट रहते हैं, वो सिर्फ पानी पीते रहते हैं, जिससे उनके शरीर में उनको थोड़ा बहुत फास्टिंग का भी बेनिफिट मिलता रहे। फास्टिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपके शरीर को तरोताजा करने में बहुत बड़ा उसका रोल है और ये जो भी हमारे खराब सेल्स हैं उनके डिप्लीशन में इसका बहुत, उनको हटाने में फास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। और प्राकृतिक चिकित्सा ये मानता है कि जब हम फास्टिंग या उपवास करते हैं तो हमारे

0: पाचन तंत्र को बहुत आराम मिलता है, हमारे लिवर को बहुत आराम मिलता है और उसकी रीजनरेशन में, उसके ठीक होने में उसको बहुत मदद मिलती है। तो मैं चाहूंगा कि आप अगर 12 नहीं तो करीब 7-8 घंटे तक, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, जितना आप अपने शरीर को बिना कष्ट दिए कर पाए वैसा फास्ट करिए, और प्लीज किसी डॉक्टर या चिकित्सक की निगरानी में करिए, उसकी सलाह के साथ करिए और अपने शरीर की सुनिए। अगर आप नहीं रह पा रहे, आपको कमजोरी लग रही है, चक्कर आ रहा है, तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए।
1: ये बहुत ही सुंदर सी बात समझ में आ रही है कि जिन चीजों के बारे में हमारी अवधारणा है कि डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती, डायबिटीज के लिए जिंदगी भर दवाई ही या इंजेक्शन ही लेते ही रहना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई और इलाज नहीं है, इस बीमारी के साथ ही जीना है, इन अवधारणाओं को तोड़ा गया है आज की इस चर्चा में। ये समझ में आ रहा है कि हम स्वास्थ्य को वापस हासिल कर सकते हैं, डायबिटीज को भी रिवर्स किया जा सकता है हमारे आहार पद्धति को चेंज करके, मुख्य रीति से अपने आहार को बदलने से हम ये चीजें कर सकते हैं। हम चीनी और प्रोसेस्ड फूड को त्याग दें और फिर अपने भोजन पर थोड़ा बहुत संयम लेके आए तो फिर बहुत कुछ संभव है। और साथ ही साथ फास्टिंग के बारे में भी जो चीजें हम सोचते आए हैं उस पर आज एक नया प्रकाश मिला है कि हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की भी आवश्यकता है, जिससे हम स्वास्थ्य को वापस करने के लिए शरीर की मदद करें। आज समय को देखते हुए यही रुकते हैं, मगर आज डॉक्टर राहुल मोदी जी ने हमें डायबिटीज, डायबिटिक डाइट और डायबिटीज को रिवर्स करने के बारे में और फास्टिंग से इसके संबंध के बारे में हमें जानकारी दी। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, आज की चर्चा में हमने डायबिटीज के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी सुनी है कि डायबिटीज को हम पलट सकते हैं, इस बीमारी से हर व्यक्ति वापस लौट कर आ सकता है, स्वस्थ होने के लिए कोशिश कर सकता है। जितनी जल्दी हम ये प्रयास करेंगे उतनी जल्दी स्वास्थ्य हमारे लिए संभव है। आज की चर्चा में बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया करके रेलवे परिसर में धूम्रपान न करें, यह वर्जित है। इसके लिए आपको 200 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल भी हो सकती है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज फिर आप सबका स्वागत। रिश्तों को नए नज़रिए से जब हमने देखा तो अगर पिछली कड़ी को आप याद हो देखें तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आया था कि आज जो एक डिस्कनेक्ट फील करते हैं हर रिश्ते में, हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ है जो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, तो उसमें या तो हमारा कोई पास्ट हर्ट होता है या प्रेजेंट की कोई सिचुएशन है जो हमारा बैरियर क्रिएट कर रही है या फिर

0: और जो कि निकला था कि रिश्तों को जीना चाहते हैं, इंटरेक्शन जो हम हैं उन पूरी वैल्यूज को हम अपने अनुभव करना चाहते हैं रिश्तों में। तो जहाँ हम रिश्तों को जीना चाहते हैं, ये हमारा पर्पस है, तो वो रिश्ते फिर बैरियर्स में क्यों रहे, वो बंधनों में क्यों बंधे रहे, वो दीवारों के पीछे क्यों रहे, तो कैसे तोड़े उन दीवारों को।
1: एग्जैक्टली देखो कितना कनेक्टिविटी बनती गई कि पर्पस ऑफ लाइफ था रिश्तों में खुशी को एक्सप्रेस करना, लेकिन जब संबंधों में आए तो एक्सप्रेस करने की बजाय मांगने लग गए, नहीं मिला, एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उठा, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन जीने का क्या लक्ष्य है। दैट्स व्हाई दैट क्वेश्चन वाज कमिंग अप अगेन एंड अगेन। वेरी ट्रू। सो वी आर रेडी टू वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप्स, वी आर गोइंग टू वर्क, राइट? We are not going to wait for
0: the other person to work. Yeah.
1: Fundamental is ये कि हर एक एक सेकेंड के लिए रुक कर अपने आप से पूछे कि सामने चाहे कोई भी है, अब उस कोई में किसी को भी डाल दो उस फ्रेम ऑफ पिक्चर में, मदर इन लॉ है, बॉस है, एनीबडी, समटाइम्स कुड जस्ट बी अ नेबर, यू नो, कोई भी हो सकता है। एम आई रेडी टू वर्क ऑन दैट रिलेशनशिप एंड देन वील सी हाउ वी स्टार्ट डूइंग इट। संबंधों में जो सबसे पहली बात, क्योंकि कुछ एक बातों को हम देखते कि ये छोटी छोटी बातें होती हैं, बहुत बड़ी नहीं, इनको हम अगर ध्यान रखेंगे तो ये जो एनर्जी फ्लो है ये बहुत स्मूथ चलेगा। सबसे बड़ी पहली इम्पोर्टेंट बात हमें अपने आप से पूछना होगा कि ये संबंध हैं कहाँ पर, वेयर आर दीज रिलेशनशिप
0: इन सेंस हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में।
1: सो वेन आई थिंक ऑफ अ रिलेशनशिप विद यू, आई लुक एट यू, right? What is my relationship with Kanupriya? So I start looking at Kanupriya. That means my relationship with you is here, outside, here. But spirituality हमें ये सिखाते कि relationship जो हम, क्योंकि हम relationships को बाहर देखते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन relationships बाहर होने से पहले पहले वो relationship अंदर है। I first create a relationship.
0: Yes, oh yes.
1: I first create a relationship here in my consciousness. क्यों मैं अपना relationship पहले अपने consciousness में create करती हूँ? क्योंकि मैंने आपको वहाँ create किया हुआ है, और क्योंकि मैंने आपको वहाँ create किया हुआ है, सबसे पहले तो मेरा रिश्ता आपके साथ वहीं अपनी consciousness में जुड़ना शुरू हो जाता है। अभी आप हो भी नहीं सामने, लेकिन मेरा अंदर आपके साथ एक रिश्ता चल रहा है। अब मैंने आपको जो क्रिएट किया हुआ है, दैट इज बेस्ड ऑन माय परसेप्शन अबाउट यू, व्हाटएवर परसेप्शन आई हैव अबाउट यू। अब किसी भी एक को ले लें, टेक एनी वन पर्सन एंड लेट्स लुक एट हाउ दिस हैपेंस। क्योंकि अगर ये हमें क्लैरिटी से समझ में आ गया कि ये अंदर कैसे काम करता है, तो बहुत सारे इश्यूज हील हो जाएंगे, है ना? तो किसी एक को भी ले लें और उसको अंदर यहाँ देखें कि हमने उसको अपने कॉन्शियसनेस पे किस आधार से क्रिएट किया हुआ है। एंड ट्राई एंड टेक समवन यू आर नॉट गेटिंग अलोंग वेल विथ, क्योंकि आर एम इज कि हम अपने रिलेशनशिप को हील करें। तो उसको हमने यहाँ अपने कॉन्शियसनेस में क्रिएट किया है बेस्ड ऑन माय परसेप्शन। मेरा परसेप्शन किस चीज़ पर बेस्ड है? माय बिलीव्स अबाउट यू, एंड माय बिलीव्स अबाउट यू are based on my past
0: experience, yes,
1: my past experiences and the feelings that got created during those experiences. The past
0: experience, suppose हम एक mother-in-law को ले लेते हैं, चलिए ठीक है, मतलब like अब उनके साथ मेरा व्यवहार में मैं हूँ, तो आपने कहा कि उनकी पर मेरा perception उनके लिए, मैं married हूँ, ये नहीं कि मेरे अभी marriage होनी है, I'm married and I know what kind of person you are, so I now look
1: I know what kind of person you are. That's the देखो कितना easy है. We know it all the time. So I know what kind of person you are here. That's all. My relationship is already established here. I know and I am right. So I know. तो यहाँ पर अपनी consciousness में उसको हम create करते हैं based on my past experiences and my feelings.
0: Oh my God, हमारा पूरा base जो है वो यहाँ हर बार जो है कहीं ना कहीं
1: हिल जाता है,
0: क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्गली इनग्रेन्ड होते हैं और वही हमारी सारी प्रॉब्लम की जड़ नज़र आ जाते हैं। ओके,
1: है ना? तो मैंने आपको यहाँ क्रिएट कर दिया, अब जिस कॉन्शियसनेस में मैं आपको यहाँ क्रिएट करूँगी उसी तरह की एनर्जी मैं आपके ऊपर थ्रो करूँगी, एंड व्हाटएवर एनर्जी आई थ्रो ऑन टू यू

0: the same energy,
1: exactly.
0: I will get back. So I am already experiencing the relationship even without interacting with you.
1: अच्छा और मैं basically तो बड़ी बेचारी होती हूँ.
0: हाँ.
1: क्योंकि मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है. मैंने तो कुछ बुरा किया ही नहीं, पर मैंने सिर्फ आपकी परसेप्शन,
0: यस, मैंने यहाँ क्रिएट की हुई है वो परसेप्शन.
1: वो मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे
0: क्रिएट. एब्सोल्युटली, सो नो प्रॉब्लम विद दैट. कि हाँ, माय पास्ट एक्सपीरियंसेस जो भी थे उसके आधार पर मैंने वो कॉन्शियसनेस में आपकी एक इमेज क्रिएट की है. डिपेंडिंग ऑन उसकी क्वालिटी, उस तरह का रिश्ता मेरा आपके साथ मेरी कॉन्शियसनेस में ऑलरेडी जुड़ गया है. एंड जिस तरह के अगर मैंने नेगेटिव एनर्जी उस पर थ्रो की, नेगेटिव एनर्जी इज गोइंग टू कम इन रिटर्न. जहाँ मुझे ये प्रोसेस समझ में आ जाता है, आई अंडरस्टैंड अ वेरी फंडामेंटल थिंग, और वो ये कि मेरे रिलेशनशिप का, किसी के साथ भी, मेरे रिलेशनशिप का जो फाउंडेशन है, दैट इज द विजन दैट आई हैव क्रिएटेड अबाउट देम,
1: इमेज आई हैव क्रिएटेड, यस, यू नो,
0: इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ यू बिहेव और स्पीक टू मी नाउ.
1: ओके, सपोज दे आर बिहेविंग, शी हैज बीन बिहेविंग बैडली टू मी, मतलब मेरा जो उनके वो उनको मैं बर्दाश्त नहीं हूँ या मैं अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं एक इमेज क्रिएट करूँ कि वो बहुत अच्छी हैं, या
0: वो एक इमेज क्रिएट करूँ इज नॉट अ फॉल्स इमेज. पहली बात तो एक तो ये है कि जो सामने वाला है उसके अंदर विशेषताएं भी हैं, कमजोरियां भी हैं. हम अपनी पिक्चर किस कलर से बनाते हैं?
1: सारी कमजोरियों से, और वो भी वो जो मेरे साथ डीलिंग में आ रही हैं कमजोरियां.
0: फाइन, लेकिन मेरे साथ डीलिंग में दोनों चीजें आने वाली है ना, विशेषताएं भी आएंगी, कमजोरी भी आएंगी. मैं एक कमजोरी का कलर लेती हूँ और उससे पिक्चर पेंट करना शुरू करती हूँ. लेट्स टेक, आई जस्ट टेक योर वन वीकनेस. मैं आपकी एक वीकनेस ले लूँ कोई भी और उसके साथ आपकी पिक्चर पेंट करना शुरू कर दूँ. अब मेरा रिलेशनशिप कौन सी
1: है? वो ऐसे ऐसे एक के बाद एक जुड़ती जाती है. इट्स नॉट डिफिकल्ट एक्चुअली.
0: नाउ सी हाउ इट विल हैपन. सो आई हैव टू बिगिन ओनली विद योर वन वीकनेस. अगर मैंने कोई आपकी एक कमी पकड़ ली, यहाँ पिक्चर ड्रॉ करना शुरू किया, दैट विल बी माई रिलेशनशिप. मैं नेगेटिविटी की एनर्जी फेंकूंगी, आपसे नेगेटिविटी की एनर्जी फिर आएगी, मैं नेक्स्ट वीकनेस को पकड़ूंगी, थर्ड वीकनेस. लेकिन ये सारी चीजें कहाँ क्रिएट हो रही हैं? व्हाट इफ आई वुड हैव स्टार्टेड द पिक्चर विद वन स्पेशलिटी, आपकी एक विशेषता, आपकी एक क्वालिटी, क्योंकि दोनों है ना.
1: लेकिन आप मेरे साथ तो बुरा बुरा कर रहे हो, उसके बावजूद भी मैं आपकी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करूं.
0: कोई ऐसा आपको मिला जिसके अंदर एक भी विशेषता नहीं है?
1: नहीं, नहीं होगी, लेकिन आप मेरे साथ तो करते जा रहे हो. क्यों हम दूसरे के लिए नेगेटिव इमेज क्रिएट करते हैं? क्योंकि वो मुझसे मेरे साथ बुरा कर रहा होता
0: है. हमने पहले ही देखा कि दूसरा कोई बुरा तो कर नहीं कर रहा, वो अपने दृष्टिकोण से सही कर रहा है. लेकिन मुझे वो क्या लग रहा है
1: कि वो
0: बुरा, वो गलत है. हो सकता है कि वो जो कर रहे हैं, अगेन वी आर गोइंग टू मिक्स द लाइक्स एंड डिसलाइक्स विद द जजमेंट. लेट्स से आपने जो कहा मदर इन लॉ ने कहा कि ये कपड़े नहीं पहनो, यू नो, हमारे घर में साड़ी पहननी चाहिए, सिंपल. आपको आदत है, आज दिन तक आप बाहर निकलते हैं तो आप अपनी जीन्स और स्कर्ट्स एंड जो भी पहनते हैं. इट्स जस्ट अ लाइक एंड अ डिसलाइक. फॉर हर ऑल्सो इट वॉज जस्ट अ डिसलाइक, बट फॉर यू वही जीन्स वो एक लाइक थी. लेकिन वो लाइक और डिसलाइक को हमने क्या लेबल कर दिया? मेरी मदर इन लॉ ही ऐसी है, मेरी मदर इन लॉ बहुत नैरो माइंडेड है, बहुत ये है. फिर मैं उसको छोटी छोटी बातों पर कौन से लेबल से देखूंगी?
1: नैरो माइंडेडनेस, हर चीज,
0: बिकॉज ऑफ
1: खाना बनाने पे, बाहर जाने पे, हर चीज पे मैं इस पे करती जाऊंगी.
0: माई पिक्चर विल गेट डार्कर एंड डार्कर विद दैट कॉन्शियसनेस. अब जब हमें परमात्मा से ये ज्ञान मिलता है तो हमें विशेषताएं और कमजोरी इन दोनों पर भी फोकस करने की जरूरत नहीं है. वी सी द सोल इन इट्स राइट पर्सपेक्टिव, एंड दैट इज प्योर आत्मा, पावरफुल आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा. ओके, देर आर लॉट ऑफ अदर वीकनेसेस और व्हाटएवर राइट नाउ, लेकिन एक्चुअली वो कौन है? तुम हम ज्ञान के आधार से जो संबंध जोड़ना कोशिश करते हैं वो किस आधार से है? प्योरिटी इन द विजन, कि हम उसको किस दृष्टिकोण से यहाँ इमेज क्रिएट करें. अब उस ह्यूमन बींग की जो हम पिक्चर क्रिएट करें वो किस फॉर्म में क्रिएट करें, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि वो कौन है. तो लेबल्स हटाएं, रिश्ते भी हटाएं, और उसको कौन लें कि वो कौन है? प्योर सोल.
1: उसे माफ करना कितना मुश्किल है, वो प्योर सोल की तरफ जा पाना इतना मुश्किल है, क्योंकि मैंने अपने आप को बचाया ही हुआ है उसके उन लेबल्स के कारण, यू नो,
0: बचाया हुआ है
1: इन द सेंस कि मैंने अपने आप को गुस्से के या हेट्रेड के उसमें रखा हुआ है कि शी इज बैड शी इज बैड शी इज बैड.
0: या बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हीलिंग आवरसेल्फ्स राइट. आई वांट टू हील मायसेल्फ एंड टू हील मायसेल्फ आई विल हैव टू क्लीन अप हियर एंड आई वांट कि मेरे जो सारे रिश्ते हैं वो कैसे हो जाएं बहुत स्मूथ. तो आपके प्रति एक आपके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए मुझे आपकी जो पिक्चर मैंने अपनी कॉन्शियसनेस में क्रिएट की हुई है उसको चेक करना पड़ेगा कि मैंने आपके प्रति क्या क्या ऐसे पास्ट की बातें कौन सी ऐसे ऐसे बिलीव्स पकड़ कर रखे हैं जिसके कारण आप आज के समय में कैसा भी बिहेव करें मैं आपके साथ फिर भी आपके प्रति कैसा सोचती हूँ नहीं. ये तो है ही ऐसे. तो वो रिश्ता कहाँ चल रहा है अभी भी यहाँ चल रहा है. लेकिन एवरीवन इज चेंजिंग एवरी डे आंदे. हम हर रोज एक रियलाइजेशन से एक परिवर्तन से गुजरते हैं. लेकिन एवरी टाइम आई मीट यू अगर मेरे रिश्ते का फाउंडेशन वो कॉन्शियसनेस होगा विल आई हैव द राइट एनर्जी.
1: सो एवरी टाइम आई शुड मीट द पर्सन विद द ब्लैंक कॉन्शियसनेस.
0: एब्सोल्युटली. जिसको परमात्मा कहते हैं एब्सोल्युटली क्लीन चित्त. जो चित्त है उसको बिल्कुल क्लीन कर दो जिसमें कोई भी पास्ट की बातें नहीं है. आई नो इट सीम्स टू बी वेरी चैलेंजिंग बट देन दैट्स द एफर्ट. कि कोशिश बार बार करें कि अपनी कॉन्शियसनेस में हमने जो पिक्चर क्रिएट किया बिकॉज आफ्टर ऑल वी अंडरस्टैंड कि आई एम द आर्टिस्ट एंड आई एम क्रिएटिंग द पेंटिंग. इट्स लेस अबाउट यू. आप देखो कितनी बार ऐसा होता आप वो एक अनुप्रिया है लेकिन अलग अलग लोग आपके बारे में अलग अलग सोचते हैं ना. और अलग अलग लोगों के साथ इसीलिए हमने कहा कि कुछ लोगों के साथ हमारा अच्छा और कुछ लोगों के साथ हमारा रिश्ता ठीक क्यों नहीं है. हम तो वही है ना. सपोज लेट्स से आई एम अ बैड पर्सन तो फिर मेरा तो किसी के साथ भी रिश्ता अच्छा नहीं होना चाहिए. देन व्हाई इज इट हैपनिंग दैट विद सम पीपल आई एम हैविंग अ वेरी गुड रिलेशनशिप एंड विद सम पीपल इट्स जस्ट नॉट वर्किंग. That means it's less to do with who I am and it's less to do with who they are. It's more about
1: the image I have, yes.
0: That we create about
1: so, them. So again, clean image bhi rakhe, wo bhi itna wahan tak hum kab pahunchenge, pata nahi baba.
0: Isliye Paramatma Shiv Baba hame effort ye karwate ki har baar jab bhi kisi se milo, ek thought create karo. आत्मा
1: प्योर आत्मा
0: ताकि इट विल बिकम. देखो क्या होगा इफ आई हैव अ लॉट ऑफ स्टॉक of your past यहाँ पर. अब मैं बैठ कर ट्राई करूँ कि एक एक को क्लीन करना very challenging. I will not be able to do it. मैं उसी past में चले जाऊँगी शायद. क्यों ना हम एक try करके देखें कि जब भी हर एक से मिले तो एक thought के साथ because we are working on our painting तो क्यों ना उस color के साथ अपना next stroke paint करें कि ये भी एक पवित्र आत्मा है. तो धीरे धीरे जो हमारी पेंटिंग है हमारी कॉन्शियसनेस में वो चेंज होती जाएगी. इट्स अबाउट चेंजिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी. आई मेट समवन के जिनकी सिस्टर ने उनके साथ उनके ही बिजनेस में बहुत ऊपर नीचे कर दिया था एंड जस्ट टू यू नो टेक ओवर द होल बिजनेस उन्होंने शी हैड गॉन टू ऑल काइंड ऑफ एक्सटेंट. जो एक ब्रदर एंड सिस्टर के रिलेशनशिप में या किसी भी दो लोगों के रिलेशनशिप में वॉज नॉट वेरी हेल्दी वो एक पास्ट की बात थी. अब वो बहुत समय से पकड़ी हुई बात थी एंड देन सडनली वन डे द सिस्टर कम्स एंड सेज आई एम सॉरी लेकिन आई वॉन्ट कि जो हमारे बीच पहले था कैन इट बी द सेम अगेन. अब इनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि पहले बहुत अच्छा रिलेशनशिप था बिफोर दैट बिजनेस लेकिन वो बिजनेस में ये ऊपर नीचे होने की क्योंकि आजकल आप देखो भाई बहन के बीच में प्रॉपर्टी के ऊपर या ये ऐसी ऐसी यू नो राइट्स के ऊपर छोटी छोटी बातों पे ये बहुत जो सुंदर रिश्ते हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसे बिखर रहे हैं. एंड फिर हम एक दूसरे के प्रति क्या इमेज बनाते जाते हैं अंदर वो तो है ही ऐसे वो तो है ही ऐसे. और फिर जब भी हम मिलेंगे तो कौन सी एनर्जी फ्लो होगी. इट कैन नॉट बी द राइट काइंड ऑफ एनर्जी. सो लेट मी चेक विद दैट वन पिक्चर जो भी एक व्यक्ति जिनके साथ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने उनको अपनी कॉन्शियसनेस में कैसा क्रिएट किया हुआ है बिकॉज रिलेशनशिप इज नॉट देयर. रिलेशनशिप इज
1: विद मी यस
0: इस हियर. और जिन भी लोगों के साथ हमारा थोड़ा सा अनबन हो रहा है थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो साइलेंस में बैठकर मेडिटेशन में बैठकर अपनी पेंटिंग को चेंज करने की कोशिश करें. उनको चेंज करने की कोशिश नहीं कर।
1: लेकिन बात ये होती है कि जब ऐसे प्रोग्राम में बैठ के हम बात कर रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं जितने दर्शक हमारे साथ हैं, या जब बात हो रही होती है एक थर्ड पर्सन की तरह, हम बिना सोच पा रहे होते हैं, हमें ठीक लग रहा होता है। लेकिन जैसे ही शाम को मेरा हस्बैंड फिर आएगा, मैं उसकी वो इमेज क्रिएट करनी है तो भूल ही जाऊँगी। वो जो एक कंटिन्यूस मेरा प्रोसेस उसके साथ चल रहा है, या बच्चा घर आएगा या मदर इन लॉ से फिर इंट्रैक्ट करूँगी, ये चीज़ें मैं भूल जाऊँगी, याद ही नहीं रहेंगी। वो फिर बाद में तब याद आती हैं जब तक मैं प्रॉब्लम कर चुकी होती हूँ, मैं वो कर चुकी होती हूँ, एंड देन इट सडनली स्ट्राइक्स मी कि ये मैंने क्या किया।
0: एब्सोल्युटली, इसीलिए हमने कहा अवेयरनेस। एक अवेयरनेस से इस जीवन की यात्रा में चलना है। अभी जो आपने कहा, सो व्हाट इज हैपनिंग, पूरा वो प्रोसेस ऑटोमेटिक हो गया और प्रोसेस खत्म होने के बाद रियलाइज हुआ कि मैंने रॉन्ग बटन्स प्रेस कर दिए थे।
1: वो भी अब इसलिए रियलाइज हो रहा है क्योंकि प्रोग्राम देखा था, कहीं ना कहीं वो प्रोग्राम अच्छा लगा था, या मैं अपनी भी बात करूँ, मुझे बात की थी, मुझे बात समझ में आई थी, लॉजिकल लगी थी, और फिर जब मैंने, और मुझे लगा था मेरे जीवन से जुड़ी हुई बात है, और इसीलिए जब वो सिचुएशन से मैं गुजर गई, हो गया वो, तब मुझे याद आया कि ओहो वहाँ पे जो बात हुई थी वो ऐसी थी।
0: राइट, बट दैट आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, एटलीस्ट हम एक जर्नी पर शुरू हो चुके। अगेन वी आर सेइंग डोंट एक्सपेक्ट मैजिक फ्रॉम योरसेल्फ। आप ये नहीं सोचे कि हाँ आज सुन लिया कल से पूरा चेंज 360 डिग्रीज, तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। क्योंकि हम जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, देखो आज दिन तक हमने बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट टॉपिक्स या मैनेजमेंट के ऊपर बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन मोस्टली वहाँ जहाँ परिवर्तन की बात होती है वो बाहर की बातें होती हैं, कि रिश्तों को अच्छा बनाना है, स्माइल व्हेन यू मीट, ग्रीट लाइक दिस, टॉक लाइक दिस, तो इन बातों पर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन हम जिस परिवर्तन की बात कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा आकर रूट पर टच करते हैं, कहते हैं ये बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन टेम्प्ररी होता है। अब हो सकता है मैं बाहर से आपको स्माइल तो दे दूँ, बहुत अच्छी तरह से बात तो कर,
1: अंदर से अगर कड़वाहट है वो नहीं जा सकता।
0: तो वो जो बातें होती हैं ना सिंपल, वो करना बहुत ईजी होता है, और कहते हैं हाँ ये बहुत ईजी है, लेकिन जब ज्ञान की बातें यहाँ सुनते हैं तो लगता है ये बहुत डिफ़िकल्ट है। वो डिफ़िकल्ट नहीं है, वो रूट है। उस पर थोड़ा सा एक बार उस जर्नी पर चल पड़ेंगे अपने ऊपर काम करने में, यू विल एंजॉय द जर्नी।
1: नो दैट्स ट्रू, दैट्स व्हाट, नो लॉट ऑफ पीपल आउट अराउंड अस आर एंजॉयिंग।
0: या सो मोस्टली द एंजॉयमेंट इज आल्सो बिकॉज आई रियलाइज एवरीथिंग इज इन माय कंट्रोल, यू नो। अब मुझे एक रियल, अभी ये नहीं है कि मेरे सारे रिश्ते बहुत परफेक्ट हैं, नहीं, बहुत सारे रिश्तों में बहुत सारे इश्यूज हैं अभी भी, लेकिन ये समझ में आ गया है कि ये सारा कुछ सॉर्ट आउट करना ये मेरे हाथ में है। अब एक एक को लेते जाएं और जैसे जैसे कर, एंड मोस्टली इट इज़ हियर ना, तो बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत ही नहीं है कि उनके साथ बैठ कर बात करनी है, उनके साथ सॉर्ट आउट करना है, नो, इट इज़ हियर, आई हैव टू सॉर्ट इट आउट हियर। एंड दैट्स वाई परमात्मा शिव बाबा आकर वो तो ईजिएस्ट मेथड बता देते हैं कि बॉडी कॉन्शियस से हट कर सोल कॉन्शियस देखो, क्योंकि दैट इज़ द फंडामेंटल। अगर मैंने आपको देख लिया कि उस दृष्टिकोण से प्योर सोल, उसके बाद कोई और लेबल
1: नहीं है, बिल्कुल
0: कोई और लेबल नहीं बचता। जैसे ही मैंने आपकी इमेज यहाँ ये क्रिएट की, वन ब्यूटिफुल लिटल पॉइंट ऑफ लाइट, ना व्हाट विल बी द एनर्जी फ्लो, देन दैट मीन्स आई एम नॉट टू रिमेम्बर एनीथिंग ऑफ द पास्ट, कोई और बातें उसके बाद फुल स्टॉप हो जाती है, तो रिश्ता कैसे बनेगा। एंड दैट्स व्हाई
1: रिश्ता ऑटोमेटिकली हमारा जो है वो फ्लो, सारे रिजेंटमेंट सब कुछ
0: खत्म हो जाएगा ना, वो सारा खत्म हो जाएगा, तो एनर्जी फ्लो बहुत हाई लेवल की हो जाती है। तो इसलिए आज हम कोई एक रिश्ता लें, कोई भी एक जिसको हमने यहाँ जो पकड़ के रखा है, तो आज हम अपना कोई भी एक रिश्ता ले लें, एंड उस वो एक व्यक्ति ले लें जिनके साथ मुझे कॉन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा अंदर, और फिर बैठकर डिटैच होकर, अटैच्ड नहीं, अपने आइडिया ऑफ राइट से अटैच होकर देखेंगे तो फिर वो इमेज सारी गलत ही दिखाई आएगी।
1: एक रिश्ता ये ले लें कि मेरा बॉस है जिसके साथ मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ प्रोजेक्ट में, लेकिन आई डोंट हैव अ चॉइस, वी टॉक्ड अबाउट चॉइसेस, आई डोंट हैव एनी चॉइस, रिसेशन है, मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन उनका वो जो काम करने का खास एक प्रोजेक्ट पर चलना है और उस प्रोजेक्ट से मैं एग्री नहीं करता, मुझे मालूम है कि वो काम नहीं हो पाएगा अगर हम उसी के उससे कर चलते हैं तो, लेकिन मैं मतलब I have to work on that.
0: Yeah, I have to work on that. Now, जहाँ हम बोलते हैं I have no choice, तो ये तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि पहली बात तो हमने उस दिन डिस्कस किया कि कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है where I don't have a choice. फिर भी अगर आप फील करते कि I have no choice, but you still have one choice, how you have to feel. वो choice तो कोई नहीं लेके जा सकता आपसे कि वो जैसे आपने कहा कि वो job मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन उस job को करते हुए मुझे फील कैसा करना है,
1: डिप्रेस्ड फील करना है, यू नो ह्यूमिलेटेड फील करना है, इंसल्टेड फील करना है, या मतलब हेल्पलेस फील करना है, या पावरफुल फील करना
0: है, वो चॉइस तो है ना. उस चॉइस को तो नहीं हैंड ओवर करना हमें किसी को, तो उस चॉइस को एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं. नाउ लेट मी लुक एट व्हाट डू आई थिंक अबाउट माय बॉस. एंड यू नो वी कुड एक्चुअली डू दिस लिटिल एक्सरसाइज. दिस इट लुक्स वेरी यू नो सिंपल, लेकिन ये बहुत ईजी है कि हम उस व्यक्ति के दोनों साइड्स नोट डाउन करना शुरू करें.
1: वही छवि आती है जब अपने बॉस के बारे में सोचते हैं.
0: तो लेकिन आप उसको एक आत्मा देखकर अब उसकी विशेषताएं. सी अगेन लेट्स नॉट बिल्ड रिलेशनशिप्स ऑन लेबल्स. तो डिटैच्ड होकर उस आत्मा की विशेषताएं और भले कमजोरियां भी हैं जो आपको देखनी पड़ रही हैं, आप दोनों को निकालिए और फिर आपको दोनों निकलेंगे. ऐसा कोई भी नहीं आपको मिलेगा जिसको पास सिर्फ कमजोरियां हों और विशेषताएं हैं नहीं. और फिर जो विशेषताओं की लिस्ट आपकी निकलती है, आप अपनी कॉन्शियसनेस में वो विशेषताओं को याद रखने का प्रयास कीजिए. यू नो फिर अगर एक नेगेटिव थॉट आती है, लेट्स से लेट मी क्रिएट लेट्स से अ नेगेटिव थॉट के नहीं वो तो हमेशा मुझे इंसल्ट ही करते हैं, उसके साथ मैं एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करूँ, लेकिन वो एक बहुत अच्छे मोटिवेटर भी है.
1: जो भी एनकरेज करते हैं,
0: जो भी है, नॉट फ्लैटरी, नॉट इल्यूजन, बट वट एवर इज द रियलिटी. क्योंकि हो सकता है कि मैं जब वो मुझे इंसल्ट कर रहे हैं, आई हैव नॉट टेकन इट एट द राइट पर्सपेक्टिव. सो लेट मी लुक एट द पर्सन एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर. उनकी विशेषताएं और कमजोरियां दोनों निकालो, और जब भी कमजोरियों के थॉट्स मेरे मन में आते हैं, मैं तुरंत वो मेरे पास विशेषताओं वाली लिस्ट रेडी रहनी चाहिए, ताकि मैं विशेषताओं वाली लिस्ट में एक काउंटर थॉट, बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ कटिंग अ थॉट विद अ थॉट. तो अगर मेरे पास एक थॉट आती है कि कनुप्रिया तो ऐसे ही है, तुरंत मेरे पास एक थॉट आनी चाहिए नहीं,
1: लेकिन वो ऐसी भी है,
0: लेकिन कनुप्रिया ऐसी भी है. सो आई एम चेंजिंग माय पिक्चर. इट विल नॉट हैपन इन वन मिनट. इट विल नॉट हैपन इन वन मिनट बिकॉज मैंने जो पहले आपकी पिक्चर बनाई हुई है वो बहुत सारे
1: स्ट्रॉन्ग है, वो
0: बहुत सारे पास्ट एक्सपीरियंस
1: मुझे जस्टिफाइड लगती है, मुझे ठीक लगती है. आई फील आई एम राइट, आई डोंट फील लाइक चेंजिंग इट.
0: लेकिन फैक्ट ये है कि जहाँ मेरे आपके साथ जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जहाँ उनमें कुछ लो फेजेस थे, तो उनमें कुछ हाई फेजेस भी तो थे. लेकिन मेरा दृष्टिकोण नेगेटिविटी को देखने की तरफ ज्यादा था, तो मैंने पिक्चर कौन से कलर से पेंट की हुई है, सारे नेगेटिव वाले. अब मैं क्या करने वाली हूँ, उस पिक्चर को धीरे धीरे धीरे धीरे, इट विल नॉट हैपन एक स्ट्रोक के साथ पेंटिंग नहीं चेंज होने वाली है ये, लेकिन मैं धीरे धीरे अपने ही पास्ट एक्सपीरियंसेस से वो वाले इंसिडेंट्स निकालने वाले हूँ वेयर यू हैव बीन अ वेरी वेरी पॉजिटिव, एम्पावरिंग, पावरफुल, वट एवर क्वालिटी आई वॉन्ट टू टेक. और अब जब ये नेगेटिव मेरी कॉन्शियसनेस में आता, मैं इसको पॉजिटिव से रिप्लेस करती हूँ. और इसका सबसे ईजी तरीका है, अगर स्ट्रेट करना है, आत्मा है, ये सब उसके अक्वायर्ड संस्कार से, लेकिन ओरिजिनल स्वरूप में प्योर सोल, बिकॉज दैट्स व्हाट गॉड हैज कम एंड टोल्ड अस, कि हर आत्मा जो आज इस सृष्टि रंगमंच पर है, सबसे पहले अपने ओरिजिनल रूप में कैसी है,
1: प्योर.
0: ये सब जो उस पर लग गए हैं, ये दाग है, वाइट साड़ी है, नॉलेज है, ओरिजिनल कलर वाइट. आज दो दिन ट्रेन में पहन कर चले जाए, नीचे उतरे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा दाग होगा. अब आप सामने से देखते हैं, अगर इल्यूजन में है तो आप उस दाग को ही उस साड़ी का हिस्सा समझ लेंगे, और फिर आपका परसेप्शन इसकी तरफ क्या होगा. लेकिन अगर ज्ञान है तो आपको समझ में आएगा, नहीं, एक्चुअल कलर वाइट है, ये तो सिर्फ ऊपर से लग. अब आपका परसेप्शन कैसा होगा, साड़ी तो वही है. लेकिन आपने अपने ज्ञान की दृष्टि से जब इसको देखा, तब आपका परसेप्शन क्या होगा, प्योर वाइट साड़ी है, थोड़ा सा लगा हुआ दाग है, तो यू विल लाइक द साड़ी. लेकिन अगर इल्यूजन की दृष्टि से देखा, ओ ये तो वाइट पे ब्राउन, वाइट पे,
1: अगर हम देखें तो इसमें पूरा जो हमने काम किया, हमें उनके साथ इंटरेक्ट ही नहीं करना है.
0: That's why we said relationship is here.
1: नहीं, and सबसे बड़ी बात है हम जो interact करने से को avoid करते हैं, तो हम actually कर सकते हैं avoid, और हम तब तक अपने ऊपर काम करके relationship को इतना harmonious बना ले सकते हैं कि वहीं से vibrations आने लग जाएंगी और वो automatically हमें उनके सामने शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा.
0: कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हमें सिर्फ वो right energy create करके वो right energy generate करके उनके प्रति transmit करनी पड़ेगी.

0: और इससे हर समय जब उनके प्रति सोचें तो याद रखें वाइट है, प्योर वाइट है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से अक्वायर्ड संस्कार है, बट आई एम गोइंग टू लुक एट what is the original color of the soul. That's purity.
1: And that's what I'm going to create, you know.
0: That's what I'm going to create here.
1: Yes.
0: And that's why Baba started with the first step, ke pehle apne prati kya drishtikon rakhne hai. I am a pure soul. The first relationship with myself, then relationship with you. Ke aap kaun hai? Pure soul.
1: Very true.
0: Now
1: very
0: the energy that will transmit towards you will be more positive.
1: In fact, we really need to work on our relationship also. Yes. Relationship with ourselves, you know. अभी तक तो हमने बाकियों के साथ रिश्ते को देखा, लेकिन अपने साथ के रिश्ते को भी देखना बहुत ज़रूरी है सिस्टर शिवानी. लेकिन आज जो आपने बताया कि किस तरह से जो इतनी कड़वाहट या ठहराव या ठंडा रिलेशनशिप हो चुका है, ठंडापन आ जाता है, हम उस रिश्ते में गर्माहट नहीं महसूस करते, हम उस रिश्ते में एक वो एनर्जी का फ्लो नहीं महसूस करते, हम इतनी इतनी दूर दूर कटे हुए हैं, उन्हें हम खुद ही रिवाइव कर सकते हैं और दूसरे की इन्वॉल्वमेंट में नहीं. वी डोंट हैव टू वर्क ऑन आर रिलेशनशिप विद अदर्स, यू नो, इन्वॉल्विंग अदर्स. वी कैन एक्चुअली वर्क ऑन आर रिलेशनशिप्स without even, in fact, involving anyone, ourselves only. Very beautiful. Thank you so much. कोई बात, कोई सवाल आपके मन में उठता है इन बातों को लेकर जो आज हमने की हैं, आपका हम स्वागत करते हैं. कोई सजेशन है आपके पास तो आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क करें. हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555. हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही, लेकिन आने वाली कड़ियों में खुद के साथ कैसे रिश्ता हमने कायम करना है इस पर भी बात करेंगे. आज जो हमने बात की है उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें. अगली घंटी बजे उससे पहले हमें तैयार रहना है उस रिश्ते को एक नए नज़र से देखने के लिए. आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आज मंगल दिवस है, मंगल दिवस की मंगल कामनाओं के साथ 14 जुलाई 2026 आज का तारीख है और राष्ट्रीय शके 1948 23 गते 30 आषाढ़ मंगलवार आज है। विक्रम संवत 2083 आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या आज है। इसके साथ ही मंगलवार पुनर्वसु आज है, अमावस्या आज है। तो अमावस्या की आप सभी को जो है विशेष याद दिला दी है ताकि आप अमावस्या में, बहुत सारे लोग कुछ तप करते हैं, कुछ पूजा अर्चना करते हैं या फिर कोई उपवास भी करते हैं या फिर किसी कार्य को करने के लिए वो थोड़ा सा पंचांग को देखकर फिर करते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं, हमारे साथ एक और दोस्त जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो जी, नमस्कार। भाई जी नमस्कार।
0: नमस्कार गुड़ीलाल जी, बोलिए कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया हो कार्यक्रम को सुन करके। फिर मेरे भी मन में एक गाना आया है, वो आप सुना देंगे तो और भी बड़ा मजा आ जाएगा।
0: जी जी।
1: गाना है, जाना है गंगा पार प्रभु केवट नाग छे, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव छे, गंगा उतर कर नाव केवट बोले लगा, केवट बोला मेरी नैया तुम्हारे हाथ प्रभु। ये गाना सर ये हो जाएगा तो मजा आ जाएगा और आनंद आ जाएगा। सभी साथियों को मेरा प्यार बड़ा नमस्कार। सुरेश भाई है, बुरालाल जी है और कंचन भाई है, मजल भाई है, सभी को मेरा प्यार बड़ा नमस्कार और आपको भी मेरा प्यारा प्यारा नमस्कार।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हमें, सुबह सुबह आपने याद भेजा है और एक अच्छा गीत आपने याद किया है, तो एक अच्छे गीत की तरफ भी चलते हैं और आप सभी को ले चलते हैं। जाना है हमें गंगा पार, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

नच को दीवाना कर दे सावरे, क्या बात है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बड़ा प्यारा सा आपने दो भजन सुने। चलिए मैं बात करना चाहूँगा, आज अमावस्या आज है तो अमावस्या के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करूँगा। हिंदू धर्म में विशेष रूप से अमावस्या एक ऐसी तिथि आती है जहाँ पर चंद्रमा और सूर्य साथ रहते हैं, वही अमावस्या का तिथि बन जाता है। इस अमावस्या को विशेष रूप से सीनी वाली या दर्श नाम भी प्राप्त है और अमावस्या महीने के तीसरे तिथि में आती है और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को कृष्ण पक्ष आरंभ होता है तथा अमावस्या का समापन भी हो जाता है। अमावस्या पर सूर्य और चंद्रमा का अंतर शून्य रह जाता है, इसलिए डार्क हो जाता है और अंधकार के वजह से इसे अमावस्या कहा गया है। अमावस्या के नामकरण हेतु मत्स्य पुराण के अंदर 14वें अध्याय में एक रूपक कहानी भी आती है जिसके अनुसार प्राचीन काल में पितरों ने अछोद नामक एक सरोवर का निर्माण किया था। इन देव पितरों की एक मानसी कन्या थी जिसका नाम था अछोदा। अछोदा ने एक बार एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक कठिन तपस्या की। अब उस तपस्या के फलस्वरूप उन्हें वर मिलने वाला था और वर देने के लिए पितृगण पधार गए और उनमें से एक अतिशय सुंदर अमावस्यु नामक पितर को देखकर अछोदा उन पर अनुरक्त हो गई और अमावस्यु से प्रणय याचना करने लगे, किंतु अमावस्यु इसके लिए तैयार नहीं हुए। अमावस्या के धैर्य के कारण उस दिन की तिथि पितरों को अतिशय प्रिय हुई। उस दिन कृष्ण पक्ष की पंचदशी तिथि थी जो कि तभी से अमावस्या के नाम पर अमावस्या कहलाने लगी। तो ये कहानी है और विशेष रूप से ये बताया जाता है अमावस्या के स्वामी पितर होते हैं और तिथि के समय में 16 कला जल में प्रविष्ट हो जाती हैं और चंद्रमा का वास अमावस्या के दिन औषधियों में रहता है, इसलिए जल और औषधियों में प्रविष्ट उस अमृत का ग्रहण गाय बैल भैंस आदि पशु चारे एवं पानी के द्वारा करते हैं जिससे वही अमृत हमें वृक्ष दूध घी आदि में प्राप्त हो जाता है और उसी ग्रह की आहुति ऋषिगण यज्ञ के माध्यम से पुनः चंद्रादि देवों देवताओं तक पहुंचाते हैं। वही अमृत से बढ़कर पूर्णिमा को चरम सीमा पर पहुँच जाता है और फिर ये क्रम इसी तरह चलता रहता है। तो चलिए ये थी कुछ खास बातें अमावस्या के बारे में आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर नई किरण, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। बड़ा प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे, श्री राम के गले में तुम जाना, वहाँ नाचते मिलेंगे हनुमाना। आशा करूँगा आप सभी को ये चीज़ें जब पसंद आती हैं तो अच्छा लगता है। जब भावों को देखिए, अगर आप इस तरह से भावना युक्त होकर आप उस चित्र को दर्शित करेंगे तो आपको भी आनंद आएगा। उस हनुमान जी के साथ आप भी होकर राम के नाम लेकर आगे बढ़ते जाएंगे तो निश्चित तौर पे हमें जो है एक अच्छी सुखद अनुभूति हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज विशेष चंद्रभानु गुप्ता का जन्मदिन है, जिनके बारे में बातें करते हैं। और भारत के ये बहुत ही पॉपुलर स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन पर आर्य समाज का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और 1926 में ही सीबी गुप्ता, चंद्रभानु गुप्ता उत्तर प्रदेश में विशेष अखिल भारतीय कमेटी के सदस्य बन गए। और कई विभागों में मंत्री रहने के बाद चंद्रभानु जी 1960 से लेकर 63 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने रहे। उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में अनेक काम उनको करने का अवसर मिला और उन्होंने किया। लखनऊ और गोरखपुर जैसे शहरों को आधुनिक और विकासशील बनाने का पहल करने वाले सीबी गुप्ता को लोग मजबूत प्रशासन, जुझारू नेतृत्व और बड़प्पन के लिए आज भी याद करते हैं। तो आइए इनके बारे में और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। और आप भी 9414-1415 इस नंबर पे फ़ोन करके अपनी भावनाएं, विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। और

तौर पे आपको बहुत ही जो है अमावस्या के बारे में बता सकते हैं। आज अमावस्या है और हनुमान और राम जी की कुछ बातें अगर आपको याद हो किसी महाभारत रामायण के प्रसंग में हनुमान जी का या फिर राम जी का जिक्र आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर बताइएगा। सुनते रहो मस्कर।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। ढेर सारी खुशियों के साथ आशा करूंगा बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं। और सुबह सुबह जो है हम लोग ऐसे खूबसूरत भजन जब सुनते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है और मन में एक आगाज जो है ईश्वर के प्रति प्यार और स्नेह बढ़ जाता है। तो आइए, चंद्रभानु गुप्ता के बारे में बातें कर रहे थे हम लोग। चंद्रभानु सीरी गुप्ता जो है, सीबी गुप्ता 14 जुलाई यानी आज ही के दिन 1902 को उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में बिजौली नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। हेलो जी, नमस्कार।
1: जी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
0: मॉर्निंग सुरेश जी, स्वागत है आपका।
1: बस बिल्कुल बैठे हैं, अच्छे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपकी बातें, अच्छा भजन सुना दिया है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, जो अस्तर का प्यारा नाम, जय राम, बहुत अच्छा गाना था सर। और रामचंद्र भगवान की तो जितनी बातें करे इतनी कम है, क्योंकि कहते ना करो जो था कोरोना काल में हमने पूरा रामायण देख लिया, उस वक्त बस खाना पीना और टीवी देखना था। तो पूरी रामायण दूसरी बार जो लगाई थी हमारे दूरदर्शन वाले ने, तो रामचंद्र भगवान की कई सारी बातें सुनने को मिली, देखने को मिली। सबको ही पता है कि रामायण इतना अच्छा पात्र है कि जो एक बार देखे वो उसको देखते ही रह जाए। तो बहुत अच्छा गाना सुना दिया सर। सभी मित्रों को आज मंगलवार है तो सबको आज मंगल कामनी, मंगल दिन की मंगल शुभकामनाएं सर, और आपको भी। और बस बहुत एक गाना भी रामचंद्र भगवान का है, बहुत दिनों से नहीं सुना है कि ताड़ी पाड़ो तुम्हारा राम नीरे बीजी ताड़ी न हो ये जो, तो वही गाना है सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सुनाते हैं गाना आपको, है ना।
1: अच्छा कोई बात नहीं सर, हमारे सभी मित्रों को आपको दिल की आज के दिन की शुभकामनाएं, और हमारे बुरीलाल जी हैं, बुरा राम जी को भी हमारा राम राम है, चंद भाई हैं, दयाराम जी हैं, हमारे बहुत पुराने मित्र हमारे लुम्बा राम जी का भी जन्म आधार आ रहा है 2-3 दिन में। तो लुम्बा राम जी हमारे बहुत पुराने मित्र थे, और कई सारे मित्र थे हमारे, लीला बहन जी थे माउंटाबू वाले, कला छपरा वाले, तो कई पुराने मित्र नहीं दिख रहे हैं, पता नहीं शायद वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, और शायद नंबर भी गई फ्रिक्वेंसी बदल गई है, तो पता हुआ ना हो। तो हमारे कई सारे मित्र हमारे पास रिकॉर्ड हैं, तो चलो कोई बात नहीं, सुनते रहेंगे, हम तो सुनते हैं, हमारे सभी मित्र भी सुनते हैं।
0: जी जी जी, शुक्रिया,
1: नमस्ते सर।
0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और चंद्रभानु गुप्ता के बारे में बातें हो रही थी, और इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा अलीगढ़ में पूरी की, उसके बाद आर्य समाज का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और अपने भावी जीवन में आर्य समाज को लेकर, उनके सिद्धांतों को लेकर ये आगे बढ़ते रहे। शुरुआती शिक्षा पूरी होने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लखनऊ चले गए, और लखनऊ में विश्वविद्यालय से LLB की परीक्षा पास की, और उसके बाद नवाबों का शहर लखनऊ में उनका कार्यक्षेत्र भी बन गया। तो शिक्षा पूर्ण करने के बाद ही गुप्ता जी लखनऊ में ही वकालत शुरू कर दिया। वकालत करते करते जो है अपनी कद के लिए जाने गए। लगभग 5 फुट और 4 इंच के कद वाले चंद्रभानु जी को एक पड़ाकू युवक के रूप में मानते थे, और राजनीति में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वह महात्मा गांधी के सानिध्य में आते ही आंदोलन से प्रेरित होकर वो फिर राजनीति में अपना शिरकत करने लगे, और 1916 में ही घर वालों की मर्जी के बिना 5 रुपये जेब में डालकर वे लखनऊ में पार्टी में जलसे में हिस्सा लेने पहुँच गए, और उस समय लोकमान्य तिलक का जुलूस केसरबाग होते हुए चारबाग की तरफ आ रहा था। बस मंडी चौराहे पर सीबी गुप्ता को लोकमान्य तिलक के पैर छूने का मौका मिला। पैर छूते उन्हें न जाने कैसी प्रेरणा मिली कि उनके कदम सक्रिय राजनीति की ओर बढ़ चले। फिर तो राजनीति और समाज सेवा में ऐसी जो है पैठ बनाई कि 1960 के दशक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही बन गए। हेलो जी, नमस्कार।
2: आप बुरा राम बोल रहा हूँ मैं।
0: बोलिए बुरा राम जी, कैसे हैं आप?
2: आपको और सब मधुबन भाइयों को और सब को मेरा हाथ जोड़ के राम राम। मैं सुबह सुबह सब
0: राम राम
2: रोज राम राम कर, और सुरेश भाई और भूरे लाल जी और सबको, मदन भाई और सबको मेरी तरफ से राम राम।
0: जी जी
2: भजन
0: जी
2: तो सुनाएंगे क्या सर?
0: जी बताइए कौन सा भजन?
2: जिस भजन में राम का नाम नहीं उस भजन को गाना नहीं चाहिए, ऐसा करके है भजन?
0: ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। तो ये थे बुराराम जी जो अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा कर रहे थे, और वो कहते हैं कि जिस भजन में राम का नाम ना हो। आइए एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे भी बातें कर लेते हैं। हेलो जी नमस्कार, तो आइए राम नाम का जो है धुन लग गया है, तो ये प्यारा गीत अभी आप सबके लिए, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और ताली पाड़ो ने राम नाम बोल शोरे। क्या बात है, हर ताली में राम का नाम हो जाए तो काम ही हो जाए है ना। तो कभी कभी हम ताली ना बजाते हुए अगर हम काम कर रहे तो हर कार्य में राम का नाम अंदर से जब लगता रहे तो हर काम में सफलता तो मिलनी है क्या नहीं। तो एक बार करके देखिएगा, आप जो भी काम कर रहे हैं राम नाम लेते हुए काम कीजिएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा कि आपका कार्य भी सफल हो जाएगा और आपका मन भी शुद्ध हो जाएगा और आपके मुख में राम हो तो मुख भी आपका शुद्ध हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को मैं चंद्रभान गुप्ता के बारे में बातें कर रहे थे। गांधी जी का या लोकमान्य तिलक जी को मिलकर इनके जीवन में राजनीति के प्रति जो है एक प्रेरणा मिली और मुख्यमंत्री तक बन गए और अपने सूझबूझ और खरी बात बोलने के कारण चंद्रभान गुप्ता राजनीति में तेजी से उभरते गए और 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन करने के बाद चंद्रभान जी की क्षमताओं का विशेष रूप से चीज़ें आगे आई और फिर इसके बाद अलग अलग जो कार्यकाल रहा है और उसमें वकालत करने के बाद वो सुर्खियों में आ गए। जैसे काकोरी कांड का वकालत इन्होंने किया तो उसमें भी वो सुर्खियों में रहे और फिर एक ऐसी तेज तर्रार युवक की ज़रूरत थी। चंद्रभान गुप्ता को 1928 में लखनऊ शहर का अध्यक्ष बनाया गया और कानपुर में हुए अधिवेशन में लखनऊ से डेलीगेट भी चुने गए और पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से सिपाही की भूमिका निभाते रहे और फिर धीरे धीरे उनकी दाग इतनी जमी कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बन गए। फिर सामाजिक कार्य में उनकी जो है पहले से रुचि थी और उसे बढ़ चढ़कर उन्होंने काम किया और लखनऊ में बाल संग्रहालय की स्थापना की, मोतीलाल मेमोरियल हॉस्पिटल बनाया, बाल विद्या मंदिर बनाया, नव चेतना बिल्डिंग, नेशनल कॉलेज, टीबी हॉस्पिटल और रविंद्रालय। सिर्फ यही नहीं, राजधानी लखनऊ का कैंडी सिंह बाबू स्टेडियम भी चंद्रभानु गुप्ता के ही मेहनत का फल मिला और इस कार्य को करते हुए विरोधियों के मददगार भी ये बने और जो लोग इनके आड़े आते थे पहले उनको भी साथ लेकर इन्होंने काम किया। और फिर चंद्रभान गुप्ता जी ने अपनी वसीयत में एक बात लिखी थी, मेरा सफ़र जो कभी रुका नहीं झुका नहीं न जाने कब मंजिल प्राप्त कर ले और जीवन की संध्या छा जाए। मेरा जीवन एक भिखारी का जीवन रहा है। मेरे देश के विशेष रूप से इस प्रदेश के लोगों ने मुझे अपार स्नेह और सम्मान दिया है। उन सभी देशवासियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैंने दो संस्थाएं, भारत सेवा संस्थान और मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी को जन्म दिया। जो कुछ मेरा अपना कहने योग्य था वो सब भारत सेवा संस्थान व मोतीलाल मेमोरियल ट्रस्ट को हो चुका है। अब पान दरबारियाँ स्थित केवल एक मकान सेवा कुटीर मेरी निजी अचल संपत्ति के रूप में रह गया है जिसका एकमात्र स्वामी मैं हूँ। ये भी देश की गरीब जनता को अर्पित है। मेरे नाम को धन बैंक के खातों में मेरे अंतिम क्षणों में होगा वो मेरी अंत्येष्टि में सादगी के साथ व्यय करने बाद बाकी समाज सेवा में लगा दिया जाए। तो ये उनका वसीयत था जिन्होंने अपने पूरे जीवन भर की जो बातें हैं और उसका जो कमाई है वो कैसे समाज सेवा में उन्होंने समर्पित किया वो लोगों को बताकर अपनी वसीयत लिखकर वो चले गए। पहली बार 7 दिसंबर 1960 से 2 अक्टूबर 1963 तक ये मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बार 14 मार्च 1967 से लेकर 3 अप्रैल 1967 तक जो है दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार 28 फरवरी 1969 से लेकर 18 फरवरी 1970 तक ये मुख्यमंत्री रहे। उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाले ख्याति प्राप्त समाज सेवक चंद्रभानु गुप्ता का निधन 11 मार्च 1980 को हुआ। तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और सुंदर गीत की तरफ। सुनते रहो मस्कराते।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, नई किरण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए, बहुत ही प्यारा सा भजन आपने सुना। वक्त हो गया है समाचारों का, सीधे दिल्ली चलते हैं, समाचार सुनते हैं अभी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
2: Peacekeeping has been a crucial element of
3: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
2: Across 10 of the 11 active missions.
1: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरश से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कोक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी पता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमरीका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से होर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
3: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
5: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिलाधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
6: धन्यवाद फरत। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमरीका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है। आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है। कश्मीर के पहाड़ों पर 2 दशकों में लगभग 1 डिग्री बढ़ा तापमान, हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में 9 दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार सर, नमस्कार। आज के दिन की मंगलवार,
0: मंगल दिवस की मंगल कामनाएं करते हैं जी।
1: मंगल दिवस की मंगल कामना बहुत खुशी से।
0: जी जी जी जी
1: जी। आपको सुना था मैंने, आते जैसे नहीं होता कि मेरा आना और बुरीलाल का और आपका आना और मेरा जाना। बुरीलाल जी ने भी बातें की थी और अच्छा गाना ढूंढा था
0: जी,
1: और
0: जी, जी।
1: बड़ी अच्छी दो सवाल अच्छे किए थे बात गाने के लिए
0: बिल्कुल,
1: और हम भी सुने थे। और फिर मैंने सोचा रास्ते से फोन करें, मगर आगे भी ट्रैफिक होता है ना, चारों तरफ जहाँ जाए यहाँ ट्रैफिक है। तो फिर मैंने बोला भाई अब जाने तो ना उनको मजा आएगा ना मुझे, तो फिर मैंने चलना अभी आप फोन किया रेडियो मधुबन को। और आपको नमस्कार है नवीन किरण को, और हमारे जो दोस्त सुन रहे हैं देश से या दूर से या चाहे बाहर से सुन रहे हैं, सभी को नमस्कार और शुभकामना। और बस आज हनुमान जी का दिन है तो हम हमारी कहानी का गाना गाते दिन में हम बाबा से देता था नव जीवन गाड़ी में जरा था मैं तुतकुड़ी गाड़ी सारे दिन पर चली दूसरे दिन 4 बजे हमें चेन्नई उतारा चेन्नई वाले आए हमें लेने बोले 3 दिन रुकना है 3 दिन के बाद तुतकुड़ी बस आएगी उसने तुमको जाना है ने 3 दिन बड़ा प्यार से चेन्नई में सबको देखा था ये बम्बई बम्बई है सबकी ये उनकी है ये बम्बई है जो गाना लिखते हैं वो संगीत कलाकार है वो ही रुए सबको मनोरंजन कराते हैं। नमस्कार सर, ओम शांति।
0: जी जी, शुक्रिया शुक्रिया, बनाते रहिए, हम सुनते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आप सुना है रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए, मदन जी ने अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा की और बड़ा प्यारा प्यारा गीत आपको सुनाया है। इसके साथ ही चलिए, 9:43 हो रहे हैं और आज के दिन विशेष, जैसे कि हम लोग बातें कर रहे हैं और आप सभी भी बड़े प्यार से सुन रहे हैं, आइए इस बीच एक और दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
2: हेलो जी, नमस्कार भाई जी, नमस्कार।
0: नमस्कार गुड़ीलाल जी।
2: आज मदन लाल जी का मदन दे क्या मेरे अंदर
0: मदहोश कर दिया आपको।
2: मदन मदन जी का जन्मदिन भी है। उनका है 11,000। जब गुरु में खोज नहीं,
0: हाँ,
2: जब गुरु में खोज नहीं तो डरने की क्या बात है। गुरु में खोज नहीं तो डरने की क्या बात है मैडम। जब कर्जे का करता है वैसा बढ़ता है। क्या कह रहा है, और आपके साथ में हमारे को ऐसी ऐसी बातें कर करके सुनना है।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। चलिए, गुड़ीलाल जी ने याद किया है मदन जी को, मदन जी ने गुड़ीलाल जी को याद किया। अब आइए, 14 जुलाई की विशेष बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। 1996 में अमेरिका ने पाकिस्तान को ब्राउन संशोधन के अंतर्गत हथियार भेजने का आरंभ शुरू किया था। हेलो जी, नमस्कार।
3: जय माता जी, जय श्री
0: हरि। सुरेश जी बोलिए, कैसे हैं आप?
3: आप कैसे हो सर?
0: बढ़िया बढ़िया, आप बताइए, आप क्या, कैसा मौसम है, क्या चल रहा है?
3: मौसम तो साफ ही है, बारिश हुई थी उसके बाद नहीं आई है।
0: अच्छा अच्छा,
3: खेतों में बुआई चल रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
3: बस रेडियो मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी मेरे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। आज के दिन की ढेर शुभकामना मंगल कामना है।
0: जी जी जी,
3: और आज हमारे मित्र सुरेश भाई धानेरा वाले हैं, उनकी पुत्री सुबह का जन्मदिन है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
3: उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, वो सदा खुश रहे और अपना और अपने परिवार का नाम रखें।
0: बहुत बढ़िया जी।
3: और बस वहाँ का मौसम कैसा है?
0: यहाँ ठीक है, नॉर्मल वैसे ही है जैसे आपके यहाँ, बारिश तो नहीं आई है जी।
3: हाँ, अभी बारिश की जरूरत तो है, जो लोगों ने फसलें बो तो दी है।
0: देखो आपका मौसम बदलता है, लेकिन आना तो चाहिए बारिश। हाँ,
3: वो तो अपने अपने जो किया है वो बोया है वही मिलने वाला है। पर्यावरण को नुकसान अपन ने पहुंचाया है ना,
0: तो अपने कोई भरपाई तो करना है।
3: प्रकृति अपनी भरपाई तो करेगा ही ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
3: हम तो यही कहते हैं परमात्मा बस जल्द से जल्द बरसे और सबको राहत दे, गर्मी से और फसलों जिन्होंने बोई है उनको नुकसान ना होए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: टाइम हो तो सुरेश जी की बेटी के लिए वो गाना चला दीजिए ना, मेरे घर आई मन में करूँगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। जय माता जी, जय श्री हरि। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। आइए बात ही कर रहे थे आज के दिन विशेष के बारे में, महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नज़र। मेकरी मोरिटा पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए 1999 में आज ही के दिन। रूस की येलोना इसिनबायोवा ने महिला पोल वॉल्ट ने नया विश्व रिकॉर्ड बनाया 2003 में। फिलिस्तीनी के प्रधानमंत्री सलाम फायद ने अपने पद से इस्तीफा दिया 2007 में आज के दिन। नेपाल की कार्यकारिणी संसद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन वाले संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी 2008 में आज के दिन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। सुनते रहो बस करदार।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 जुलाई के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में बातें करते हैं जिनका जन्मदिन आज है। और भारतीय विशेष राजनीतिक तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे कैलाश चंद्र जोशी। 1929 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। भारत के विशेष राजनीतिक शंकर राव चौहान का भी जन्मदिन आज है। 1920 में इनका जन्म हुआ था। उज्जैन के लोकसभा सांसद रहे अनिल फिरोजिया। 1971 में इनका जन्म हुआ था आज के दिन। बहुत ही पॉपुलर स्वतंत्रता सेनानी और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्ता। 1902 में आज के दिन इनका जन्म हुआ। और प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेताओं में से एक और केरल के प्रथम मुख्यमंत्री M.S. नाम बुद्रीपद। 1909 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। और प्रसिद्ध राष्ट्रभक्त स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार देशबंधु गुप्त। 1900 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। और प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल गणेश अगरकर। 1856 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। और 9वीं लोकसभा के सदस्य के कलीमुत्तु। 1942 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। तो ये थी कुछ खास बातें आज के दिन जन्मे उन लोगों के बारे में। और जो सुरेश जी ने याद किया सुबह का, उनका भी जन्मदिन है, तो उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।

हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और देशबंधु गुप्त के बारे में बातें करें तो ये बहुत ही पॉपुलर राष्ट्रभक्त थे और आज़ादी के दीवाने और पत्रकार थे। अपने विद्यार्थी जीवन में ही देशबंधु गुप्त राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े थे और प्रभावित होकर ही लाला लजपत राय इनके साथ जुड़े और इनके साथ हो लिए। गुप्ता जी में संगठन करने की बड़ी क्षमता थी और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 1945 में ही ये जेल से बाहर भी आ गए और एक पत्रकार के रूप में देशबंधु गुप्त जाने जाते थे। स्वामी श्रद्धानंद ने इन्हें राष्ट्रीय पत्र तेज का संपादक नियुक्त किया और 1948 में अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक सम्मेलन के अध्यक्ष भी आप चुने गए थे। गुप्त जी हमेशा जाति प्रथा का विरोध करते रहे और उसके लिए हमेशा काम करते रहे। तो चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही और जाते जाते आप सबके लिए दो खूबसूरत गीत छोड़े जा रहा हूँ। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: से 25 साल से भी ज़्यादा हो रहे होंगे, और बहुत अच्छा लगता है। इतने सिंपल लोग हैं, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। इतना इतनी शांत प्रकृति के लोग हैं, इतनी दुनिया में शांतता हो सकती है ये उनको देख के महसूस होता है और अच्छा लगता है। उनकी सीख में सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर किस तरह शांति पैदा की जाए, इसलिए उनका लोगो भी है ओम शांति। जब भी किसी को मिलते तो ओम शांति बोलते हैं। और सबसे बड़ा दुनिया का वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, और मैं फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस संस्था को।
1: अभी बजे हैं सुबह के 10। स्वयं को दें अभी एक मिनट, हड़बड़ाहट को कहें बस।

आशियाना में आज के कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करेंगे और घरेलू नुस्खे भला कैसे भूल सकते हैं जरूर देंगे। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो नए नए व्यंजन जरूर सिखाएंगे। पेन और डायरी लेकर के तैयार रहिएगा, सामान्य जानकारी भी देंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और आज का विचार इस प्रकार है, अपनी संपत्ति का भी त्याग के साथ उपभोग करिए। अपनी संपत्ति का भी त्याग के साथ उपभोग करिए। आज के विचार का विस्तार इस प्रकार है, जैसे मिलावट करने से सोना खोटा हो जाता है, उसी प्रकार बेईमानी भ्रष्ट आचरण की मिलावट से व्यक्ति भी खोटा हो जाता है। खरा वही है जो अंतरात्मा की आवाज पर ईमानदारी की कमाई से संतुष्ट है। किसी का छीन कर झपट कर नहीं, बल्कि अपनी संपत्ति का भी त्याग के साथ उपयोग करिए। किसी के धन को लालची दृष्टि से मत निहारिए। किसी को महल में रहने की इच्छा हो, ये बुरी बात नहीं है, परंतु वह आज से ही महल खड़ा करने का कार्य आरंभ कर दे। दूसरे के बने बनाए महल को लोभ की दृष्टि से न देखे, यही त्याग का भाग्य जमा होता है। और अपनी संपत्ति का भी अगर हम त्याग करके उपभोग करते हैं तो वो संपत्ति भी जैसे एक रुपया है, फिर भी उससे हमारा गुजारा चल सकता है, चल जाता है और सदैव हम संतुष्ट रहते हैं। तो ये हुआ आज का विचार, जिस पर जरूर गौर करिएगा और जितने हमारी आमदनी है उससे हमेशा संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। और एक गीत अब आपको सुनाएंगे, फिर आगे चलेंगे आशियाना के कार्यक्रम का और भी आगे बढ़ाएंगे। एक गीत के बाद तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: सागर, रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं घरेलू नुस्खे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में रोगों का प्रभाव पड़ता ही रहता है। हम छोटी मोटी बीमारियों का इलाज स्वयं कर सकते हैं, पर थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे नुस्खे देने जा रही हूँ दम्मे के रोगियों के लिए। आप क्या करेंगे, तुलसी की 10 पत्तियों के साथ वासा बोले तो अड़ूसा के भी आप 10 पत्ते ले लीजिए, और 10 पत्ते ही तुलसी के। फिर आप 250 मिलीलीटर पानी में अच्छी तरह उबालिए और इसका काढ़ा तैयार कर लीजिए, ठीक है। फिर ये काढ़ा 21 दिन तक सुबह सुबह खाली पेट पीना है। इससे दम्मा में काफ़ी राहत मिलेगी, ठीक हो जाएगा दम्मा। पुनः दोहरा रही हूँ, इस नुस्खे को ध्यान से सुनिएगा, दम्मे के रोगियों के लिए है। तुलसी की 10 पत्तियाँ और वासा अड़ूसा के भी 10 पत्ते, इन दोनों को 250 मिलीलीटर पानी में अच्छी तरह उबालिए। उबाल करके इसका काढ़ा बना दीजिए। फिर इस काढ़े को छान करके सुबह सुबह खाली पेट पीना है 21 दिन लगातार। इससे दमा ठीक हो जाएगा। अब अगला नुस्खा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा नुस्खा है। मौसम के अनुसार खांसी होती है ना, उसके लिए तो मौसम के अनुसार खांसी होती है, उसके लिए आप लीजिए सेंधा नमक की लगभग 5 ग्राम की डली, ठीक है। इसको आप चिमटे से पकड़िए, और चिमटे से पकड़ करके आप गैस पर या तवे पर गरम कर लीजिए। जैसे हम पापड़ी सेकते ना चिमटे से पकड़ के, पापड़ी, इसी तरह आप सेंधा नमक की डली को सेकिए, और जब ये डली लाल हो जाए ना, तो गरम गरम डली को तुरंत आप आधा कप पानी में डुबो दीजिए। डुबा करके फिर से तुरंत निकाल दीजिए, ठीक है। ये नमकीन गरम पानी को एक ही बार में पी जाइए, एक ही घुट में। ऐसा नमकीन पानी सोते समय लगातार 2-3 दिन पीने से खांसी, विशेष करके जो बलगम वाली होती है ना, उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। फिर आप नमक की डली को सुखा करके रख लीजिए, और फिर अगले प्रयोग में आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल है ना नुस्खा, पुनः दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मौसम के अनुसार खांसी होती हो तो आप सेंधा नमक की लगभग 5 ग्राम की डली को चिमटे में पकड़ करके आग पर आप सेकिए, या फिर तवे पर भी आप सेक सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए डली एकदम लाल हो जानी चाहिए। फिर इतनी गर्म डली को आधा कप पानी में तुरंत डालिए, और डालते ही निकाल दीजिए, और इस गर्म पानी को, नमक वाले पानी को आप एक ही घूट में पी जाइए। इससे ये पानी आपको 2-3 दिन रात को सोते समय पीना है। इससे विशेष करके जो बलगम वाली खांसी होगी उसमें तो राहत मिलेगी ही, साथ ही साथ मौसम के अनुसार होने वाली खांसी पर भी कंट्रोल हो जाएगा, और खांसी की तकलीफ ठीक हो जाएगी, ठीक है। फिर इस नमक को आपको सूखा देना है, अगले प्रयोग में फिर से इस नमक को आप यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट नुस्खा भी आप ध्यान से सुनिएगा, गला बैठ जाता है कितनी ही बार, है ना, तो गला बैठ जाता है तो इस कंडीशन में आप मुलेठी के चूर्ण को पान के पत्ते में रखकर खाइए, इससे बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है। या फिर आप सोते समय 1 ग्राम मुलेठी के चूर्ण को मुख में रख करके देर तक चबाते रहे, और वैसे ही मुंह में रख करके सो जाइए, ठीक है। सुबह ही सुबह आप देखेंगे कि गला साफ हो जाएगा, गले का दर्द, अगर सूजन भी होगा तो उसमें भी आराम मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा नुस्खा है, ध्यान से सुनिएगा, पुनः दोहरा रही हूँ। बार बार गला बैठ जाता है तो आप मुलेठी के चूर्ण को पान के पत्ते में रखकर खाइए, इससे बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है। या फिर आप सोते समय 1 ग्राम मुलेठी के चूर्ण को मुख में रख करके कुछ देर हल्के हल्के चबाते रहिए, फिर वैसे ही चबाते चबाते सो जाइए, ठीक है। सुबह सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह, गला तो साफ हो गया, गले का दर्द भी ठीक हो गया, जो सूजन थी वो भी ठीक हो गई। तो इस तरह ये नुस्खे बहुत ही लाजवाब है और आप आजमा सकते हैं और महंगे भी नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना, और साइड इफेक्ट भी नहीं होते इसके। तो चलिए, ये तो हुए घरेलू नुस्खे, अब फिर से सुना देते हैं आपको एक प्यारा सा गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए खुशनुमा जीवन की बातें करते हैं। सविता जी हमारे साथ बने हुए हैं। सविता जी आपका अपने घर में स्वागत है।
2: उषा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, रेडियो मधुबन का भी थैंक्स, और बहुत अच्छी बातें आप कह रही थी, कविता बहुत सुंदर लगी मुझे, जरा एक बार फिर से दोहराइए।
1: ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा
2: जी,
1: कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को
2: जी,
1: अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा।
2: देखिए बात अभी आपने जो की कि अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ेगा, तो इस पर एक कहावत मुझे भी याद आ गई
1: जी, बिल्कुल।
2: पुराने जमाने में कहते थे खुद ही मरने से स्वर्ग प्राप्त होगा, किसी और के मरने से हमको स्वर्ग नहीं प्राप्त होगा, यदि हमें स्वर्ग प्राप्त करना है तो खुद ही मरना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी, अगर अपने रास्ते में हमें उजाले करने हैं, अपने लक्ष्य तक हमको पहुंचना है, तो ये जान लीजिए कि हमको खुद ही मेहनत करनी होगी।
1: तो मरने के नाम से मरने के नाम से दो लाइनें फिर से मुझे याद आ रही है सविता जी,
2: फरमाइए।
1: देखिए नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती,
2: वाह,
1: नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती, मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता।
2: वाह वाह, देखिए जिसे तैरना आता है वो सागर को पार कर लेगा
1: जी, और ठीक उसी तरह परिस्थितियां कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती
2: जी,
1: परिस्थितियां कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती, समस्या तो तब बनती है सविता जी जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता,
2: हाँ, उसका रास्ता ही नहीं मालूम होता है कि हम कैसे निपटें, तब हमें लगता है कि रुई भी जैसे लगता है राय भी पहाड़ बन गई है
1: जी, बिल्कुल।
2: और कुछ लोग ऐसे होते हैं आप देखिए बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में पहाड़ को राय बना देते हैं, हाँ। तो ये सब जो बातें हैं कहने का तात्पर्य इन तीनों चारों जो अभी हम लोगों ने बातें की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सबसे यही निकलता है कि बिना मेहनत के आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते,
1: बिल्कुल सविता।
2: कई बार लोग कहते हैं कि मेरे भाग्य में नहीं, मेरे भाग्य खराब है, या कर्म को कोसते हैं, भाग्य को कोसते हैं, लेकिन अपने कर्मों की तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए इसे कहा गया कर्म प्रधान है और कर्म ही पूजा है। पूजा हम कर रहे हैं, कई बार देखिए होता है हमारे जीवन में हम बोलते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, ये किया, या पूजा पाठ भी बहुत करते हैं तो उससे हमें भगवान दे देगा लेकिन कहा गया कि कर्म करना, जो हम कर्म करेंगे वही वास्तविक पूजा होती है और उसी से ही हमको फल की प्राप्ति होती है। जीवन में कितने भी अंधेरे क्यों ना आ जाएं, दीपक सच में हमें ही जलाना पड़ेगा। जैसे घर में अगर लाइट नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, हर कमरे को रोशन करने के लिए मोमबत्ती खुद ही जलाएंगे
1: जी,
2: अब कमरे तो अपने आप रोशनी करेंगे नहीं,
1: नहीं
2: उसे हमें ही करना पड़ता है। तो उषा जी बहुत अच्छी बात लगी मुझे ये बात कि हाँ मेहनत हमें करना पड़ेगा और जीवन के अंधेरों से घबराना नहीं है बल्कि उससे लड़ना पड़ेगा।
1: लेकिन सविता जी आजकल हम देखते हैं कि लोग बाग मेहनत से कतराते हैं और देखते हैं कि वो कहते हैं ना कि राम नाम जपना पराया माल अपना
2: जी,
1: ये वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं,
2: हाँ, क्योंकि उनके मन में ये है ना कि रोशनी तो हमें पूरी चाहिए
1: जी,
2: पर दीपक जलाना भी ना पड़े और दीपक बन के जलना भी ना पड़े। देखिए दीपक में कितना परिश्रम करता है दीपक, खुद जल के दूसरों को रोशनी देता है,
1: बिल्कुल
2: ना। तो दूसरों की खुशी के लिए हमें अपनी खुशी की कई बार कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ता है, तब जाकर हम दूसरों के लिए भी दीपक बन पाते
1: जी।
2: और हमारी जो सोच है, समझ है, या हमारे जो कर्म है वो संसार के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। और जब हम स्वयं ही कहते हैं कि कई बार कहते घर का दीपक घर में ही आग लगा दे,
1: हमारी देखते हम, हाँ, अक्सर देखते हैं अपनी इन्हीं आंखों से, हाँ, कि ऐसा भी हो रहा है समाज
2: हो रहा
1: में
2: है, क्या है? हम सोचते हैं हम बहुत समझदार हैं और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ले, और उसमें हमारा फायदा तो होता है ये सत्य है, लेकिन जो हमारे चारों तरफ का माहौल होता है, हमारे आसपास के लोग होते हैं, चाहे फैमिली में हो या हम जहां काम कर रहे हैं वहां हो या पास पड़ोस में, उनको नुकसान पहुंचाते रहते हैं
1: जी।
2: मैंने देखा है कई बार कई लोगों को, बहुत अच्छे होते हैं, समझदार होते, बुद्धिमान होते, उन्हें दुनिया की नॉलेज होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, सारी नॉलेज सिर्फ अपने तक ही रखते हैं, मतलब अपने लिए ही उसका उपयोग है और दूसरों को मिसगाइड करते रहते हैं, है ना। और कई बार देखिए घर में ही घर का नुकसान ही कर डालते हैं कई लोग, तो घर के दीपक से घर का ही नुकसान हो जाता है। और कई बार देखिए आप कि जो दीपक होते हैं वो घर में भी उजाला करते हैं और बाहर भी उजाला करते हैं
1: जी।
2: तो वैसा ही दीपक बनना है हमें।
1: बिल्कुल सविता जी, बाकी कहते हैं कि हम दूसरों को ठगते हैं लेकिन घर में ही हम ठगे जाते हैं
2: कई बार होता है। हाँ
1: होता है, हमारे बच्चे ही हमें धोखा देते हैं फिर।
2: और दीपक भी उषा जी कई तरीके के बताए गए हैं दुनिया में, जैसे कुल दीपक कहा गया जो कुल के नाम को रोशन करे। कई होते हैं दीपक आशाओं के दीपक, जो हमारे मन में इच्छा है, संकल्प है, भाई हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। दुनिया में न जाने कितने लोग कितने प्रकार की आशाओं के दीपक जगा के बैठे हुए हैं। तो यदि हमारी इच्छाओं के दीपक, आशाओं के दीपक अच्छे से जल रहे हैं तो हमें भी खुशी होती है और उससे दूसरों को भी प्रकाश मिलता है। और कई बार हमारे द्वारा दूसरों की इच्छाएं पूरी होती है, आशाएं पूरी हो जाती हैं, तो ये भी एक प्रकार का दीपक जलाया जाता है ना। आशाओं के दीपक है, देखिए कुल दीपक है, उम्मीदों के दीपक है, ऐसे सब जलाते रहते हैं। और इसी दीपक की बात से याद आ रही उषा जी कि हमारे देश भारतवर्ष में बहुत बड़ा त्यौहार दिवाली मनाई जाती है
1: जी,
2: है ना। तो ये इसी का मतलब इसी का एक प्रतीक है
1: जी,
2: कि खुशियों के दीपक जलाना, उम्मीदों के दीपक जलाना, सफलता के दीपक जलाना। तो ये दीपक के रूप में जो कहा गया है कि हाँ भाई दीपक बहुत सुंदर, देखने में भी बहुत सुंदर प्रतीत होता है, तो उसकी जो रोशनी होती है वो बहुत आकर्षण मूर्त होती है, आकर्षित करती है दुनिया को।
1: बिल्कुल सविता जी, पर बात चल रही थी कर्म की, कि कर्म किए बिना, कहते हैं कि भोजन भी हमारे सामने आता है लेकिन हाथ से कोए को तो तोड़ना ही पड़ेगा तभी मुंह में रखेंगे और मुंह में जाएगा। बाकी भोजन आ गया सीधा बना बनाया और हम मेहनत ना करें तो थाली भी चली जाएगी।
2: तो वही हाल है ना, दीपक तो जला लिया लेकिन उसमें तेल ही नहीं डाला हमने तो वो बुझ जाएगा। कर्म ही नहीं किया, एक बार तो जला लिया, और जब कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो जीवन में कर्म करना अति आवश्यक है और कर्म ऐसा होना चाहिए उषा जी जो कि महान बन जाए, पूजनीय बन जाए, गायन योग्य बन जाए। कर्म तो दुनिया में तमाम लोग करते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, कुछ विकर्म करते हैं, कुछ सुकर्म करते हैं, है ना
1: जी।
2: लेकिन जो कर्मों का महत्व है, बहुत श्रेष्ठ कर्म हमें करने चाहिए।
1: कर्म का भी ज्ञान होना चाहिए कि हमें किस तरह के कर्म करने हैं जिससे हम भी खुश रहे और हमारे जो आस पास है, हमारे जो संपर्क में आते हैं वो भी सदैव खुश रहे। तो कर्म हमेशा अच्छे ही करने हैं, अच्छे कर्मों के द्वारा स्वयं भी खुश रहेंगे, औरों को भी खुश रख सकेंगे। बाकी तो दुखों का तो कहते हैं कि विस्तार बहुत है, लेकिन कर्म सदैव श्रेष्ठ करने हैं और कर्म करना ही है, कर्म से भागना नहीं है। तो चलिए सविता जी और भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, तो सुना देते हैं एक गीत। सुनते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट्स का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: खूब लिखा है किसी ने, गांव को गांव ही रहने दो साहब, क्यों शहर बनाने में तुले हुए हो। क्या खूब लिखा है किसी ने, गांव को गांव ही रहने दो साहब, क्यों शहर बनाने में तुले हुए हो। गांव में रहोगे तो माता पिता के नाम से जाने जाओगे, और शहर में रहोगे तो मकान नंबर से पहचाने जाओगे। तो ये थोड़ी सी सविता जी मेरे को याद आ गई थी, ऐसे ही कॉमेडी शायरी तो मैंने सुना दी।
1: बहुत अच्छी बात कही,
0: क्योंकि अपने सविता जी अपने क्या टॉपिक का नाम ही है खुशनुमा जीवन। कोई भी बात कहो लेकिन खुशी वाली होनी चाहिए,
1: खुशी से
0: और उससे खुश, हाँ उससे खुश रहने चाहिए सुनने वाले भी और हम बोलने वाले भी।
1: और जो अभी आपने सुनाई ये बात हमारी पीछे वाली बात से मिलती जुलती है,
0: बिल्कुल मिलती जुलती है।
1: जैसे उन्होंने क्या कहा कि अगर हम गांव में रहेंगे तो माता पिता के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि माता पिता का नाम होता है वहां पे, उनकी जन्मभूमि होती है, उनके कर्म होते हैं, जिस वजह से हमारी भी पहचान बनती है।
0: जी बिल्कुल।
1: और शहर में हमारी पहचान तो होती नहीं, हम क्या हो जाते हैं, मकान नंबर से जाने जाते। और दूसरा, जब हम कर्म ऐसे करेंगे तो शहर में भी हमारा नाम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है
0: बिल्कुल।
1: लेकिन ये है कि कर्म का महत्व गांव में भी बताया गया है, और शहर में आके व्यक्ति वो इतने अच्छे नहीं कर पाता, क्योंकि जीवन ऐसा बन जाता है भाग दौड़ का, एक मशीनी जीवन हो जाता है उषा जी, और पत्थर जैसा हो जाता है। कई बार आप देखो एक अपार्टमेंट में रहने वाले अगल बगल क्या हो रहा है उनको नहीं पता होता, लेकिन गांव में ऐसा होता है उषा बन,
0: नहीं पूरे गांव का पता होगा कि फलानी जगह कौन रहते, अरे वो रहते हैं, और यहाँ अपने बाजू में कौन रहता है वो भी नहीं पता, शहरों में
1: जीवन में क्या बीत रहा है ये भी नहीं पता होता है।
0: जी बिल्कुल।
1: और गांव में आप देखो कई पीढ़ियों तक की बातें लोगों एक दूसरे को बताते हैं कि उनके परिवार के लोग ये थे, वो थे, ऐसे थे, वैसे थे, या आते जाते दरवाजे से भी गुजरते हैं तो दुआ सलाम होती रहती है, राम राम होती रहती है,
0: बिल्कुल होती है।
1: लेकिन यहाँ तो कोई किसी की शक्ल ही नहीं देख पाता,
0: यहाँ पर तो ऐसा होता है सविता जी के साथ में भी, वो भी अपने घर से बाहर निकले, हम भी हमारे घर से बाहर निकले, लेकिन नजरे मिल गई तो भी ऐसा लग जाता है कि अरे क्यों मिली, चलो अपने रास्ते, इस तरह का माहौल भी है शहरों
1: मतलब
0: में।
1: वो चीजें खत्म हो रही हैं शहर से, और इतनी भागम भाग और सुख शांति, और आप देखो क्या कहते हैं कि मतलब बिल्कुल अजीब सा माहौल। मुझे गांव बहुत पसंद है उषा जी, बचपन से।
0: चलिए सविता जी, गांव पसंद है तो क्यों ना अपन आबू के आसपास बहुत सारे गांव है, आपको मैं जरूर घुमा के लाऊंगी।
1: नहीं घुमा है मैंने थोड़ा बहुत, लेकिन कभी कभी मुझे, मैं आपको दिल की बात बताती हूँ, सच बात, आप रेडियो में मेरे दिल की भावना जो एकदम सच्चाई से कह रही हूँ। एक बार मैं इधर गई थी गाँव की तरफ ऐसे किसी काम से, तो मैंने देखा वहाँ पे कि जो गाँव के लोग थे, आदिवासी बच्चे थे उषा बहन, वो इतना अच्छा खेल कूद रहे थे।

0: थे पूरे, मतलब खेतों में इधर उधर अपने जानवरों को भी चरा रहे थे और बड़े मजे से खेल रहे थे
1: जी।
0: तो और कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी झोपड़ियाँ बना रखी थी, और मतलब कहीं पहाड़ पर थोड़ा ऊंचाई होती ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़, थोड़े थोड़े ऊंचे पहाड़ रहते वहाँ
1: जी,
0: पर
1: जी,
0: एक
1: जी।
0: नीचे कोई कहीं कोई कहाँ, और अलग अलग झोपड़ी पास पास में सटके नहीं बनी थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। जानते हैं क्यों अच्छी लगी? मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जब हम शहर में ज़मीन खरीदने जाते हैं तो कितना नाप जो कितना सारा पैसा देकर हम लोग छोटे छोटे से फ्लैट खरीदते हैं या ज़मीन खरीदते हैं, और उसी में ना एकदम दड़बे में कबूतर खाने में सब रहते हैं। कई बार तो एक परिवार में कई लोगों को रहना पड़ता है ना उषा जी। और आप ये देखेंगे कि वहाँ पे मैंने देखा कि कोई नाप चोक नहीं, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक है ऐसा लग रहा था, और प्रकृति का पूरा सुख उठा रहे थे, हवा भी अच्छी, धूप भी अच्छी, बच्चे खुलकर खेल रहे थे, उन्हें कहीं किसी गार्डन की जरूरत नहीं, किसी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं कि हम बच्चों को कहाँ खेलने भेजें, और आराम से एक झोपड़ी के बगल दूसरी झोपड़ी नहीं थी, आराम से फैल फैल के मजे से रह रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
1: बिल्कुल सविता जी,
0: देखो इनको पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते और कितने आराम से प्रकृति का पांचों सुख ले रहे हैं
1: जी।
0: प्रकृति के पांचों तत्वों का सुख मिल रहा
1: है। कहते हैं शहरों में कितने भी भाग दौड़ करो फिर भी आधी ही मिलती है, और गांव में आप थोड़ा सा भी भाग दौड़ करोगे, मेहनत करोगे, आपको पूरी मिल जाएगी।
0: हाँ।
1: क्योंकि प्रकृति तो नेचुरल वहाँ होती ही है। और शहरों में तो हम देखते हैं कि फ्लैट लेते हैं तो नीचे व्यवस्था देखते हैं, अच्छा यहाँ पर झूला है कि नहीं है, अच्छा यहाँ पर रोशनी किधर से आएगी, यहाँ पे बगीचा है कि नहीं है, वो कितना देखना पड़ता है, और हर चीज की कीमत चुकाई जाती है।
0: मिलती ही नहीं है, मैंने देखा कई बार, जिनके पास बहुत पैसा हो भले थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं, ऐसी जगह अपना घर बना ले, लेकिन ज्यादातर लोगों को आप देखो खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार जो होते हैं वो इतनी चीजें नहीं उनको मिल पाती, धूप के लिए तरसना होता है, बच्चे छोटे छोटे से कमरों में बालकनी में ऐसे खेलते रहते, उनको जगह नहीं मिल पाती। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यही सोचती थी कि वास्तव में गांव बहुत अच्छी चीज होती है।
1: गांव का अलहड़ जीवन, बच्चों का शारीरिक अच्छा विकास, ये सब बहुत होता है, क्योंकि खुले मैदान में आप जितना चाहो दौड़ो, भागो, गाओ, नाचो, कोई
0: भी
1: खेल खेलो आप
0: जीवन में,
1: बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं।
0: देखने में अच्छा लगता है, बच्चे उनके साथ खेलते रहते दौड़ते रहते, मुझे अच्छे लगते हैं जानवर।
1: लेकिन सविता जी, हम बात कर रहे थे कर्म की कि कर्म करने से लोग आजकल क्या थोड़े से कतराते हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ी मेहनत में काफी कुछ मिल जाए, इसके लिए फिर लोग विकर्म करना शुरू कर देते हैं।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और कर्म तो कर ही रहे हैं, कर्म तो बल्कि पहले से ज्यादा ही हो रहे हैं, आप देखिए, और कई तरीके से लोग कर रहे हैं, लेकिन प्राप्तियां नहीं हो पा रही, जितना हम प्राप्ति चाहते हैं वो हमें मिल नहीं रही। इसी बात को तो मैंने कहा कि देखिए जो गाँव में रहने वाले लोग वो इतना दिमाग नहीं लगाते, इतना कर्म दुनियावी तौर पे नहीं करते, लेकिन आप देखिए उन्हें वो सब कुछ मिल रहा है, घर भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही, शांति भी मिल रही, हाँ दिखावा नहीं होता उनके पास
1: जी।
0: कम कपड़ों में, कम खाना पीने में, कम मतलब भौतिक चीजें नहीं है उनके पास, ज्यादा विलासपूर्ण चीजें जिसे कहेंगे, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा बहुत सुख शांति लगी।
1: कहते हैं कि हम शहरों में भले कितनी मेहनत करके, कितने पैसा खर्च करके सारी सुविधाओं को खरीद लेते हैं, फिर भी गांव में जाकर के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम खाली है।
0: हाँ बहुत, हाँ उनके सामने लगता है। और देखिए हम जो बाहर बहुत कर्म कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ टेंशन भी आ रहा है, तनाव भी हम लेके आ रहे हैं अपने जेब में, तनाव भी, और पैसे के लिए तो बहुत ज्यादा ही, मतलब संसार जैसे एकदम कहाँ से कहाँ जा रहा हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो संसार में के दुख को, वो कर्म जो है वो दुख को कम नहीं कर पा रहे, बल्कि आप देखिए दुख को बढ़ा रहे हैं। इसीलिए कर्म के भी दो प्रकार हैं, कर्म करना है हमें तो विकर्म करें या सुकर्म करें, तो अगर आप सुकर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो आप देखिए आपको सुख की प्राप्ति होगी। और अच्छे कर्म का फल आप जानते हैं क्या होता है, और बुरे कर्म का फल भी, रामायण और महाभारत उदाहरण है हमारे सामने।
1: तो सविता जी कहने का भाव यही है कि कर्म करेंगे तो ही फल की प्राप्ति होगी
0: जी।
1: कर्म नहीं करेंगे तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए कर्म करिए। लेकिन कहते हैं कि कर्म करने के बाद फल ऊपर वाले पर छोड़ देना है, क्योंकि हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम तो हमको मिलना ही है, उसके फल की प्राप्ति तो होनी ही है। इसलिए ऐसा नहीं कि भाई हमने 2 घंटे मेहनत की और हमको 8 घंटे के पैसे मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। जितना समय आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। बाकी ज्यादा कमाने के चक्कर में कोई भी विकर्म नहीं करना है, नहीं तो कहते हैं कि वो हिसाब किताब की लिस्ट में चला जाता है। फिर थोड़े समय हम पूर्व जन्मों के पुण्य के खाते की वजह से या पुण्य कर्मों की वजह से हम खुश रह सकते हैं, लेकिन फिर जब हम विकर्म करते हैं वो भी तो जमा होता है और इसकी भोगना फिर भोगनी पड़ती है, तब काफ़ी तकलीफ होती है, काफ़ी कष्ट सहने पड़ते हैं, दुख होता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करिए और जितना मिले उससे खुश रहिए, संतुष्ट रहिए और ऐसी ही आदत डालिए कि भाई हम इतने कैपेबल हैं और इस अनुसार हम रह सकते हैं, बाकी योग्यता कम है और हम ज़्यादा की इच्छा रखते हैं तो फिर दुखी होंगे। तो सविता जी, समय हो रहा है फिर से एक ब्रेक लेने का, तो ले लेते हैं एक अल्पविराम। सुनते रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए
1: रेडियो मधुबन

आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में आप सभी पधारिए। आज बनाएंगे आशियाना के किचन में बेसन का केक। ठीक है, केक कितने ही तरह के बनाए जाते हैं और बहुत सारे तरीके के आपको सिखा चुके हैं। आज आपको सिखाएंगे बेसन का केक। इसके लिए सामग्री लिखवा रही हूँ। पेन और डायरी तो आप ले ही लीजिए और लिखिएगा एक कटोरी बेसन। ठीक है, फिर लीजिएगा आप एक कटोरी मैदा। अब लीजिए सूजी आधी कटोरी। एक कटोरी नारियल का बुरादा लेना है, मतलब कसा हुआ नारियल। फिर लीजिए एक चौथाई चम्मच वनीला एसेंस। दो चम्मच शहद ले लीजिए। एक चम्मच बेकिंग पाउडर लेना है और कुछ कटे हुए मेवे लेने हैं आपको। एक कटोरी शक्कर ले लीजिए और एक कटोरी ही मलाई लीजिएगा। तो ये हो गई बेसन के केक की सामग्री, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ। एक नजर डाल दीजिएगा। बेसन कितने बोली थी मैं? एक कटोरी। फिर मैदा, ये भी एक कटोरी। सूजी आधी कटोरी। एक कटोरी नारियल कसा हुआ, जिसको हम नारियल का बुरादा भी कह सकते हैं। फिर आप लीजिए एक चौथाई चम्मच वनीला एसेंस। दो चम्मच शहद। बेकिंग पाउडर लीजिए एक चम्मच। कुछ कटे हुए मेवे ले लीजिए आवश्यकता के अनुसार और एक कटोरी शक्कर लीजिएगा। एक कटोरी ही लेनी है मलाई की। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए। तब तक के लिए आपको एक गीत सुनाएंगे, उसके बाद बेसन का केक कैसे बनाया जाता है वो भी जरूर सिखाएंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिजीत सावंत। आप सुन रहे रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बन रहा है बेसन का केक। बेसन का केक की सामग्री आप सभी को लिखवा चुकी हूँ, फिर भी एक नज़र डाल दीजिएगा, कहीं छूट गया हो तो आप नोट कर लीजिए। बेसन, मैदा, सूजी, कसा हुआ नारियल, वनीला एसेंस, शहद, बेकिंग पाउडर, कटे हुए मेवे, चीनी और मलाई। आइए अब बनाने का तरीका भी आपको सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, शक्कर को पीस लीजिए और फिर मलाई को अच्छी तरह फेंटिए। अब आप मलाई और शक्कर जो पीसी हुई है ना, इन दोनों को मिला करके हल्के हल्के हाथों से फिर से फेंटिए। अब आप मैदा, बेसन और सोडा तीनों को छलनी से छान लीजिए और अब इस मिश्रण में वनीला एसेंस डालिए। बेसन, मैदा, सूजी में एसेंस का मिश्रण डाल करके अच्छी तरह से फेंटिए। इसके अंदर आप कटे हुए मेवे मिला दीजिए, केक पार्ट पर चिकनाई लगा दीजिए और मैदा छिड़क करके मिश्रण डालिए और सारा मिश्रण डाल करके फिर 45 मिनट तक बेक करिए। तो इस तरह बेसन का केक हमारा तैयार हो चुका है। पुनः विधि को दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। केक बाहर से हम लाते हैं, बहुत महंगे महंगे आते हैं और कहते हैं कि भाई हर महंगी चीज़ हर एक के बजट में संभव नहीं होती और इच्छाएं तो सभी रखते हैं बच्चे की।

बर्थडे आती है, घर में माता पिता की बर्थडे या किसी का भी जन्मदिन आता है तो ऐसी इच्छा होती है कि भाई केक काटे, केक लावे, बच्चों को केक खिलाए, लेकिन क्या करें, बजट से बाहर है हमारे सारा खर्चा। तो फिर करना भी है, शौक भी पूरा करना है, बजट भी देखना है, तो फिर यही अच्छा तरीका है कि आप घर पर ही केक बनाइए ताकि बजट में भी रहेगा और अपने शौक को भी पूरा कर सकेंगे और बच्चे बुजुर्ग इन सभी को भी आप खुश रख सकेंगे, है ना। तो इस तरह आप केक बना सकते हैं, बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। पुनः मैं विधि को दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और अच्छी तरह बनाइएगा। शक्कर को आप पीस लीजिए, ठीक है, या फिर पीसी हुई शक्कर भी ले सकते हैं। अब आप मलाई को फेंटिए, ठीक है, मलाई को फेंट ली, अब इसमें पीसी हुई शक्कर मिला दीजिए और फिर दोनों को मिला करके फिर से हल्के हाथों से फेंटिए। फेंटने के बाद अब आप मैदा, बेसन और सोडा इन सभी को आप साथ में ही मिक्स करके छलनी में छान लीजिए। एक एक का नंबर लीजिए ताकि तीनों ही अपने आप मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर अब इस मिश्रण में वनीला एसेंस डालिए। किस में छाना आपने, जो हमने बेकिंग पाउडर और शक्कर ये सब मिक्स किया ना, इसी के अंदर मलाई फेटी थी ना, मलाई के अंदर शक्कर पीसी हुई डाली, इसी के अंदर आपको सोडा, बेसन और मैदा छानना है, ठीक है, ताकि मैं अच्छी तरह बता दूं आप लोगों की भूल ना पड़े। फिर इस मिश्रण में वनीला एसेंस डालिए, ठीक है। बेसन, मैदा, सूजी में एसेंस का मिश्रण डाल दिया, अब आप फिर से अच्छी तरह फेटिए इन सभी को और फिर लास्ट में कटे हुए मेवे मिला दीजिए। इन सभी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब केक पार्ट पर आप चिकनाई लगाइए तेल या घी की और उस पर आप थोड़ा सा मैदा छिड़क दीजिए और फिर जो मिश्रण तैयार किया है इसको डालिए और डाल करके 45 मिनट तक बेक करिए तो ये बेसन का केक तैयार हो चुका है, ठीक है। पर भाई जिसका केक का वो कहते हैं ना ओवन हो वो ही केक बनाना, नहीं तो नहीं बनाना। बहुत सारी चीज़ें तो क्या बाटी के कुकर में आपको सिखा देती हूँ, लेकिन केक को आप बाटी के कुकर में नहीं बना सकते, इसलिए अगर ओवन है तो आप ज़रूर बनाइएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको और भी तरीका बताएंगे हम, बहुत सारे तरीके बताते रहते हैं केक बनाने के, तो कोई अलग तरीका बताएंगे जिससे आप बिना ओवन के भी केक बना सकते हैं। लेकिन आज जो मैंने तरीका सिखाया है वो ओवन होगा तो ही बना सकेंगे। तो चलिए बेसन का केक तैयार हो चुका है, अब आप लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में आप केक रखिए और पूरी सब्जी जो भी बनाई है वो भी रख दीजिएगा थाली में, तुलसी पत्र और जल के स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, ऊपर से स्वच्छ कपड़े को ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद पूरे परिवार सहित बच्चों सहित आनंद लीजिएगा बेसन के केक का और साथ ही साथ एक गीत का। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं सामान्य जानकारी। देखिए, खूबसूरती निखारती है जब आप एक्सरसाइज करते हैं। तब जो भी खूबसूरत होना चाहते हैं, एक्सरसाइज जरूर करिएगा। और हर कोई यही चाहता है कि भाई मैं अच्छी दिखूं, सुंदर दिखूं, तो बस थोड़े से आलस्य को त्याग करके एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आप फिट एंड फाइन रहेंगे। पर आपको एक्सरसाइज ऐसे नहीं कि एक दिन किया, दो दिन किया, चार दिन छोड़ दिया, वो नहीं, आपको रेगुलर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर रेगुलर आप करते हैं तब तो आप अच्छी बात है। बाकी आप कहेंगे उषा जी ने बोला एक्सरसाइज करेंगे तो सुंदर हो जाएंगे, चार दिन, दस दिन या एक महीना तो हमने किया, कोई सुंदर ही नहीं हुए, तो फिर से हमने तो छोड़ दी, तो भाई ये आप करोगे तो मैं इसकी गारंटी नहीं लेती हूँ, ठीक है ना। आप रेगुलर करेंगे, रोज करेंगे, तो आप सचमुच स्वस्थ भी रहेंगे और स्फूर्तिवान भी बने रहेंगे, ठीक है ना। और कहते हैं कि सबसे बड़ी खुशी जब मिलती है तब हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो इसमें बहुत जनों की भी राय है, जैसे कि शोधकर्ताओं ने भी एक्सरसाइज करने और न करने वाली महिलाओं के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि एक्सरसाइज करने वाली महिलाएं शेप में रहने के साथ साथ ही ज्यादा मजबूत खुद को महसूस करती है। फिर दूसरी ओर देखा, एक्सरसाइज न करने वाली महिलाएं अपनी बॉडी शेप और लुक को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं रहती। दोनों ही तरह की सोच का असर महिलाओं के मूड और चेहरे की निखार पर पड़ता है। मेरी प्यारी बहनों, एक्सरसाइज करने वाली बहनें ज्यादा सकारात्मक और खुश होती है। रोजाना ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग से त्वचा की रंगत बढ़ती है, ठीक है ना। क्या क्या फायदे है वो मैं आपको बता रही हूँ। दरअसल इस दौरान क्या होता है, दिल तेजी से पंप करता है और रक्त संचार बढ़ता है। ऐसे में त्वचा तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचता है, जो शरीर के लिए काफी फायदा करता है, मददगार होता है। तो एक्सरसाइज करते समय जो पंपिंग होती है, जो शरीर में उस समय जो एक्सरसाइज होती है अंदर से हमारे शरीर की, सचमुच बहुत ही फायदेमंद है। जरूर आप करिएगा। और एक्सरसाइज के अलावा अन्य गतिविधियां जिससे रक्त संचार बढ़ता है, त्वचा को स्वस्थ रखने में फायदेमंद होती है, वो भी आपको मैं बता रही हूँ। एक्सरसाइज से तो फायदा है ही, लेकिन साथ ही साथ किन किन चीजों से फायदे हैं वो भी आप जानेंगे। अच्छी नींद, देखिए अच्छी त्वचा के लिए पर्याप्त नींद भी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करने से नींद भी अच्छी आती है। नींद के दौरान शरीर कुछ ऐसे हार्मोन का स्त्राव करता है जो उत्तकों को सुधारने या फिर उन्हें फिर से बनाने का काम करता है। और भी आप जानेंगे एलोवेरा, एलोवेरा जेल त्वचा को साफ करने के साथ ही पोषण भी देता है। रात में सोने से पहले ये जेल लगाइए और सुबह उठ करके धो लीजिए इस, और ये आप जाइयों पर भी लगा सकते हैं, तो इससे भी चेहरा चमक उठेगा और फायदा ही फायदा। एक्सरसाइज के साथ साथ ये भी आप कर सकते हैं। फिर आप देखिए आलू, विटामिन सी से भरपूर आलू प्राकृतिक ब्लीच की तरह काम करता है। आलू को पीस करके पेस्ट बनाइए और पूरे चेहरे पर लगा करके 30 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लीजिए। इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं, यह सूर्य की रोशनी से भी राहत देता है, ठीक है ना। तो कितने सारे फायदे हैं एक्सरसाइज के साथ साथ। एक्सरसाइज करते हैं साथ ही साथ ये भी नुस्खे आजमाते हैं तो सचमुच सुंदरता भी बढ़ती है स्किन की, और स्फूर्ति भी आती है, स्वस्थ भी रहते हैं, फिट भी रहते हैं, फायदे ही फायदे हैं। तो जरूर आप एक्सरसाइज करिए। तो ये आपको सामान्य जानकारी दी गई है, ध्यान रखिएगा। और अब आपको फिर से सुना देते हैं गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: मैं हूँ चांद मिश्रा, आप सुन रहे रेडियो मधुबन। सुनते रहे, सुनाते रहे, जन जन तक प्यार बरसाते रहे।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, बहुत ही अच्छे घरेलू नुस्खे दिए हैं, जरूर आप ध्यान रखिएगा। और अगर इस तरह की बीमारी है तो इन नुस्खों को जरूर आजमाइएगा। खुशनुमा जीवन में सविता जी के साथ बहुत ही अच्छी बातें हुई है। श्रेष्ठ कर्म करेंगे और तो प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी, और कर्म तो करने ही है, इसलिए हमेशा कर्म प्रधान बने रहिएगा और कर्म करते रहिए, फल ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। और नए नए व्यंजन में आपको बेसन का केक बनाना सिखाया है तो ज़रूर बना करके खाइएगा। और सामान्य जानकारी भी बहुत ही अच्छी मिली है आप सभी को, एक्सरसाइज करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे और खूबसूरती भी निखरेगी। और जानने योग्य बात आपको बता रही हूँ, तन और मन में संतुलन बना सकता है योग। योग का उद्देश्य शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन अर्थात योग बनाना है। योग के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुद्रा, ध्यान और श्वसन संबंधी अभ्यास की आवश्यकता होती है। योग की क्रियाओं में जब तन, मन और आत्मा के बीच योग बनता है तब आत्मिक संतुष्टि, शांति और चेतना का अनुभव होता है। इसके अलावा योग शारीरिक और मानसिक रूप से भी फायदेमंद है। आज के अनमोल वचन इस प्रकार है, सर्व का सहयोग लेने के लिए पहले स्वयं सहयोगी बनना पड़ता है। अब मैं आपको होली पर एक प्यारा सा गीत सुनाऊंगी, आप लेंगे गीत का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घणी खमा सा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: नमस्ते, ओम शांति। मैं हूं हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी पर न जाने कितनी शायरियां लिखी गई, न जाने कितने गीत बने, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जिंदगी को समझना इतना आसान नहीं है। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और सच में ये ना जाना कई बार मल्टीपल इमोशंस को ले आता है, और आज हम उन्हीं इमोशंस के बारे में थोड़ा और गहराई से जानने वाले, यानी खुद को बेहतर पहचानने वाले। और उसके लिए जुड़ गए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट। सबसे पहले हम स्वागत कर रहे हैं कल्पना जी का, जो कि ग्लोबल अस्पताल से सीधा जुड़ गई हैं, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर भी है, और समय प्रति समय हमें बहुत मदद करते रहते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू। बहुत बहुत खुशी हो रही है श्री जी से, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, हमारे श्रोताओं से मुखातिब होकर भी बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
3: क्या हुआ?
4: कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है।
1: ये क्या होने वाला है, इसके साथ भी बहुत सारे इमोशंस जुड़े रहते हैं, इसीलिए गाने बनते रहते हैं, और तब भी ये सवाल ही रहता है कि क्या हुआ। और इन इमोशंस को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। दीदी, आपने इमोशंस आइडेंटिफाई करने के बारे में बहुत सारी बातें की थी कि सही इमोशन कैसे आइडेंटिफाई करें। फिर आपने ये भी बताया था कि किस तरीके से उसका एक मीटर होता है, एक मतलब किस लेवल पे है वो इमोशन, वो भी समझे तो टैकल करने में मदद मिलती है। अब एक सवाल है जो बहुत लोगों के मन में आता है, किसी किसी को ये लगता है कि मेरे अंदर एक सर्टेन इमोशन है ही नहीं। जैसे किसी किसी को लगता है मैं इतना कुछ देख चुका जीवन में कि संवेदना बची ही नहीं है, there is no compassion। तो क्या ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति के बाद कोई इमोशन, एक इमोशन ऐसा हो जो उसके अंदर बिल्कुल मर गया हो या खत्म हो गया हो या हो ही नहीं?
2: ऐसा तो नहीं होता है। इसके पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे माइंड का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। डिफेंस मैकेनिज्म वो सिस्टम है जिस चीज का माइंड को स्ट्रेस होता है, जिस बात से माइंड को तकलीफ होती है या थ्रेट महसूस होता है, उससे डाइवर्ट करने के लिए माइंड कुछ स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम जो है माइंड का, जिस बात से, जिस इमोशंस से आपको बहुत दुख दर्द महसूस होता है, तकलीफ होती है, उससे डाइवर्ट करने के लिए उस चीज के प्रति इम्यून बना देता है। और वो इम्यून बनना, ये लोग समझते हैं कि वो भावना ही नहीं है मुझ में। जैसे फॉर एग्जांपल, जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स भी अगर हम बार बार लेंगे तो वो हम उसके लिए एंटीबायोटिक एक समय आता है कि हमारे शरीर में वो काम करना बंद कर देते। उसी तरह से जब इमोशनल ओवरवेल्म होते हैं, हम किसी इमोशन से हम बार बार हर्ट होते जाते हैं, तब हमारा माइंड अपने डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम से हमें उससे डाइवर्ट करने के लिए उसमें इम्यून कर देता है कि बस अब इस इमोशन का एक्सपीरियंस करना ही।
1: तो यानी वो ऐसा है नहीं कि आपके अंदर वो नहीं है, किसी किसी को लगता है कि नहीं है, लेकिन आपने जैसा कहा कि वो सर्टेन आप इम्यून जैसे आप उससे हो गए, पर उसके एग्जिस्ट नहीं करता आपके अंदर, ये ना समझे इसको, वो इमोशन है ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते या समझ सकते। श्रीनिधि जी, आपसे मैं एग्जैक्टली ऑपोजिट बात पूछना चाहूंगी, क्योंकि एक कई बार ये भी प्रश्न आता है कि मेरे अंदर ये इमोशन इतना ज्यादा है कि बाकी उसके आगे कमजोर पड़ जाते हैं, या वो मुझे इमोशन कंट्रोल कर देता है। किसी को लगता है कि मेरे अंदर मतलब इतना ज्यादा प्यार है या इतना ज्यादा जेलसी है कि वो कंट्रोल कर लेती है जैसे, और कोई इमोशन फील ही नहीं करने देती, भले कोई व्यक्ति बीमार है, परेशान है, पर दया नहीं आ रही है, इतना ज्यादा उसके प्रति वो घृणा है या जेलसी है कि वो इमोशन ओवरपावर कर लेता है। तो क्या उस समय कैसे मतलब आप इमोशंस को देखते हैं?
4: एक तो ये चीज रिकॉग्नाइज करने वाली है कि ऐसा हम लोगों के साथ होता है, और सभी लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कुछ चीजों के लिए इम्यून हो जाते हैं। मैं इसके लिए एक दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा, खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब हम लोग काम करते हैं। पहली बार जब कोई व्यक्ति खून देखता है तो बहुत सारे लोगों को एक स्ट्रेस या एंजाइटी महसूस होता है कि किसी व्यक्ति का खून बह रहा है, फिर उसको कैसे रोके, क्या करें। समझ, ऐसे ही भावनात्मक रूप से आप एक प्रेशर महसूस करते हैं आप खून देखते हुए, आपको वो एक अर्जेंसी, एक सेंस ऑफ एंजाइटी आपके डेवलप होती है। आप एंक्शियस होते हैं, कैसे कैसे हो गया, इसको हम कैसे रोके, इत्यादि सवाल मन में चलते रहते हैं। अब क्लिनिशियन की बात करें, एक नर्स की बात करें, एक डॉक्टर की बात करें, और वो लोग जब हर दिन इन एंड आउट लोगों के घाव को, लोगों की इंजरीज को देखते रहते हैं, तो उनके अंदर वो एंजाइटी अब उत्पन्न ही नहीं होती।
1: ओके।
4: क्योंकि उन्होंने उन घटनाओं को बहुत बार देख लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो संवेदनशील नहीं है या वो आपके दर्द के प्रति उनकी संवेदनाएं व्यक्त नहीं कर रहे हैं, अपितु वो जो नेगेटिव उतार चढ़ाव होना चाहिए था, भावों में उद्वेग होना चाहिए था, वो नहीं होता।
1: Okay.
4: तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि आपने बार बार अपने आप को इन इमोशंस के लिए इतना एक्सपोज किया हुआ है।

0: ये तो बहुत गलत हुआ, ये हम सिंपैथेटिक हो के कोई चीजें कह देते हैं बहुत बार। इसके साथ साथ एक और चीज जो हम कहते हैं वो है एम्पैथी। एम्पैथी भी हम क्लिनिकल क्षेत्रों में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बहुत बार सिंपैथी का अर्थ ये होता है कि हम किसी की संवेदनाओं को समझने के लिए हम अपने आप को उनके शूज में डालने लगते हैं, उनका दर्द महसूस करने की कोशिश करने लगते हैं, हम रेजोनेट करने लगते हैं उनके पेन के साथ, फील दर्द उनको हो रहा होता है और हम भी उनके साथ उसी पेन को रेडिएट कर रहे होते हैं, और सिंपैथेटिक होने का अर्थ कभी कभार हम ऐसा समझ लेते हैं। इसलिए एक और स्टैंडर्ड शब्द यूज किया जाता है और क्लिनिकल एरियाज में हमसे और कस्टमर सर्विस में हम इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं जब हम उसको कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे सिंपैथी नहीं रखता, इसका मतलब ये है कि मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ बट मैं आपके दर्द को खुद महसूस नहीं करना चाहता। मैं भी आपके साथ उस दर्द के फीलिंग्स को रेडिएट नहीं करता, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, सिचुएशंस को समझ रहा हूँ और उसको मैं पॉजिटिवली तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए एम्पैथेटिक तरीके से उस चीज को देखता, ये एम्पैथी है। और आप जो बात कह रहे थे वो एक और प्रकार की पैथी है जिसे हम एपैथी कहते हैं, जिसे मतलब मैं आपके ऊपर क्या हो रहा है इससे मेरे मेरे ऊपर जू तक नहीं रहेंगे,
1: इसके
0: हाँ असर ही नहीं पड़ता। अक्सर हिंदी में हम ये चीज कहते हैं, कहावत के रूप में भी लोग कह देते हैं, ऐसे ही मुहावरों के रूप में भी इस्तेमाल होता है, लोग कह देते हैं जो हर दिन मर रहा है उसके लिए रोए कौन। तो बार बार आपने कुछ ऐसी चीजें देख ली हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को शुष्क बना लेते हैं, आप उसके प्रति कोई संवेदना ही नहीं दिखाना चाहते, और ये भी चीज होता है और ये चीज समझने की जरूरत है। और क्या ये चीज अच्छी है या बुरी है, मैं समझता हूँ कल्पना जी बेहतर गाइड कर पाएंगे और हमारे कुछ श्रोता इस बात को समझकर खुद ही देखना चाहेंगे कि हमें एपैथी रखनी चाहिए, एम्पैथी रखनी चाहिए या सिंपैथी।
1: जरूर ये चीज कल्पना जी से जानना चाहेंगे, तीनों शब्दों में से क्या।
2: बिल्कुल श्री जी बहुत सही बात कर रहे थे कि जैसे मैं हूँ काउंसिलर हूँ
1: जी,
2: मुझे क्या रखना चाहिए, एम्पैथी रखनी चाहिए, सिंपैथी रखनी चाहिए, क्या रखना चाहिए। अगर मैं सिंपैथी रखती गई तो लोग जो दुख दर्द लेकर आ रहे हैं वो शायद मुझे अफेक्ट करे, लेकिन एम्पैथी रखती हूँ तो मैं अफेक्ट किए बिना, अपने आप को अफेक्टेड किए बिना उनको हेल्प कर पाती हूँ। तो एम्पैथी में एक डिटैचमेंट होती है, दूसरे के दर्द को हम समझते हैं बट महसूस नहीं करते। महसूस करने का मतलब उनके हाथ में कितना पेन हो रहा होगा, उनको मन में कितनी उलझन होगी, ये मुझे अच्छी तरह से पता चल रहा है बट वो सेम चीज मैं महसूस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे उनको हैंड होल्डिंग करना है, उनको मुझे मदद करनी है। अगर मैं भी महसूस, कोई मेरे सामने बैठकर रो रहा है और मैं भी रोना शुरू कर दूं तो कौन किसको हेल्प करेगा।
1: सही बात है
2: ना। तो ये श्री जी समझाने की कोशिश करते हैं, अपने इमोशंस को समझते समय जब आपका रोल, समझो माता पिता है, बच्चों की कोई प्रॉब्लम है, अगर माता पिता अफेक्टेड हो जाते हैं, वो भी घबरा जाते हैं तो वो कैसे हेल्प कर पाएंगे बच्चों को। मेरे सामने ऐसे कई माता पिता आते हैं जो वास्तव में डरे हुए होते हैं अपने बच्चों की फेलियर से, परंतु वो बच्चों को कहते कोई बात नहीं बेटा, इस बार फेल हो गए, अगली बार तुम जरूर पास हो जाओगे या अचीव कर लोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। बट जब अंदर से मैं उनको पूछती हूँ कि आपने ऐसा कहा तो आपको कुछ अफेक्ट नहीं हुआ, तो कहा नहीं हम अफेक्टेड हुए लेकिन हमने बताया नहीं, दिखाया नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा घबरा जाए।
1: ऐसा कई बार माता पिता करते ही हैं क्योंकि वो दर्द समझते हैं और हमसे ज्यादा बेहतर कई बार समझते हैं, लेकिन वो उठा नहीं पाएंगे, जैसा आपने कहा हेल्प नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशन में अदरवाइज। तो दीदी एम्पैथी कहाँ आती है यहाँ पे, जैसे एम्पैथी की बात हुई, इसके बाद एक और जो शब्द आता है ये, इसका अगर थोड़ा सा मीनिंग आप बताएं।
2: एम्पैथी आप हर रोज इस चीज को यूज करते हैं एक्चुअली, पर हमें नाम देने नहीं आता है। तो ये चीज सिंपैथी एम्पैथी से ऊपर, एम्पैथी को जो हम कहते हैं कि बीच का है, कि जैसे पर्सनालिटीज को जब हम देखते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं
1: जी,
2: कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, है ना। अपने एक्सप्रेशंस को, फीलिंग्स को बहुत ओपनली

0: शो करते हैं
1: जी.
0: और कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपने एक्सप्रेशंस, अपने फीलिंग, अपने इमोशंस को इतना शो नहीं करते हैं
1: जी,
0: या कम बोलते हैं. तो उसके बीच में एक पर्सनालिटी टाइप होता है, उसको कहते हैं एम्बिवर्ट.
1: ओके.
0: मतलब दोनों का बैलेंस रखकर चलने वाले, जहां जरूरत है वहां चुप रहने वाले, जहां जरूरत है वहां एक्सप्रेस करने वाले, उसको कहते हैं एम्बिवर्ट. तो हमारा लक्ष्य ये होता है कि हम बीच में चले, मॉडरेट रहे, है ना.
1: मॉडरेशन, बैलेंस कहीं ना कहीं उसमें आ जाता है. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. तो जैसा आपने कहा नहीं, बहुत बार हम करते हैं मगर हम उसका नाम नहीं जानते, तो हम उसे कह नहीं पाते कि ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या ये महसूस कर रहे हैं. तो एक और सवाल है मेरा यहाँ पर कि आपने बताया एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट्स अलग अलग होता है. जैसे मान लीजिए कोई आप एक रेटिंग सिस्टम की भी हमने बात की थी इमोशन की. यूजुअली वैसे तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं. मतलब कई बार ये माना जाता है कि जो लड़के होते हैं वो उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते अपने इमोशंस को लेके, लड़कियां ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाती हैं. तो मान लीजिए कोई बहुत रो रहे हैं या बहुत परेशान है, तो समझ में आता है कि हाँ इसकी रेटिंग शायद 8 पे होगी या 9 पे होगी या 7 पे होगी उस इमोशन की जो वो फील कर रहे हैं. पर वहीं पे मान लीजिए एक लड़का है जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, जो सीधे खड़ा है, बहुत पेनफुल सिचुएशन है लेकिन वो सीधे खड़ा है, तो उसमें वो किस अनुसार उसको रेट करे? या सामने वाले को तो कई बार पता भी नहीं चलता कि उसके अंदर किस लेवल तक वो पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं.
0: राइट. इसको हम एक शब्द से समझ सकते हैं, उसको कहते रेजिलियंस. हर एक की जो टॉलरेंस की, सहन करने की शक्ति होती है वो अलग अलग होती है. कुछ लोग थोड़ा सा कट जाए, थोड़ा सा लग जाए, बहुत ज्यादा उसको फील करते हैं और शो करते हैं, बट कुछ लोग उसे सहन कर जाते हैं, उनकी सहन करने की शक्ति कुछ ज्यादा होती है. तो वैसे ही हमारे जो इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं या इमोशनल मैच्योरिटी है, वो हर किसी के अलग अलग लेवल पर हो सकती है. किसी को किसी बात के लिए हर्ट हो सकता है, उसी बात को दूसरा व्यक्ति बोल सकता है तो नॉर्मल है, इसमें क्या बड़ी बात है, या फिर उस चीज के प्रति हमारा नजरिया कैसा है. फॉर एग्जाम्पल, बॉस और उसका एम्प्लॉय, अगर बॉस ने डांटा तो एम्प्लॉय को फील होगा ना, जरूर
1: जी
0: जरूर होगा, मैं तो ठीक था, मैंने तो ठीक किया था, फिर भी डांटा. जब वो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के पास जाता है और बोलता है कि देखो आज मुझे बॉस ने बिना वजह डांट लिया, तो दूसरा एम्प्लॉय क्या कहेगा, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो सबको डांटते हैं, जब उनको स्ट्रेस होता है वो सबको डांटते हैं, और तुम्हें बिना वजह नहीं डांटाऊंगा, कोई कारण होगा, उनके माइंड में कोई ऐसी बात चल रही होगी, आपसे उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी इसलिए आपको डांटा होगा. और फिर वो दूसरा एम्प्लॉय बोलता है कि अरे घर में नहीं क्या माँ बाप अपने डांटते हैं, यहाँ बॉस भी वैसे ही है, उनको भी वैसे ही लो, उनकी डांट का कोई मतलब नहीं होता है, वो मन में नहीं रखते. जब ऐसी समझ मिलती है तो वही डांट उसको लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है. तो दोनों की जो इमोशनल मैच्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, परसेप्शन है, किसी चीज को देखने का नजरिया है, वो अलग अलग होने की वजह से प्रतिक्रिया, इमोशनल एक्सप्रेशन अलग अलग हो जाता है. कुछ बच्चे होते हैं, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी, एक ही माँ बाप के दो या चार बच्चे होते हैं. एक बच्चा रिबेलियस हो जाता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत मारा है या एक बार मारा है, इसलिए वो रिबेलियस हो जाता है और वो प्रतिकार करने लगता है माँ बाप को. लेकिन दूसरा बच्चा कहता है अरे माँ बाप है, उन्होंने जन्म दिया है, हमारी अच्छाई के लिए तो उन्होंने मारा होगा ना, तो वो उसे पॉजिटिवली लेता है. तो ये हर एक की क्या मैं कहें, जेनेटिक्स है, एनवायरमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है
1: जी.
0: सो हमें इसमें लेना क्या है, ये सारे एग्जाम्पल्स सामने रखने का एक ही पर्पस है कि अगर हमें इमोशनल मैच्योरिटी की लेवल पर पहुंचना है तो हमें रिस्पॉन्स करते समय रिएक्टिव नहीं होना है, लेकिन प्रोएक्टिव होके पॉजिटिवली उस चीज के दूसरे साइड को देखते हुए उसे उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना है, प्रोएक्टिव होना है, रिएक्टिव नहीं। रिएक्शन का मतलब है आपने किया, रिफ्लेक्स में मैंने भी कर दिया, नहीं। प्रोएक्टिव का मतलब, अच्छा आपने मुझे ये कहा, ओके इसका एक्सप्लेनेशन ये है और इस वजह से ऐसा हुआ, सो मैंने उसका जवाब दे दिया और मैं पीसफुल रही। तो ये है इमोशनल मैच्योरिटी का लेवल। अच्छा एपथी की बात मैं अभी और कहूंगी, एपथी मैंने कंप्लीट नहीं किया है बट आगे आप पूछ सकते हैं।
1: तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया जो आपने बताया दीदी कि किस प्रकार से एक व्यक्ति ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, कम हो रहा है सेम सिचुएशन में। अगर एक एक्सप्रेस ज्यादा कर रहा है, इफेक्ट दोनों बराबर हो रहे हैं लेकिन एक एक्सप्रेस ज्यादा कर रहा है और एक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, एक रो दे रहा है, आंखों से आंसू ला दे रहा है, पेन 8 नंबर पे है मे बी उसका, दूसरे वाला का भी 8 नंबर पे है पर वो आंखों में आंसू नहीं ला पा रहा, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो दोनों में से क्या इमोशन को बेटर हैंडल कर कौन रहा है, या फिर वो 8 नंबर का इमोशन आइडेंटिफाई करना क्या जो आंसू आ रहे हैं उसके लिए आसान है, जो रो नहीं रहा उसको तो लगेगा ही नहीं कि इतना पेन, सामने वाले को तो एटलीस्ट नहीं पता चलेगा कि इस लेवल पे वो पेन एक्सपीरियंस कर रहा है।
0: हर एक की पेन बेरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, किसी का तरीका बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होने का होता है और किसी का ओके ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस न करते हुए वो अंदर ही अंदर हैंडल करते हैं। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि फलाना सप्रेस कर रहा है अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो, और एक व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है तो वो सही है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हर एक का अपने अपने इमोशंस को हैंडल करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, बट साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो सही जगह पर सही तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की खुद को ट्रेनिंग देना ये एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है।
1: ओके आशिंद्री जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें?
2: मैं एग्री करता हूँ कल्पना जी की इस बात से कि हर व्यक्ति उसी अमाउंट ऑफ स्टिमुलस के लिए अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड कर सकता है, और कल्पना जी ने बहुत सुंदर तरीके से ये शब्द का उपयोग किया कि हम रिएक्ट नहीं करें, और मैं समझता हूँ रेस्पॉन्ड एक बहुत ही सुंदर शब्द है अंग्रेजी में, हम हिंदी भाषा में शायद मैं इसको सही तरीके से तर्जुमा ना कर पाऊं, क्रिया के लिए प्रतिक्रिया कर देना, रिएक्ट कर देना हो सकता है, बट रेस्पॉन्ड करने का अर्थ ये है कि आप तुरंत प्रतिक्रिया पे नहीं आते, आप बीच में सोच समझ करके रिस्पॉन्ड करने के लिए सोच सकते हैं। और जैसा कल्पना जी कह रहे थे कि हाँ हो सकता है मेरे लिए ये जो दर्द आज मैं महसूस कर रहा हूँ बहुत ज्यादा दर्द ना हो, चीज को मैं बेहतर हैंडल कर पा रहा हूँ, हो सकता है मैं उस प्रकार के दर्द को अनुभव कर चुका हूँ पहले, कि मैं उस चीज को पहले हैंडल कर चुका हूँ, आज उसी प्रकार के सिचुएशन शायद जैसे आप कह रहे थे कि ये 10 में से 8 नंबर का ये दर्द का माप है और वो माप अभी वापस मेरे पास आया, बट क्योंकि मैंने 10 में से 9 डिग्री तक का पेन झेला हुआ है तो शायद मैं 8 के लिए इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा या उस तरीके से मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, या फिर मैं बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना समझ पा रहा हूँ। और एक व्यक्ति जो पहली बार लाइफ के उस सिचुएशन में है, उस प्रकार के दर्द को महसूस कर रहा है, तो वो सकम करेगा, उसके लिए रोना या उस दर्द को सहन नहीं कर पाना, चिल्लाना या अलग अलग तरीके से वो उस दर्द को प्रकट करने की जो तैयारियां कर रहा है या वो जो चीजें प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई दे रही हैं वो हो सकते हैं वो अलग हो
1: जी।
2: और जैसे कल्पना जी कह रहे थे मैं इस बात से 100% वाबस्ता हूँ कि हर एक इंसान अलग है, मेरी दर्द को सहन करने की क्षमता अलग हो सकती है, और मैं सिर्फ दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई आपका मजाक उड़ाए समझ ले, कई लोग होते हैं वो उस मजाक को भी मजाक में ले लेते हैं, वो अपने ऊपर भी मजाक करना जानते हैं, और कई लोग होते हैं उनको अगर किसी ने उनके लिए कुछ भी कह दिया, आज ये कह दिया कि ओहो क्या कपड़े पहन के आए हो, कहां से आए हो, इसी प्लेनेट से हो क्या, इतना भी अगर कोई कह दे तो उनका पूरा दिन का मूड खराब हो जाता है, वो शायद आधे दिन की छुट्टी लेके वापस घर चले जाए। और कई लोग ऐसे होंगे वो बोले अरे कपड़े से क्या लेना देना, मेरे काम से मतलब रखना तुम, ये भी कहने वाले लोग हो सकते हैं। चीज वही है मगर उस चीज के प्रति हमारी संवेदनाएं कैसी हो सकती हैं उसमें अंतर है। और इस यूनिकनेस को समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति का एक जेनेटिक बिल्ड, जैसे कल्पना जी पहले भी कह रहे थे कि जिस तरीके से परवरिश हमारी हुई है, जिस वातावरण में हम पले बड़े हैं, हमारी शारीरिक मानसिक संरचनाएं जैसी हुई है, वो सब कुछ इन चीजों पर असर करती हैं। और इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि सब लोगों को उसी एक पैमाने से नापा जाए।
1: बिल्कुल, और ये बड़ी सुंदर सी बात है, इसलिए हर एक को अपने को समझना जरूरी है। एक कैटेगरी में सबको बांधा नहीं जा सकता, जनरलाइज नहीं किया जा सकता, भावनाओं में भी यही बात है।
2: और कल्पना जी इस बात से एग्री करेंगी कि जब वो एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते साइकोलॉजी में जब लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, उनके पास काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, तो वो हर मरीज को एक इंडिविजुअल की तरह देखती हैं। वो शायद ऐसा नहीं देखती होंगी कि पहले जैसा मरीज जैसा ये क्यों नहीं है, ऐसा वो नहीं सोचते। वो
1: हर सेम सिचुएशन में हो, लेकिन
2: सेम सिचुएशन में क्यों ना हो।
1: बहुत सुंदर बात है, और मुझे लगता है बहुत कुछ जानना है मुझे आप दोनों से, क्योंकि आज हम बहुत सारे केसेस देखते हैं, बच्चों में देखते हैं कि एक इमोशन इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है, संभाल नहीं पाते, गलत स्टेप भी ले लेते हैं। तो वहां कैसे इमोशंस को हम बैलेंस कर रहे हैं या समझ रहे हैं वो भी जानेंगे, एपैथी क्या है और उसको उसके बारे में भी जानेंगे, और इस तरह से अपनी भावनाओं को और बेहतर समझने का हम प्रयास करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल, क्योंकि इस एपिसोड में हमें यहीं तक का समय मिल रहा है, इजाज़त लेने का समय आ रहा है, तो अंत में कल्पना जी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हम थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकें, खुद को बेहतर समझ सकें, एक मोमेंट निकाल सकें, तो उसमें क्या मेडिटेशन प्रैक्टिस करें जो हमें हेल्प करे।
0: जी बिल्कुल। सो मैं अनुरोध करूँगी अपने श्रोताओं से कि वो जहाँ कहीं भी हैं केवल 2 मिनट के लिए समय दे अपने आप को, और रिलैक्स होकर किसी निश्चित स्थान पर बैठ जाए। गहरी और लंबी सांसें ले, अपने सांसों को भीतर जाते हुए बाहर आते हुए अच्छी तरह से महसूस करें। अपने आप से जुड़ाव महसूस करें। हर सांस के साथ स्वयं को फील करें। थोड़ा सा भीतर जाते हुए महसूस करें कि इस समय मेरे विचार क्या है और मेरी भावनाएं किस तरह की है। अब जब मुझे पता चला है कि मेरे विचार ये है और मेरी ये भावना है, तो मैं थोड़ा सा उन्हें टर्न करूंगा या करूंगी पॉजिटिविटी की तरफ। उस फ्लो को मैं ले जाऊंगी कुछ विचारों के साथ। गहरी और लंबी सांस लेते हुए अपने मन में विचार दोहराएं कि मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं शक्तिशाली हूं। इस विचार को मन में 3 बार दोहराएं। मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं शक्तिशाली हूं। जैसे ही मन इस बात को मानने लगेगा, मुझे खुशी का अनुभव भीतर से होने लगेगा। मेरी भावनाएं खुशी का अनुभव करने लगेगी, संतुष्टता का अनुभव, शक्ति का अनुभव। गहरी और लंबी, और अपने आप से वादा करें, मैं अपने विचार और अपनी भावनाओं को समझने का प्रयास सतत करता रहूंगा। मेरे विचार, मेरी भावनाएं समझने के साथ साथ मैं दूसरों के विचार और उनकी भावनाओं को भी समझने का प्रयास करूंगा। मैं लोगों को बदलने से पहले उन्हें समझने का प्रयास करूंगा। गहरी और लंबी सांस ले और मन में विचार करें, मैं सुनूंगा, समझूंगा और औरों को सम्मान भी दूंगा। फिर से एक बार अपने आप को याद दिलाए, मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं, शक्तिशाली हूं। इन विचारों को बीच बीच में दोहराते रहे, अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं। धन्यवाद।
1: मुझे लगता है ये जो आपने विचार दिए इन्हें हम दीवार पर कहीं लगा भी सकते हैं लिखकर, ताकि वो बार बार हमें याद आते रहें और वो अनुभव हम बार बार करते रहें जीवन में, क्योंकि एक बार से नहीं होगा, प्रयास लगातार करना होगा। फिलहाल लेते हैं इजाजत और अपने दोनों एक्सपर्ट्स को करते हैं हम धन्यवाद कि हमें आपने गाइड किया और बहुत सिंपल तरीके से जो हम कर सकते हैं आइडेंटिफाई कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है और किस प्रकार से अपने आप को अलग समझना है, किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है, ये भी हमने समझा आज। तो इसी के साथ जिंदगी को कहते हैं कि लव यू जिंदगी, और मिलेंगे लव यू जिंदगी के अगले एपिसोड में फिर से एक बार दूसरे सवाल और जवाबों के साथ। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अरावली की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको ऐसी नारी शक्ति से मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है सुंदर वैष्णवी, और आप आबू रोड में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट में आप पुलिस के पद पर कार्यरत है। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और पढ़ाई में काफ़ी होशियार रहे हैं, व्यावहारिक है, सभी के साथ बहुत ही प्रेम से रहते हैं, और भी आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हम आपके द्वारा ही जानेंगे। तो सुंदर जी, आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: थैंक यू। मेरा नाम सुंदर विष्णोई है, मेरे पिताजी का नाम गंगाराम जी विष्णोई है। मैं जालौर जिले में सांचौर तहसील में सांकड़ गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी टीचर है। मेरे पिताजी के हम तीन संतान हैं जिसमें मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे से एक बड़ी बहन है और एक मेरा भाई है। मैंने 10th क्लास तक मेरे गांव सांकड़ में ही पढ़ाई की थी और 11th-12th में मेरे गांव में सीनियर स्कूल नहीं होने की वजह से मैंने रानीवाड़ा में पढ़ाई की थी, जो मेरे गांव से 20 किलोमीटर दूर था। 2005 में मैंने 12th क्लास पास की थी। उसके बाद में मैंने कॉलेज सांचौर से की थी। हमारे सांचौर में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं थी, प्राइवेट कॉलेज से ही मैंने फॉर्म अप्लाई किया था।
0: जी सुंदर जी, आपकी ये बातें बात की तो हम जरूर सुनेंगे। हम थोड़े बचपन की तरफ आपको ले चलते हैं
1: जी।
0: आप भाई बहन कैसे रहते थे?
1: मैं सबसे छोटी थी मेरे पिताजी के
0: जी,
1: और मेरा भाई मेरे से 15 साल बड़े थे। तो मेरा भाई ज़्यादातर बाहर ही पढ़ाई की थी, 10th तक मेरे साथ में रहे थे, तब मैं छोटी थी। मेरी सिस्टर है जो मेरे साथ में रहती थी, मुझे स्कूल भेजती थी।
0: आपके सिस्टर भी बड़े, आप सबसे छोटे रहे?
1: हाँ, मैं सबसे छोटी
0: हूँ। क्या बात है, सभी का प्यार आपने लूटा
1: जी। मेरे भैया ने कॉलेज जालौर से की थी तो वो बाहर ही रहते थे, जब छुट्टियां होती थी तब घर पे आते थे, तो मेरे लिए कुछ छोटी छोटी गिफ्टें लेके आते थे।
0: अरे वाह।
1: ऐसे मुझे जैसे चित्रकला में मेरे लिए ड्राइंग बनाते थे मेरे भैया, उसमें फिर स्कूल में चेक करवाती तो मुझे उसमें वेरी गुड मिलता था। उससे मुझे
0: तो स्कूल में पूछते नहीं कि किसने बनाया ये चित्र?
1: नहीं पूछते थे, पर उनसे सारी लड़कियां मैं बनाती तो फिर उनसे वापस उसी चित्र को बनाती। एक मेरे भैया, मुझे याद है, एक घोड़े का फोटो बनाया था मेरे भैया ने चित्रकला में।
0: अच्छा।
1: तो वो खूब सारी लड़कियों ने उसका उसको देख के सभी ने अपने बुक में वही फोटो बनाया था।
0: हाँ जी
1: जी।
0: और सबको अच्छा लगा?
1: सबको अच्छा लगा था वो।
0: अच्छा। और आपको किस तरह की हेल्प मिलती थी, और टीचर को कभी पता चला कि आप तो सब कुछ अपने भैया से करवाते हैं?
1: नहीं, ऐसा कोई पता नहीं चला। कभी अच्छा। कभार भैया आता था, एक आध बार ऐसे किया था, बाकी उससे मुझे सीख मिली किस तरह से करना काम, किस तरह से पढ़ाई करनी। अभी मेरे भैया जो 1996 में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे उनको पोस्टिंग मिली थी।
0: अच्छा।
1: पहले मेरे भैया टीचर थे, जो टीचर की नौकरी छोड़ के उसमें सेलेक्ट हुए सब इंस्पेक्टर में।
0: अच्छा।
1: जो अभी DYSP की पोस्ट पे है डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा में मांडलगढ़।
0: अच्छा जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो आपके परिवार में सभी जॉब करते, भाई बहन आप सभी?
1: मेरे पापा टीचर थे जो रिटायरमेंट हो गए, मैं और मेरे भैया जॉब करते, बाकी बड़ी सिस्टर है जो वाइफ हाउस है।
0: अच्छा, हाउस वाइफ है। जी जी जी, चलिए बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आपके पापा जॉब करते थे इसलिए उन्होंने आपको मोटिवेट किया।
1: जी
0: जी।
1: 2005 में कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई थी उसमें मुझे मेरे भैया ने मार्गदर्शन दिया कि आप भी फॉर्म अप्लाई कर दो, तो मैंने भी फॉर्म अप्लाई किया और उसमें एग्जाम दिया तो रिटर्न में मैं सेलेक्ट हो गई थी। उसके बाद में पुलिस में फिजिकल भी होता है
0: जी,
1: जिसमें दौड़ वगैरह है, गोला फेंकना है, हाइट वेट सारा
0: जी,
1: उसमें
0: जी, जी।
1: वो चेक करते हैं, तो उसमें भी मैं फिजिकल में भी पास हो गई थी। फिर मेरा इसमें
0: आपके आपके सर्विस का सफर का तो हम जरूर जानेंगे। आपके बचपन की बातें चल रही, तो आपको और क्या क्या शौक रहा, कभी आप गाना गाना डांस करना स्कूल में करते थे?
1: जी हाँ, स्कूल में डांस करते थे, सिंगल नृत्य भी मैं करती थी, और जैसे गरबा होता तो गरबा भी खेलती थी।
0: अच्छा
1: जी,
0: और पढ़ाई में होशियार थे?
1: हाँ, पढ़ाई में मैं होशियार थी।
0: घर में आप मम्मी को किसी तरह हेल्प करते थे किचन में?
1: हाँ, घर पे मैं झाड़ू निकालना, बर्तन धोना, पानी भरना, खाना बनाना पूरा काम करती थी। हमारे घर पे गाय भैंस भी रखते थे, तो गाय भैंस को भी चारा डालना, उनको पानी पिलाना, खेत में चराना, मैं पढ़ाई भी करती थी और खेत में गायों को भैंसों को उनको भी वो पास में खड़ी रह के चराती थी।
0: मतलब आपने हर प्रकार का कार्य किया हुआ है। छोटे गाँव से आप
1: जी
0: निकले
1: और है। कभी जैसे ट्यूबवेल वगैरह नहीं होता तो पानी भी हमारे दूर से मटके सिर पे ऊंचा के
0: पानी वो भी आप उठा करके लेके आए। क्या बात है, आज आप पुलिस में कार्यरत है लेकिन आपने सारा स्ट्रगल किया है, सारे कार्य किए हैं। लोग अक्सर कहते हैं ना, अरे तुम तो महिला हो, तुम्हें तो चौका चूल्हा ही संभालना है, क्या करोगी जॉब करके। लेकिन आपने साबित कर दिया कि चौका चूल्हा तो संभालना ही है, सभी को संभालना है, लेकिन इसके साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज की और देश की सेवा कर सकते हैं, जो आप कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है सुंदर जी, आपके अनुभव और भी सुनेंगे लेकिन यहाँ पर समय हो चला है एक गीत सुनने का। तो ये गीत सुनकर के पुणे लौट रहे हैं, वंदे मातरम कार्यक्रम सीधा प्रसारण है, आप जुड़ सकते हैं और सुंदर जी से अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो आइए सुन लेते हैं एक गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो
0: न, न, अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: माँ बन के ममता लुटावे, बहिन बन प्रेम निभावे, पत्नी बन जीवन सजावे, बेटी बन खुशियाँ लावे। इतना रूप समाया जिसमें, इतना रूप समाया जिसमें, वो नारी महान तुम्हारा गुण गावे, तुम्हारा गुण गावे सारा जग, आपका ऊंचा मान, आपका ऊंचा मान। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। सुंदर जी हमारे साथ बने हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पुलिस विभाग से बिलोंग करते हैं और देखे समाज की सेवा के साथ साथ आज रेडियो मधुबन के स्टूडियो में भी पहुंच चुके हैं और अपने सुंदर से अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप ज़रूर जुड़िएगा, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं खुल करके, ठीक है? क्या है कि सुंदर जी अक्सर लोग पुलिस से दूर भागते हैं, वो डरते हैं कि अरे पुलिस है, चलो हटो यहाँ से। भले गुनाह नहीं किया होता है लेकिन एक छाप ऐसी होती है कि डर लगता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, हमारी बहन है बहुत ही सॉफ्ट नेचर के है और बहुत ही मिलनसार है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। आप जुड़ सकते हैं, नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415। और सुंदर जी आपके बचपन की बातें चल रही थी, इस तरह बचपन आपका बहुत अच्छा बीता, पढ़ाई में भी आप अव्वल रहे, तो पढ़ाई के साथ साथ अब आप अपने सफर के बारे में बताइए कि किस तरह आपको ये प्रेरणा आई कि मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है, पुलिस डिपार्टमेंट में।
5: हाँ मुझे
4: जी
5: मुझे मेरे भाई से भी मार्गदर्शन मिला है कि आप, मैं भी एक पुलिस में हूँ, अच्छी जॉब है, आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आजकल महिलाएं कहीं पीछे नहीं है, हर डिपार्टमेंट में महिला पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर भाग ले रही है, तो आप ये एक जनता में पुलिस की सेवा दे सकते हैं।
4: जी तो फिर आपका विचार हुआ कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए जी। तो आपको जब पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई के साथ साथ कभी आपको ऐसा लगता था कि मुझे कुछ हटके करना है?
5: नहीं, पहले तो मुझे यूं लगता था कि मैं एक लड़की हूँ, मैं क्या जॉब करूँगी। जैसे लड़के होंगे तो वो जॉब करेंगे, महिला तो घर में ही रहती है।
4: तो आपके आसपास माहौल ऐसा था, इस तरह के आपके अंदर विचार आते थे?
5: जैसे लड़कियां कम ही पढ़ती थी, जैसे मैंने 11th 12th रानीवाड़ा से की थी, तो हमारे गांव से रानीवाड़ा में मतलब 10th तक की लड़कियां स्कूल में पढ़ के पढ़ाई छोड़ देती थी, क्योंकि बाहर भेजने में परिवार वाले भी घबराते थे। तो मेरे साथ में और 4-5 लड़कियां थी, हम 4-5 लड़कियां सुबह जाते और वापस अप डाउन करते थे उस टाइम आना जाना, तो लोग भी यूं कहते इनकी लड़कियां बाहर पढ़ती है, यूं है। तो भी घर वालों को हमने यही कहा कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, एक दिन आपका नाम रोशन करेंगे।
4: आपका भाई का सपोर्ट था, आपके माता पिता का भी था सपोर्ट?
5: जी, मेरे मम्मी पापा का भी मेरे पे बहुत सपोर्ट था, और भी मेरे परिवारजन में मेरे जैसे मेरे मामा जी का लड़का भी अभी SP है, उनका भी सपोर्ट था कि मेरी मम्मी को बोलते थे कि बुआ जी आप सुंदर को तो आपको जॉब लगाना ही पड़ेगा, ये पढ़ाई कर रही है, तो उनका भी सपोर्ट था, पूरे परिवार का सपोर्ट था मेरे साथ।
4: जी जी, तो इस तरह आपने ग्रेजुएशन किया।
5: जी,
4: ग्रेजुएशन के बाद आपने कंपटीशन फाइट किया।
5: जी,
4: तो इस डिपार्टमेंट में आने के लिए कौन सा कंपटीशन फाइट करना होता है?
5: ये तो पुलिस का ही होता है।
4: जी
5: जी,
4: अच्छा,
5: पुलिस का अपन फॉर्म अप्लाई करते हैं, फिर इसमें रिटर्न पास करना होता है पुलिस के फॉर्म में, तो वही मैंने दर्पण गाइड लाके पढ़ाई की थी, उससे फिर मुझे सफलता मिली।
4: जी जी, इसमें हाइट हेल्थ सब देखी जाती है?
5: हाइट हेल्थ वेट सारा देखा जाता है, लॉन्ग जंप होता है, उसमें दौड़ होती है, हमारे टाइम में 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ होती थी, और अभी है जो 35 मिनट में, लड़कियों के लिए 35 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ होती है।
4: अच्छा, अगर 35 किलोमीटर में आप 5 किलोमीटर दौड़ नहीं की तो आप आउट?
5: आउट।
4: अच्छा
5: जी,
4: तो हो जाती है लड़कियां कर लेती?
5: हाँ, करती है, आती है, बहुत सारी लड़कियां आई हैं।
4: अच्छा, तो आपने भी इस तरह?
5: हाँ, जब हम 2006 में भर्ती हुए थे उस टाइम हमारे टाइम में 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ करना अनिवार्य था।
4: अच्छा
5: जी,
4: तो उसके लिए आपने पहले प्रैक्टिस किया, डायरेक्ट आप मैदान में उतर गए?
5: नहीं, मैंने प्रैक्टिस की थी, मेरा घर जो रोड है उस पे ही था, तो मैं सुबह जल्दी उठ के रोड पे दौड़ करती थी, प्रैक्टिस करती थी, गोला फेंकती थी, लॉन्ग जंप भी करती थी, तो ये सारा पहले प्रैक्टिस करना पड़ता था।
4: जी, तो आपके मतलब अड़ोस पड़ोस है, आपके घर वाले, ऐसा तो नहीं लगता कि अरे ये सुबह उठ करके क्या कर रही है पता नहीं?
5: हाँ, उनको पता था, मेरे जैसे चाचा के घर पे उनको, परिवार वालों को तो सबको पता था, लेकिन जैसे रोड पे दौड़ते तो गाड़ियां वाड़ियां निकलती, तो वो भी सोचते थे कि ये लड़की ऐसे क्यों दौड़ रही है।
4: जी जी, और जैसे कि आपने बताया कि 4-5 लड़कियां आपके साथ में पढ़ाई करती थी और आप सभी अप डाउन करते थे, तो जो आपकी फ्रेंड्स थी 4-5, वो भी कुछ, उन्होंने भी कुछ किया या फिर वो हाउसवाइफ?
5: हाँ, किया, कई मेरे साथ पुलिस में भी है और कई नर्सिंग में है, किसी के प्राइवेट जॉब है, सब अपने पैरों पे खड़ी हुई है।
4: अच्छा, बहुत बढ़िया, जिन्होंने पढ़ाई की
5: जी
4: वो
5: आत्मनिर्भर बने।
4: जी जी, तो आपके मम्मी हाउसवाइफ थे या कुछ काम?
5: नहीं, मेरे मम्मी हाउसवाइफ ही है।
4: फिर भी वो मोटिवेट करते थे आपको?
5: मोटिवेट करते थे।
4: और इतना घर का आप काम करते थे, तो घर के काम के साथ साथ आप कैसे समय निकाल पाते हैं?
5: देखो, काम जैसे सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना, फिर जैसे मम्मी उठ जाती थी तो मम्मी के साथ में जैसे गाय भैंसों का, मम्मी दूध निकालने जाती तो उनकी हेल्प करती थी मैं, और घर पे जैसे चाय बनाना, दूध गर्म करना, खाना बनाना, झाड़ू वगैरह सारा निकालने के लिए मैं पूरा मम्मी का हेल्प करती थी।
4: जी जी, जी। चलिए, वो कहते हैं ना कि पढ़ाई में वही होशियार होते जो ऑलराउंडर हो।
5: जी, और जो भी कार्य मिले करो। खेती बाड़ी भी करते थे, तो उसमें भी पानी पिलाना करना, जैसे गेहूं काटना है, बाजरी काटनी है, उसको वापस तोड़ना करना, वो भी उसमें भी मैं हाथ बंटाती थी।
4: अच्छा
5: जी,
4: मतलब खेती का अनुभव आपको बहुत ही गहरा है। और गाय भैंस दोहना ये भी आपका अनुभव है, और अभी आप इस लाइन में है।
5: जी,
4: तो जैसे आपने कंपटीशन फाइट किया, उसमें भी टफ कंपटीशन रहा होगा, बहुत सारे विद्यार्थी बैठे होंगे उसमें से चयन होना?
5: जी, बहुत सारे बैठे, उसमें मेरिट रहती है, जैसे 100 नंबर का पेपर होता है तो उसमें से इतने मार्क्स आने जरूरी होते हैं।
4: जी जी, और वापिस उसमें से भी जैसे जनरल वाले तो कट जाते हैं, एक लिमिटेशन होती ना
5: जी,
4: तो आपका नंबर मतलब रैंक कौन सा बना आपका फिर?
5: नहीं, मेरा रैंक तो 75 पे बना था।
4: अच्छा जी जी जी, और बहुत सारे बच्चे बैठे
5: होंगे? बहुत सारे बच्चे बैठे थे।
4: तो जब आप क्लियर हुए तब आपको एक लग गया कि बस अब मुझे सर्विस करने से कोई नहीं रोक सकता?
5: जी, अभी मुझे कोई नहीं रोक सकता।
4: तो जैसे ही आपका रिजल्ट आया होगा तो आपके घर में किस तरह का उस समय माहौल रहा होगा?
5: नहीं, बहुत अच्छा लगा उस टाइम, जैसे वो अभी तो फोन पे भी लिंक में आ जाता कि अभी रिजल्ट घोषित होने वाला है सारा, उस टाइम हमारे घर पे लैंड लाइन था, तो मेरे भैया ने फोन किया था, तो मेरे पापा ने फोन पे बात की, तो बोले सुंदर सिलेक्ट हो गई है पुलिस में, तो बहुत खुशी हुई घर वालों ने, पापा ने भी मुंह मीठा कराया, मिठाई मंगवाई घर पे, और बहुत सब बहुत खुश हुए थे।
4: जी जी जी, उसके बाद आपने ये सारे जो प्रोसेस है वो पूरे किए, जैसे कि आप बता रहे थे कि लॉन्ग जंप ये सब, और फिर आप फिजिकल टेस्ट में भी आप पास हो गए।
5: फिजिकल टेस्ट में भी पास हो गए, फिर इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू भी हो गया, उस सब फाइट कर दिए थे फिर।
4: अच्छा, इंटरव्यू में भी आप सेलेक्ट हो गए। तो फिर आपने जॉब कब की?
5: जॉब 2006 में, अप्रैल 2006 को हमने पुलिस लाइन सिरोही में आमद करवाई थी।
4: क्या बात है, अप्रैल महीना ही चल रहा है
5: जी, हाँ,
4: अभी आने ही वाला है, मार्च खत्म होने वाला है, तो आपका तो बर्थडे आ रहा है।
5: बर्थडे आ रहा है और
4: सर्विस का
5: 30 अप्रैल को मुझे 20 इयर्स पूरे हो जाएंगे सेवा देते हुए।
4: 20 इयर्स पूरे हो जाएंगे,
5: कंप्लीट हो जाएंगे।
4: क्या बात है, तो अभी एज आपकी क्या होगी?
5: मेरी 38। मैं 18 साल की थी तब मेरी जॉब लग गई थी 18.5 साल में।
4: तो आप तो उस समय सबसे कम एज वाले रहे होंगे।
5: हाँ जी, हाँ जी।
4: तो सभी को घर महसूस हुआ होगा कि देखो इतनी कम एज में आप इस डिपार्टमेंट
5: में। मेरे गांव में मैं पुलिस में, मैं ही एक फर्स्ट लड़की थी जो पुलिस डिपार्टमेंट में एक पद पे तैनात
4: जी। तो गांव वालों ने तो आपका जमकर स्वागत भी किया होगा।
5: जी बिल्कुल,
4: क्योंकि गाँव के लोग तो बहुत इमोशनल होते हैं
5: जी,
4: और जब इस तरह गाँव की बेटी जब पुलिस विभाग में जाती है तो घर में तो महसूस होता ही है। तो इस तरह आपने जॉब शुरू की
5: जी।
4: फिर आपके कितने समय बाद शादी हुई?
5: मेरी देखो सगाई तो पहले हो चुकी थी, हमारे बाल विवाह होता था।
4: अच्छा, हाँ, तो आपके बाल विवाह कितने साल के थे और आपके एंगेजमेंट हो गई?
5: मैं 10-12 साल की थी तब मेरी सगाई हो गई थी।
4: अच्छा।
5: मेरी सिस्टर बड़ी थी तो उनके साथ साथ में हमारा भी ब्याह करवा दिया था।
4: ऐसा बहुत होता है राजस्थान में
5: जी।
4: तो फिर जिनके साथ सगाई हुई उन्हीं के साथ आपकी शादी हुई?
5: हाँ जी, उन्हीं के साथ शादी हुई।
4: अच्छा, तो वो क्या, आपके हस्बैंड क्या?
5: मेरे हस्बैंड के प्राइवेट जॉब है जो मेरे साथ में ही रहते हैं इधर ही है अभी।
4: अच्छा, आबू में।
5: और मेरा ससुराल मेरे गांव में ही है
4: जी।
5: जी, और फिफ्थ तक तो हम साथ में ही पढ़े थे, गांव में एक ही स्कूल होती थी बड़ी
4: जी।
5: तो वो भी स्कूल आते थे और मैं भी जाती थी।
4: तो जब आपको ऐसे जॉब लग गई और ससुराल वालों को भी पता चला होगा कि हमारे बहू को जॉब लग गई, तो उनको फिर क्या ऐसा तो नहीं लगा कि अब पता नहीं है सगाई रखेंगे या नहीं रखेंगे?
5: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हुआ तो भी वो अभी तो हमें नहीं बताएंगे। अच्छा लगा था उनको भी कि भाई चलो अपने पैरों पे खड़ी हो गई बहू।
4: जी जी जी। और पहले तो क्या है, जो वचन दे दिया वो दे दिया, जबान की वैल्यू रहती थी। तो आपको ऐसा तो नहीं लगा कि अरे मेरे हस्बैंड तो अभी जॉब लगे नहीं और मेरी जॉब लग गई, आपको अंदर से?
5: नहीं, मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लगा था, पर यूं लगा था कि भाई इनकी भी गवर्नमेंट जॉब होती तो अच्छा रहता, लेकिन देखो अपने नसीब की बात होती है, क्या पता मेरे पति के लिए ही मेरी जॉब लगी हो उनके नसीब से।
4: पॉजिटिव भी हम ले सकते हैं।
5: जी
4: जी जी। तो इस तरह आपने बहुत ही अच्छा सकारात्मक तरीके से सोचा है, तो बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आप 18-18 की एज में आप जॉब लग गए, और कहते ना कि देखिए पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, पुरुषों के साथ काम करना इसका मतलब लड़कियों के लिए थोड़ा चैलेंजेस रहता है। तो आपके साथ भी ऐसा चैलेंज रहा कि कभी किसी ने आपको गलत नजर से भी देखा हो, कभी आपको कुछ गलत बात भी कही हो?
5: पुलिस में आने के बाद पुलिस अपना एक परिवार हो जाता है, पुरुष और महिला हम हमारे जैसे सेवा देते हुए, रात को भी कहीं ऐसे घटना हो जाए तो रात को भी बाहर निकलना पड़ता है। हम महिला अकेली है और जेंट्स के साथ में भी जाते तो भी हमें वैसा कोई भी ऐसे मतलब अनकंफर्टेबल हम नहीं समझते हैं, सब एक परिवार की तरह रहते हैं। और एक महिला होने के नाते स्टाफ वाले भी हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं।
4: बहुत बढ़िया
5: जी,
4: ऐसा ही होना चाहिए
5: जी।
4: तो आपके फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ हुई थी उस समय जब पहली बार आप जॉब लगे तो?
5: जी, एक साल की तो हमारे ट्रेनिंग हुई थी जोधपुर में, हुई थी आरपीटी ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर में एक साल। वहाँ पे जैसे पुलिस के बारे में अनुशासन है, जैसे फिजिकल फिट कैसे रहते हैं, पीटी परेड वगैरह, पुलिस के कैसे रैंक है, क्या पद है। पहले तो ऐसे लगता था जैसे घर पे थे तब एक कांस्टेबल आता तो भी पुलिस लगता था, और एक एसपी साहब आते तो भी पुलिस ही लगता था। अब उनकी रैंक वाइज भी कौन है, सब इंस्पेक्टर है, कौन डीवाई एसपी है, कौन एसपी है, कौन आईजी है, उनके बारे में जानकारी हुई।
4: जी जी जी। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ, आबू में ही आए सीधे या
5: नहीं,
4: कहीं दूसरी जगह?
5: मेरी फर्स्ट पोस्टिंग रेवदर में रही थी।
4: अच्छा
5: जी, पुलिस थाना रेवदर में 2000 जुलाई 2008 से।
4: अच्छा वहाँ पर रहे, फिर उसके बाद आपके आबू में ट्रांसफर हुआ।
5: जुलाई 2008 से मेरी 2016 तक पुलिस थाना रेवदर में रही थी और 16 से 2022 एंड तक मेरी सीओ कार्यालय रेवदर में रही थी जी। और 2 जनवरी 2023 में मैं आबू रोड पुलिस थाना आबू रोड सदर थाने में आई थी।
4: अच्छा तब से आप इधर है।
5: अब इधर है।
4: तो सुंदर जी चलिए आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन समय हो गया फिर से एक गीत सुनने का, तो एक गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। सुंदर जी के अनुभव बहुत ही सुंदर है और हम और भी इनके अनुभव सुनेंगे। आप चाहे तो फोन कॉल्स भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सुनते एक गीत, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नारी है तो जीवन में उजियारा है, नारी है तो घर आंगन लगता है प्यारा है। जिस घर में नारी का सम्मान रहे, जिस घर में नारी का सम्मान रहे, वो धरती पर स्वर्ग से न्यारा है, वो धरती पर स्वर्ग से न्यारा है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में सुंदर जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुंदर जी के काफ़ी अनुभव हमने सुने हैं और इसी कड़ी में हम और भी आगे बढ़ेंगे। तो सुंदर जी, जैसे कि आप बता रहे थे कि इस तरह फाइट करके आप पुलिस डिपार्टमेंट पे आए, फर्स्ट पोस्टिंग आपकी रेवदर में रही, फिर आप धीरे धीरे, ये तीसरी बार, मतलब बीच में आप और कहीं थे?
1: हाँ, सीओ कार्यालय रेवदर में थी।
0: अच्छा, फिर आप आबू में आए हैं।
1: आबू में आए।
0: और जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट में तो है ही है, लेकिन आप कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, मतलब ये भी कोई, इसका पहले तो आप अर्थ बताइए कि ये क्या चीज़ है और इसमें आप कार्यरत है तो आप किस तरह का कार्य संभालती है?
1: जी, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सरकार ने दिसंबर 2024 में महिला व बच्चों की सुरक्षा के लिए गठित की थी, जो ऑल राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये टीम बनाई हुई है। हर जिले में है, अपने सिरोही जिले में 4 महिला कांस्टेबल सिरोही जिले में है, और 4 आबू रोड में है, 2 माउंट में है, 2 शिवगंज में है।
0: अच्छा, तो आपका कार्य है महिलाओं के साथ किस तरह घर परिवार में कोई शोषण तो नहीं हो रहा है, मानसिक शारीरिक आर्थिक यौन हिंसा, तो आप कैसे पता लगाते हैं? क्या महिलाएं आपको सामने चल करके फोन करते हैं या फिर आप खुद घर घर में जाते हैं?
1: नहीं, जैसे हमारा कार्य ये होता है कि बच्चों व महिलाओं की सुरक्षा, हम स्कूल में जाते हैं, बच्चों से रूबरू मिलते हैं, बच्चों के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं हो, उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हो, कई उनके जैसे फ्रेंडशिप बनाने के लिए उनको परेशान करते हो, और हमारे जैसे कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के पैम्पलेट छपाए हुए हैं, जिसमें एक तो सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है राजकोप सिटीजन ऐप, और जो जहाँ भी ज़्यादा महिला भीड़ भाड़ होती है उनको, महिलाओं को ऐप डाउनलोड करवाते हैं। राजकोप सिटीजन ऐप का उसकी उपयोगिता मैं बताती हूँ।
0: जी, आप ऐप भी बता दीजिए, हमारे श्रोता बंधु भी सुन रहे होंगे तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो
1: राजकोप सिटीजन ऐप अपन प्ले स्टोर से जाके उसको इंस्टॉल करेंगे तो राजकोप सिटीजन ऐप, उस पर पुलिस का लोगो आता है, उसको अपन इंस्टॉल करने के बाद में उसमें अपने मोबाइल नंबर डालेंगे तो 6 अंकों का OTP आता है। ये एक गवर्नमेंट का ऐप है जो OTP आता है उसमें, बाकी अपन कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें OTP नहीं मांगते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में उसमें अपन भाषा जो भी लेनी होती है लैंग्वेज चॉइस करते हैं, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद में अपने को इमरजेंसी हेल्प या नॉन इमरजेंसी हेल्प दोनों तरह से अपन हेल्प ले सकते हैं। फिर उसमें अपनी लोकेशन चालू रखनी होती है।
0: अच्छा।
1: हाँ, जैसे ही अपन लोकेशन को प्रेस करेंगे तो अपने पास ऑप्शन आ जाएगा कंप्लेन करने का, उसमें अपन लिखित में टाइपिंग करके भी कंप्लेन कर सकते हैं, और उसमें कैमरा है तो अपन फोटो भी खींच के भेज सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं और वॉइस से भी भेज सकते हैं। जैसे लोकेशन का मतलब, जैसे अपन यहाँ बैठे हैं, अपने साथ कुछ घटना हो रही, तो अपन जैसे ही उस कंप्लेन को सबमिट करेंगे तो उसमें अपना मोबाइल नंबर और लोकेशन पूरी डिटेल आ जाती है, तो ये कंप्लेंट सीधा जयपुर जाती है, कंट्रोल रूम जयपुर। जयपुर से वो लोकेशन देखते हैं कि ये लोकेशन कौन सी जगह का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, कौन से थाने के अंतर्गत आता है, तो उस थाना देख के, अपनी लोकेशन देख के, जैसे ही उस थाने के अंतर्गत आएगा, जैसे अपन यहाँ बैठे तो आबू रोड सदर थाना लगता है, तो आबू रोड सदर थाने वाले स्टाफ को कॉल करेंगे और तुरंत 5 मिनट के अंदर ही पुलिस को आना ही पड़ता है। ये ऐप बहुत उपयोगिता है, इसको हर महिलाओं को अपने मोबाइल में डाउन करके रखना चाहिए,
0: चाहे रात का समय हो, दिन का समय, किसी भी समय आपके साथ

0: जी
1: और काफी वो सेवा कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में है और जो महिलाओं की सेवा भी करते हैं, महिलाओं का एक रक्षक भी है
0: जी।
1: तो कई सारी में सेवा कर रहे हैं तो हमारे भविष्य सुंदर को भी नमस्ते हैं।
2: नमस्ते।
1: और बहुत अच्छी सेवाएं आप कर रहे हैं, सेवा की महिलाओं की सुरक्षा, लोगों को कोई कोई प्रॉब्लम हो तो आप सॉल्व कर देते हो और काफी जानकारी भी देते हो, कई सारी बातें से आप बता रहे हैं। तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जो आप कोई महिला कई कई जगह पे कोई प्रॉब्लम होता है और महिलाएं सुरक्षित नहीं होती है वहाँ पहुंच जाते हैं तुरंत, तो ये भी एक अच्छी सेवा कर रहा है। हमारी तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे कार्य करते रहे और देश की सेवा करते रहे, लोगों की सेवा करते रहे, महिलाओं की सेवा करते रहे। कहीं ना कहीं महिलाओं को आप बहुत उपयोगी बने हैं, तो ये भी अच्छी बात है।
2: थैंक यू।
0: आपको कुछ पूछना है क्या? कुछ हाँ जी पूछ सकते हैं आप।
1: हाँ वो तो मैं सुन रहा था, महिलाएं की जो बात आपने बताई, क्यों अभी तो मैं थोड़ा बाहर हूँ, सफर में हूँ, फिर भी कार्यक्रम बैठे बैठे सुन रहा हूँ, बस में बैठे बैठे।
0: अच्छा।
1: तो हाँ इसलिए तो फिर भी मैं कार्यक्रम सुना तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे और हमारे सुंदर जी से बात कर लूँ।
0: चलिए बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई, आप अक्सर जुड़ते ही है, हम भी सोच रहे थे कि आप जरूर जुड़ेंगे।
1: क्योंकि मैं जा रहा हूँ बाहर, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम रहता है बात करने
0: जी जी सफर में तो रहता ही है, वो सभी जानते हैं जी।
1: ठीक है
0: जी, नमस्ते, आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। अगर आपको भी कुछ पूछना हो तो आप जुड़ सकते हैं रेडियो मधुबन से, नंबर है 94-14-15-14-15। और सुंदर जी हमारे साथ बने हुए हैं, सुंदर जी के बहुत ही अच्छे अनुभव हम सुन रहे हैं। तो मधु जी आप हाँ बता रहे, सुंदर जी आप बता रहे थे कि इस तरह यूनिट बनाई गई है, तो ये महिलाओं की है या भाई लोगों की भी है, पुरुषों की भी है?
2: नहीं, महिलाओं की भी है और पुरुषों की भी है।
0: अच्छा।
2: जैसे पुरुषों को भी समस्या होती है तो भी उनका हम उनकी समस्या को सुनते हैं, उनकी समस्या का निराकरण करते हैं।
0: अच्छा, वो आप लोग ही संभालते हैं?
2: जी हम भी संभालते हैं। और जैसे हमारे लेवल की नहीं है और कोई गंभीर वाला मामला है तो थाना अधिकारी को भी हम उनसे मिलवाते हैं, उनकी बात सुनते हैं, जो भी कार्रवाई होती है उनके अनुसार रिपोर्ट दर्ज की जाती है।
0: अच्छा, तो इस तरह का कभी केस आया कि अचानक आपको फोन आया हो महिला के साथ किसी तरह का शोषण हो रहा हो, ऐसा होता है?
2: जी हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं, हमारे जैसे मैंने बताया कि हमारे मोबाइल नंबर और पैम्पलेट दिए हुए हैं, उसके एक ऐप जो अभी ऐप बताया उसके साथ में एक महिला गरिमा हेल्प नंबर भी है 1090 1090। जैसे कहीं भी नेट का इशू होता है तो आप 1090 या अपने बड़े वाला मोबाइल न हो की पेड वाला मोबाइल हो तो उसके थ्रू भी आप 1090 से कंप्लेन करके आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हमारे साथ ऐसे तो कॉल तो आते ही रहते हैं, दिन में दो चार फोन तो आ ही जाते हैं।
0: जी जी जी,
2: कहीं भी बैठे रहो तो
0: हर कोई दुखी है, हर किसी के साथ देखते हैं कि अधिकांश शोषण हो ही रहा है किसी भी प्रकार का, कोई सुरक्षित नहीं है, तो फिर आप पहुंच जाते हैं, जैसे आपको फोन आता है पहुंचने की कोशिश करते
2: हैं। हम जितना जल्दी हो पहुंचने की कोशिश करते हैं महिलाओं के साथ। देखो यहाँ पे आबू रोड में थोड़ा आदिवासी एरिया है
0: जी।
2: तो जैसे आदिवासी में क्या होता है, लोग कहीं भी छेड़छाड़ की घटनाएं कर देते हैं, दारू पी के परेशान करते हैं, यहाँ लड़कियों का पीछा करते हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, ऐसी घटनाएं खूब सारी होती रहती है। तो महिलाओं की हर बात जल्दी से सुन के उनके न कि उनको थाने बुलाते हैं, बिल्कुल उनके घर पे जाके आपस में घरेलू बात भी होती है तो परिवार वालों को बुला के बिठा के उनकी समझाइश करते हैं, तो महिलाओं को मतलब न्याय की बात करके उनको न्याय मिलता भी है और हमारी पूरी सपोर्ट रहती है, कोई कोई भी महिलाएं परेशान नहीं हो।
0: जैसे आपने बताया है कि आबू में आदिवासी एरिया ज्यादा है
2: जी।
0: तो आपको भी कहीं ना कहीं तो एक डर तो अंदर रहता होगा, क्योंकि धमकी देते हैं ना ये भी, अगर आप महिलाओं का सपोर्ट करेंगे तो। पर पहले हम अपने श्रोता बंधु से बात करना चाहेंगे। हेलो
3: हेलो उषा बहन जी, सुप्रभात, नमस्कार।
0: हाँ जी सुप्रभात, नमस्कार। कंचन भाई कैसे हो आप?
1: बट

0: नमस्ते नमस्ते ओम शांति।
1: आप अपना नाम भी बता दीजिए, आपका नाम भूल गए वो।
0: मेरा नाम सुंदर जी है।
2: हाँ सुंदर जी, सुंदर बस चंदी बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। उसी दिन जो महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था उसी दिन आप थे शायद।
0: जी बिल्कुल थे,
1: पूरी टीम थी।
2: हाँ मैंने देखा था मोबाइल में जी। और आपने बाद में जो बताई बातें बताई जो महिलाओं के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छी लगी बेटी। मुझे मैंने रिकॉर्डिंग भी कर लिया था वो सब। और क्या है कि महिलाओं को तो खूब जरूरी है बहन जी। अभी भी जो आदिवासी की बात थी ना, तो हम आदिवासी एरिया में भी है, अभी खेत में है, हमारा भागीदार आदिवासी वनवासी है
0: जी।
2: तो यहाँ ऐसी बातें बन जाती है बहन, ठीक है। आपने जो बताया ना कि ऐसा बहुत होता है, लेकिन क्या है कि महिलाओं का संगठन है यहाँ आदिवासी में
0: जी।
2: तो एक बहन को ऐसा होता है तो सभी बहने ये इकट्ठे हो जो होके इसको बोलते हैं और ये करते हैं, डांटते है।
1: बहुत बढ़िया, एकता तो होनी चाहिए, महिलाओं का संगठन होना बहुत जरूरी है।
2: हमारे अपने नहीं है बहन जी, हमारा जो
1: जी आदिवासी लोगों के जी,
2: एक दूसरी बहन की ईर्ष्या करते हैं
1: जी।
2: तो ठीक हुआ है, ऐसा होना ही चाहिए था,
1: सही बात बोलते है।
2: लेकिन जो ये एरिया है ना वनवासी आदिवासी का, ये तो हमने देखते है, पहले तो चढ़ोतरा होता
1: जी।
2: अब बंद कर दिया है।
1: अच्छा,
2: लेकिन कोई ऐसा मर्डर हो जाता था महिला का, ऐसा देखते थे ना, तो ट्रैक्टर भर भर के महिलाएं कुहाड़ी धारिया ऐसा लेके वहाँ जाते थे गांव में, और इसका घर तो पूरा नष्ट कर देते थे।
1: अच्छा,
2: ये करते थे। अब नहीं ऐसा होता, अब तो एक दो बार पुलिस ने सबको गिरफ्तार करके पुरुषों को अंदर डाल दिया था, और ऐसा हुआ था एक दो का मर्डर भी वहाँ हो गया था डर के मारे जेल में। तो उन्होंने सभी बंद कर दिया कि भाई शांति से रहना, ऐसा कोई करना नहीं, अब वरना हम साथ नहीं देंगे। तो ये चढ़ोतरा तो अब बंद हो गया।
1: अच्छा, ओके।
2: लेकिन पूरा संगठन है इन महिलाओं का
1: जी,
2: जो हमारे नहीं होता। क्या है जी?
0: मैं कहना चाहूंगी कि चढ़ोतरा अभी पूरी तरह से तो बंद नहीं हुआ है, लेकिन कहीं कहीं होता भी है। अभी दो चार महीने पहले भी हुआ था गिरवर साइड में जी,
2: उस तरफ हुआ होगा, लेकिन हमारे तो यहाँ सभी लड़की लड़के लड़के को लड़कियों को पढ़ाते हैं ना
0: जी जी,
2: तो ये सब अपना घर का ख्याल रखते हैं
0: जी जी।
2: क्या है कि भाई इसमें कोई ये नहीं है
0: जी जी जी,
2: ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। और सबको बोलते हैं कि भाई शांति से रहना, ऐसी वैसी हरकत नहीं करना है, वरना हम साथ नहीं देंगे। पहले तो पूरा साथ देते थे
0: जी,
2: अब अपना घर बिगाड़ के कौन जाए बेटी जेल में
0: जी।
2: तो ये सर समझदार थोड़े थोड़े हाथों हो गए हैं, ठीक है
1: जी, बहुत बढ़िया।
2: ऐसे ऐसे एरिया में थोड़ा होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो सदंतर बंद कर दिया है।
0: नहीं, बिल्कुल बढ़िया किया ऐसा, जैसे ज्यादा शिक्षा है तो लोग जागरूक भी हो रहे हैं, तो ये सारा सिस्टम बंद होने वाला ही है।
2: हाँ,
0: पर थोड़ा इधर टाइम लगेगा।
2: आम का पेड़ काट लेते थे, कोई इंजन कुएं पे रखा होता तो ये अंदर कुएं में डाल देते थे उस उठा के, ऐसा बहुत नुकसान करते थे लोग। एक दो बार पुलिस ने ये ऐसा किया तो ये इसका परिणाम अच्छा आया। जब कोई ऐसी बातें तो नहीं बनती, और कोई होती है तो आपस में ये कर देते हैं कि भाई
1: बातचीत करके निपटा देते हैं जी।
2: हाँ, ये इसको लड़की दे दो, ये ऐसा है तो लड़की की क्या इच्छा है बोलो, तो ऐसा करके इसको दे देते हैं।
1: ठीक है कंचन भाई, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत आभार आपका।
2: जी खेत में हूँ अभी बहन जी, तो मैंने सुरेश भाई की बात सुनी तो मैंने सोचा कि भाई भी थोड़ी बात
1: जी जी बहुत बढ़िया।
2: और महिलाओं को जरूरी है बहन जी, जो इसी दिन आपने बात की थी ना
1: जी,
2: हमारे भी एक क्या हुआ था, मैं बात बताऊँ
1: कंचन भाई आपकी बात हम क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत कम है और बहन जी की बहुत सारी बातें हैं तो हम आपकी बात कल आशियाना में सुनेंगे ठीक है
2: जी।
1: बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से और अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में सुंदर जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुंदर जी के काफ़ी अनुभव हम सभी ने सुने हैं, बहुत ही सुंदर आपने अपने बातें बताई है। चलिए हम इधर उधर की बात न करते हुए सीधे ट्रैक पर चलते हैं। सुंदर जी, जैसे कि आप बता रहे थे कि आप महिलाओं की भी इस तरह हेल्प करते थे, और इस तरह एक घटना आपने कुछ सुनानी चाहिए लेकिन हमारे श्रोता बंधु का फोन आ गया तो उनसे बात करने लग गए।
1: जी, जैसे कई फोन आते तो हम जैसे निकलते हैं, कई लड़कियों की शिकायत होती है, महिलाओं की शिकायत होती है, तो एक दो किस्से हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी।
0: जी जी, लेकिन शायद हमारे श्रोता बंधु बात करना चाहते हैं और आपकी आवाज़ नहीं पहुंची। हाँ जी नमस्ते।
2: भूरा राम बोल रहा हूँ से मैं।
0: हाँ भूरा राम जी, राम राम, कैसे हो?
2: राम राम है। उषा बहन जी और सभी मनोबन भाइयों को और सुंदर बहन जी को भी मेरा राम राम है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: समझने की बात सुंदर बहन जी ने समझाई है लोगों को, और लोगों को मालूम नहीं रहता, जो थोड़े अनपढ़ रहते तो उनको ये इतना कानून का मालूम नहीं रहता जितना सुंदर बहन जी ने बताई है। लेकिन ये जो आदिवासियों के जो रिवाज है बहुत गलत होते हैं। मेरे सामने एक घटना घटी, आपको बताऊं क्या?
0: छोटी सी हो, शॉर्ट में बताइएगा। आप और से
2: बताता हूँ कि कुत्ता बैठा है अपना दरवाजे पे, कोई दूसरा
0: जी,
2: और आदिवासी की औरत वो सांस लेने आई, जो सांस लेने के लिए आई
1: जी,
2: तो उसको कुत्ता काट लिया। अभी वो कुत्ता बाहर का था लेकिन वो काट लिया, लेकिन वो नहीं माने कि कुत्ता तुम्हारे से, वो घर वाले का।
0: अरे कुत्ता काट लिया, इसमें क्या करेंगे? और घर वाले थोड़े ना कुत्ता पाल रखा था क्या उन्होंने?
2: नहीं पाला नहीं था, वो बाहर का बैठा था, लेकिन वो आदिवासियों के मतलब एक रिवाज है कि कुछ भी जिसका वो बिचारे के उनको माने नहीं, और वो तो एक थे दो चार बने, वो तो ज्यादा हो गए। मैं उनसे बिचारे 50,000 की मांगनी की तो देना पड़ा, बोलो कोई जाम वाला भी नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकते।
0: तो अच्छा, इसमें
2: परंपरा है, तो सुंदर बहन जी बता अच्छा बना रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो घटना होती है तो उसके अंकुश रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बेचारे लोग
1: हाँ ऐसा ही है आदिवासी में, जैसे जिसके घर पे कोई घटना हो गई तो जुर्माना उनसे ही वसूल करना पड़ता है।
0: तो सुंदर जी, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती?
1: पुलिस तो क्या करे, राजीनामा करा सकती है दोनों पार्टियों को बुला के, तो कंप्लेन वगैरह भी की थी क्या थाने में?
0: थाने में कंप्लेन की थी भूरा राम जी?
2: नहीं नहीं, थाने में तो वो क्या करे बेचारे, अभी उनको जो है तो पैसे देने के बाद में क्या करेंगे?
0: नहीं तो पैसे देने के पहले कंप्लेन करनी चाहिए ना, रिपोर्ट लिखानी चाहिए
1: जी।
2: पर वो तो है ना, ऐसा है कि फिर वो लोग ऐसे डरते के नजदीक के रहते तो फिर बाद में वो थाने में जाके तो फिर उनका तो विश्वास खुद
0: अच्छा बदला ले लेते हैं।
2: कभी भी आके ये मतलब
0: जी जी जी, लोग इस तरह डरते हैं,
2: मतलब लोगों में डर है, ये मतलब कहने का मतलब, एक दफे ऐसा पुलिस का ये उजागर है तो डर मिट जाता है, मेरा बोलने का मतलब
0: जी जी, मतलब कुत्ता काटता है तो भी वो दोष जिसके घर के बाहर काटते हैं उनके ऊपर आ जाता है, ये तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया, बहुत ज्यादा हो गया।
2: हाँ कुत्ता तेरे घर पर बैठा मतलब तेरा मतलब जान बुझ गया।
1: हाँ जी
0: हाँ जी,
2: ऐसी ऐसी घटना होती है, मतलब जो मतलब मतलब ही नहीं होता है।
0: तो ये पैसे लूटने का धंधा है इसका मतलब?
2: हाँ बस, तो और इसमें ऐसी
0: जी
2: झूठा भी इंजाम देख के बोले तो आगे वाले को ये कर देते और कर, लेकिन उनके समाज में एकता है मतलब एक से तो
1: नहीं, इसमें
2: तो
1: जैसे
2: फिर वो लोग डर जाते हैं आगे से।
1: इसमें जैसे इनके जाति के जैसे शिक्षित लोग है ना, उनको समाज में बैठ के ये बात करनी चाहिए कि भाई ऐसी घटना होती है तो ऐसा आरोप लगाना गलत है।
2: पर वो तो समझे तुमने, वो ऐसा मतलब ये तो क्या होता है कि थोड़ा अपने पुलिस वाले भी और सब मतलब उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसी घटना जाके बैठा के समझावे
1: जी,
2: तो थोड़ा समझे, नहीं तो ये तो अभी बहुत पुरानी रीति चलती आई है, बाप दादा ने किए थे तो उनसे डबल ये बच्चे लोग भी करते हैं, मतलब कोई कम नहीं होने के सवाल ही नहीं होता।
1: सही है, नहीं जैसे ऐसी कोई बात हो ना तो पुलिस को सूचना देना जरूरी है, बिना सूचित तो पुलिस को क्या पता चलता है, वो बात है।
2: लेकिन ऐसा बोलते बेचारा सादा सादा आदमी डर जाते हैं।
1: हाँ डर की वजह से पुलिस के थाने में जाने से ही लोग डरते हैं कि कुछ और घटना नहीं कर दे हमारे साथ में।
2: मतलब वहाँ तो कर देंगे, लेकिन दूसरे के बाद में ये थोड़े थोड़े कभी भी मतलब अटक कर सकती है जाता ऐसा है
0: जी। जी जी चलिए, बहुत बहुत आभार भूरा राम जी। तो ये थे भूरा राम जी ओर से, देखे कैसी घटनाएं घटती है, आश्चर्य होता है। लेकिन आज हमारी इन बातों में ही समय चला गया सुंदर जी, अब शायद और भी हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं। चलिए ठीक है, नहीं है तो बस आपसे तो काफी कुछ अभी जानना बाकी है, सुनना बाकी है, जो हम अगली बार जरूर सुनेंगे। लेकिन कार्यक्रम के अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे विशेष करके बहनों को, और मैं तो कहूँ कि आदिवासी समाज को क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला एक पुरुष को भी कंधे से कंधे मिला के चल सकती है। महिला के बिना तो पूरा संसार अधूरा है, महिला कहीं पीछे नहीं है। हर जॉब में आप देखो, पुलिस है, हेलीकॉप्टर चलाने के लिए महिला, एरोप्लेन चलाती है, ट्रेन चलाती है, कहीं भी महिला पीछे नहीं है। महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और आदिवासी समाज की बात करूँगी तो आदिवासी समाज में शिक्षा का मतलब बहुत कमी है। अभी तो फिर भी लड़कियां हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी आ रही है, काफ़ी लोग ऐसे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हर महिला अपने परिवार से शुरू करेगी कि मैं मेरे परिवार में जैसे
0: बदलाव लाऊंगी,
1: कोई भी मेरे परिवार में नशा नहीं करेंगे
0: जी। बहुत सुंदर मैसेज दिया है आपने कि आदिवासी समाज में भी जागरूकता आ सकती है, एक नारी शिक्षित होगी तो पूरे परिवार में परिवर्तन लाएगी, और ऐसा ही करना है। तो सुंदर जी आपका बहुत बहुत आभार, आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने जीवन के सुंदर से अनुभव सभी के साथ शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आज का आपके रविवार की छुट्टी थी वो हमने ले ली पूरी
1: जी। हमारे तो छुट्टी तो रहती नहीं है, 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है।
0: जी जी जी, उसमें भी थोड़ा समय हमने ले लिया है, लेकिन हमारे श्रोता बंधु ने भी सुना है,
1: जानकारी सुनना लोगों में बहुत जरूरी है।
0: तो बहुत बहुत आभार आपका। आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में सुंदर जी वैष्णव हमारे साथ बने हुए थे। आपके जीवन के अनुभव आप सभी ने सुने हैं कि कैसे आपने पढ़ाई की, कैसे आप इस फील्ड में आए, कैसे आपने कंपटीशन फाइट किया और इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो मैं ऐसी नारी शक्ति के लिए यही कहना चाहूंगी, जब जब इतिहास ने करवट ली, हर युग में नारी आगे आई, झांसी बनकर रण में उतरी, मीरा बन भक्ति अपनाई। तो ऐसी नारी शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल कर सकते हैं, और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। हम सुंदर जी से अगले रविवार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।
3: मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप

उम्मीद की किरणों पर जब धूल की चादर जमने लगे तो उलझने आने लगती हैं। रेडियो सुनने वाले तमाम श्रोता बंधुओं को स्वर्णलता करती है आगाज। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुलदस्ता में। ऐसे उलझनों को सुलझाने के लिए आ जाती हूँ हर सप्ताह लेकर कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें मनोरम गीत, मनोरम फसाने, मनोरम दिल के भाव हम आदान प्रदान करते हैं। साथियों, आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे दिलकश तराने, दिलकश फसाने। और जब जिंदगी में उलझने आने लगती हैं, तब उम्मीद की किरणों को बुझने न दें, उन्हें हमेशा अपने साथ बनाए रखें। इन्हीं शुभ बोलों के साथ सुनते हैं, मुस्कुराते हैं और रेडियो मधुबन पर हम कायम रहेंगे 10 बजे तक सुनते हुए, मुस्कुराते हुए।

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है। वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पड़ती होगी, क्यों ना हम उसे पढ़ाएं?
2: निराशा, स्ट्रेस, वरीज, उलझने ये हमें रोकती हैं उड़ने से। मन को उड़ने से ये सारी जो बातें हैं वह उड़ने नहीं देती। मन को उड़ाने के लिए हौसला, उम्मीद, इसे अपने साथ पकड़ कर रखें और साथ रहें इस कार्यक्रम में। फ्रेंड्स, एक सादा जीवन हो, एक समस्या रहित जीवन हो, कौन नहीं चाहता? और उस जीवन को पाने के लिए हम सब उड़ते रहना चाहते हैं। उड़ने के लिए हमेशा याद रहे कि हम अपनी उम्मीद को बनाए रखें। साथ रहिएगा अंत तक और सुनते हुए मुस्कुराते हुए इन गीतों का आनंद भी लें और जीवन में खुशियों का खुराक भरते रहें। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोता हैं स्वर्णलता के साथ कार्यक्रम गुलदस्ता में।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

रोशनी की तलाश रहती है। और ऐसे में जो आशावादी होता है, जो आशा की किरणें आपकी जिंदगी में लेकर आता है, जो आशा भरी बातों से आपको मोटिवेट करता है, और बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, जो आपको रोशनी देते रहते हैं, ऐसे लोगों को कोई खोना नहीं चाहता। तो ऐसे लोग अगर आपके जिंदगी में आ रहे हों, उन्हें पहचान लें, उन्हें जाने ना दें, उन्हें दिल से अपने साथ पिरो कर रखे। यही तो कला है। अपने जो नॉर्मल वाले जीवन से जब हम थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, ऐसे में ऐसे साथी बहुत हेल्प करते हैं। और कौन हेल्प करता है, यह तो हम सब जानते ही हैं। तो रहिए स्वर्णलता के साथ और बिंदास उड़ते रहिए, उड़ाते रहिए, जीवन भर हम सब मिलकर उड़ते रहें।

ओम शांति, मैं हूँ ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

तुम्हारी इबादत ही हमारी आदत बदलती है, तुम्हारी आदत हमारी बन जाती है और तुम्ही को पुकारती है, तुम्ही को याद करती है। तुम्ही तो आशा और विश्वास की एक झोली हो, तुम्ही तो आशा और विश्वास की झोली हो, तुम हमारी जिंदगी को रोशनी में लेकर जाते हो, इसीलिए तो तुम याद आते हो, तुम याद आते हो। तो आज के प्रोग्राम में आपके लिए है उलझनों से रोशनी तक जाने के लिए कुछ ऐसे गीत जो सहारा बनकर हमारा साथ दे रही हैं शुरू से लेकर अंत तक। फ्रेंड्स, गीत भी साथ देते हैं और चुनौतियों में अपने अपनों के साथ साथ ऐसे लोग भी साथ देते हैं जिनके पास कुछ अनुभव होते हैं और वह अनुभव समय पर काम आते हैं। ये लोग हमेशा हमें नहीं मिलते, पर चुनौतियों के वक्त में अचानक मिलते हैं, वह आपको साथ देते हैं। तो ऐसे लोगों की हम कदर करें। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर जाना था और रास्ते में कोई व्यक्ति आपको सही गाइडेंस दे दिया। मान लीजिए आप स्कूल गए, किसी पेरेंट्स से बात करके आपको रोशनी मिल गई। मान लीजिए आप अस्पताल में गए, वहां किसी से बात करके आपको सही रास्ता मिल गया। तो ऐसे लोग क्या आपको याद नहीं आएंगे? क्या आपको इनकी कदर नहीं करनी चाहिए, रखनी चाहिए ना? तो बने रहिए और सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आशा, विश्वास और आस्था का स्तंभ हो आप, तात मात तुम बंधु भ्रात हो, तुम ही ज्योति प्रकाश हमारे, जिन्हें ही हम अल्लाह खुदा, नूरे खुदा, गॉडफादर कहते हैं। वह हमें हर पल दिशा दिखाते हैं, पर उनके साथ कौन होते हैं? उनके साथ वह होते हैं जिनको उन्होंने यानी परमात्मा ने हमारे साथ जोड़ा हुआ होता है। जीवन की चुनौतियों में

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: कर साहिब से प्रीत इसलिए नहीं कि वह हमें धन धान्य से भरपूर करता है, वह तो है ही, पर वह हमें यह भी सिखाता है कि जब भी विपत्ति आपत्ति आती है तब निर्भय होकर आगे बढ़ो, सामना करो। संसार नश्वर है, नश्वर संसार और दिखावटी रिश्तों के बजाय

अपने मन को उस परमात्मा परमेश्वर के प्रेम में, साहिब के प्रेम में लगाना चाहिए, पर हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। यह भी परमात्मा हमें सिखाते हैं। सिर्फ हम उसको याद करें यह तो सही है, पर उसकी याद में परमार्थ का कार्य भी करें और उसके द्वारा भेजे गए कई हम सफर, जी हाँ वह तो सबसे बड़ा हम सफर है, पर उसके द्वारा भेजे गए कई हम सफर हमारी राह देख रहे हैं, वह हमारी मदद करते हैं। तो ऐसे मदद करने वालों को भी हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं उनके प्रति, और उनके द्वारा किए गए मदद का रिटर्न कुछ भी नहीं होता सिवाय दुआओं के।

0: This is Uma Shankar Mishra, former director CBI, and you are listening to Brahma Kumari's community radio station. Radio Madhuban, keep listening, keep smiling.
1: मोहे सत डगरिया दिखा दे बैया पढ़ूं, ऐसे हम कहते हैं भगवान को, जो कि सच्चा सच्चा गुरु है। वैसे हम अपने जीवन में आसपास जब देखते हैं तो हमें लगता है कि दिखावटी रिश्ते बढ़ गए हैं, और प्रोफेशनल्स जो अपनी दक्षता से समाज में सेवा कर रहे हैं उनके प्रति भी हमारी धारणाएं कुछ आशंका से भरी हुई होती है कभी कभी। पर हम ऐसी आशंकाओं को मन से छुमंतर कर दें, हमेशा के लिए दूर कर दें। दोस्तों, कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं, भले ही वो पैसा लेते हैं, वो लेंगे ही क्योंकि वे स्किलफुल हैं, पर वो जो सेवा दे रहे हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं, वो हम कर नहीं सकते। जो कार्य वो कर रहे हैं, घृणा, भय और जो भी मन की कुरीतियां हैं उनको दूर हटाकर वो जो सेवाएं देते हैं, उन सेवाओं के बदले यह पैसा कुछ भी नहीं। जब हम ऐसी मनोस्थिति को बनाएंगे तब सच्ची सच्ची हमारी जो धारणाएं हैं, मन की जो चेतना में बैठी हुई आशंकाएं हैं, वह दूर हो सकती हैं। तो ऐसा तो करने वाला, सिखाने वाला एक भगवान ही है। उसके संग में हमारे मन की आशंकाएं दूर हो जाती हैं। बने रहिए स्वर्णलता के साथ, कार्यक्रम है गुलदस्ता।

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं।
1: मैया मोरी मैं नहीं मांगने खायो,
0: ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: प्रिय साथियों, जिनके पास टैलेंट है, स्किल्स है, जिनके पास समय आने पर दूसरों को राहत देने की ताकत है, जो इस कार्य में स्किलफुल हो जाते हैं, उनके प्रति हमारा आत्मिक भाव बहुत ही सहजता से बढ़ जाता है और ऐसी आत्माएं हमारे लिए बहुत तोहफे भी लेकर आते हैं राहत के रूप में। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोता बंधु हैं स्वर्णलता के साथ कार्यक्रम गुलदस्ता में, और अब हम आखिरी मोड़ पर आ गए हैं और इस आखिरी मोड़ पर हम आपको यही बताना चाहेंगे कि बहुत सारी ऐसी बातें जीवन में आएंगी जिसे बारीकी से जब हम ऑब्जर्व करेंगे उस प्रभु की याद में, उस प्रभु की याद में रहते हुए उसके द्वारा सिखाए गए जो भी नुस्खे हैं, जो भी ज्ञान की बातें हैं, उसको जब हम मैच करते हैं ऑब्जर्वेंट हो करके, तब हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी स्किलफुल बातें भर जाएंगी जो हमारे पास नहीं थी। दोस्तों, दूसरों से सीखने के लिए, दूसरों से समाने के लिए और उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। तो सच्चा सच्चा हम सफर प्रभु हमें दूसरे ऐसे लोगों को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित करते हैं, सिखाते हैं। तो स्वर्णलता को आज इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगी अगले सप्ताह, और खुदा नूर को हमेशा अपने में समाए रखें ताकि बदलते जीवन को हम समझ पाएं। सुनते हुए मुस्कुराते हुए।

0: नमस्ते दोस्तों, भाई आज मैं बहुत खुश हूँ। बता दूं क्यों? क्योंकि आज शाम को मैं और मेरे दोस्त नदी किनारे जाएंगे मछली पकड़ने। हम पानी में मछली पकड़ने का जाल बिछाएंगे और फिर मछलियां पकड़ेंगे, है ना खुशी की बात? खैर ये तो थी मेरी बात, और अब हाँ अब मिलते हैं अपनी मीना से।
1: मीना, मीना आ जाओ। दीपू मैं घर में ही हूँ।
2: मीना देखो मेरे पिताजी ने क्या बनाया है।
1: अरे वाह, मछली पकड़ने का जाल।
2: हाँ चलो जल्दी से कृष्णा के घर चलते हैं। हम तीनों नदी किनारे जाके ये जाल बिछाएंगे और मछली पकड़ेंगे। चलो ना मीना।
1: आज नहीं दीपू, हम मछली पकड़ने कल जाएंगे।
2: क्यों, आज क्यों नहीं?
1: क्योंकि आज कृष्णा घर पे है ही नहीं।
2: है? घर पे नहीं है?
1: भूल गए? कृष्णा तो साथ वाले गांव गया हुआ है अपनी मौसी के घर, और वो कल सुबह आएगा।
3: कल सुबह आएगा तभी मछली पकड़ने जाएगा।
2: ठीक है मीना, हम कृष्णा के वापस लौटने का इंतजार करेंगे और मछली पकड़ने कल चलेंगे। बड़ा मजा आएगा।
1: हाँ दीपू, कृष्णा बहुत खुश होगा।
2: हाँ क्योंकि उसने आज तक कभी मछली नहीं पकड़ी।
1: एक काम और करेंगे दीपू, कल हम अपने साथ कुछ फल, नींबू पानी और एक गेंद भी ले चलेंगे।
2: वो क्यों?
1: मछली पकड़ने के साथ साथ खाएंगे, पिएंगे और खेलेंगे।
0: और अगले दिन मीना और दीपू एक टोकरी में मछली पकड़ने का जाल, फल, नींबू पानी और गेंद लेके पहुँचे कृष्णा के घर।
2: मीना हम कृष्णा को ये नहीं बताएंगे कि हम मछली पकड़ने जा रहे हैं।
1: क्यों?
2: हम उसे कहेंगे कि हम हम ऐसे ही खेलने जा रहे हैं, और जब हम नदी के पास जाके उसे ये जाल दिखाएंगे तो देखना वो बहुत खुश हो जाएगा।
1: ठीक है,
2: मैं उसे बुलाता हूँ। कृष्णा, कृष्णा।
4: दीपू, मीना।
2: कृष्णा हम खेलने जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो ना।
4: वो तो मैं चलता हूँ, लेकिन तुम्हारी टोकरी में ये सामान?
2: खाएंगे, पिएंगे और खेलेंगे।
4: मीना, दीपू, हम यहाँ नदी के पास क्यों आ गए हैं?
2: अभी बताता हूँ कृष्णा, ये देखो मछली पकड़ने का जाल।
4: मतलब?
1: कृष्णा अब हम ये जाल नदी में डालेंगे और मछली पकड़ेंगे।
4: नहीं नहीं, मुझे वापस जाना है, मैं जा रहा हूँ मैं।
2: कृष्णा क्या हुआ?
1: कृष्णा रुको तो।
2: कृष्णा
4: मैं जा रहा हूँ मैं।
1: चला गया।
0: कृष्णा घबरा के वापस अपने घर चला गया। मीना और दीपू को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर कृष्णा ने ऐसा क्यों किया। वो दोनों भी उसी समय वापस लौट आए। और अगले दिन कृष्णा की माँ आई मीना के घर।
5: अब क्या बताऊँ मीना की माँ, कल रात को भी कृष्णा नींद में न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था। बचाओ बचाओ, बाढ़ आ गई, मैं डूब जाऊंगा, बचाओ।
6: कोई बुरा सपना देख रहा होगा।
1: चाची जी क्या कृष्णा पानी से बहुत डरता है?
5: मीना बेटी अब डरे नहीं तो क्या करे?
6: मैं कुछ समझी नहीं।
5: मीना की माँ, जिस गांव में हम पहले रहते थे वहाँ एक दिन बाढ़ आ गई थी। हमारा सब कुछ उसी बाढ़ में बह गया था, घर, सामान, जानवर, सब। बस तभी से कृष्णा के दिल में पानी का डर बैठ गया है।
1: ओह, तभी कृष्णा कल नदी के पास जाते ही घबरा गया था।
5: समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ।
6: कृष्णा की माँ, तुम बहन जी से इस बारे में बात क्यों नहीं करती?
5: हाँ ये ठीक रहेगा, मैं अभी जाके उनसे बात करती हूँ।
0: कृष्णा की माँ ने मीना की बहन जी को सारी बात बताई। बहन जी ने कुछ देर सोचा और कृष्णा की माँ से कहा,
7: तुम चिंता मत करो बहन, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है।
0: और अगले दिन स्कूल में,
7: बच्चों आज हम पढ़ेंगे बाढ़ के बारे में, लेकिन ये पाठ हम अपनी क्लास में नहीं पढ़ेंगे।
1: क्लास में नहीं पढ़ेंगे,
7: बल्कि हम ये पाठ पढ़ेंगे कहीं बाहर जाके।
0: अरे बहन जी तो बच्चों को नदी के पास ले जा रही हैं। आओ जरा देखे तो।
7: बच्चों हम अपना पाठ यहाँ पढ़ेंगे, नदी के पास। क्या हुआ कृष्णा, तुम इतनी दूर क्यों खड़े हो? यहाँ बैठो सबके साथ।
3: सबके साथ सीखो पाठ।
7: आओ कृष्णा, हम सब भी तो यहाँ हैं। आओ।
4: जी बहन जी।
7: शाबाश, बैठो। बच्चों, कौन बताएगा कि बाढ़ क्यों आती है?
1: बहन जी, कई बार जब बहुत ज्यादा और लगातार बारिश होती है तो नदियों में पानी बढ़ जाता है, जिसके कारण बाढ़ आती है।
7: बिल्कुल ठीक मीना। और जब बाढ़ आती है तो क्या होता है?
8: सब कुछ बह जाता है,
9: सब पानी में डूब जाता है,
1: हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है।
7: हाँ बिल्कुल ठीक।
9: बहन जी, क्या बाढ़ से बचा नहीं जा सकता?
7: बचा जा सकता है सुमी।
9: कैसे बहन जी?
7: कैसे कैसे? हाँ वो देखो, मिट्ठू नदी के बीचों बीच एक पत्थर पे बैठा हुआ है। कृष्णा तुम बताओ, मिट्ठू के चारों तरफ पानी ही पानी है लेकिन फिर भी वो डूबा नहीं, सोचो क्यों?
10: बहन जी, क्योंकि मिट्ठू जिस पत्थर पे बैठा है वो पानी के स्तर से काफी ऊंचा है।
7: हाँ, ऊंची जगह मतलब सुरक्षित जगह। बात समझ में आई?
4: जी बहन जी।
7: बच्चों, जब कभी भी बाढ़ का खतरा हो तो हमें किसी ऊंची जगह पे चले जाना चाहिए, क्योंकि ऊंचाई पे पानी आसानी से नहीं पहुंचता।
4: बहन जी, हमारे गांव में तो कोई ऊंची जगह है ही नहीं।
7: है कृष्णा, ऊंची जगह है, और वो जगह है अपना स्कूल। अगर कभी भी हमारे गांव में बाढ़ का खतरा हो तो हमें सीधा स्कूल की तरफ चले जाना चाहिए, क्योंकि हमारा स्कूल ऊंचाई पे है और बाढ़ का पानी वहां तक नहीं पहुंचेगा।
4: बहन जी, आज पता चला कि कभी भी बाढ़ का खतरा हो तो सबसे पहले किसी ऊंची जगह पे जाओ। आज मुझे ये बात समझ आई।
3: बात समझ आई? ऊंचाई में है भलाई।
0: सच में उस दिन कृष्णा के मन से पानी का डर निकला और अगले दिन वो मीना और दीपू के साथ गया मछली पकड़ने। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक नई कविता।
1: कभी बाढ़ का खतरा हो तो बिल्कुल मत घबराना,
3: जितनी जल्दी हो किसी ऊंची जगह पे जाना।
0: भाई वाह, क्या कविता लिखी है अपनी मीना और मिट्ठू ने। मैं तो कहता हूँ लगे हाथों एक बढ़िया सा गाना भी सुन लेते हैं।

0: गाना सुन के तो नाचने का दिल कर रहा है, लेकिन अगर हम नाचने लगे तो खेलेंगे कब? इसलिए अब चलते हैं खेलने मीना की क्लास में।
1: बच्चों आज हम खेलेंगे दिमाग लगाओ शब्द बनाओ। मैं तुम सबको एक शब्द बताऊंगी और तुम्हें उस शब्द के हर एक अक्षर से एक नया शब्द बनाना है, और हर नए शब्द से जुड़ा क्या बनाना है? तो आज का शब्द है कंबल। चलो अब कंबल शब्द के हर एक अक्षर से नए शब्द बनाओ।
2: बहन जी, कंबल का पहला अक्षर है क, और क से होता है काला।
1: शाबाश मीना। और मुहावरा?
2: दाल में काला होना, यानी गड़बड़ होना।
1: बिल्कुल ठीक रानो। चलो अगले अक्षर से शब्द कौन बनाएगा?
3: क के बाद कंबल में आता है म, और म से होता है माथा।
1: शाबाश कृष्णा। और मुहावरा?
2: माथा ठनकना, मतलब शक होना।
1: बिल्कुल ठीक कहा मीना ने। अब अगला शब्द कौन बनाएगा?
4: बहन जी, क और म के बाद कंबल में आता है ब, और ब से होता है बाग।
1: बिल्कुल ठीक दीपू। और मुहावरा?
3: बाग बाग होना, यानी बहुत खुश होना।
1: शाबाश कृष्णा। अब आखिरी अक्षर से शब्द कौन बनाएगा?
2: बहन जी, क म और ब के बाद कंबल में आता है ल, और ल से होता है लाल।
1: बिल्कुल ठीक रानो। और मुहावरा?
2: लाल पीला होना, मतलब होली खेलना।
1: नहीं गोलू, लाल पीला होने का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना। तो मजा आया ना बच्चों?
0: मजा तो मुझे भी खूब आया। अब इतनी बढ़िया कहानी, कविता, गीत और खेल के बाद तो मजा आना ही था, है ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
5: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: Ωραία, ρουκά, ρουκά. Ωραία, ρουκά. Ωραία, τριδεύ, τριμούρτι. Ωραία, έκ, μπαϊκ, πετύν, ε. Ωραία, το μιλόμο, εγώ, σαρμνή, ατύ. Ωραία, μπαϊκ, έκ. Ωραία, έκ, σαν, τίν, τσαρέ, δάρε, ω. Ωραία, τίν, λόγω, κα, τζάνα, λαούρ, νύ, μπαϊκ, πε, μάλλον, νύ, τουμκό. Ωραία, απνή, νύ, τες, μπαϊκ, κι, σοτσό, μπιτσαρή, τίν, και, μπότζ, κι, μαρή.
1: Σερ, πόχοτ, ζαρούι, μέ, τσε, σαράτζ.
0: Ωραία, τουμάρε, μέ, τσε, κι, το. ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्लीन बोल्ड हो जाओगे ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे ओए ये ट्रैफिक है भाई यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती ठोको ताली ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क
2: याद रखें एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं यह एक दंडनीय अपराध है सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी सुनते रहो मुस्कुराते रहो
3: कॉमिक चीकू
4: कपड़े सुखाने की रस्सी लगी है मैं इस रस्सी पर चलूंगा
3: मीकू रस्सी पर चलने की प्रैक्टिस करने लगा
4: आ मैं गिर गया
3: मीकू साबुन वाले पानी में गिर गया
4: ये तो साबुन वाला पानी है
3: उसी समय बिल्ली आई और उसने मीकू को पकड़ लिया
5: हाँ गीला हो गया है खाने से पहले सूखा लेना चाहिए
3: बिल्ली ने मीकू को रस्सी से लटका दिया
5: जब तक ना सूखे तब तक सो जाती हूँ
3: चीकू मछली पकड़कर आ रहा था
6: अरे ये क्या मीकू रस्सी में लटक रहा है मीकू को बचाने के लिए बिल्ली को हटाना पड़ेगा
3: थोड़ी दूरी पर वह आग जलाकर मछली को भूनने लगा
6: मछली की खुशबू से बिल्ली जरूर इधर आएगी
3: बिल्ली उठकर मछली ढूंढने लगी
5: कोई मछली पका रहा है
3: इधर चीकू ने मीकू को उतार लिया
6: अब भाग
3: बिल्ली वापस आ गई
5: अरे मीकू तो भाग रहा है मैं अभी पकड़ती हूँ
6: बिल्ली तो मीकू को पकड़ लेगी इस मछली के कांटे से बिल्ली को रोकूंगा
3: चीकू ने बिल्ली को मछली के कांटों में फंसा दिया और इस तरह चीकू ने अपनी दोस्ती निभाते हुए मीकू की जान बचा ली

संदीप त्रिवेदी, हमारी जो सीरीज लेसन 1 पूरी तरह से कंप्लीट था हमारा। आरबीएसई यानी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 जनरल इंग्लिश जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो हमें कितना समझ में आता है। सब टॉपिक्स पे, सब सब्जेक्ट्स पे बात होती है। और लेसन 2 मुझे बताने की जरूरत है क्या? हाँ है, बता देता हूँ। ऑन वायलेंस, हिंसा, वायलेंस। हिंसा का नाम सुनते ही बापू का चेहरा, बापू का नाम जहन में आता है। महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। देश उनकी वर्षगांठ भी मना रहा है, तो बड़े अच्छे समय पर हम लोग इस लेसन को पढ़ रहे हैं। आप लोग समझिएगा, हिंसा अहिंसा के बीच की जो लकीर है वो समझना बहुत जरूरी है। और जो राइटर हैं वो भी हमसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जे कृष्ण मूर्ति, उन्होंने बहुत ही कम शब्दों में ये बताया है कि हिंसा क्या है और किस किस तरह की हो सकती है और कहाँ कहाँ हिंसा होती है। हिंसा आप और हम रोज करते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन इग्नोर कर देते हैं। कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते कुछ लेसन ऐसे आ जाते हैं जिसपे बहुत कुछ कहने का मन करता है बच्चों, और ये ऑन वायलेंस भी ऐसे ही चैप्टर्स में से एक है, ऐसे ही लेसन्स में से एक है। और जो बातें हम क्लास में नहीं कर पाते हैं वो यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ टाइम लिमिट होती है, यहाँ नो लिमिट। और आपके लिए लिमिट है, लेकिन आपको क्लास 10th का ध्यान रखना है, अपने सभी सब्जेक्ट्स का ध्यान रखना है, अपनी स्टडीज पे फोकस करना है और अपने पेरेंट्स, स्कूल, टीचर्स का, सबका नाम रोशन करना है। तो चलो बिना देर गवाएं, बिना समय गवाएं, बिना देर किए शुरू कर देते हैं। लेट्स गो। देर इज ए ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड। पहला सेंटेंस जो है वही बिल्कुल कटु सत्य, जिसको बोलते हैं हम कड़वा सच। संसार में चारों तरफ हिंसा का व्यवहार है, हिंसा व्याप्त है, हिंसा होती है। देर इज फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ट वायलेंस। राइटर कहते हैं कि शारीरिक हिंसा तो है ही है, और उसके साथ साथ आंतरिक इनवर्ड हिंसा भी व्याप्त है। कैसे? फिजिकल वायलेंस इज टू किल एनी अनदर। शारीरिक हिंसा क्या है? किसी को मारना, टू हर्ट अदर पीपल कॉन्शियसली, सोच समझ करके, इच्छा से, चाह करके दूसरों को चोट पहुंचाना, डेलिबरेटली, मन से, इच्छा से और विदाउट थॉट, बिना सोचे, टू से क्रुएल थिंग्स, बुरी बातें बोलना, फुल ऑफ एंटोगनिज्म, विरोध से संबंधित बातें करना, एक दूसरे को विरोध बताने वाली बातें करना, विरोध ही समझने वाली बातें करना, एक दूसरे से बैर करने वाली बातें करना, एंड हेट और नफरत फैलाने वाली बातें करना, एंड इनवर्डली और आंतरिक रूप से, इनसाइड द स्किन टू डिसलाइक पीपल, चमड़ी के आधार पर लोगों को नापसंद करना, टू हेट पीपल, नफरत करना, टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों की आलोचना करना, क्रिटिसाइज। और ये तो हम करते ही हैं, आपको पता है, शादी में हो, ब्याह में हो, कॉलेज में, स्कूल में, क्लास में, फंक्शन में, कहीं भी, चौराहे पे, गली मोहल्ले, कूचे, नुक्कड़, हर जगह हम आलोचना करने से पीछे पीछे नहीं रहते हैं। हमारी बड़ी खासियत है ये भारतीयों। इनवर्टली वी आर ऑलवेज क्वेरलिंग, और आंतरिक रूप से हम हमेशा लड़ते रहते हैं, बैटलिंग, नॉट ओनली विद अदर्स, दूसरों से ही नहीं, बट विद अवर सेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हम दूसरों से ही नहीं लड़ते हैं, खुद से भी लड़ते रहते हैं। ये बात बहुत समझने वाली है। हर बात पे, जिस बात से भी हमें गुस्सा आ जाए, इसका मतलब हम अपने आप से लड़ रहे हैं, हम अपने आप से खुश नहीं है। वी आर नॉट हैप्पी विद आवर सेल्फ, वी वॉन्ट पीपल टू चेंज। अच्छा, एक और बड़ी खासियत होती है हम लोगों की, हम सोचते हैं लोग बदल जाएं, हम लोगों को बदलना चाहते हैं। वी वॉन्ट, प्रेजेंट टेंस पढ़ा आपने पिछले लेसन में, उसी का एग्जाम्पल है। वी वॉन्ट पीपल टू चेंज, वी वॉन्ट टू फोर्स देम टू अवर वे ऑफ थिंकिंग। और हम लोगों से ये भी अपेक्षा रखते हैं, ये भी उम्मीद करते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही वे भी सोचें। लेकिन क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। क्यों? एक तरफ तो हम कहते हैं हम सभी स्वतंत्र हैं, वी आर फ्री सोचने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कुछ स्वतंत्रताएं दी हुई ना हमारे संविधान में, कितनी, 6 प्रकार की, आप लोग सोशल स्टडी में पढ़िएगा,
और अगर 11-12 के बच्चे सुन रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस में आप लोग इसको पढ़िएगा। तो हम हमारे तरीके से चाहते हैं कि लोग हमारे जैसा सोचें। मैं सोचता हूं कि बस मैं जो पढ़ा रहा हूं उसी को आप पसंद करें। मैं सोचता हूं कि मेरी तारीफ हो, मेरी बात करें लोग। नो, दैट इज रॉन्ग। आप सोचते हैं कि हर व्यक्ति आपके जैसे सोचे, आपके जैसा व्यवहार करे, आपके सोच से आपकी हाँ से हाँ मिलाए। ये क्या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, कतई संभव नहीं है। ये हर एक का अपना सोचने का तरीका होता है, हर एक का अपना नजरिया होता है, हर एक अपनी बात अपने ढंग से कह सकता है। ईश्वर ने सबको दिमाग दिया है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, हम इंस्पायर जरूर कर सकते हैं। हम ऐसा काम करें जिससे लोग प्रभावित, लोग ऐसा करने पर मजबूर हो जाएं। वही तो हम कर रहे हैं। इन द वर्ल्ड एज वी ग्रो अप, इस संसार में जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस। तो हम हिंसा देखते जाते हैं, चारों तरफ हम हिंसा का भाव देखते हैं, एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जहां जहां भी मानव की उपस्थिति है, जहां जहां इंसानियत है, जहां जहां इंसान है एक्चुअली, वहां वहां हम हिंसा देखते हैं। मतलब हम हैं तो हिंसा है। सोचिए बाप, हमने कैसा समाज बना लिया है। राइटर को ये लिखना पड़ रहा है कि चारों तरफ हिंसा है। क्यों है? द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर। हिंसा का जो अंतिम रूप होता है वो युद्ध होता है। द किलिंग फॉर आइडियाज, विचारों के लिए हत्या, फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, और जो तथा कथित सो कॉल्ड धार्मिक मान्यताएं हैं उनके लिए हिंसा, फॉर नेशनलिटीज राष्ट्रीयता, द किलिंग टू प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, अरे जमीन का छोटा सा टुकड़ा बचाने के लिए हत्या। आए तीन अखबारों में हम पढ़ते हैं, दो गुटों में लाठी भाटा जंग है, जमीन के विवाद को लेकर के चार आपस में भिड़े। अरे क्या कर रहे हैं हम लोग? और आप लोग जो बच्चे हमारे ग्रामीण परिवेश से आते हैं, वो देखते होंगे अपने आसपास कि छोटी छोटी बातों को लेकर के तू तू मैं लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि आप बड़े होकर के समझाएं, आप एक अच्छा समाज बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दें, अपना योगदान दें। बड़ा अच्छा लगता है ये लेसन पढ़ाते हुए मुझे। इसमें मैं बहुत कुछ फिलोसॉफिकल हो जाता हूं थोड़ा सा। टू डू दैट, ये सब करने के लिए मैन विल किल, इंसान मारेगा, डिस्ट्रॉय नष्ट करेगा, मेम चोट पहुंचाएगा, एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, और स्वयं को भी मार डालता है। देर इज एनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, संसार में बहुत बड़ी हिंसा है, चारों तरफ हिंसा है, एनॉर्मस विशाल व्यापक। द रिच वॉन्टिंग टू कीप पीपल पुअर, अमीर क्या चाहता है? लोग गरीब रहें। एंड द पुअर वॉन्टिंग टू गेट रिच, गरीब क्या चाहता है? कि वो अमीर बन जाए। सामान्य सी बात है ना। लेकिन एंड लेखक कहता है इन द प्रोसेस ऑफ हेटिंग द रिच, और इस प्रक्रिया में, अमीर बनने की प्रक्रिया में, गरीब अमीर से नफरत करने लगता है, अमीर गरीब से नफरत करने लगता है। और हम सभी अपने आसपास ये सब चीजें देखते हैं। मेरे पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, ये है, वो है। हम एक दूसरे को नीची नजर से देखते हैं। अरे नजर की तो क्या बात करें साथियों, लोग तो ये भी देखते हैं कि ये कोई कंप्लीट है, ये इनकम्प्लीट है, यानी इसमें कोई शारीरिक कमजोरी है। उसको भी, भले उसके पास सब सुख सुविधाएं हो, लेकिन लोग उसको भी कमजोर मान लेते हैं, उससे भी नफरत करने लगते हैं। ये समाज की कड़वी सच्चाई है जिसको हम देखते हैं। आप सब जानते हैं मैं दृष्टिबाधित हूं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये कहता हूं कि जो सबके पास है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं है। मैं अक्सर मजाक में अपने साथियों को ये बात कहता हूँ। और कई बार लोग ऐसी बातें करते हैं, अरे भगवान ने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं बोलता हूँ भगवान तो दुखी है, उल्टा ये सब करके भगवान सोचता है कि इसको जब ये सब नहीं दिया तो ये इतना कुछ कर रहा है, अगर दे देते तो फिर कितना कुछ करता है। तो भगवान तो खुद दुखी है। और मैं ये मानता हूं कि हमारे अंदर कोई भी कमजोरी हो, किसी भी तरह की, रंग की हो सकती है, शारीरिक बनावट की हो सकती है, किसी तरह की विकलांगता हो सकती है, और अमीरी गरीबी की कमजोरी हो सकती है, हमारी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसमें हमारी कोई कमजोरी हो सकती है। लेकिन
मुझे लगता है वो कोई कमजोरी नहीं है, वो बल्कि हमारी ताकत है। उसी के बाद ही तो हम इंस्पायर होते हैं कुछ करने के लिए। खैर, तो कहने का मतलब

अब सोसाइटी हो गई, हमारे समाज का ये एक हो गया, वीडियो बनाए वायरल करें। अरे भाई, जिसको पहले जरूरत है उसको तो मदद पहुंचाएं। तो जाने अनजाने हम क्या कर रहे हैं, इस हिंसा में अपना योगदान दे रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं। दूर से तमाशा देखने में मजा आता है हमको। देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब देखिए हिंसा कहां है, पति पत्नी बच्चों के बीच में हिंसा है। आप और हम सामान्य रूप से जब बैठ करके ये इमेजिन कर सकते हैं क्या? वी कैनॉट इमेजिन दैट वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन। अरे पति पत्नी बच्चों में कैसी हिंसा, लेकिन है। देयर इज वायलेंस, हिंसा, एंटोगनिज्म, विरोध, हेट, नफरत, क्रुएल्टी, क्रूरता, अग्ली क्रिटिसिज्म, बुराई, भद्दी टिप्पणियां, एंगर, क्रोध, ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन। ये सब इंसान में जन्मजात है, इनबॉर्न, इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बींग। हर एक इंसान में ये जन्मजात है, ये सारी चीजें, ये सारे के सारे लक्षण, इट इज इनहेरेंट इन यू। और लास्ट में लेखक कहता है ये आप में, यानी हम सब में, लेखक हम सबको कहता है कि ये हमारे अंदर भी जन्मजात है, एंड एजुकेशन इज सपोज टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट। अब लेखक कहते हैं कि शिक्षा, एजुकेशन, उसको ऐसा माना जा सकता है कि वो आपकी मदद करे इस मामले में, नॉट मियरली टू पास एन एग्जामिनेशन। एजुकेशन केवल और केवल किसी कक्षा को पास करने के लिए नहीं है, किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए नहीं है, केवल सिलेबस पूरा करने के लिए नहीं है, एंड गेट अ जॉब, केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये एजुकेशन ही है, शिक्षा, ये शिक्षा ही है जो हमें हिंसा से दूर कर सकती है, जो हमें हिंसा से बाहर निकाल सकती है। मैं अक्सर मजाक में कहता हूं अपनी क्लास में, कभी मेरा सिलेबस पूरा नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो बातें होती हैं मुझे लगता है वो किताब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यू हैव टू बी एजुकेटेड सो दैट, आपको शिक्षित होना होगा, आपको शिक्षित होना है। यू हैव टू बी सो दैट, ताकि यू बिकम अ रियली ब्यूटीफुल, ताकि आप सचमुच सुंदर, हेल्दी, स्वस्थ, सेन, पवित्र, रैशनल, तार्किक ह्यूमन बीइंग, इंसान, नॉट अ ब्रूटल मैन, एक क्रूर आदमी नहीं, विद ए वेरी क्लेवर ब्रेन, एक ऐसा क्रूर आदमी जिसका दिमाग बहुत चतुर है, हु कैन आर्ग्यू, जो कि हमेशा बहस करता है, एंड डिफेंड हिज ब्रूटैलिटी, और अपनी क्रूरता को, अपने क्रूरता को बचाता है, अपनी क्रूरता की रक्षा करता है, उसको सच साबित करता है, अपनी क्रूरता को ही वो सही समझ लेता है। You are going to face all this violence as you grow. जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, इस सब हिंसा का सामना आपका, इस सब हिंसा से आपका सामना होता है। You will forget all that you have heard here. आपने जो यहां सुना है, जो पढ़ा है, वो सब आप भूल जाते हैं, and will be caught in the stream of society, और जो समाज की धारा है उसमें बह जाते हैं। हम जब हमारे ऊपर आती है ना, तो ये सारी बातें दरी की दरी रह जाती है। हम सोचते हैं छोड़ यार, ये किताबी बातें हैं, इसने मुझे ऐसा कहा तो कहा कैसे, इसने मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी कैसे कर दी, इसने मेरे घर के बाहर गड्ढा कैसे कर दिया, इसने मेरी दीवार में छेद कैसे कर दिया। हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं। यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द क्रूएल हार्ट, बिटर, एंग्री, वायलेंट वर्ल्ड, एंड यू विल नॉट हेल्प टू bring about a new society, a new world. You will become, आप भी बाकियों की तरह हो जाएंगे, क्रूर, कठोर, कुशल, हिंसक, इस संसार की तरह, और आप अपने आप को एक नया समाज बनाने में योगदान भी नहीं देंगे, और नहीं एक नया संसार बनाने में अपना योगदान देंगे, क्योंकि आप तो समाज की धारा में बह चले हैं। तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं।

आगे क्या कहते हैं राइटर, बट अ न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी। भले ही आप एक नया समाज एक नया संसार मत बनाइए, बट अ न्यू वर्ल्ड इज नेसेसरी। एक नया संसार आवश्यक है, अ न्यू कल्चर इज नेसेसरी। एक नई संस्कृति आवश्यक है, द ओल्ड कल्चर इज डेड। जो पुराना पुरानी संस्कृति है वो मृत प्राय है, वो मर चुकी है, बरीड, दफन कर दी गई है, बर्न्ड, जला दी गई है, एक्सप्लोडेड, उसमें विस्फोट कर दिया गया, वेपोराइज्ड, उसको दफा कर दिया गया है, उसको भगा दिया गया है। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कल्चर। आपको एक नया संसार एक नई संस्कृति बनानी है। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कल्चर, कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस। और एक ऐसी संस्कृति जो कि हिंसा पर आधारित नहीं हो, दूर दूर तक हिंसा का जिसमें कोई वास ना हो, कोई नाम ना हो। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू। नई संस्कृति आप पर निर्भर करती है, बिकॉज क्योंकि द ओल्डर जनरेशन हैज बिल्ट सोसाइटी। हमारी पीढ़ियों ने, पूर्वजों ने एक समाज बनाया बेस्ड ऑन वायलेंस, जो कि हिंसा पर आधारित था, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, जो कि अतिवाद पर आधारित था। एंड इट इज दिस दैट हैज कॉज्ड ऑल द कंफ्यूजन। इसी की वजह से ये सभी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, ऑल द मिजरी, सभी परेशानियां इसी वजह से उत्पन्न हुई। द ओल्डर जनरेशन हैव प्रोड्यूस्ड दिस वर्ल्ड। हमारे पूर्वजों ने ये संसार हमारे लिए बनाया, एंड यू हैव टू चेंज इट। और आपको इसको बदलना है, यानी हम सबको इसको बदलना है। यू कैनॉट जस्ट सिट बैक एंड से। आप केवल बैठेंगे नहीं, आप केवल एक जगह बैठ नहीं सकते हैं। मैं मेरे घर में, मेरे पास सारी सुविधाएं, तो मैं बैठ नहीं जाऊं कि बस मैं तो अपना स्कूल पढ़ाता हूं 8 से 1 बजे तक, 7:30 से 1 बजे तक, मुझे क्या पड़ी है एक्स्ट्रा क्लास लेने की। क्यों? बिकॉज वी हैव टू चेंज द ओल्ड कल्चर, वी हैव टू चेंज द पीपल, वी हैव टू चेंज द वे ऑफ थिंकिंग। मुझे ये सब करना क्यों पड़ रहा है? मैं चाहता हूं हर व्यक्ति मेहनत कर रहे, हर बच्चा मेहनत करे, हर टीचर मेहनत करे। जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। तो आप केवल अपने घर पे बैठ करके, हाथ पे हाथ रख के ये नहीं कह सकते हैं कि आई विल फॉलो द रेस्ट, मैं दूसरों का ही अनुसरण करूंगा, ऑफ द पीपल, लोगों का ही अनुसरण करूंगा एंड सीक सक्सेस एंड पोजिशन। मैं केवल PhD हासिल कर लूं, मैं RAS IAS बन जाऊं, मैं कॉलेज प्रोफेसर बन जाऊं, मैं प्रिंसिपल बन जाऊं, मैं लेक्चरर बन जाऊं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, नो। अगर इस समाज को, इस संस्कृति को बदलना है तो हमें स्वयं को आगे आना पड़ेगा। मैं दूसरों से उम्मीद करता हूं मेरे घर के बाहर गाड़ी खड़ी नहीं करें, है ना, सड़क के ऊपर गाड़ी खड़ी नहीं करें, साइड में गाड़ी खड़ी करें। लेकिन कल को मैं ही ये सब करने लग जाऊं तो फिर क्या फिर मेरी कथनी और करनी में तो अंतर है ना। पहले मुझे खुद एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। अगर मेरे पास गाड़ी है, मैं उसको प्रॉपर जगह पे पार्क करूं, और हो सके तो अपने घर में ही पार्क करूं, तभी तो मैं दूसरों को दो बातें कह सकता हूं। मैं खुद ही ऐसा कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, और मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैं खुद बाहर पानी फैला रहा हूं, दूसरों से उम्मीद करता हूं वो नहीं फैलाए। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है ना। मैं मेहनत नहीं करूं, मैं स्टडी नहीं करूं, और मैं उम्मीद करूं बस ऐसे ही पास हो जाऊं, नंबर आ जाए, तो ये तो नॉट पॉसिबल। स्कूल में मैं अपनी क्लास प्रॉपरली नहीं लूं और ऐसे ही ज्ञान झाड़ने लग जाऊं, माफ करिएगा, बहुत सारे साथियों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हमारे टीचर्स में भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हम लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। लेकिन हमें पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा। इफ यू डू, योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर। अगर आप ऐसा ही करते हैं कि अपने घर परिवार में बैठ करके अपने अपनी खुशियां, अपनी तरक्की हासिल करके अगर आप मस्त हो जाएंगे, तो इसका जो दुष्परिणाम है वो किसके साथ होगा? आपके बच्चों के साथ। आपके बच्चों को तकलीफ उठानी पड़ेगी, यानी आने वाली पीढ़ियों को। यू मे हैव अ गुड टाइम, आपका समय भले ही अच्छा हो सकता है, बट योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू पे फॉर इट। लेकिन आपके बच्चों को इसके लिए बहुत कुछ चुकाना पड़ेगा। सो इसलिए You have to take all that into account. इसीलिए आपको आगे आना पड़ेगा, आपको ही इसके लिए खड़ा होना है। The outward cruelty of man to man in the name of God, जो बाहरी हिंसा है
एक इंसान की दूसरे इंसान से, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से, भगवान के नाम पर, इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, इन द नेम ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, आत्मसम्मान के नाम पर, इन द नेम ऑफ द सिक्योरिटी, सुरक्षा के नाम पर ऑफ द फैमिली, परिवार की, ये जो हिंसा है ना, यही सबसे खतरनाक है। मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा घर, अरे हम समाज को क्या दे रहे हैं? कुछ भी तो नहीं दे रहे हम। और ये कहते हैं ना वो, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। You will have to consider the outward cruelty and violence and the inward violence which you do not yet know. आपको स्वीकार करना पड़ेगा इस बाहरी हिंसा को, अत्याचार को, क्रूरता को, और आंतरिक रूप से जो हिंसा आपके अंदर है, जिसको कि आप अभी तक जानते ही नहीं है, उसको भी आपको जानना होगा। You are still young. अब लेखक बच्चों से बात करता है, यू आर स्टिल यंग बट एज यू ग्रो ओल्डर, अभी आप बच्चे हैं, युवा हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होंगे, यू विल रियलाइज हाउ इनवर्डली मैन गोस थ्रू हेल, कि आंतरिक रूप से इंसान कैसे नरक के द्वार पर जा रहा है, खुद ही अपने रास्ते बंद कर रहा है, खुद ही अपने आप को बर्बादी की ओर ले जा रहा है, गोस थ्रू ग्रेट मिजरी, वो अपने आप को मुसीबत में डाल रहा है, बिकॉज क्योंकि he is in constant battle with himself, लगातार वो अपने आप से लड़ता रहता है, उसको कुछ सोचने को तो मिल ही नहीं रहा है, कुछ क्रिएटिव वो कर ही नहीं पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो तो खुद से लड़ता रहता है, with his wife, किस किस से? अपनी पत्नी से, with his children, अपने बच्चों से, with his neighbors, अपने पड़ोसियों से, with his gods, और यहां तक कि इंसान अपने ईश्वर से भी लड़ता है, अपने भगवान से भी लड़ता है। He is in sorrow and confusion and there is no love, no kindliness, no generosity and no charity. Very important बात, जब इंसान अपने आप से लड़ता रहता है ना, जब इंसान अपनी पत्नी से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने पड़ोसियों से, हर जगह जब उसकी लड़ने की भावना है, और वो क्यों है? जाने अनजाने है, बस उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, जैसा वो चाहता है वैसा नहीं हुआ, इसलिए क्या करता है वो? He is in sorrow, वो दुख में रहता है, and confusion, और दुविधा में रहता है, and there is no love, उसके अंदर ना तो फिर प्रेम होता है, ना kindliness, ना दयालुता होती है, no generosity, ना दूसरों के प्रति आदर होता है, and no charity, very important, ना तो उसके अंदर समाज कल्याण की भावना होती है। अरे भाई, वो जब लड़ता रहेगा, खुद ही खुश नहीं है, तो वो दूसरों का भला क्या करेगा, समाज के लिए क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता। वो चैरिटी, चैरिटी की भावना हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। चैरिटी मींस, और आप जानते हैं, चैरिटी बिगिंस एट होम, जो समाज की सेवा है वो घर से ही शुरू होती है, कहा जाता है ना। एंड अ पर्सन मे हैव अ पीएचडी, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास भले ही पीएचडी की डिग्री हो आफ्टर हिज नेम, और ही मे बिकम अ बिजनेसमैन, या फिर वो बहुत सफल व्यापारी क्यों ना हो, विद हाउसेस, बहुत सारे घर हो, विद एंड कार्स, बहुत सारी गाड़ियां हो, बट इफ ही हैज नो लव, अगर लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं है, नो अफेक्शन, अगर उसके अंदर लोगों के प्रति दया का भाव नहीं है, काइंडलीनेस, नो कंसिडरेशन, लोगों को जो है स्वीकार करने की उसकी क्षमता नहीं है, ही इज रियली वर्स देन एन एनिमल, फिर वो जानवर से भी गया गुजरा है, पशु से भी बेकार है फिर वो, बिकॉज क्योंकि ही कंट्रीब्यूट्स टू अ वर्ल्ड दैट इज डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि वो फिर एक ऐसे संसार में अपना योगदान दे रहा है जो कि विनाशकारी है, विभाजनकारी है। कितनी अच्छी बातें हैं, है ना? अगर हेडफोन होता तो और मजा आ जाता। इट्स ओके। सो लेखक कहता है, तो व्हाइल यू आर यंग, जब आप युवा हैं, You have to know all these things. आपको इन सारी चीजों को जानना है. You have to be shown all these things. और आपको इन सब बातों को दिखाना भी है जो आप समझ रहे हैं वो. You have to be exposed to all these things. और इन सब बातों को बाहर लेके आना है, इन सब बुराइयों को बाहर लाना है, so that ताकि your mind begins to think, ताकि आपका दिमाग सोचने लगे. Otherwise नहीं तो you will become like the rest. Of the world. तो संसार के दूसरे प्राणियों के जैसे, दूसरे लोगों के जैसे आप हो जाएंगे। कैसे?
एंड विदाउट लव, बिना प्रेम के, विदाउट अफेक्शन, बिना सम्मान के, आदर के, विदाउट चैरिटी और न तो समाज सेवा की भावना के, एंड जेनरोसिटी और न ही दूसरों के प्रति आदर सम्मान के, लाइफ बिकम्स अ टेरिबल बिजनेस, और फिर जीवन बहुत भयानक होने वाला है। तब ऐसी परिस्थिति में जीवन बहुत भयानक हो जाता है, जीवन हमारा दुष्कर हो दुष्कर हो जाता है। दैट इज वाई, ऐसा क्यों, वन हैज टू लुक इन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, हिंसा की ये जितनी भी समस्या है उसके बारे में हर एक को सोचना पड़ेगा। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट, हिंसा को नहीं समझना इसका मतलब उसको इग्नोर करना, यानी उसकी अवेल ना करना, उसको नहीं समझना मतलब उसको नहीं जानना, इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर, और बिना बुद्धि के, बिना संस्कृति के ये संभव नहीं है। लाइफ इज समथिंग एनॉर्मस, जीवन बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, एंड मेयरली टू कार्व आउट अ लिटिल होल फॉर वन सेल्फ एंड रिमेन इन दैट लिटिल होल, ये जो एक समाज के जीवन में, जीवन की जो हमारी एक समस्या है, एक छेद है, उसको हमें केवल समझना ही नहीं है, उसके अंदर से बाहर निकलना पड़ेगा। साइटिंग ऑफ फाइटिंग ऑफ एवरीबडी इज नॉट टू लिव, हर एक से लड़कर के हम नहीं जी सकते हैं। इट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है। फ्रॉम नाउ, आज से ऑन यू हैव टू know about all these things, इन सब बातों के बारे में आपको जानना है। You have to choose deliberately to go the way of violence or to stand up against society. आपको ये सोचना है कि क्या आप भी अपनी मर्जी से इसी हिंसा का हिस्सा होना चाहते हैं या फिर इसके खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। Be free, लेखक कहता है कि स्वतंत्र बनिए, लिव हैप्पीली, खुश होकर के, खुशहाल जीवन जिए, जॉयसली, खुशी से, विदाउट एनी एंटोगनिज्म, किसी के प्रति कोई विरोध नहीं, विदाउट एनी हेट, किसी नफरत के बिना, किसी के प्रति क्यों नफरत की भावना रखें हम, देन लाइफ बिकम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट, और तभी तो जीवन हमारा कुछ भिन्न होगा, कुछ अलग होगा, देन लाइफ हैज अ मीनिंग, तब जीवन का एक मतलब होगा, एक अर्थ होगा, इज फुल ऑफ जॉय एंड चैरिटी क्लैरिटी, और तब हमारा जीवन खुशी से और सफाई से, स्वच्छता से, साफ सुथरा जीवन हमारा रहेगा। When you woke up this morning, आज सुबह जब आप उठे, did you look out of the window, क्या आपने खिड़की से बाहर देखा? बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा है लेकर, लास्ट पैराग्राफ है बच्चों, you would have seen those hills, क्या आपने बाहर दिखने वाले पहाड़ों को देखा? बिकम सैफरन एज द सन रोज अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई, उस सुंदर से, प्यारे से, उस शानदार नीले आसमान से निकलते हुए सूरज को देखा, एंड एज द बर्ड्स बिगैन टू सिंग, और जैसे ही पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया, एंड अर्ली मॉर्निंग कुकू कूड, There was a deep silence all around. चारों तरफ कितना सन्नाटा था जब पक्षी चहचहा रहे थे. A sense of great beauty, सुंदरता का भाव, and loneliness, और अकेलेपन की भावना, एक एकाकीपन. And if one is not aware of all that, अगर कोई इंसान इन सबसे अगर जागरूक नहीं है, परिचित नहीं है, one might just as well be dead. तो फिर वो मरे के समान है. अगर बाहर की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता हम नहीं देख रहे, वर्ड्सवर्थ ने इसी ब्यूटी की बात की है, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शेली, उन सब ने यही जो नेचर की ब्यूटी है उसी की बात की है, बट ओनली ये इंग्लिश लिटरेचर के बहुत बड़े राइटर्स हुए हैं, पोएट हुए हैं, बट ओनली अ वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, लेकिन बहुत, लेखक कहता है, बहुत कम लोग इन बातों को समझ पाते हैं और वही महान बनते हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन, जब आपका दिमाग और दिल खुला हुआ है तभी आप इन सबसे
जागरूक रह पाएंगे, तभी आप इन सबको समझ पाएंगे. व्हेन यू आर नॉट फ्राइटेंड, जब आप डरे हुए नहीं है, व्हेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, जब आप हिंसक नहीं है, देन देयर इज जॉय, तब खुशी है. देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस, अतिरिक्त अविस्मरणीय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस, खुशी ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल नो, और एक ऐसी खुशी जिसको बहुत कम लोग जानते हैं. एंड इट इज पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन द ह्यूमन माइंड, और ये शिक्षा का भाव है जो कि इट इज पार्ट ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा का एक भाग है टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट इन द ह्यूमन माइंड. एक मानवीय मस्तिष्क में ये भावना शिक्षा से ही पैदा की जा सकती है, शिक्षा से ही किसी के अंदर ये सब सोच विकसित की जा सकती है, इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है. और हमारा भी एक स्लोगन यही है रिकॉर्डिंग क्लब का भी, पढ़े पढ़ाए कुछ सीखे और सिखलाए, बस. तो ये छोटा सा एक लेसन था, आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा. अबाउट द ऑथर, जे कृष्ण मूर्ति इज अ रेप्यूटेड राइटर एंड एन एजुकेशनिस्ट, एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, शिक्षाविद हैं, लाइक बर्टन रसेल की तरह. हिज माइंड वाज फुल ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियाज, उनका दिमाग भी जो है क्रांतिकारी विचारों से भरा हुआ था. टू चेंज द ओल्ड फैशन वर्ल्ड, जो ये पुरातन हमारा जो संसार है उसको बदलना चाहते हैं वो. देयर इज अ थिंग ऑफ एथिकल वैल्यूज, नैतिक मूल्य इन हिज राइटिंग, उनके लेखन में उनके अंश देखे जा सकते हैं. हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज रिमार्केबल, शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वो अविस्मरणीय है, उल्लेखनीय है. अंडर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन मेनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर फंक्शनिंग विच आर डिवोटेड टू बिल्ड अप अ जनरेशन ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एंड एकेडमिशियंस. तो ये जो जय कृष्णमूर्ति फाउंडेशन है, इसके अंतर्गत बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस और शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत सर्वाधिक उत्तम उत्कृष्ट विद्यार्थी और शिक्षाविद तैयार किए जाते हैं. अबाउट द टेक्स्ट, इन द प्रेजेंट आर्टिकल कृष्णमूर्ति पॉइंट्स आउट द डेंजरस ऑफ वायलेंस, हिंसा के जो खतरे हैं उसके बारे में वो बताते हैं. विच इज अ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न, जो कि वैश्विक स्तर पर सोचने का एक कारण है, सोचने का एक बिंदु है. देयर इज अ नीड टू डेवलप अ न्यू कल्चर, एक नई संस्कृति की निर्माण की आवश्यकता है. इंक्लूसिव ऑफ लव, जिसमें प्रेम का समावेश हो, पिटी दया हो, पेशेंस धैर्य हो, एंड जेनरोसिटी, और सबके लिए सम्मान हो. एजुकेशन कैन बी अ गुड टूल टू कर्ब वायलेंस, हिंसा को दूर करने के लिए, हिंसा को भगाने के लिए शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन हो सकती है. नीचे ग्लॉसरी में वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं बच्चों, आप ही की बुक में दिए हुए हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश दिए हुए हैं इनको, कि आप याद करें, इनके हिंदी मीनिंग याद करें, है ना. तो आपको काफी मदद मिलेगी, एक पॉकेट डिक्शनरी अपने पास जरूर रखें. चलिए, तो आज के लिए इतना काफी है, आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा, और कल मिलेंगे. अब इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी की जो एक्टिविटीज हैं वो हम करेंगे. तो एक बार फिर बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने साथियों के साथ शेयर करें भाई, ताकि और बच्चों को भी लाभ मिले इस सब स्टडीज का, और हम लोग एक दूसरे से सीखें सिखाएं. यही हमारे मन में भावना होनी चाहिए, यही हमारी सोच होनी चाहिए. जितने भी टीचर्स हैं वो मुझे अगर सुन रहे हो तो वो भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं. आप लोग अपने अपने टॉपिक्स तैयार करके भेजिए हमें, हम लोग जरूर रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर उनको अपलोड करेंगे, ताकि सभी बच्चों को हर सब्जेक्ट का लाभ मिल जाए, चाहे साइंस मैथ्स किसी भी सब्जेक्ट के, पॉलिटिकल साइंस या और किसी भी सब्जेक्ट के, हिंदी इकोनॉमिक्स जो भी उसके टीचर हों वो यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं. तो चलिए, आज के लिए इतना काफी है. गुड नाइट. Take care. See you. Yep. 24, 0, 2, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करें, अपनी आदतों और कार्यों को देखें। जो आदतें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, उन्हें बदलें। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: हेलो पंकज भैया। हाय वेदान भैया।
1: हाय दृष्टि, कैसी हो?
0: मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो?
1: हम लोग भी ठीक हैं।
0: अरे भैया, रेडियो चालू करो ना प्लीज।
2: क्यों?
0: क्योंकि ना अब मेरा शो आने वाला है जो मैंने कल ही रिकॉर्ड किया था।
2: अच्छा, इतने दिनों से तुम्हें अब याद आई है रेडियो की?
0: मेरा बहुत मन कर रहा है मेरा खुद का शो सुनने का।
2: अच्छा अच्छा, हम भी सुनते हैं, काफी अच्छा होगा ना।
0: हाँ।
3: तुम्हें पता है इंसान की खून की गति 65 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है।
0: यानी कि वो 65 किलोमीटर प्रति घंटे में
3: प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है हमारे शरीर के अंदर।
0: अरे वाह, कितना मजा आया मुझे और कितनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिली, और हमारे दोस्तों को भी मुझे लगता है अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी।
3: हाँ बिल्कुल, जरूर मिली होगी।
0: तो दोस्तों, बातों को अभी यही ठहराते हैं,
3: विराम देते हैं।
0: हाँ, और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
3: सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन उड़ान के साथ।
0: आपने लास्ट टाइम कब शो रिकॉर्ड किया था?
2: मैंने तो याद नहीं मुझे ठीक से। हाँ, काफी समय हो गया।
0: और विदान भी आपने?
1: मैंने तो सितंबर के पहले वीक में रिकॉर्ड किया था, क्योंकि मेरे फिर एग्जाम्स आने लगे।
0: ओह हाँ, अभी तो मेरे एग्जाम्स भी खत्म हुए हैं।
4: हेलो बच्चों।
0: हाय दीदी।
1: हेलो दीदी,
4: कैसे हो आप लोग?
1: मैं ठीक हैं,
2: आप कैसे हो?
4: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बट मैंने आप लोगों की बातें दूर से सुनी।
0: ओ, आपने हमारी बातें सुन ली?
4: हाँ, और लग रहा है मुझे रेडियो के प्रोग्राम सब लोग अपने बहुत याद कर रहे हैं।
0: बहुत ज्यादा, हम कितना मस्ती करते थे प्रोग्राम रिकॉर्ड करते समय।
4: तो चलो एक काम करते हैं, आज अपनी रेडियो की मेमोरीज के बारे में बात करते हैं।
0: हाँ ठीक है,
4: ठीक है। तो रेडियो की मेमोरीज के बारे में बात करने से पहले पहले अपने बारे में कुछ बताओ आप लोग। दृष्टि?
0: मेरा नाम दृष्टि अरोरा है और मैं 7th में पढ़ती हूँ और सेंट जॉन्स में पढ़ती हूँ।
1: हाँ, मेरा नाम वेदांत है, मैं 11th साइंस में पढ़ता हूँ BS मेमोरियल स्कूल में।
2: मेरा नाम पंकज है और मैं 12th साइंस में पढ़ता हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आबू रोड में।
4: अच्छा, और आप लोग कब से रेडियो पे आ रहे हो? पहले वेदांत आप बताओ।
1: मैं सबसे पहले रेडियो में तब आया जिस समय रेडियो मधुबन में क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा था, दिसंबर में आया था 2012 में आया, और बहुत मजा आया था। सबसे पहले जो दीदी थी जिनसे मैं मिला वह थी सुभाश्री दीदी, और फिर सुभाश्री दीदी ने मुझे सबसे मिलाया, पूरी टीम से मिलाया। और दीदी, सबसे ताजुब की बात तो यह है कि उस समय टीम बहुत छोटी थी, लेकिन अब देखो हमारे पूरा परिवार बन गया है, कितने सारे लोग हो गए हमारे यहाँ।
4: अरे वाह, मतलब आपकी तो बहुत लंबी लंबी मेमोरीज है रेडियो के साथ। और दृष्टि आप बताओ।
0: मैं इसी मार्च में आई हूँ अभी।
4: अच्छा।
0: और मैं सबसे पहले कृष्णा दीदी से मिली थी, विशाल भैया ने मुझे उनसे मिलाया था, और कृष्णा दीदी ने हमें सब कुछ स्वीटली बताया और हमारे साथ बहुत अच्छे से काम किया। और पंकज भैया, आप कब आए थे?
2: मैं 5 अप्रैल को यहाँ आया था मम्मी के साथ। मम्मी इसलिए लेके आई थी क्योंकि मैं घर पे बहुत तोड़म फाड़ी करता था, और फिर उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ रेडियो मधुबन आके कुछ सीखूंगा और मेरे टाइम का कुछ यूज करूंगा जो मुझे फ्री टाइम मिलता है। मैं रेडियो मधुबन से ऐसे जुड़ा।
0: वैसे रेडियो में रिकॉर्डिंग्स करने को बहुत सारा मजा आता है, हम सारे फ्रेंड्स मिलके बहुत ज्यादा ही मस्ती करते हैं।
2: मस्ती तो करते ही हैं, लेकिन साथ में हमें बहुत कुछ सीखने को भी तो मिलता है।
0: हाँ, कृष्णा दीदी ने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है, जैसे कि स्टोरीज को और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना, और मेरी हिंदी थोड़ी वीक थी पढ़ने में, उन्होंने बहुत अच्छी बनाई।
1: सबसे बड़ी बात कि हमारे फ्रेंड्स इतने कम थे, जब हम रेडियो में जुड़े तो श्रोता जो हमारे थे वो भी हमारे फ्रेंड बन गए।
0: हाँ।
4: और पंकज आपने क्या सीखा?
2: म्यूजिक सीखा मैंने तो, खास करके मुझे म्यूजिक से बहुत लगाव था पहले से ही, लेकिन रेडियो मधुबन से जुड़ने के बाद मेरी म्यूजिक में काफी इम्प्रूवमेंट हुआ।
0: ये सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक क्लासेस की वजह से है जो कृष्णा दीदी ने लगवाई है।
4: अच्छा, आपने म्यूजिक सीखा। और एक बात और बताओ, आप लोगों ने जब शोज के रिकॉर्डिंग्स की, उस दौरान भी आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा?
0: बहुत कुछ।
4: क्या सीखा बताओ?
0: शो को कैसे स्टार्ट करना है, हमेशा बातों को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, और हर चीज में न्यू इन्फॉर्मेशन देनी है।
1: और हमने यह भी सीखा कि कैसे हम एडिटिंग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और कैसे हर एक शो को शुरुआत कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर किसी का इंटरव्यू लेना है तो कैसे ले सकते हैं। और हम सबकी इंग्लिश भी बहुत इम्प्रूव हुई है रेडियो मधुबन में, क्योंकि कभी कभी कुछ दो तीन वर्ड्स हम इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश भी थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है।
4: और जो शो आप करते हो उसमें आप बच्चों को बहुत कुछ सिखाते भी हो, है ना विनंत?
1: जैसे उड़ान में हम लोग वर्ड पावर वगैरह सिखाते हैं तो बच्चों को बहुत इम्प्रूवमेंट होता है।
4: तो दूसरों को सिखाने के लिए पहले हमें भी सीखना पड़ता है। और पंकज आपने क्या क्या सीखा रिकॉर्डिंग्स के टाइम?
2: रिकॉर्डिंग्स के टाइम तो मैंने यही सीखा कि मेरे पहले काफ़ी वर्ड्स रिपीट हो जाते थे, लेकिन उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ। और इसके अलावा भी बोलने के तरीके में इम्प्रूवमेंट हुआ।
4: बोलने का तरीका सीखा हमने। बोलने का तरीका तो हर जगह काम आता है ना?
0: हाँ जी।
4: अच्छा अब ये बताओ, इतना कुछ सीखने के साथ इतने दिन आप लोग आए हो, इतने साल महीने आप लोग आए हो, तो मस्ती तो बहुत की होगी।
0: बहुत ज्यादा
2: अनलिमिटेड है।
4: तो वो सबसे ज्यादा हंसी वेदांत को आ रही है, तो वेदांत ये बताओ सबसे ज्यादा मस्ती कब की थी? वो वाला मोमेंट कौन सा था जो आपको अभी तक याद है?
1: सबसे ज्यादा मस्ती हम लोगों ने तब की थी जब हम लोगों को दीदी सिखा रही थी कि कैसे स्टोरी कंटिन्यू करना है। जैसे कोई एक स्टोरी शुरू करता फिर उसको कंटिन्यू करते ना स्टोरी, तो उसमें हम लोग जैसे दीदी ने स्टोरी शुरू की, फिर हम लोग ने उसको कहाँ से कहाँ, गाँव से जंगल, जंगल से फिर सिटी, और फिर कहाँ कहाँ उस स्टोरी को कंटिन्यू करा। खूब मस्ती आई थी उस दिन।
4: अच्छा ये आपने ट्रेनिंग के दौरान सीखा है विदान?
1: बिल्कुल दीदी, गर्मी की छुट्टी में जिस समय ट्रेनिंग चल रही थी हम लोगों की।
4: अरे वाह, मतलब ट्रेनिंग में लर्निंग भी और मस्ती भी।
2: उसमें तो मुझे भी बहुत मजा आया था, वो जो पपेट के साथ स्टोरी बना रहे थे।
0: हाँ, उसमें तो सच्ची बहुत मजा आया था। वो पपेट्स को मतलब हिलाना भी था हर साल, इतने क्यूट पपेट्स थे, हम लोग इतना मस्ती कर रहे थे पपेट्स के साथ।
4: अच्छा पंकज आप बताओ क्या किया आप लोगों ने उस टाइम?
2: हम पपेट्स के साथ स्टोरी बना रहे थे, जैसे एक पपेट है जो एक राजा की तरह होता है, और एक कुछ भी मतलब जैसे एक मंकी है तो उसके लिए भी स्टोरी, और मैंने स्टोरी बनाई थी एक मंकी और एक क्रोकोडाइल के ऊपर।
4: अच्छा मतलब पपेट्स के साथ आपको स्टोरी बनानी थी?
2: हाँ दीदी।
4: और सबसे अच्छी स्टोरी किसकी बनी थी?
2: सबकी मजेदारी थी।
0: हाँ, क्योंकि सबकी स्टोरी कहीं से कहीं पहुंच जाती थी, समझ ही नहीं आता था स्टोरी स्टार्ट कहाँ से हुई, खत्म कहाँ से हुई।
4: हाँ लेकिन ये आर्ट भी आप लोगों ने सीखी है, स्टोरी बनाने की आर्ट।
1: और
4: हाँ।
1: कई बार तो पपेट मंकी है तो फिर शेर बन जाता था किसी न किसी से।
4: अच्छा और दीदी के साथ या फिर जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते थे उसमें भी तो आप लोगों ने बहुत सारी मस्ती की होगी?
2: रिकॉर्डिंग में तो बिल्कुल मस्ती नहीं की।
4: अच्छा दृष्टि तो आप बताओ क्या मस्ती की?
0: हम लोग क्या करते थे कि रिकॉर्डिंग चल रही होती थी, हम बैठ जाते थे, बैठ कर फिर जो हम लोग बातें मस्ती सब शुरू हो जाती थी, नीचे से हंस रहे होते थे, दीदी बोलते थे क्या है ये, मत हंसो, दूसरे का डायलॉग ही खराब हो जाता था।
4: लेकिन हंसी नहीं रुकती थी, है ना?
0: नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
2: वेदांत को तो इतनी हंसी आती थी कि वो हंसते हंसते डायलॉग ही बोलता था।
4: और वेदांत आपको सबसे ज्यादा मजा कब आया?
2: एक दिन शायद ऐसा हुआ था कि आधे घंटे से ये एक ही डायलॉग बोल रहा था। क्योंकि इसको इतनी हंसी आ रही थी कि कंट्रोल ही नहीं हो रहा।
1: और डायलॉग बहुत छोटा सा था कि मेरे पापा ने मुझे ऐसा कहा।
4: कई बार छोटी छोटी चीजों में भी हमें बहुत मजा आता है ना, कोई बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती, कभी कभी मस्ती करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, सीखते सीखते भी हम बहुत मस्ती करते हैं, है ना?
0: हाँ जी, स्कूल में भी जैसे हम कितनी मस्ती करते हैं सीखते सीखते।
4: लर्निंग के साथ साथ मस्ती भी।
0: वरना हमेशा जब भी कोई हम लोग पढ़ते हैं तो मस्ती नहीं करते ना, तो मजा नहीं आता पढ़ने में या फिर कोई चीज करने में।
4: चलो इसके बारे में हम और भी बातें करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन सुन रहे हैं आप और शो चल रहा है बच्चों की दुनिया, जहां बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं हमारे साथ अपनी रेडियो की मेमोरीज। तो एक बात बताओ, आप लोगों को आए हुए बहुत अलग अलग टाइम हुआ है, किसी को 5 महीने तो किसी को 4 साल। सबसे पहले दिन जब आप लोग रेडियो में आए थे तो वो दिन तो जरूर याद होगा
1: अच्छे से एकदम।
0: तो दृष्टि बताओ, सबसे पहले दिन आप रेडियो में आए थे तो क्या किया था?
1: जब मैं सबसे पहले दिन रेडियो में आई थी तो मतलब शाम हो गई थी, 7 बज गए थे, और ना दीदी और सारे बच्चे ना मिलकर लाइब्रेरी बुक्स के ऊपर स्टैंप लगा रहे थे, और फिर वेदांत दिया जाकर उसको शेल्फ में अच्छे से रख रहे थे और जमा रहे थे बहुत अच्छे से।
0: और फिर आपने क्या किया?
1: फिर हम लोग मतलब दीदी ने बोला कि अभी तो जाने का समय हो गया, और आकाश भी और उन्नति दीदी अपने दूसरे शो की तैयारी कर रहे थे, और फिर हम लोग बैठे हुए थे तो हम लोग ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। फिर जब हम विदान भैया के पास गए तो विदान भैया ने बोला हमने तुम्हें कहीं देखा है। हमने उनको कितनी कोशिश करी याद दिलवाने की, लेकिन उनको याद ही नहीं आया।
0: मतलब आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा रहा सबके साथ।
1: हाँ जी, बहुत अच्छा। और मैं जिस दिन पहले दिन ही आई थी मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब ऐसे लग रहा था कि वही रहू, निकलो ही ना वहां से। इतनी अच्छे से सब लोग बात कर रहे थे और सब मस्ती कर रहे थे।
0: और पंकज आप बताओ।
2: मैं जब फर्स्ट दिन आया था तो मैं सबसे पहले कृष्णा दीदी से मिला, फिर उसके बाद आरुषि दीदी से मिला, फिर आरुषि दीदी ने मेरी ट्रेनिंग फर्स्ट दिन से ही स्टार्ट कर दी थी, और हम फर्स्ट दिन से ही पढ़ने के जो टेक्निक्स होते, तरीके होते, वो सीख रहे थे, रीडिंग एक्सरसाइज। तो हम लोगों ने फर्स्ट दिन से ही रीडिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया था, फिर उसके बाद सेकेंड दिन ओवरलैपिंग के ऊपर भी एक्सरसाइज करी थी, और तीसरे दिन हमने टंग ट्विस्टर किया था।
0: मतलब अपनी आवाज की क्लैरिटी के लिए हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की है ना?
2: हाँ दीदी,
0: बहुत सारी मेहनत।
2: फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद तो हमारा शो स्टार्ट हो गया था, बच्चों की दुनिया,
0: जो अभी भी चल रहा है,
3: अभी भी श्रोता सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल। और वेदांत आप बताओ, आपको आए हुए तो बहुत टाइम हो गया, तो फर्स्ट डे याद है आपको?
3: फर्स्ट डे याद है ना, क्योंकि रेडियो का फर्स्ट डे तो हर किसी को याद रहेगा, भले कितने भी साल हो जाए। सबसे पहले सुभाषी दीदी मुझे मिली, मैं एक्चुअली एक भैया के साथ आया था जो यहाँ पर एडिटिंग किया करते थे रेडियो मधुबन में, उनके साथ आया था। तो उन्होंने मेरे को सबसे पहले सुभाषी दीदी से मिलाया, फिर सुभाषी दीदी ने मुझे कृष्णा दीदी से मिलाया, और फिर यशन भाई जी से मिलाया, फिर धीरे धीरे मोना दीदी जी के साथ, पहले जब वो उड़ान करती थी तो उनके साथ थोड़े थोड़े वॉइसेस पोएम स्टोरी दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे शो ही शुरू हो गया उड़ान का मोना दीदी जी के साथ, और फिर अंकिता दीदी भी आई, और फिर दीदी अब जियो जिंदगी कर रही है, तो फिर मैं उड़ान करने लगा अकेले।
0: अच्छा मुझे ये बताओ, ये तो आपने फर्स्ट डे की बात की, आज आप लोगों को कौन सा ऐसा चेंज है जो अपने में दिखाई पड़ता है फर्स्ट डे से अब तक?
1: हमारे बहुत सारे वर्ड ओवरलैप नहीं होते।
0: अच्छा,
1: और बातें करते करते मतलब इतना होता था कि कोई कोई वर्ड साथ में ओवरलैप हो जाते तो पता ही नहीं चलता था वर्ड क्या बोल। लेकिन अभी इतना इम्प्रूवमेंट हो गया कि पता चल जाता है, हाँ ये वर्ड ओवरलैप हुआ, और अब ओवरलैपिंग थोड़ी कम हो गई है।
0: और पंकज आप बताओ।
2: और तो जैसे हम किसी पे कुछ कहना चाहते हैं, हम अपनी बातें किसी के सामने रखना चाहते हैं, तो हम कैसे उसके ऊपर थोड़ा इफेक्ट डालें, तो ये सब हमने सीखा, और हमारे बिहेवियर में भी काफ़ी चेंजेस आए।
0: मतलब हम अपनी बात दूसरों के सामने कैसे रखें ये हमने सीखा। कई बार हम सोचते तो हैं पर बोल नहीं पाते हैं ना, तो रेडियो से हमें ये भी समझ में आता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वेदांत आपने क्या सीखा?
3: हम लोग पहले जैसे मिक्सअप नहीं हो पाते थे, अब जब मिक्सअप होने लग गए हैं, कोई एक बात शुरू करता तुरंत फ्रिक्वेंटली हम उसे कैच करके बोल देते हैं, अरे ये तो हमारे साथ भी हुआ था, मतलब स्पॉन्टेनियस हम सब हो गए हैं, खूब ज़्यादा मिक्सअप हो गए एक दूसरे से। जैसे कई देशों के बारे में जाना, मतलब एक एक देश के बारे में जो हमने बताया, तो सबसे अच्छी लिटरेसी किस कंटिनेंट की रही अब तक, यूरोप की सबसे अच्छी लिटरेसी HDI रैंक रहा, ये सब हमने कुछ जो जनरल नॉलेज है वो हमने सीखा, क्योंकि उड़ान के स्पेशल में मोस्टली जनरल नॉलेज रहता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो भी अलग अलग जगह, मींस थोड़ी मोड़ी जगह जो हमें नहीं पता थी, कोणार्क वगैरह, इसके बारे में हमारे बड़े जानते हैं, वो अब हम भी जानते हैं।
0: मतलब हमारे GK भी इम्प्रूव होता
3: है बहुत ज़्यादा।
0: ये तो एक बहुत अच्छी लर्निंग है वेदांत की। और इसके साथ साथ आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा तो है ही, बट कुछ डिफिकल्टी भी थी जो आपने फेस किया, आपको लगा अरे मैं नहीं कर पाऊंगी या मुझे तो डर लगता है, ऐसा कुछ था कभी?
1: लाइव करते समय, क्योंकि जब हम रिकॉर्ड करके शो रखते हैं तो उसमें हम रिपीट भी कर देते हैं तो फिर वो कट जाता है, लेकिन लाइव करते हैं तो मतलब रिपीट कर ही नहीं सकते, तो लाइव करते समय एक वो रहता है, बहुत मुश्किल होती है, मुझे तो अभी भी डिफिकल्टी होती है उसमें।
0: लाइव करते समय थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे करते करते उसकी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप?
1: हाँ जी।
0: और पंकज?
2: मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वैसे फर्स्ट टाइम में हुई थी लाइव करते समय, लेकिन आप थी तो काफ़ी हिम्मत मिली थी।
0: मतलब थोड़ा सा डर लगा,
2: थोड़ा सा, फिर उसके बाद सब नॉर्मल।
0: उसके बाद नॉर्मल हो गया, मतलब एक बार हम कोई चीज़ कर लेते हैं तो वो डर खत्म हो जाता है। और वेदांत?
3: पहले जैसे हम लोग डरते थे थोड़ा माइक में कैसे बोलेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा नॉलेज तो था नहीं, हमें लगता था कि माइक में बोलेंगे वो तुरंत रेडियो में सुनाई देगा, इससे पहले हम लोग माइक के सामने आने से डरते थे। लेकिन अब इतने फ्रिक्वेंट हो गए कि स्कूल में भी अगर कोई कॉम्पिटिशन होता है डिबेट वगैरह का तो हम बहुत अच्छी तरह भाग लेते हैं और अच्छा प्राइज भी जीतते हैं। और लाइव वाली ये जो पहले मेरे साथ भी मेरे को डर लग रहा था कैसे बोलूँ कैसे बोलूँ, लेकिन अब आदत हो गई, अब बहुत अच्छे से लाइव भी होता है हम सबका।
0: अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है?
3: कॉन्फिडेंस बढ़ा है।
0: स्कूल में भी आप बोल देते हो?
3: स्कूल में भी, मतलब रेडियो में जो हम सीख रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली स्कूल में भी काम आ रहा है।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा अब ये बताओ, आप लोगों ने यहाँ इतना कुछ सीखा, आपने डर को फेस भी किया और बहुत सारी मस्ती भी की, आप लोग कौन कौन से शोज का हिस्सा रहे, क्या क्या एक्सपीरियंस आपने अभी तक किया? दृष्टि आप बताओ।
1: मैं उड़ान के शो में ही होती हूँ मोस्टली, हाँ, और एक हमारी ड्रामास थे वो, और मैं कॉमिक्स, उड़ान के बाद जो कॉमिक्स होती है उसमें भी थी, और उड़ान का एक स्पेशल लाइव शो आया था उसमें भी थी।
0: अरे वाह, ये तो बच्चों के बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने किए और वैरायटी भी। पंकज आप बताओ।
2: मैंने तो सबसे पहले बच्चों की दुनिया स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद उड़ान में कॉमिक्स में एक दो बार किया है, और गुड मॉर्निंग आबू भी कई बार लाइव किया मैंने, और बाल सभा भी किया है, और बाल सभा में जितनी मस्ती की है उतनी कहीं नहीं की है, इसलिए हमें बहुत अच्छे से याद है।
1: हाँ, ये तो पूरा का पूरा
3: बिल्कुल।
0: और वेदांत आपने?
3: मेरा सबसे पहला शो तो उड़ान था, फिर एक बार मदर्स डे था, मदर्स डे में एक बार आशियाना में भी था थोड़ी देर के लिए, और फिर खुशी के नगमे में भी एक बार बज रहा था संगीत तो भाई जी ने एक बार रखा था, फिर गुड नाइट विद दादी माँ, और पहले एक शो आता था नन्ही परी सोने चली, और बाल सभा। और दीदी हम सब तो एक चीज़ भूल ही गए, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था 15 अगस्त को, हम लोगों ने रेडियो मैराथन रखा जो 24 घंटे लाइव था, हम सब उसमें भी थे, दृष्टि भी थे, यश भी थे, और सब जितने भी आजेस थे सब ने लाइव किया था उस दिन।
0: मतलब साथ में सब ने सहयोग करके एक बहुत बड़ा इवेंट किया
3: बिल्कुल रात तक,
0: मतलब आप लोगों ने बहुत मेहनत की। चलो अपने लिए एक बार जोर से तालियां बजा दो। अच्छा अब ये बताओ, यहाँ तक तो आपकी बहुत लर्निंग हुई, अब आगे आप लोगों के क्या प्लान्स है, फ्यूचर में क्या करना चाहते हो?
1: मुझे फ्यूचर में रेडियो पे प्रोडक्शन सीखनी है और बहुत अच्छा आरजे बनना है, मेरा बहुत मन है आरजे बनने का।
0: प्रोडक्शन भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये तो बहुत अच्छी बात है दृष्टि। पंकज आप बताओ।
2: मैं भी एक बहुत ही अच्छा आरजे बनना चाहता हूँ।
0: आप बहुत अच्छा आरजे बनना चाहते हो, जिसके लिए और बहुत सारी मेहनत करनी है ना पंकज?
2: हाँ दीदी।
0: और वेदांत आप बताओ।
3: जैसे कि हम जानते हैं कि आरजे मतलब हर फील्ड की नॉलेज
0: और बहुत सारी टेक्निकल स्किल्स भी सीखनी पड़ेंगी। तो आगे के एम्स तो आप लोगों के बहुत अच्छे हैं, और इसकी प्रिपरेशन के लिए भी आप लोग तैयार हैं, तो ये और भी अच्छी बात है। तो इस जोश को हमेशा हमें बनाए रखना है अपनी लाइफ में, और बहुत कुछ नया सीखते जाना है।
1: हाँ दीदी।
0: चलो इसी के साथ हम हमारी बातों को यहीं समाप्त करते हैं, और फिर से मिलेंगे अगली कड़ी में और बात करेंगे एक नए टॉपिक पे बच्चों की दुनिया में। तब तक के लिए बाय बाय।

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है, वह फिसल गया और उसके हाथ से

अंगिरा अर्थात ब्रह्मा के 10 मानस पुत्रों में से एक, सप्त ऋषियों में से एक ऋषि। इन्होंने स्मृतियों की रचना की थी, इसलिए इन्हें स्मृतिकार भी कहा जाता है। अंतेवासी गुरुकुल या आश्रम में रहने वाला छात्र। अम्बरीश सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु की 28वीं पीढ़ी में भगीरथ के पौत्र, मांधाता के पुत्र और परम वैष्णव भक्त। अति मानवीय अर्थात मानवेतर या अलौकिक। अनात्मवाद यानी यह वाद आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, शरीरांत के साथ आत्मा का नाश हो जाता है। अनासक्त अर्थात निर्लिप्त या उदासीन। अनित्य यानी नश्वर या अस्थिर। अनुद्विग्न यानी शांत, चिंता रहित। अपवर्ग यानी मोक्ष। अभिनिष्क्रमण अर्थात संसार से विरक्ति, गृह त्याग। अभिभूत यानी चकित या भौंचक्का। अभीष्ट अर्थात चाहा हुआ या मनोरथ। अभ्यर्थना अर्थात अनुरोध या विनती। अभ्युदय यानी वृद्धि, उत्तरोत्तर उन्नति। अमात्य यानी मंत्री। अर्हत अर्थात जीवन मुक्त, मुक्त पुरुष, जिसने जीवन में ही निर्वाण प्राप्त किया है और जीवन के बाद भी निर्वाण को ही प्राप्त होगा। या बौद्ध पुरोहित। अर्हता अर्थात योग्यता। परम ज्ञान किसी पद के लिए वांछित विशेष योग्यता। अलकतक यानी पैरों में लगाने का लाल रंग। महावर या आलता। अश्विनी कुमार अर्थात दो भाई जो आयुर्वेद के आचार्य एवं देवताओं के वैद्य हैं। अष्टांग मार्ग यानी 8 अंगों वाला मार्ग। 1 सम्यक दृष्टि, 2 सम्यक संकल्प, 3 सम्यक वाणी, 4 सम्यक कर्म, 5 सम्यक आजीविका, 6 सम्यक व्यायाम, 7 सम्यक स्मृति और 8 सम्यक समाधि। आत्मवेत्ता अर्थात आत्मज्ञानी। आर्तनाद यानी दर्द भरी पुकार। इक्ष्वाकु यानी पुराणों के अनुसार वैवस्वत मनु का पुत्र जो सूर्यवंश या इक्ष्वाकु वंश का प्रवर्तक था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। उत्ताल अर्थात ऊंची। उपदेष्टा यानी उपदेशक। उपनयन संस्कार अर्थात हिंदू धर्म के अनुसार मानव जीवन के 16 संस्कारों में से एक। इसमें यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात बालक को विद्याध्ययन करने के लिए भेजा जाता है। कंटकाकीर्ण अर्थात कांटों से भरा हुआ, बाधायुक्त। कार्तिकेय यानी शिव के पुत्र, जिनका पालन पोषण चंद्रमा की स्त्रियों कृत्तिकाओं ने किया था, इसी कारण यह कार्तिकेय कहलाता है। तारकारी, षणमुख और कुमार इनके अन्य नाम हैं। काश्यप अर्थात एक प्रजापति का नाम जो रामायण और महाभारत के अनुसार ब्रह्मा के पौत्र और मारिच के मानस पुत्र थे। कुबेर धनाध्यक्ष तथा उत्तर दिशा के स्वामी माने जाते हैं। इन्होंने अलकापुरी बसाई थी। पृष्ठ संख्या 81। कौंडिल्य पंचवर्गीय भिक्षु, गौतम बुद्ध के अनुयायी।

चातुर्मास। वर्षा के चार महीनों का संयुक्त नाम चातुर्मास है। इन महीनों में विभिन्न नियमों यानी भोजन तथा कुछ आचार व्यवहारों का निषेध का पालन होता है। च्यवन यानी भृगु ऋषि और पुलोमा के पुत्र जो एक प्रसिद्ध ऋषि थे। बलवर्धक च्यवन प्राश औषधि इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। जरावस्था यानी वृद्धावस्था। जितेंद्रिय यानी जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया हो। संयमी। ज्योतिष्क यानी देवताओं का वर्ग। तत्व ज्ञान अर्थात आध्यात्म ज्ञान। तीन तत्व, एक ईश्वर या सर्वात्मा, दो चित्त अर्थात आत्मा, और तीन अचित्त यानी जड़ प्रकृति संबंधी ज्ञान। तात अर्थात पिता, आदरणीय व्यक्ति, एक संबोधन जो बराबर के लोगों या अपने से छोटों के लिए प्रयुक्त होता है। तृष्णा अर्थात प्यास। त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम, इन तीनों की प्राप्ति ही मनुष्यों का संपूर्ण पुरुषार्थ है। पर बुद्ध के अनुसार त्रिवर्ग नाशवान हैं और उनसे तृप्ति नहीं होती। दुंदुभी अर्थात डंका या नगाड़ा। ध्यान योग यानी ध्यान लगाने की योग क्रिया। ध्यान अवस्थित अर्थात ध्यान मग्न। नंदन वन यानी स्वर्ग में स्थित देवराज इंद्र का उपवन। नंदीग्राम, अयोध्या के निकट एक गांव जहां भरत ने 14 वर्ष तक तपस्या की थी। निरस्त अर्थात अस्वीकार। निरोध यानी वश में करने की क्षमता। निर्वाण यानी मोक्ष। निवृत्त अर्थात विरत, मुक्त। नैरंजना, गया, बिहार के निकट बहने वाली फल्गु नदी का पुराना नाम। नैष्ठिक अर्थात उपनयन से लेकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी। निष्ठावान, किसी व्रत के अनुष्ठान में लगा हुआ। परमार्थ अर्थात मोक्ष। उत्कृष्ट वस्तु, यथार्थ तत्व। परशुराम, राजा प्रसेनजीत की पुत्री रेणुका और जन्मदग्नि ऋषि के पुत्र। परिनिर्वाण अर्थात पूर्ण निर्वाण या मोक्ष। परिव्राजक अर्थात भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने वाला सन्यासी। पर्यंक मुद्रा, योग का एक आसन, बैठने की एक मुद्रा जिसमें धनुषधारी अपना एक घुटना मोड़कर और दूसरी टांग को पीछे रखकर बाण चलाता है। पितृ ऋण, पुत्र उत्पन्न करने से होने वाली ऋण मुक्ति। पुराकाल यानी पुराने समय में, प्राचीन समय में। पुरुष सिंह यानी मनुष्यों में श्रेष्ठ। पुष्परिणी अर्थात छोटा जलाशय, कमल युक्त जलाशय। प्रज्ञा यानी बुद्धि। प्रतीति अर्थात जानकारी या ज्ञान। प्रत्यास्मरण यानी पुनः स्मरण। प्रातिमोक्ष यानी आचरण संहिता, साधुओं के लिए नियम। पृष्ठ संख्या 82। बलि, दैत्यों का एक राजा भक्त प्रहलाद का महाप्रतापी पौत्र, जिससे अश्वमेध यज्ञ के समय भगवान विष्णु ने वामन रूप में 3 पग भूमि दान में मांगी थी। बांबी, सर्प का बिल। बृहस्पति, सौर मंडल का 5वां और सबसे बड़ा ग्रह, एक ऋषि जो देवताओं के गुरु माने गए हैं। ब्रह्मवेत्ता यानी ब्रह्म को जानने वाला। भृगु
अर्थात प्रसिद्ध मुनि जो ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। परशुराम इन्हीं के वंशज थे। भिक्षु वह सन्यासी जो भिक्षा द्वारा प्राप्त पदार्थ का सेवन करता है। मंगलाचरण कार्यारंभ के पूर्व की जाने वाली मंगल स्तुति। मध्य या मध्यम मार्ग तप और भोग इन दोनों अंतों के बीच का मार्ग। मल्ल एक वीर क्षत्रिय जाति जिसका कुशीनगर उत्तर प्रदेश के पास राज्य था। महावृक्ष यानी पीपल वृक्ष। मानधाता सूर्यवंशी राजा युवनाश्व के पुत्र जिसकी राजधानी अयोध्या थी। मार बौद्ध मत में कामदेव को मार कहते हैं जो पौराणिक कामदेव से भिन्न है और मोक्ष प्राप्ति में एक प्रकार से शैतान की भूमिका निभाता है। मुमुक्षु अर्थात मोक्ष की कामना करने वाला। मृगदाव अनेक मृगों वाला वन। राजगृह बिहार में पटना के निकट एक प्राचीन स्थान जो बौद्धों का तीर्थ स्थल है। लिच्छिवी प्रसिद्ध राजवंश जो प्राचीन मगध के आसपास का क्षेत्र था और जिसका विस्तार नेपाल के पूर्वी मार्ग तक था। उसका वर्तमान क्षेत्र मुजफ्फरपुर और वैशाली बिहार हैं। वज्रबाहु दशार्ण देश का एक राजा जिसने अपनी पत्नी और पुत्र के रोगग्रस्त होने पर उन्हें वन में त्याग दिया था। वामदेव एक वैदिक ऋषि। वाल्मीकि रामायण के रचनाकार आदि कवि मुनि। विषाक्त यानी विषयुक्त विष में बुझा हुआ। वृज्जी अर्थात एक प्राचीन जाति जिसकी राजधानी वैशाली थी वर्तमान मुजफ्फरपुर बिहार। शाक्य मुनि शाक्य वंश में अवतीर्ण होने के कारण गौतम बुद्ध शाक्य मुनि कहलाते थे। शावक पशु पक्षी का बच्चा। शुक्र एक बहुत ही चमकदार तारा। शुक्राचार्य दैत्य गुरु। श्रावस्ती श्री राम के पुत्र की राजधानी जो उत्तर कोसल के गंगा तट पर बसी हुई थी वर्तमान बलरामपुर उत्तर प्रदेश। श्रेयस्कर यानी कल्याणकर या मंगलकारी। सम्यक आचरण उपयुक्त आचरण। सर्वार्थ यानी सभी प्रकार के पदार्थ और योग के विषय। सार्थवाह यानी व्यापारी। सिद्ध योगी यानी अलौकिक शक्तियों से संपन्न योगी। सुमंत यानी राजा दशरथ के मंत्री तथा सारथी। सुमेरु पर्वत एक कल्पित स्वर्ण पर्वत जिसे पर्वतों का राजा कहा गया है। सूर्यकांत मणि एक प्रकार का स्फटिक जिसे सूर्य के सामने करने से आंच निकलती है। संक्षिप्त बुद्ध चरित। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित का ध्वनि पाठ। वाचन स्वर अजीत होरो। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। ध्वन्यंकन विकास सांगवान। निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए आप बात करते हैं। 14 जुलाई की कुछ खास बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा और आज चंद्रभानु गुप्ता EMS नम बुद्धिपात, देशबंधु गुप्ता, गोपाल गणेश अगरकर, कैलाश चंद्र जोशी, शंकर राव चौहान, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही मदन मोहन, लीला चिटनीस, रमन विश्वनाथन, राजा लक्ष्मण सिंह, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज कुछ खास बातें आपको शेयर करेंगे कुछ खास लोगों की और साथ ही साथ एक सुंदर विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। शाम का समय है और आप सभी को इस शाम को यादगार बनाने के लिए आइए एक अच्छे विचार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जिस दिन आपके साइन ऑटोग्राफ में बदल जाएंगे उस दिन आप बड़े आदमी बन जाएंगे। तो चलिए इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आइए एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत अभी आपके लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर कार्यक्रम, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए चंद्रभानु गुप्ता के बारे में अब जानकारी हासिल करते हैं। और ये एक राजनीतिक है और भारत के बहुत ही पॉपुलर आज़ादी के दीवाने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इन पर आर्य समाज का बहुत गहरा प्रभाव था और 1926 में विशेष चंद्र भानु गुप्ता जो है अध्यक्ष बन गए और अखिल भारतीय कमेटी के सदस्य बन गए। कई अलग अलग विभागों में इन्होंने अपना जो है काम किया और इस तरह से मंत्री बने रहे। और 1960 और 63 के बीच में उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री का कारोबार संभाले। समाज सेवा के क्षेत्र में भी अनेक काम किए। लखनऊ और गोरखपुर जैसे शहरों को आधुनिक व विकसित बनाने का पहल करने वाले सीबी गुप्ता को लोग मजबूत प्रशासन, जुझारू नेतृत्व और बड़प्पन के लिए आज भी याद करते हैं। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। चंद्रभानु गुप्ता को आज ही के दिन 14 जुलाई 1902 को उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले में बिजौली नामक एक गांव में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम हीरालाल था और चंद्रभानु जी के पिता को अपने समाज में बहुत ही सम्मान और मान प्रतिष्ठा प्राप्त थी। चंद्रभानु गुप्ता के चरित्र निर्माण में आर्य समाज का बहुत बड़ा गहरा प्रभाव था। भावी जीवन में आर्य समाज के सिद्धांतों को उनके मार्गदर्शन मिले उनके जीवन को और उनकी आरंभिक शिक्षा लक्ष्मीपुर खीरी से हुई और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लखनऊ चले गए, जहां उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए और एलएलबी की परीक्षा पास की। उसके बाद नवाबों का शहर लखनऊ ही उनका कार्यक्षेत्र फिर बन गया। इस तरह से वकालत के साथ साथ राजनीति में प्रवेश कर गए और प्रसिद्धि प्राप्त हुई तो मुख्यमंत्री तक इन्होंने सफर तय किया। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। और फिर उनकी जो रुचि थी वो मुख्य जो है संस्थाओं के साथ जुड़कर काम करने का, तो लखनऊ में बाल संग्रहालय इन्होंने स्थापित किया, मोतीलाल मेमोरियल हॉस्पिटल, बाल विद्या मंदिर, नवचेतन बिल्डिंग, नेशनल कॉलेज, टीबी हॉस्पिटल, रविंद्रालय। सिर्फ यही नहीं, राजधानी लखनऊ का केडी सिंह बाबू स्टेडियम भी चंद्रभानु गुप्ता जी की मेहनत का फल है। और इनके कार्य को देखते हुए काफ़ी विरोधियों का मदद भी इनको मिला, जिसकी वजह से ये सफल बने। और कठिन निर्णय इन्होंने लिए थे 1969 में, संपूर्ण देश में विशेष रूप से विभाजित और जो चीज़ें थी, और उम्मीदवार के रूप में इनको सक्रिय सहयोग और एक वर्ग के समर्थक से भी गिरी देश में राष्ट्रपति चुने गए। और गुप्ता जी के लिए बड़े कठिन निर्णय का घड़ी था। वे सदा से ही संगठन से जुड़े रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके साथी विभाजन के बाद भी पुरानी संस्था से ही अडिग हैं, तो उन्होंने भी इसका जो है जमकर विरोध किया और पुराने समर्थकों के साथ रहना ही उचित समझ लिया। चंद्रभानु गुप्ता जी ने अपनी वसीयत में ये भी लिखा था, मेरा सफर जो कभी रुका नहीं, झुका नहीं, न जाने कब मंजिल प्राप्त कर ले और जीवन की संध्या छा जाए। मेरा जीवन एक भिखारी का जीवन रहा है। मेरे देश के विशेष रूप से इस प्रदेश के लोगों ने मुझे अपार स्नेह और सम्मान दिया है। उन सभी देशवासियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मैंने दो संस्थाओं, भारत सेवा संस्थान व मोतीलाल मेमोरियल हॉस्पिटल को जन्म दिया। जो कुछ मेरा अपना कहने योग्य था वो सब भारत सेवा संस्थान और मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी का हो चुका है। अब पान दरबारी स्थित केवल एक मकान सेवा कुटीर मेरे निजी अचल संपत्ति के रूप में रह गया है, जिसका एकमात्र स्वामी मैं हूँ। ये भी देश की गरीब जनता को अर्पित है। मेरा नाम जो भी धन बैंकों में खातों में मेरे अंतिम क्षणों में होगा, वो मेरी अंत्येष्टि में सदा सादगी के साथ व्यय करने के बाद बाकी समाज के व्यय में लग जाएगा। तो ये उनका ये का जो है वसीयत नाम का पत्र था समाज के लिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम और ये चंद्रभानु जी उत्तर प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने वाले ख्याति प्राप्त समाज सेवक 11 मार्च 1980 को इस दुनिया से अलविदा कर दिया। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर, सफर कार्यक्रम को सुनते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू कर दे, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब किसी की देश सेवा के भावनाओं को आखिरी पत्र जो है चंद्र भानु गुप्ता का सुनकर बड़ा अच्छा लगा, और भीनी भीनी जो है उनके लिए श्रद्धा सुमन भी समर्पित करती हैं। आइए देश बंधु गुप्ता के बारे में अब बात करते हैं। बहुत ही पॉपुलर राष्ट्रभक्त, आज़ादी के सेनानी और पत्रकार थे। अपने विद्यार्थी जीवन में ही देश बंधु गुप्त राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े थे। उनसे प्रभावित होकर ही लाला लाजपत राय ने उन्हें अपने साथ ले लिया था। गुप्त जी में संगठन करने की बड़ी क्षमता थी, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया, और फिर 1945 में ही ये जेल से बाहर आ सके। एक पत्रकार के रूप में भी देशबंधु गुप्त जाने जाते थे। स्वामी श्रद्धानंद ने उन्हें राष्ट्रीय पत्र तेज का संपादक नियुक्त किया था, और 1948 में अखिल भारतीय समाचार पत्र संपादक सम्मेलन के अध्यक्ष भी आप चुने गए थे। गुप्त जी हमेशा जाति प्रथा का विरोध करते रहे, और देशबंधु गुप्ता की जन्म जो है 14 जुलाई 1900 को पानीपत हरियाणा के एक व्यापारी परिवार में हुआ। उनके पिता लाला सदीलाल पक्के आर्य समाजी थे। इनके घर में वैदिक रीति रिवाजों का पूरी तरह से पालन होता था, जिसका मूल प्रभाव देशबंधु गुप्ता के जीवन पर हमेशा पड़ा रहा। देशबंधु गुप्ता की शुरुआती शिक्षा अपने व्यवसायी लिखी पढ़ी प्रचलित महाजनी लिपि में हुई, फिर वे नगर पालिका है उसमें अपने बाकी की पढ़ाई अम्बाला के आर्य वैदिक स्कूल में भर्ती हो गए। देशबंधु गुप्त ने उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली में हिंदू कॉलेज में प्रवेश ले लिया, और जीवन का एक निर्णायक मोड़ तब आया जब आंदोलन और गिरफ्तारी। गुप्ता जी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तब उसी अवधि में कई इतिहास प्रसिद्ध घटनाएं घटी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में रॉयल एक्ट के विरोध में पहला व्यापक आंदोलन चला। जलियांवाला बाग में भीषण हत्याकांड हुआ, और भारत की प्रबुद्ध जनता ने एक बार एक स्वर से ब्रिटिश राजकुमार की भारत यात्रा का विरोध किया। विद्यार्थी जीवन में ही देशबंधु गुप्त राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े और गिरफ्तार कर लिए गए, और फिर लाला जी के साथ इनकी बातचीत हुई, वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई। लाला जी की बातों से, ये लाला लाजपत राय की बातों से गुप्ता जी काफ़ी प्रभावित हुए, और इनकी प्रतिभा ही थी जिससे प्रभावित होकर लाला जी ने उन्हें अपने साथ ले लिया, और देशबंधु गुप्त को आर्य समाज के बहुत ही पॉपुलर नेता तथा देशभक्त स्वामी श्रद्धानंद के साथ जेल में रहने का अवसर मिला। फिर महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर वो प्रभावित हुए। उनके विचारों को प्राचीनता और आधुनिकता के संयुक्त दर्शन होते थे। फिर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया पत्रकारिता का, जाति प्रथा के विरोध काम किया, और दुर्भाग्यवश 1951 में एक विमान दुर्घटना में देश बंधु गुप्त का देहांत हो गया। यदि ये विमान दुर्घटना न घटी होती तो वही दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री बने होते। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: आप हो रेडिया रेडियो मधुबन 107.8 FM खबरता रेडियो ने मुस्कुराता रेडियो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए, देश बंधु के बारे में सुनकर भी अच्छा लगा होगा। आज कई ऐसे आज़ादी के दीवाने, उनका जन्मदिन है और एक खास व्यक्ति के बारे में, गोपाल गणेश सागरकर के बारे में बात करेंगे। आज सातारा में इनका जन्म हुआ था और भारत के प्रसिद्ध समाज सेवकों में से इनका नाम आता है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने प्रसिद्धि पाई थी और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सहपाठी और उन्हें असिस्ट करते रहे। उन्होंने सुधारक नामक एक साप्ताहिक पत्रिका निकाला। गोपाल गणेश अग्रकर जी 1892 में फर्गुंस कॉलेज पुणे के प्रधान अध्यापक बनाए गए थे और फिर इस पद पर वे अंत तक रहे। लोकमान्य बाल गंगाधर के सहपाठी सहयोगी गोपाल गणेश अग्रकर का जन्म आज ही के दिन 1956 14 जुलाई को महाराष्ट्र में सातारा जिले में तेमू नामक स्थान पर हुआ। पुणे के दक्कन कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की इन्होंने। अपने विद्यार्थी जीवन में ही देश और समाज की सेवा का प्रण ले लिया था। फिर उसके बाद देश सेवा के लिए प्रकाशन का कार्य एक मजबूत स्तंभ का काम करेगा, इसलिए उन्होंने पत्रकारिता का कार्य संभालते हुए शिक्षा पूरी करने के बाद 1880 में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई। अपने विचारों के प्रचार के लिए गोपाल कृष्ण अग्रकर जी ने उनके पास इतना पर्याप्त नहीं था कि वो कुछ और कर सके, लेकिन 2 जनवरी 1881 में उन्होंने अंग्रेजी साप्ताहिक मराठा का और 4 जनवरी से मराठी साप्ताहिक केसरी का प्रकाशन शुरू किया, जिससे उन्होंने आज़ादी का बुगुल बजाना शुरू कर दिया। और 1894 में दक्कन सोसाइटी की स्थापना हुई और दूसरे वर्ष फर्गुन कॉलेज अस्तित्व में आया। गोपाल गणेश अग्रकर तथा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आदि इस कॉलेज के प्रोफेसर थे। साप्ताहिक पत्र केसरी के संपादन में भी गोपाल गणेश अग्रकर लोकमान्य तिलक के निकट सहयोगी थे, परंतु बाल विवाह और विवाह की उम्र बढ़ने के प्रश्न पर अग्रकर जी का तिलक से मतभेद हो गया। इस मतभेद के कारण 1887 में साप्ताहिक पत्र केसरी से अलग हो गए। अब उन्होंने स्वयं का सुधारक नामक एक नया साप्ताहिक निकाला आरंभ किया और 1890 में लोकमान्य तिलक ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी छोड़ दी। समाज सुधार कार्य के लिए गोपाल गणेश अग्रकर 1892 में फर्गुंस कॉलेज के प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए और वे जीवन पर्यंत इसी पद पर रहकर अग्रकर जी बड़े उदार विचारों के व्यक्ति थे। उन्होंने छूत अछूत और जाति प्रथा का खुलकर विरोध किया। विधवा विवाह के पक्षपति थे। उनका कहना था कि लड़कियों की विवाह की उम्र 20-22 वर्ष या लड़कों की उम्र 20-22 और लड़कियों की 15-16 होनी चाहिए। 14 वर्ष तक की अनिवार्य शिक्षा और सह शिक्षा का भी उन्होंने समर्थन किया था और राष्ट्र की उन्नति के लिए सांप्रदायिक एकता को अवश्य मानने वाले गणेश अग्रकर जी ने विदेशी सरकार की फूट डालो राज करो की नीति का प्रबल विरोध किया। आर्थिक उन्नति के लिए वे देश का औद्योगिकरण अवश्य मानते थे और उस पर काम करने के पहले ही समाज सुधार के कार्य विशेष योगदान देने वाले गोपाल गणेश अग्रकर जी 17 जून 1895 को मात्र 43 की अल्प आयु में ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: ओम शांति। मैं हूं गायक कलाकार राम शंकर और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और बड़ा प्यारा प्यारा गीत आपने सुना अभी। इसके साथ ही आइए मैं आप लोगों को ले चलता हूं एक और शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। जी हाँ, ये विशेष रूप से अगर मैं बात करूं तो कैलाश चंद्र जोशी है और शंकर राव चौहान, इन दोनों के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। और आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। शाम का समय, जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे समय को देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन साथ साथ में कुछ नए विचारधारा भी आता है। तो विचारों को जो है एक छोटा सा ब्रेक दें। कभी कभी हम लोग जो है विचारों के ताता में चलते रहते हैं, हमें उसके साथ थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। एक बार देखिए, अपने मन को रिफ्रेश करें, विचारों को चेंज कीजिए और विचारों को चेंज करना सिर्फ़ और सिर्फ आपके हाथ में है। एक बार सबके लिए शुभकामना कीजिए, सबके लिए आत्मिक दृष्टि से प्रेम से उनको याद कीजिए और ये सोचिए कि ईश्वर की कृपा सब पर हो रही है। चलिए, मैं सोच रहा हूँ कि आप मेरी बात सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज ज़रूर हो रहे होंगे। कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज मत होइए, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो आइए कैलाश चंद्र जोशी के बारे में बात करते हैं। और बहुत ही पॉपुलर राजनीतिक और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। 26 जून 1977 से 17 जून 1978 तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कैलाश चंद्र जोशी राज्य के प्रथम और मुख्यमंत्री थे। वो 8 बार विधायक और 2 बार लोकसभा सदस्य और 1 बार राज्यसभा सदस्य रहे। तो 1951 में स्थापित जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे और 54 से लेकर 60 तक देवास जिले में जनसंघ के मंत्री के तौर पर इन्होंने काम किया। और 1955 में कैलाश चंद्र जोशी हट पीपलिया नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए और 1962 में लगातार 7 बार बगली क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य चुने गए। कैलाश चंद्र जोशी 1972 से लेकर 77 तक मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष रहे और आपातकाल के समय में 1 महीना भूमिगत रहने के बाद 28 जुलाई 1975 को विधानसभा के द्वार पर गिरफ्तार होकर कैलाश चंद्र जोशी 19 महीने तक मीसा में नज़रबंद हो गए। और फिर 24 जून 1977 को कैलाश चंद्र जोशी मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री हुए। हालांकि 1978 में अव्यवस्था के कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद त्याग देना पड़ा। अव्यवस्था के कारण, अस्वास्थ्य के कारण भी उनके जीवन में उनको त्याग पत्र देना पड़ा। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सफर, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ चलिए आगे बढ़ते हुए एक और खूबसूरत सा गीत सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

0: सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: हमारे मन की क्वालिटी कैसे है, और अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस है वो साइकोसोमैटिक है, मन से आरंभ होता है। और अक्सर करके जो तनाव भी होता है इट इज देयर इन द माइंड। और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता ना तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे बच्चा आज तेरा एग्जाम है तो है ना हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, ये भी कर वो भी कर, है ना, उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे। शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया, जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए। और मन का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन है विचार, बहुत पुराने विचार, बासी विचार। अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे द माइंड विल आल्सो बिकम वीक। तो फ्रेंड्स, इस बात को चेक करना कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसके क्वालिटी कैसी है। देखिए, सोचने की बात है, आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है। और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज करना भूल गए तो रात के 2 बजे उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना बहुत।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए एक और व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, शंकर भाव चौहान। जी हाँ, वो 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और चौहान 21 फरवरी 1975 से 16 मई 1977 तक और फिर 12 मार्च 1986 से 26 जून 1988 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद संभाल लिया। उसके बाद भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री भी कुछ समय तक ये रहे। इनका जन्म भी आज ही के दिन 1920 को हुआ। शंकर राव चौहान ने मद्रास विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी की, उस्मानिया विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और एक वकील के रूप में करियर को शुरू किया। छात्र आंदोलन की शुरुआत के दौरान हैदराबाद में भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये शामिल हो गए। और शंकर राव चौहान 1957 में धर्मबद में बॉम्बे स्टेट असेंबली के लिए चुने गए और 1962 चुनाव में धर्मबाद से महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने गए। इस तरह से उनके बेटे अशोक चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उनकी बहू और शंकर राव चौहान की पत्नी अमिता अशोक राव चौहान महाराष्ट्र विधानसभा में विशेष बोकर का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनकी पहचान एक भारतीय राजनेता की है और इस तरह से इनकी पूरी फैमिली जो है कहीं ना कहीं कैबिनेट में, सामाजिक सेवा में और साथ ही साथ राजनीति में अपना पहचान बनाती है और कुछ न कुछ पद को संभालती है। और वो ऐसे कि 1900 शंकर राव चौहान के आखिरी दिनों में उनके जाने के बाद 31 दिसंबर 1984 से 12 मार्च 1986 तक राजीव गांधी कैबिनेट में भारत के गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया। और अंतिम दिनों की बात अगर मैं कहूं तो ये ग्राम पैठण जिला औरंगाबाद महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और विशेष रूप से राजनीति का सफ़र पूरा करते करते 26 फरवरी 2004 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। और उनके जाने के बाद शंकर राव चौहान पर एक डाक टिकट जारी किया गया भारत सरकार द्वारा। तो चलिए, यही थी कुछ खास बातें शंकर राव चौहान के बारे में आपके लिए। और फिर मैं यही कहूँगा कि जाते जाते एक सुंदर विचार के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। कहा जाता है कि काम इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे, काम इतना शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचें। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

रेडियो 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है युवा मंच। दोस्तों, आप जानते हैं युवाओं के अनेक विषयों के बारे में तो बातचीत होती है, कभी करियर से जुड़ी, कई बार साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी, कई बार नशा मुक्ति के क्षेत्र में भी बातचीत करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक और सब्जेक्ट है जिस पे हमारी पकड़ होना बहुत ज़रूरी है, और वो सब्जेक्ट हर किसी का होता है। भाई, मैं बात कर रही हूँ इमोशनल अवेयरनेस के बारे में, यानी अपनी भावनाओं के बारे में। युवा काल में कई बार नई भावनाएं आती हैं, पुरानी भावनाओं के साथ भी हम जगल कर रहे होते हैं, यानी क्या सही क्या गलत, क्या मैं महसूस कर रही हूँ, क्या मुझे महसूस करना चाहिए, बहुत सारे कन्फ्यूजन में होते हैं। लेकिन इस समय अगर कोई सही हमें हेल्प देता है, सही नज़रिया प्रदान करता है, तो मदद हो जाती है खुद को समझने में, और यकीन मानिए ये बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों बहुत इम्पॉर्टेंट एक सेशन है जो आप तक पहुंचाएंगे हम NCERT ऑफिशियल सहयोग के माध्यम से, क्योंकि ये जो पहल है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की एक बहुत सुंदर पहल है जिसको नाम दिया गया है मनोदर्पण, जिसके ज़रिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, मेंटल वेलबींग पे काम किया जाता है, स्टूडेंट्स के लिए खास है ये। और दोस्तों, आप बहुत सुंदर इन सेशंस का लाभ ले सकते हैं। देखिए, पहले बड़ा मुश्किल होता था इन सब्जेक्ट पे कोई बात करें, किससे पूछें समझ में नहीं आता था, लोग शायद कहीं जाके कोई मैगज़ीन खरीदते थे या फिर कहीं किसी से बात करते थे, नहीं तो खुद ही समझने की कोशिश करते थे, और बस जो समझ में आया बस उससे आगे बढ़ते थे। लेकिन अब समझ लीजिए, इंटरनेट एक इतना सुंदर माध्यम है कि आपको सही जानकारी वहाँ से मिलती है। अब इसका लाभ उठाना ये हमारे ऊपर है, फ़ायदा और नुकसान दोनों तरह का कंटेंट है इस पर। जहाँ एंटरटेनमेंट भी है, वहाँ आपके इस पास आपके लिए क्या ज़रूरी है ये सवाल भी है। दोस्तों, एंटरटेनमेंट भी बड़े सारे तरीके के होते हैं, कुछ हमें फ़ायदा करते हैं और कुछ थोड़ा नुकसान भी पहुंचाते हैं। कुछ बातें सुनते हैं और फिर लौट कर आते हैं कार्यक्रम युवा मंच पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: मनोदर्पण के काउंसलर से परामर्श पाने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 844-844-0632। नंबर एक बार फिर सुने 844-844-0632।
1: नमस्कार, आई एम शिवानी झा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर लाइव एंड इंटरैक्टिव सेशन। You are watching this session live on BM eVidya channels number 6 to 12 and also on our YouTube handle NCERT Official. Well, let me apprise you all for this half an hour. We have our special program on Sahyog. And yes, as you all know, these Sahyog and Paricharcha sessions are brought to you by Manodarpan and is a great initiative of Ministry of Education as a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan for providing psychosocial support and mental well-being to all the teachers, parents and of course students across the country. So yes, aaj jo topic hum aap sabhi ke liye lekar aaye hain bahut zyada interesting hai and aaj ke time ke liye bahut zyada important bhi hai. It is also flashing on your screens. It is from emotional awareness to active growth. Well, इमोशनल अवेयरनेस की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, प्लस इमोशनल अवेयरनेस हमारे ग्रोथ के साथ कैसे रिलेटेबल है, इमोशनल अवेयरनेस पर हम कैसे ध्यान दे सकते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं अपने सभी स्टूडेंट्स की जो अभी एडोलसेंस एज में भी होंगे, स्कूल गोइंग होंगे, उनके लिए ये इमोशनल अवेयरनेस इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, इमोशनली चीज़ों को समझना इतना ज़्यादा रिलेवेंट क्यों है। सो आई थिंक बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड सजेशंस हैं जो हमारे आज के एक्सपर्ट्स आप सभी तक पहुंचाने वाले हैं एंड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इनसाइट्स हमारे आज के इस टॉपिक के रिगार्डिंग हम देने वाले हैं। सो यस, चलिए आप सभी का मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराती हूँ कि आज हमारे साथ कौन कौन से एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। सो फर्स्टली वी आर जॉइंड बाय डॉक्टर प्रियम शर्मा एंड मैम इज असिस्टेंट प्रोफेसर एट DEPFE NCERT न्यू दिल्ली। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।
1: ओके एंड यस डियर व्यूअर्स, अलॉन्ग विथ आर एक्सपर्ट हमें इस वक्त ज्वाइन किया हुआ है थ्रू ऑनलाइन मीडियम हमारी प्रैक्टिसिंग काउंसलर ने भी, जिनका नाम है मिस हेमा मुत्रेजा। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
3: नमस्कार जी, थैंक यू।
1: ओके एंड यस, टू मेक दिस सेशन मोर इंक्लूसिव, मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर ईजी, हमें हमारे इंडियन साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर ने भी ज्वाइन किया हुआ है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे मिस नीतू को। सो नीतू, आई ऑल्सो वेलकम यू टू दिस सेशन एंड आई नो कि आपके मन में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं या फिर फीडबैक कुछ भी हो सकते हैं जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं। सो हमारा फ़ोन नंबर है, आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। वी हैव टू फोन नंबर्स एंड फर्स्टली इट इज 8800-440-559 एंड सेकेंड फ़ोन नंबर हमारा मनोदर्पण काउंसलर्स का है जिनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ये है 8448440632 एंड ईदर यू कैन सेंड अस अ मेल ऑन आवर मेल आईडी व्हिच इज sahyog.ncert@cit.nic.in एंड एज आई अर्लियर मेंशन इस वक्त आप हमें यूट्यूब पर लाइव भी देख रहे हैं। सो लाइव चैट बॉक्स का ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल रहेगा ड्यूरिंग द इंटायर सेशन। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज टॉपिक व्हिच इज फ्रॉम इमोशनल अवेयरनेस टू एक्टिव ग्रोथ एंड फर्स्टली हम क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करते हैं एंड डॉक्टर प्रियम आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं सबसे पहले आपसे ही पहला प्रश्न पूछना चाहूंगी और ये है हमारे टॉपिक के रिगार्डिंग है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इमोशनल अवेयरनेस, क्योंकि हमने ये भी जोड़ा है कि एक्टिव ग्रोथ से हम इसे कैसे रिलेट कर सकते हैं। सो फर्स्टली ये बताएं आप।
2: बिल्कुल, जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि ये टॉपिक आज के समय में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
1: एग्जैक्टली,
2: तो उसी से ही मैं थोड़ा सा रिलेट करूंगी। देखिए, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है और उस बच्चे को कोई डिसकंफर्ट होता है तो उसकी इमोशंस किस तरीके से हमें पता चल पाते हैं, इट्स सिंपल कि बच्चा रोने लगता है
1: जी।
2: उसके इस बिहेवियर से हम समझते हैं कि बच्चा डिसकंफर्ट है और उस तरीके का बच्चे को हम केयर प्रोवाइड कराते हैं, राइट। अब यही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है उसके साथ साथ उसके बड़े उसके ग्रोथ होने के साथ साथ उसकी लर्निंग, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके जो कल्चरल अपब्रिंगिंगनेस हो रहा है, उस सभी का इम्पैक्ट दिखता है। वो कैसे दिखता है कि उसके जो यही जो इमोशंस है वो धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं।
1: एंड कई सारे इमोशंस को जो है वो जब बड़े होते हैं एडोलेसेंस एज में आते हैं तब समझने भी लग जाते हैं जो शायद बचपन में वो नहीं समझते इमोशंस को.
2: बिल्कुल बिल्कुल right. तो मैं उसी पर ही आ रही थी. तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे को जब हम इमोशंस बताते हैं या बच्चा सीख रहा है कि अगर उसको कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है वही उसकी जो क्राइंग है अब वो किस में चेंज हो जा रही है. वो हो सकता है गुस्सा दिखा सकता है, वो उदास हो सकता है, या वो उसके बताने का तरीका अलग हो सकता है, वो चुप हो सकता है. तो इस तरीके से आप चीजें देखोगे कि बच्चा अपने को रिस्पांस देने के लिए इमोशंस का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहा है. अब आप ये देखें कि इमोशंस एक इतना बड़ा पावरफुल एक्सप्रेशन है तो उसको समझना भी उतना ही जरूरी है. अब जब हम बात करते हैं इमोशनल अवेयरनेस की तो ये हमें ध्यान देने की बात है कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि उसके क्या क्या इमोशंस है, क्या आ रहे हैं, क्या वजह है, उसकी टैपिंग कैसे कर रहा है. और सिर्फ ये समझना जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर के क्या इमोशंस है पर सामने वाला भी क्या चीजों को समझ रहा है, क्या किस तरीके की वो चीजों को रेगुलेट कर रहा है या बता रहा है
1: right.
2: सामने वाले को भी इमोशंस क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए. तो ये दोनों तरीके से चलता है कि एक खुद के को भी समझना, सामने वाले को भी समझना. इन सारी चीजों को मिलाकर हम इमोशनल अवेयरनेस की बात करते हैं.
1: एग्जैक्टली
2: exactly. उसके साथ साथ हम ये भी सीखते हैं जैसे कि आप ये ले लीजिए कि जैसे मैं फिर से दोहराऊंगी जो आप बात कर रहे थे कि आज के टाइम में जो है इमोशंस को समझना वो बहुत जरूरी होता है. आप देखिए किस तरीके से जिस तरीके से हमारे एनईपी आया है, हमारा नेशनल एजुकेशन जो आया है पॉलिसी आई है वो भी आपको यही पे फोकस करता है कि इमोशनल सोशल इमोशनल लर्निंग की हम बात करेंगे कि बच्चे के क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक है बच्चे के ग्रोथ से. जैसे मैंने आपको बताया एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल मैंने इसीलिए दिया क्योंकि हम उसको ग्रोथ से रिलेट कर पाएंगे कि कैसे धीरे धीरे बड़े होते होते उसकी सोशल इमोशनल लर्निंग होती है और वो फिर सीख पाता है क्योंकि एक्सप्रेस करना, गुस्सा आया, खुशी हुई, लेकिन उसको एक्सप्रेस कैसे करना है ये हम सीखते हैं.
1: बिल्कुल.
2: तो ये सारी चीजें होती है जब हम बात करते हैं
1: बहुत अच्छे से आपने इन ब्रीफ भी हमारे सभी दर्शकों को बता दिया कि बेसिकली इमोशनल अवेयरनेस की हम आज के टाइम में बात क्यों कर रहे हैं एंड ये क्यों इतना रिलेवेंट है. और अगर हम जब बात करते हैं स्टूडेंट्स की बिकॉज बहुत सारे इमोशंस होते हैं जिसके थ्रू वो गो थ्रू करते हैं लाइफ में लेकिन उनको समझना पड़ता है एक्सप्रेस हम कैसे करें, कैसे उसको फिल्टर आउट करें. सो आई थिंक आगे के हमारे क्वेश्चंस में क्वेश्चन आंसर राउंड में आपको इनके आंसर्स भी easily मिल जाएंगे. सो नाउ मूविंग अप टू नेक्स्ट हमारा सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारी प्रैक्टिसिंग काउंसलर मिस हेवा उत्रेजा मैम आपसे मैं जानना चाहूँगी. एंड इट इज़ हमने अभी इमोशनल अवेयरनेस के बारे में बात की है, डॉक्टर प्रियम ने भी बहुत अच्छे से बताया कि वॉट एग्जैक्टली इज इट. सो मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स के अगर रेफरेंस में बात करें तो.
3: जी थैंक यू मैम. So, I would like to mention that Aldous Huxley, एक बहुत renowned English writer और philosopher है, जिन्होंने ये कहा कि we all fall, all of us, so it is comfort to walk hand in hand. इसलिए एक बच्चे की अगर हम बात करते हैं, students की यहाँ जब हम growth की बात कर रहे हैं, तो एक बच्चे के लिए घर और school ही उसका पूरा universe है.
1: बिल्कुल.
3: So इमोशनल अवेयरनेस टीचर्स अभी आप बोल रहे थे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सबके लिए जरूरी है. और अगर हम स्टूडेंट्स के रेफरेंस में बात करें तो सोशल ग्रोथ के लिए हमारे रिलेशनशिप्स को बेटर करने के लिए, डिसीजन मेकिंग को बेटर करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करने के लिए हमारी इमोशंस की तरफ जो हमारी भावनाओं की तरफ जागरूकता है वो बहुत अहम रोल प्ले करती है. से फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे को किसी ने टीज किया या बुली किया और ही इज फीलिंग हर्ट, वो उदास है, तो डेफिनेटली ही विल अंडरस्टैंड द फीलिंग एंड नॉट डू दिस विद एनीबडी एल्स बिकॉज वो उस एम्पथी की फीलिंग को समझेगा, उस भावना को समझेगा एंड ही विल पुट हिमसेल्फ इन द शूज ऑफ द अदर पर्सन. एंड ऐसे ही जहाँ हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए झगड़ा हुआ दो बच्चों में, गुस्सा आया, लेकिन अगर वो इमोशनली बैलेंस्ड है, जागरूक है, तो वो एक ब्रीदर लेगा, उस अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से, गुस्से में एक्सप्रेस करने से पहले वो बेनिफिट ऑफ डाउट देगा दूसरे बच्चे को, उसे क्लैरिफिकेशन भी मांग सकता है और अपनी फीलिंग्स को कामली भी एक्सप्रेस कर सकता है। और यहीं अगर हम एकेडमिक ग्रोथ की बात करें तो आजकल हम बहुत सुनते हैं कि एग्जाम से पहले बहुत बेचैनी हो गई, बहुत एंजाइटी हो गई, दिल धड़क रहा है, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, हाथ में पसीना आ रहा है। यहाँ स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि यू स्ट्रेस एक अच्छा स्ट्रेस है। यस इट कम्स एज अ सरप्राइज फॉर मैनी कि स्ट्रेस भी क्या अच्छा हो सकता है। तो हाँ, यू स्ट्रेस जो कि हमें हमारी प्रिपरेशन के लिए मोटिवेट करता है, हमारे फोकस को एनहांस करता है, हमें टाइम मैनेजमेंट की तरफ अग्रसर करता है कि अभी समय है अपना टाइम टेबल बना के उसको एक अच्छे तरीके से हम अपने सिलेबस को डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो फिर वो यू स्ट्रेस इज अ गुड स्ट्रेस, उसको हम डिस्ट्रेस में नहीं बदलेंगे, इतनी बेचैनी तक नहीं जाने देंगे कि इतने कंफ्यूज हो जाए, ब्लैंक हो जाए कि लिखा ही नहीं जा रहा। और जहाँ हम इमोशनल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा भी हो रहा है तो एक इमोशनली अवेयर स्टूडेंट को ये पता होगा कि अगर ऐसा है तो उसे कामली बैठना है, कुछ गहरी सांसें लेनी है, पानी पीना है, शायद कुछ कदम चलना है, एंड दिस फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस शुड और यस इट विल गो अवे। बिकॉज यहाँ मैं अपने स्टूडेंट्स को ये भी बताना चाहूँगी कि हमारी सारी फीलिंग्स जो हैं वो एक वेव के रूप में आती हैं, एंड द राइज एंड द फॉल इज जस्ट कंप्लीटेड, दिस होल साइकिल इज कंप्लीटेड इन 60 to 90 seconds। तो अगर आप उस

0: को, उस बेचैनी को या उस उदासी को 60 to 90 seconds तक कामली आराम से ब्रीद करके निकाल देते हैं तो आपकी जो थॉट है उसमें बहुत क्लैरिटी आएगी और यहीं पे हमारी मेंटल हेल्थ की ग्रोथ भी होती है। अगर हम अपने इमोशन से और सामने वाले के इमोशंस और भावनाओं से कुछ समझते हैं तो हमारा तनाव कम होता है। अगर कहीं पे हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत एग्रेशन आ गया है या बहुत बेचैनी हो गई है और इन फीलिंग्स को बहुत बच्चे कहते हैं मैम आई जस्ट डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट, आई डोंट नो व्हाट आई एम फीलिंग, और ऐसी ही बहुत सारे मौके होते हैं जब आप इस एग्रेशन को, इस बेचैनी को या इस उदासी को डायरेक्शन ठीक नहीं दे पाते हैं और ग्रुप डायनेमिक्स या ग्रुप प्रेशर में आके आप या तो रिस्की बिहेवियर या सब्सटेंस एडिक्शन या सोशल मीडिया डिपेंडेंस में की तरफ झुकाव आपका बढ़ जाता है। तो अगर हम इमोशनली अवेयर होंगे तो हमारे पास पावर टू चूज होगी, हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे।
1: एग्जैक्टली हेमा मैम, वेरी ट्रूली सेड बाय यू. एंड आई थिंक अगर हमें ये चीज़ हमने सीख ली कि हम अपने इमोशंस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, सो आई थिंक कि हमारी लाइफ की सिचुएशन भी, जो स्टूडेंट्स भी हैं इवन, बहुत ईजीली उसका डिसीजन भी ले सकते हैं. सो वेरी वंडरफुल मैसेज बाय यू. तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को लेकर हम समझेंगे. डॉक्टर प्रियम, जो हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ी हुई हैं, मैम आपसे मैं जानना चाहूँगी कि रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर्स, उनका क्या कुछ रोल होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि स्कूल में और टीचरों के साथ भी बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हैं. तो टीचर्स किस तरीके से और स्कूल किस तरीके से बच्चों के अंदर इमोशनल अवेयरनेस की ग्रोथ के लिए हेल्प कर सकते हैं?
2: बिल्कुल, देखिए ये बात तो हम मान के चलते हैं कि
1: जी
2: बच्चे मैक्सिमम टाइम जो है अब अपना स्कूल में स्पेंड करते हैं.
1: जी
2: स्कूल है, एक एटमॉस्फियर प्रोवाइड करा रहा है, टीचर्स हैं जो एज एन गाइड उनको वहाँ सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं, जो उनका टेक केयर कर रही
1: राइट
2: हैं. तो उनका समझना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे क्या है कि एकदम से आके अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं.
1: बिल्कुल
2: एक तो बच्चों की उम्र छोटी है, चीज़ों को हमें कैसे एक्सप्रेस करना है वो भी वो सीख ही रहे हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चे जो कह रहे हैं वो डायरेक्टली, उनके कई तरीके होते हैं कहने की, सिर्फ
1: जी
2: भाषा ही नहीं है. भाषा में अगर आप देखें तो वर्बल नॉन वर्बल दोनों चीज़ें आती हैं. वो शख्स वो कह रहा है कि नहीं, मैम मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है कि बच्चा परेशान है.
1: जी
2: तो ये क्या है, ये कुछ सिग्नल्स हैं जो बच्चा प्रोवाइड करा रहा है कि आप सुनो. बच्चा कह रहा है कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ. तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की और टीचर्स की बढ़ जाती है कि वो जो उसके जो नॉन वर्बल क्यूज़ हैं वो समझें. तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन पे हम ध्यान देते हैं कि जो एकेडमिक्स हैं, जो स्कूल है, जो टीचर्स हैं, उनको ट्रेन करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा जो बच्चे बोल पा रहे हैं, जो बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं, जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है, जिनका नहीं है, वो किस तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके लिए.

मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है युवा मंच। और दोस्तों, आपने कुछ झलकियाँ सुनी किस तरह से इमोशनल अवेयरनेस की बात हो रही है, मानसिक स्वास्थ्य की बात हो रही है और कुछ सिग्नल्स की भी बात हो रही है। कुछ उन्होंने ये भी बताया जो एक्सपर्ट्स जुड़े थे कि भाई किस प्रकार से कभी कभी वो सिग्नल्स जो हैं वो बच्चा देता नहीं है, या कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, वो यूथ भी हो सकते हैं, हो सकता है वो बोलते नहीं हैं लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बोलती है कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। और ये सिग्नल पकड़ने टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं ताकि समझ पाएँ कि वो किस फेज से गुजर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है या वो क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट है बहुत सुंदर सा जिस पे काफ़ी लोग आजकल काम भी कर रहे हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत बहुत ज़्यादा होने लगी है पहले के मुताबिक। और बातचीत होती है सेफ स्पेस की, यानी एक ऐसी जगह जहाँ एक स्टूडेंट को, यूथ को या बच्चे को ये लगता है कि वो कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है बिना किसी जजमेंट के, बिना ये सोचे कि उसे कैसा महसूस हो रहा है या फिर सामने वाला उसके बारे में क्या सोचेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, क्या उसकी बात सुनते सुनते सामने वाले के एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे। जी हाँ, इतनी डिटेल भी मायने रखती है। अगर सुनते सुनते आपने शक्ल ऐसी बना ली कि अरे तुमने क्या गड़बड़ कर दी है, तो वो भी वो सामने वाला फिर कम्फर्टेबल नहीं होता शेयर करने के लिए कई बार। और हम यहाँ जब मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो एक्सेप्टेंस यहाँ बड़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। दोस्तों, आई थिंक जो भी युवा हमें सुन रहे हैं वो इस बात को मानेंगे कि दोस्तों के साथ हम इसीलिए ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं क्योंकि दोस्त हमें जज नहीं करते, वो बस हमें एक्सेप्ट करते हैं। और सिर्फ एक्सेप्ट ही नहीं बल्कि बहुत प्यार करते हैं और ये भी समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं उनकी नज़रों में। तो जिनकी नज़रों में हम बहुत अच्छे होते हैं ना, उनसे दिल खोल के बातें कर ली जाती हैं। लेकिन जहाँ जजमेंट आ जाता है वहीं फिर एक डिस्टेंस आ जाता है, एक दूरी आ जाती है जो कि दो जनरेशन्स में आती है। हम जानते हैं दोस्तों इस बात को। चलिए फिलहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। और भी बातें हैं करेंगे साथ साथ, लेकिन फिलहाल सुनेंगे एक प्यारा सा नगमा रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है युवा मंच। तो दोस्तों, युवा मंच पे हम आज बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, मेंटल हेल्थ। ये सब्जेक्ट अब ऐसा है जैसा कि हम फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करते थे, वैसा ही इसके बारे में बातचीत होने लगी है और होनी भी चाहिए। दोस्तों, आपको अगर आप युवा मंच सुनते हैं, हमसे जुड़े रहते हैं, तो आपको मालूम होगा कि हमने ये बात की थी टेलीमानस के बारे में आपसे। टेलीमानस हेल्थ असिस्टेंस है, नेटवर्किंग है, बहुत सारे स्टेट्स में शुरू हो चुका है और मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज हैं यहाँ पे, जिसको आप चाहे तो ऐप है आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है। अगर किसी को भी मदद की ज़रूरत है, किसी को भी ऐसा लगता है कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा पहले हुआ करता था, बहुत चेंज आ गया है, या फिर लो महसूस कर रहा हूँ, डल महसूस कर रहा हूँ, स्लो महसूस कर रहा हूँ, कुछ भावनाएं अलग अलग बहुत जल्दी जल्दी स्विच हो रही हैं, या फिर एक भावना में ही मैं अटक गया हूँ जैसे, अगर कोई भी चीज़ आपको लगती है कि ना कि मदद की ज़रूरत है, तो बिल्कुल हिचकिचाइए नहीं, झिझकिए नहीं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक नंबर दिया हुआ है जो कि टोल फ्री है, यानी आपको बिल्कुल भी कॉस्ट नहीं लगेगी उसकी और आप मदद ले सकते हैं। तो आप कॉल कर सकते हैं और दोस्तों, ये नंबर मैं चाहूँगी आप नोट करके रख लें ताकि कभी भी किसी को ज़रूरत हो तो फटाफट आप निकाल के इसे दे सकें। ये नंबर है 14416, जी हाँ, 14416, या फिर आप संपर्क कर सकते हैं 1800-891-4416 पर, यानी कि 1800-891-4416। दोस्तों, आप ये गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को, या किसी ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काउंसलर का सपोर्ट मिलेगा, प्रोफेशनल हेल्प मिलने वाली है और 24 घंटे यानी 24/7 ये सुविधा आपके लिए उपलब्ध है। मोबाइल एप्लीकेशन भी है, आप इसे डाउनलोड करके रख सकते हैं। वीडियो कंसल्टेशन भी है, यानी देख के बात की जा सकती है काउंसलर के साथ, और अनेक लैंग्वेजेस में भी उपलब्ध है ये कंसल्टेशन। और सबसे बड़ी बात कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, यानी किसी को भी बताया नहीं जाएगा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बोल रहे हैं, आप कौन से कहाँ पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं। आपकी जानकारी बिल्कुल सेफ है, यानी सुरक्षित है, यानी आप मदद ले सकते हैं बिना ये सोचे कि किसी और को पता चल जाएगा। रिस्क नहीं है इसमें, बल्कि बेनिफिट है आपको। तो दोस्तों, इसका पूरा लाभ उठाएं और कभी भी हमें ज़रूरत पड़े तो हिचकिचाएं नहीं, डरे नहीं, क्योंकि जैसे बीमारी हो सकती है किसी और ऑर्गन में, वैसे बीमारी मन में भी हो सकती है। और इसके लिए कई बार सिर्फ हमारा स्ट्रेस नहीं, हमारे हार्मोन्स, हमारे

0: जीन्स बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, इसलिए घबराइए नहीं, डरिए नहीं, और एक बात और समझ लीजिए कि भाई आपको, मुझे, किसी को भी हो सकता है। इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि अरे मुझे क्यों हो गया। तो दोस्तों अलर्ट रहें, और आई होप हम एक दूसरे की मदद कर पाएं खुल के इस बारे में बात करने के माध्यम से। फिलहाल वक्त हो गया एक और गीत का। दोस्तों रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अगर कहीं भी आग लगने की देनी हो जानकारी तो तुरंत कॉल कीजिए फायर ब्रिगेड के इमरजेंसी नंबर पर। डायल कीजिए 101 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: आदत बनी कैसे? करते करते करते करते आदत बनी। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है युवा मंच। और दोस्तों, आज हमने मेंटल हेल्थ की बात की, हमने एक्सपर्ट्स को भी सुना, हमने ये भी जाना कि किस तरीके से हम अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं सिर्फ एक राइट चॉइस कर, और वो चॉइस हमारे हाथों में। दोस्तों, अगर आप भी अपने दोस्तों को देखते हैं या अपने घर पे किसी को देखते हैं जिनका व्यवहार अचानक से बदल गया है, या फिर आपको लगता है वो सबसे अब उतने अच्छे से घुलते मिलते नहीं हैं, कमरे में बंद रहने लगे हैं, या फिर नहा नहीं रहे, खाना ठीक से नहीं खा रहे, या अचानक से ज़्यादा खाने हैं, कुछ आपको ऐसा बदलाव लगता है जो यूजुअल नहीं है, और वो एक दिन या दो दिन का नहीं है बल्कि एक हफ्ते, दो हफ्ते, तीन हफ्ते से ऐसा ही है, तो समझ लीजिए कि उन्हें मदद की ज़रूरत है। उनके गुस्से को गुस्सा मत समझिए, उनकी चिड़चिड़ाहट को या फिर उनकी किसी भी ऐसी बात को ये मत समझिए कि वो आपसे कह रहे हैं। नहीं, वो चाहे वो शब्द आपसे कह रहे हैं लेकिन वो चीख चीख कर ये गुहार लगा रहे हैं कि मेरी मदद करो, लेकिन वो शब्द नहीं बोल पाते, क्योंकि हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को समझ ही नहीं पाते। तो इसीलिए अगर आपको किसी भी दोस्त या किसी भी फैमिली मेम्बर में ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो यूजुअल नहीं हैं, जो उनके व्यवहार से अलग हैं, और ख़ास तौर से अगर वो कटे कटे रहने लगते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, कहीं नहीं जाना चाहते, तो समझ लीजिए उन्हें मदद की ज़रूरत है। सेंसिटिविटी के साथ संभल कर उनसे बात कीजिए। सब एक साथ जाके एकदम हमला मत करिए, नहीं तुमने क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, नहीं, बस उनसे जाइए, उनसे बात कीजिए और उन्हें ये एहसास दिलाइए कि आप उनके साथ हैं। और अगर उन्हें हेल्प की ज़रूरत है तो दोस्तों, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। आप ग्लोबल अस्पताल भी जा सकते हैं जो कि माउंट आबू में है, वहाँ भी बहुत अच्छे काउंसलर्स हैं, साथ साथ अनेक और भी काउंसलर्स हैं जो ऑनलाइन भी मिलते हैं, या फिर आप उन्हें जानते हैं तो उनसे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन समय पर मदद लेना है हिम्मत की निशानी, और हिम्मत वाले तो हैं ही ना सारे युवा, है कि नहीं? तो चलिए दोस्तों, फिलहाल वक्त हो गया आप सभी से इजाजत लेने का। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, और ये भी जान लीजिए कि रेडियो मधुबन हमेशा आपके साथ है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पर जो कि है 9414151415, यानी कि 9414151415। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे।

0: ओए रुकत,
1: रुक।
2: हाँ कहिए।
0: ओ जी कहना सुनना, आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
2: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ, और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओ छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
3: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
4: हमारे कड़क सिंह तो बहुत कड़क सिंह हवलदार काफी कड़क है, और इसीलिए किसी भी रूप में मिस्टेक करना बनता ही नहीं। तो प्लीज कड़क सिंह हवलदार के इशारों पर चले, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती एक्सीडेंट घटा सकती है। सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। हाँ, स्कूटर में सीट बेल्ट होता नहीं है, बट हाँ स्कूटर या बाइक में जा रहे हैं तो प्लीज हेलमेट लगाएं, और किसी भी गाड़ी जो चार पहिया होती है उनमें सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 FM में आप चढ़ चुके हो आपके

फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ मैं हूं आपकी दोस्त मोरा। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ मस्ती के साथ गुनगुनाते खूबसूरत शाम बिताने आ गई हूं। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए लेकर आऊंगी आज प्यारी कहानियां, कविता, सवाल भी, होमवर्क भी और तो और अमेजिंग जानकारी। तो चलिए, इतनी सारी चीजें जब जानने को मिलती है तो उत्साह तो अवश्य होता होगा, साथ ही साथ सवाल का जवाब देने में अपनी बचपन की यादें बिल्कुल ताज़ा हो जाती हैं और किताबों में जो पन्ने आप पलटते हैं वो फिर से दिमाग में आ जाता है, क्योंकि हम बड़े ज़रूर हैं पर दिमाग अभी भी बचपन को याद करता है। तो चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं क्योंकि ये प्यारा गीत मैं सुनाने वाली हूँ रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो,

के तुझे मैं ले के चलूं। खूबसूरत इस गीत के साथ साथ आगे बढ़ते हैं और अगले कहानी की तरफ आपको लेकर आते हैं। अमेजिंग जानकारी, ऐसा क्यों? वेल, अक्सर यही देखा गया है कि सोने के लिए आप और हम बिस्तर का या लेटना ही स्वीकार करते हैं। बिना लेटे यदि कोई बैठे बैठे सो भी गया तो कहेंगे क्या कर रहा है। पर हाँ दोस्तों, आज का अमेजिंग जानकारी इन उन क्या कहते हैं जो जानवर है उन पर है जो खड़े खड़े सो जाते। घोड़े के पैरों में एक विशेष प्रणाली होती है जिसे स्टेट एपरेटस कहा जाता है, कहते हैं, जो बिना गिरे खड़े रहने में मदद करती है। यह हड्डियों और लिगमेंट्स का एक ऐसा समूह है जो उनके पैरों को लॉक कर देता है। इससे घोड़े को खड़े रहने के लिए लगातार मांसपेशियों पर जोर देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। वो बिना थके लंबे समय तक खड़े रहते हैं और हल्की सी नींद भी पूरी कर लेते हैं। हालांकि घोड़े हमेशा खड़े खड़े नहीं सोते। जब उन्हें गहरी नींद की जरूरत होती है तब वे कुछ समय के लिए जमीन पर जरूर लेटते हैं। इस दौरान उनका पूरा शरीर भी आराम कर लेता है। घोड़े की आंखें उनके चेहरे के दोनों तरफ होने के कारण लगभग 360 डिग्री तक का एरिया देख पाते, यानी कि वे अपने आगे आगे आगे बगल में और काफी हद तक पीछे की चीजों को भी देख सकते हैं। ओ माय गॉड, इतनी सारी जानकारी। खैर, गीत से पहले आज का सवाल आप दोस्तों के लिए विशेष सवाल है। रामायण के अनुसार श्री राम ने देवी सीता से विवाह करने से पहले इनमें से किस राक्षस या राक्षसी को मारा था? आपके लिए ऑप्शन है ए रावण, बी इंद्रजीत या फिर सी तारका को। रामायण के अनुसार श्री राम ने देवी सीता से विवाह करने से पहले इनमें से किसे मारा था? रावण को, इंद्रजीत को अर्थात मेघनाथ को, या फिर सी तारका राक्षसी को? सही जवाब जरूर देना 9414151415 पर देना और ये विशेष गीत सुनना। जब घोड़े की बात आई तो ये गाना आपके लिए बनता ही है।

0: दुम उठा के दौड़ा, कौन घोड़ा? तो चलिए, मेरा साथी घोड़ा है। कोई खेले लेकर हाथी और किसी का बंदर साथी, कोई खेले लेकर हाथी और किसी का बंदर साथी। मेरा साथी घोड़ा है, कभी न खाए कोड़ा है। मेरा साथी घोड़ा है, चल घोड़े टिक टिक टिक टिक चलता चल। जब चलता तब नहीं मचलता, पर चलता है तो थोड़ा। मेरा साथी घोड़ा, कभी न खाए कोड़ा। सबसे सुंदर यही सवारी, सबसे सुंदर यही सवारी। चढ़कर घूमो दुनिया सारी, जाएगा अल्मोड़ा। मेरा साथी मेरा घोड़ा, कभी न खाए कोड़ा। छोटे कान छोटे कान, पैर मुँह छोटा। दुबला नहीं नहीं है मोटा, इसका नहीं ना जोड़ा है। मेरा साथी घोड़ा है। भालू छोड़ा सीटी छोड़ी, गुड़िया करती पीटी छोड़ी। मैं सब कुछ छोड़ा, मेरा साथी घोड़ा, कभी न खाए कोड़ा। बिल्कुल, मेरा साथी घोड़ा है तो कभी नहीं खाए कोड़ा। चलिए दोस्तों, ऐसा ही एक गीत लेकर आ रही हूँ, एक ऐसे घोड़े से जुड़ी हुई, जो जिस घोड़े ने महाराणा प्रताप की जान भी बचाई। पर उससे पहले आज का सवाल, हमारे साथियों को आज का सवाल बिल्कुल पता, हमारे बड़े बुजुर्ग या यंग साथी जरूर रामायण को टीवी में भी देखे होंगे, या पढ़े भी होंगे, या कहानियां दादी दादाजी से सुने भी होंगे। तो आपको याद होगा वो कौन है, रामायण के अनुसार जिसे राम ने देवी सीता के विवाह से पहले ही मार डाला था, रावण जी को या इंद्रजीत को या फिर सी तारका राक्षसी को। सही जवाब झटपट देना 9414151415 पर देना। और गीत है चेतक।
1: लाखों लड़ जावे कुछ वीर कद मौत डरे, आप भारत की धरती है साहब, अठे वीरा का घोड़ा भी वीरा बड़े लड़े।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच हमारे श्रोतागण भी जरूर जुड़ चुके हैं। नमस्कार। हेलो।
1: हेलो दीदी।
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ईशान यादव बोल रहा हूँ
0: जी। शुक्रिया, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं अलीगढ़ यूपी से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, थैंक यू कॉल करने के लिए। जो कॉल करते हैं वो आपके कौन लगते हैं जो अक्सर अलीगढ़ से बात करते हैं हमसे? हाँ,
1: पापा।
0: अरे वाह, आपके पापा को शुक्रिया करिएगा कि आपको भी उन्होंने प्रोत्साहित किया बात करने के लिए। थैंक यू कॉल करने के लिए। बताओ आज का सवाल का जवाब क्या चुन कर दोगे?
1: ऑप्शन सी, ताड़ का
0: राक्षसी। ओके, चलिए। थैंक यू। कैसा है आपका ये खूबसूरत शहर, कुछ उसके बारे में बताइए।
1: शहर तो बहुत अच्छा है दीदी हमारा।
0: अच्छा,
1: और हाँ, यहाँ के ताले बहुत मशहूर हैं।
0: ओहो, अच्छी बात है। थैंक यू आप कॉल करें।
1: हाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है।
0: बहुत फेमस है मुझे पता है जी। जी, थैंक यू हमें कॉल करने के लिए। आपके पापा को भी नमस्ते कहिएगा। शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच अलीगढ़ से खास साथी जो कॉल करके हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, हमें प्रोत्साहित भी करते हैं। थैंक यू कहना चाहती हूँगी विशेष उनको। और आज के सवाल को पुनः दोहरा दूंगी। रामायण के अनुसार श्री राम ने देवी सीता से विवाह करने से पहले किन्हें मारा था? ए, रावण को मारा था, बी, इंद्रजीत को मारा था, या फिर सी, तारका राक्षसी को मारा था। सही जवाब झटपट दीजिए 9414151415 पर दीजिए। आप सुन रहे उड़ान, रेडियो मधुबन पर सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। चलिए छोटा सा ब्रेक और लेते हैं और तुरंत लौट कर आते हैं। मिशन लाइफ।
2: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के
3: उपयोग। ओम शांति, गुड इवनिंग दीदी, कैसे हो?
0: बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया कॉल करने के लिए हमें। थैंक यू।
3: तो अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ही बढ़िया। और भैया ने जो जवाब दिया है वही जवाब से मैं भी सहमत हूँ। और सभी को नमस्कार। ओम शांति।
0: थैंक यू।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
4: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: वेलकम बैक दोस्तों, आज के होमवर्क की तरफ आपको सीधे लेकर जाते हैं। हमारी जोई जो है, आज का जो होमवर्क है वो एक्चुअली है किसी एआई के दौर में छोटी लेकिन स्किल कैसे कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। जोई को स्कूल टीचर ने बताया कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना या बात कर लेना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी बात दूसरों तक इतने स्पष्ट रूप से रखना कि आपकी बात कहते ही सामने वाला उस पूरी बात को समझ भी सके और उसे समझकर उस पर फोकस भी कर सके। आप एक अच्छे वक्ता कहलाएंगे तभी। क्या जोई अपना कम्युनिकेशन सुधारने के लिए हर रोज़ घर वालों को एक मिनट तक किसी भी विषय पर बोलकर सुनाती है और उसमें कमियों को दूर करने में उसे मदद मिलता है। वहीं पर आप रीडिंग स्किल से भी अपनी ब्रेन और अपनी स्किल को बेहतर बना सकते हैं. रीडिंग स्किल आपके स्पीकिंग स्किल को बेहतर बनाने में और आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसे बेहतर बनाने में मदद करता है. जोई ने अपनी रीडिंग स्किल को बेहतर बनाने के लिए अपनी दीदी का, अपनी बड़ी बहन का मैंने प्रयोग किया. उन्होंने अपनी बड़ी बहन को देखकर समझा कि पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखा हुआ पढ़ लेना नहीं होता, बल्कि लिखे हुए को समझकर नई चीज़ सीखने में होता है. जब जोई सबसे पहले तो रोज़ पढ़ने की आदत डाल रही है और साथ ही साथ ध्यान से पढ़ रही है, क्योंकि जो चीज़ वो पढ़ेगी वो उसके दिमाग में छप सी जाएगी. दोस्तों, ये था आज का होमवर्क और अगला गीत आपके लिए हम विशेष लेकर आ रहे उड़ान में. उससे पहले सुन लेते हैं ये गीत

तेरा, तेरी है जमीन, तेरा आसमान। साथ ही साथ पुनः आज का सवाल, रामायण के अनुसार श्री राम ने देवी सीता से विवाह करने से पहले किसे मारा था? ए रावण को, बी इंद्रजीत को, सी ताड़का राक्षसी को? सही जवाब झटपट 9414151415 पर। आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन पर, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: चूरे पसंद आया ना?
1: हाँ मालिक।
2: वेल दोस्तों, अब कहानी का वक्त हो गया है आज की उड़ान का।
1: बहुत पसंद आया।
0: सुन बुद्धू, नई टोटो है, बहुत संभाल कर चलाना।
1: हाँ मालिक, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, इस टोटो का कोई भी नुकसान नहीं होने देगा ये बुद्धू।
0: सुन, टोटो में मोटे आदमी के बैठने से किराया ज्यादा मिलता है और पतले आदमी के बैठने पर किराया कम।
1: ठीक है मालिक।
0: तो फिर तू अब निकल जा और टोटो लेकर मैं सारे कागजात बनवा कर लेके आता हूँ।
1: ठीक है मालिक। टोटो वाला बुद्धू मैं, भोले भाले मालिक मेरे, मैं चालाक चालाक बुद्धू, चलाऊ टोटो टोटो वाला बुद्धू मैं, बुद्धू।
3: अरे ओ बुद्धू, रघुराम ने टोटो खरीदा है क्या?
1: हाँ मालिक, मालिक है और मैं नौकर।
3: अरे बाप रे, अब बुद्धू को उल्लू बनाकर स्टेशन जाना होगा। अरे बुद्धू, बेटा बुद्धू, मुझे ना जरा स्टेशन जाना है बेटा, छोड़ देगा क्या?
1: किराया देना पड़ेगा।
3: अरे अब इसका किराया? किराया? अरे कितना होगा किराया?
1: जीवा, एक आदमी का किराया 10 रुपए।
3: ठीक है फिर, चल

0: ये क्या इतने सारे सामान?
1: हाँ,
2: मैं किराया दे रहा हूँ ना। तेरे मालिक ने तो कहा है कि एक आदमी का किराया 10 रुपया, और मैं तो अकेला ही हूँ, और सामान का पैसा तो नहीं कहा था ना?
0: जी नहीं कहा।
2: तो फिर अब चल चल जल्दी स्टेशन ले चल।

0: अरे ये तो बुद्धू का टोटो है।
1: हाँ, कह रहा था एक आदमी का किराया 10 रुपया है।
0: इतने सामान के साथ भी?
1: नहीं नहीं नहीं, सिर्फ आदमी का किराया।
0: तो मैं भी जाऊंगा।
2: नहीं, आपका ज्यादा लगेगा।
0: क्यों? चानू चाचा तो 10 रुपए में।
2: चानू चाचा तो पतले दुबले है ना, इसलिए 10 रुपए। आप मोटे हैं इसलिए 20 रुपए।
0: मैं मोटा हूँ। अच्छा ठीक है 20 दे दूंगा, ठीक है ना? अच्छा सुनो, इसी टोटो में सारा सामान रख दो। ठीक है, अब चलो।
3: अरे मुखिया जी, आप कहाँ से आ रहे हैं?
0: ससुराल से। रास्ते में बुद्धू का टोटो मिल गया।
3: किराया?
0: पतले हैं तो 10 और मोटे हैं तो 20, केवल इंसान का किराया
3: है? अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। बुद्धू, मुखिया जी को उतार कर जरा मेरे घर आ जाना।
4: कितनी सवारी मिल रही है, मालिक शहर से लौटेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। मालिक आइए और देखिए कि आपका बुद्धू कैसे समझदार टोटो वाला बन गया है। हाँ।
3: ए, हट हट हट, चल चल चल चल, जल्दी से टोटो में चढ़ जा। चल चल बुद्धू, सीतापुर के बाजार में जाना।

0: अरे अरे अरे, यहीं रोको, यहीं पर रोको।
1: बच्चे का किराया?
0: क्या कहा, मैं तो बच्चे को गोद में बिठा कर लाई हूँ, फिर किराया किस लिए?
1: सही कहा, तो टूटू में बैठा ही नहीं, वो तो मालिक ने कहा है कोई बैठेगा तभी किराया लगेगा।
2: हाय हाय हाय हाय, ये क्या हाल बना रखा है टूटू का। अरे ओ बुद्धू,
1: मालिक आप आ गए, चलिए चलिए अंदर चलिए और देखिए आपके बुद्धू ने कितने पैसे कमाए हैं।
2: पर ये नए टोटो का तूने क्या हाल बना दिया है, छी छी छी छी, गोबर से भरा पड़ा है
1: वो। मालिक, लोग तो गाय बकरी लेकर चढ़े थे ना।
2: गाय बकरी, वो भी नए टोटो में, उसका किराया क्या लिया तूने?
1: नहीं मालिक, आपने गाय बकरी की बात तो की ही नहीं थी ना।
2: अरे बुद्धू, सामान का किराया भी लेना है बुद्धू। अरे रे रे रे रे, हर किसी ने तुझे उल्लू ही बनाया है। सुन बुद्धू, जो भी चढ़ेगा हर चीज का किराया लेगा, समझा? और खराब रास्ते से बिल्कुल नहीं जाना।
1: ठीक है मालिक, आपने अभी जो कुछ कहा बुद्धू बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा, देख लेना आप। हाँ।
2: जा जा जा जा, अब जाकर तू पानी ला, इस टोटो को धोना पड़ेगा और ये सारे स्क्रू तो ढीले कर गए हैं। स्क्रू ड्राइवर लेकर आ, इन्हें टाइट करना पड़ेगा।

0: अरे सुन बुद्धू, स्टेशन जाना है, जाएगा क्या?
1: हाँ जाऊंगा। आपका किराया 20 रुपए और बोरी का 15 रुपए।
0: पर तू सामान का भाड़ा तो नहीं लेता है ना?
1: नहीं, मालिक ने कहा है जो भी चढ़ेगा उसका किराया लगेगा। हाँ
0: लगता है, ये तो चालाक बन गया है। ठीक है चल, तू क्या हुआ, तू रुक क्यों गया? सत्यानाश, मारेगा क्या? अरे अरे अरे, कर क्या रहा है तू?
1: मेरे मालिक ने कहा है खराब रास्ते से मत जाना बुद्धू, इसलिए कुदाल से रास्ते की मरम्मत कर रहा हूँ मैं।
0: अरे अजीब मुसीबत है, ट्रेन निकल जाएगी मेरी।
1: पर मालिक की कही हुई हर बात का ख्याल रखता हूँ मैं, वो मेरे मालिक है और टोटो के भी मालिक है।

0: रात गड़बड़ हो गई रे। हाय हाय हाय हाय,
1: ये रहा बुद्धू तो यहाँ पर है। अच्छा हुआ 50 की जगह 10 रुपए में ही काम हो जाएगा। अरे बुद्धू जाएगा क्या, बस स्टैंड जाना है बस पकड़ने के लिए।
2: चलिए।
1: अरे ये क्या, तू रुक क्यों गया बुद्धू?
2: पहले रास्ता ठीक होगा उसके बाद टोटो जाएगी।
1: क्या क्या कह रहा है तू?
2: जी हाँ।
1: ₹40 बचाने के चक्कर में कहीं मेरी बस ना निकल जाए। अरे बाप।

0: पहुंच गई है और वो लोग आए हैं तुम्हारे बुद्धू को इनाम देने के लिए।
1: ऐसी बात है क्या बुद्धू? अरे ओ बुद्धू,
0: बुद्धू तूने जो सड़क ठीक कर दी थी ना, इसीलिए ये लोग तुझे इनाम देने आए हैं। बुद्धू कुछ तो बोलो।
2: जी वो मेरे मालिक रघुराम, वही मेरे मालिक है और मैं उनका नौकर टोटो वाला।
0: कितनी रात हो गई पर ये बुद्धू अभी तक नहीं आया, पता नहीं कितना टोटो चला रहा है। अरे ये क्या, इतनी देर क्यों लगी आने में, और टोटो कहाँ है?
2: मालिक टोटो चोरी हो गया।
0: पर कैसे, तू अगर टोटो पर बैठा था तो फिर चोरी कैसे हो सकता है?
2: मालिक मैं तो किराया लेने गया था।
0: ओह, अरे कौन बिना किराया दिए चला गया था?
2: जब मैं स्टैंड पर जाकर खड़ा हुआ तब एक कौवा आकर टोटो में बैठ गया, स्टेशन की तरफ मुंह करके कहाँ कहाँ कर रहा था, तो समझ गया कि वो कौवा स्टेशन जाएगा और मैं उसे लेकर स्टेशन चला गया। पर स्टेशन पहुँचते ही वो बदमाश कौवा किराया दिए बिना ही चला गया। आपने कहा था ना कि सबसे किराया लेना है मुझे, तभी तो मैं कौवे से किराया लेने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ कर गया। दौड़ दौड़ दौड़ दौड़ दौड़ दौड़ पूरा दिन दौड़ लगाया मैंने और आखिरकार उस कौवे को पकड़ लिया मैंने।
0: ओ हो, अरे बुद्धू तूने मेरा कितना नुकसान करवा दिया। अरे बेवकूफ, कौवे से कौन किराया लेता है?
2: क्यों मालिक, आप ही ने तो कहा था कि जो भी चढ़ेगा उससे किराया लेना है मुझे।
0: अरे वो बेवकूफ, आखिर क्या करूँ मैं तेरा, मैं तो तुझे ना।
2: अरे मालिक आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं, उस कौवे ने किराया दिया है।
0: कौवे ने किराया दिया है?
2: हाँ, वो बिना किराया दिए जा रहा था तो मैंने उसके घोंसले में हमला कर दिया, घोंसले में हाथ डाला, बस ये देखिए ये मिला मुझे।
0: क्या है दिखा? अरे बुद्धू ये तूने क्या कर दिया है?
2: क्यों मालिक, कौवे ने किराया कम दिया है क्या?
0: अरे कम नहीं है रे, ये तो बहुत ज्यादा है, बिल्कुल चमकता हुआ हीरा। कौवे का किराया हीरा होगा, ये तेरे जैसा टोटो वाला ना होता तो मुझे पता ही ना चलता। अरे बुद्धू इस कौवे जैसे किरायेदार अगर बार बार मिल जाए फिर तो हमारे मजे ही मजे होंगे।
3: वेल, बुद्धू तो था टोटो वाला लेकिन फिर भी अपने मैंने जो मालिक थे उनको अमीर बनाकर चला गया और सही जवाब देने का भी वक्त आ गया। रामायण के अनुसार श्री राम ने देवी सीता से जो विवाह करने से पहले मारा था वो रावण ने नहीं, रावण को नहीं बल्कि इंद्रजीत को भी नहीं, बल्कि सी जवाब तारका है, सही जवाब तारका को ही मार कर श्री राम ने तारका राक्षसी को ही मारा था। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे, तब तक के लिए उड़ान से कहूंगी गुड बाय, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: वो क्या होता है?
1: अरे तिकु नहीं पता क्या? इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर कम आए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया। इस कार्यक्रम के तहत हमें बहुत खुशी है क्योंकि राजकीय विद्यालय और ईश्वरीय विद्यालय दोनों विद्यालय का सहयोग से विद्यार्थी विकास में बच्चों का टैलेंट को प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज हम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धमसरा में पहुंचे। बहुत खुशी लग रहा है। हर दिन की तरफ आज भी विद्यालय का आवाज, बच्चों का आवाज सुनने को मिलेगा। बच्चों के अंदर में जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, जो भाव है, भावना है, कविता का माध्यम से, गीत का माध्यम से, प्रार्थना का माध्यम से और भाषण का माध्यम से जन जन तक पहुंचाएंगे। क्योंकि सरकार का जो मंशा है, आसपास जो गतिविधि हो रही है, सब तक पहुंचाने के लिए रेडियो मधुबन एक मंच, एक स्टेज देती है जिसका चलते बच्चे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और इस तरह मौका जब उनको मिलता है तब तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो उनके पास जो छुपी हुई प्रतिभा है जन जन तक पहुंचाते हैं। रेडियो मधुबन इस तरह पुनित काम करने के लिए सभी सहयोग देते हैं और सरकार भी और प्रशासन, लोकल प्रशासन भी सहयोग देते हैं और विद्यालय के स्टाफ और प्रभारी इस कार्यक्रम को सहयोग देते हैं। तो देर किस बात की, शुरुआत करते हैं पहला प्रस्तुति और इस कार्यक्रम को साक्षी दृष्टा रूप में हमारा मैम भी देख रहे हैं, सबको कोऑर्डिनेट किए। मैम अपना परिचय देंगे। मैम का आवाज सुनकर बच्चे भी थोड़ा वार्म अप हो जाएंगे, बच्चे को बोलने के लिए उमंग उत्साह है। छोटे छोटे बच्चे उनका तो आवाज में सुनने को मिलेगा, लेकिन पहले मैम को स्वागत करते हैं। मैम अपना परिचय देंगे।
1: मैं श्रीमती अशोक धायल, सब्जेक्ट इंग्लिश से
0: जी मैम,
1: और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धामसरा
0: जी,
1: और रहने वाले सीकर डिस्ट्रिक्ट से हूँ।
0: मैम आज सीकर जिला से आप रोड में आए हैं, तो आपको कैसे महसूस होता है? यहाँ का और वहाँ का बच्चों का डिफरेंस देखे होंगे, सीकर का और आप रोड के।
1: यहाँ पे थोड़ा सर मुझे ठीक नहीं लगता है। सीकर में एजुकेशन का काफी फर्क है, बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते भी हैं, बच्चों को कुछ कहा जाता है ध्यान से सुनते भी हैं और काम भी करते हैं। लेकिन यहाँ के बच्चों को कितना भी बोल दो, कितना भी कह दो, ये बच्चे बहुत ध्यान देने में बहुत कमी रखते हैं। और हमारे चिल्लाते रहो लेकिन इनके कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना ये पढ़ाई में ध्यान देते हैं, जो पढ़ना होता है स्कूल में पढ़ते, घर पे कुछ भी पढ़ के नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी हम पूरे स्टाफ इनके साथ कोशिश करते रहते हैं, 7-8 घंटे स्कूल रहते हैं, इन्हीं के लगे रहते हैं कि कैसे भी बच्चे पढ़े, कैसे भी आगे आए, पूरी मेहनत रात दिन इनमें कर लगे रहते हैं। जी सर,
0: सही बात, कितना सुंदर भाव से आपने बताया। और खासकर जैसे आपने बताया, आप भी कभी बच्चे होकर पढ़ रहे थे, उस समय भी बच्चे जब पढ़ते थे आप भी
1: जब
0: पढ़े
1: ये हुए? बच्चे 1 से 8 तक की क्लासों में पढ़ते हैं तब हमारा कहना भी मानते हैं और जितना कहते हैं उतना पढ़ते भी हैं। लेकिन जैसे बच्चे 9 से 12 तक पहुंच जाते हैं बच्चे एक भी सुनते नहीं है सर।
0: ओ, तो इसका राज क्या, क्यों सुनते नहीं
1: बच्चे? क्यों नहीं सुनते? इनकी दिमाग से सारी बातें ऊपर से जाती है, न टाइम से स्कूल आना पसंद करते हैं, न ही ये कोई काम करना चाहते हैं।
0: ये तो शिकायत बहुत बड़ी बात से,
1: इतनी बड़ी बात ही नहीं है सर, ये हम परेशान हो जाते हैं इनको। आप ही नहीं देखा, हम एक गाने के लिए सबको इनको हाँ हाँ करके आगे, लेकिन एक गाना नहीं सुना पाए।
0: तो
1: और सबको आता है इनको गाना, लेकिन आगे नहीं आना चाहते।
0: इसे पीछे थोड़े रहेंगे, आगे तो बढ़ना, इसलिए तो सरकार भी आपका पीछे कितना मेहनत करते हैं। और मैम
1: और हमारे स्कूल की तो प्रिंसिपल मैडम इतनी एक्टिव है, इतना समझाती है इनको। सर हम एक चोटी के लिए इतने परेशान हो गए, लेकिन ये इतनी अच्छी लड़कियां हैं, 2 चोटी नहीं बना के आ सकती।
0: लेकिन अभी तो देखिए दीदी बहुत सुंदर,
1: ये तो पूछो इनको हम कितना चिल्ला रहे हैं, कितना कर रहे हैं, फिर भी हमारे ये परेशान करने में लगी रहती है।
0: लेकिन अभी तो मुझे तो दिखाई दे रहा सबका छोटी,
1: ये सुबह सुबह इनसे करवाते हैं, आते स्कूल में आने के बाद ये मैडम करवाती है इनसे।
0: देखो कितना उसका दिल में कितना लगा होगा मैम को, इतना दूर से आया तो उनका जो जिसके लिए आए वो नहीं दिखाई देगा तो उनको तो गुस्सा आएगा
1: सर, ना? मुझे तो बहुत दुख होता है ये बच्चों को, जब मैं इतना पढ़ाती हूँ, मैं इनको 5 मिनट याद करने के लिए देती हूँ, रोज तुम 5 मिनट याद करके सुना दिया करो, रोज 5 मिनट, ज्यादा नहीं डिमांड करती हूँ इनसे, फिर भी इनसे 5 या 1 मिनट मेरे को सुनाने के लिए राजी नहीं होते।
0: जैसे अपना बच्चे कुछ शैतान करेंगे तो माँ बाप कितना दुखी होते, तो विद्यालय का जो शिक्षक गण मैम बस प्रिंसिपल जो सभी स्टाफ है आपके लिए कितना जी जान लगा कर देते, उनका जीवन आपके लिए सैक्रिफाइस किए और इतना मेहनत किए उनका समय में आपको देने के लिए, आप लेने के लिए जब पीछा नहीं करेंगे और उसको आत्मसात नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिकल बात नहीं मानेंगे बड़ों का, तो जाकर क्या करेंगे? इसलिए अभी समय मैम, इसलिए अपना बात पूरा करें, हर स्कूल में ऐसे मैम होना चाहिए, क्योंकि बच्चे मतलब अपना बच्चे खराब होंगे तो हमें दुख होगा,
1: बहुत दुख होता है सर। हमारे बच्चे जब हमारी नहीं सुनते, हम क्लास में आते हैं तब इनके कोई पढ़ी नहीं है कि मैडम आई है तो हम कुछ बैठे शांति से,
0: जो हुआ हुआ है, जो हो गया आज से ऐसे संकल्प करेंगे, सभी बच्चे संकल्प करेंगे ना, हम आज से जरूर बड़ों का बात मानेंगे वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो हमारा भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमें सब कुछ देने के लिए तैयार है। अभी से हम मानेंगे, माँ बाप का बात भी मानेंगे, हमको कोई बोलने का पहले हम खुद करेंगे, जो पहले करते हैं उसको देवी देवता कहते हैं, बोलने के बाद भी जो नहीं करते हैं, बोलने के बाद भी नहीं करते उसको क्या बोलते हैं, अलग नाम है उसका, उसको बोलना नहीं चाहते हम। जो बोलने के बाद करते हैं वो तो मनुष्य है, बोलते हैं तो करते हैं, लेकिन बोलने का पहले जो करेंगे ना उसके लिए शाबाश वो चाहिए हमें। इसलिए धर्मशाला स्कूल के आगे जब आएंगे रेडियो प्रोग्राम के लिए, उस समय जरूर मैं आप सबको, मैंने चेहरा देख रहा हूँ, और जरूर बोलने का पहले ऐसे रेडी रहेंगे, मैम को बोलना नहीं पड़ेगा, मैम को मेहनत करने के लिए नहीं देंगे, आप खुद मेहनत करेंगे, मैम को पूछना मैम हम क्या कर सकते और क्या कर सकते और क्या कर, इसे पूछो, वो देने के लिए तैयार है, आपको टिप्स देंगे, आगे भी आगे जा पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम को, अपना परिवार सोच कर अपना बात को बताया, लेकिन ऐसे होना चाहिए। और आप सब बच्चे हमारा सच्चे है और बहुत अच्छे बच्चे परियां हैं सभी, और आपका पास वो भाग्य है, लेखा आपका पास लिखा हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा उजागर करना है, बस हो जाएगा। सबका अंदर में विशेषता है, जैसे मैम बोल रहे थे सबका पास विशेषता है, लेकिन क्या है थोड़ा सा आगे हमें आना है। चले बहुत बहुत धन्यवाद सबको, उमंग उत्साह दिला दिए और एक वार्म अप हो गया, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बच्चों का आवाज सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद सुनते रहिए, मुस्कुराते रहे, कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। यह था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धमसरा का, खासकर मैम का अपना दिल का बात।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला प्रस्तुति हमारा साथ प्रार्थना के रूप में शुरू करेंगे। कि हर विद्यालय में प्रार्थना सत्र में कोई भी कार्य शुरू करते तो माँ सरस्वती को व भगवान को अल्लाह को खुदा को याद करते तीन छात्र उपस्थित है तो उनको भी स्वागत करते हैं। अपना नाम बताएंगे और कौन सा फल चाहते हैं।
2: मेरा नाम वर्षा है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामसरा।
1: क्या बात है वर्षा, हमारा कितना नाम सुंदर है। वर्षा का दिन में वर्षा, बारिश तो हो रहा है और वर्षा हमारा इस कार्यक्रम को सजा रहे और उसका दो दोस्त भी है। हेलो, नाम बताइए प्लीज।
3: मेरा नाम है अंजलि, मैं कक्षा 9 से हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामसरा।
1: गुड, ऐसे होना चाहिए आवाज में दम है। भले अनेक तारा है लेकिन एक चांद पूरा रात का उजाला दे देता है। तो हमारा तीन छात्र जो पूजा और वर्षा और एक,
4: मेरा नाम दुर्गा है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामसरा।
1: क्या बात, कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं। कौन बोलता भाई बच्चे नहीं आते, लेकिन मैम का उमंग उत्साह देखकर बच्चे भी अपना उमंग उत्साह को बढ़ाए और डांट खाए तो आगे बढ़ गए। तो पूजा एंड टीम को एक प्रार्थना का गीत गाने के लिए रेडी।

0: मां।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। और शुरुआत जब अच्छा होता है तो अंतिम भी अच्छा होगा, ये हमें विश्वास है। क्योंकि बच्चे का अंदर में जो हुनर है, जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, अभी उनका आवाज जब सुन रहे थे कितना सुंदर आवाज, और कंठ में माँ सरस्वती जैसे विराजमान है ऐसे उनको लग रहा था। और बड़े होकर तो अच्छा अच्छा आशा रखते हैं, तो बड़े होकर क्या बनेगी वर्षा, बड़े होकर मैम जैसे कितने उमंग उत्साह से सीकर जिला से आकर आपको देने के लिए आए, उनका जो शिक्षा है आपको भी शिक्षित बनाने के लिए दिया, तो बड़े होकर क्या बनेगी वर्षा?
0: मैं बड़े होकर टीचर बनूंगी।
1: वाह, टीचर के लिए ताली बजाओ, हमारा बहुत अच्छा बच्ची हमारा टीचर बनेगी। टीचर होते तो बहुत अच्छी से मैम कितना दिल से अपना पढ़ाई को आप तक पहुंचाते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए उनका कदम पर चल लेंगे तो आप भी बड़े बनेंगे, है ना वर्षा? बड़े होकर तो टीचर बनेगी। और घर में कौन कौन है?
0: माँ है, बहन है, पापा है, भाई है।
1: सबसे अच्छा कौन लगते हैं?
0: पापा।
1: पापा, वाह, पापा तो पापा होते हैं, माँ तो माँ होते हैं, उनका बिना अधूरा है। जिसका माँ बाप है तो सब कुछ है, भगवान तुल्य, है ना? बाप को हम भगवान कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, है ना? तुम्हें वो माता सब पिता तुम्हें वो कहते हैं, हमारा माँ बाप हमारा भगवान तुल्य है ना वर्षा?
0: है।
1: हाँ, तुम बड़े होकर क्या बनेगी?
0: टीचर।
1: टीचर ही टीचर, तो जिसको आवश्यकता है तो सीकर जिले को हम याद नहीं करेंगे, अब्रोड में टीचर मिल जाएंगे। मैम आपका टीचर का पोस्ट को सभी लोग लाइक करते पसंद करते हैं, क्या विशेषता है जो टीचर बनने के लिए आप भी टीचर बने, क्या मेहनत किए मैम आप? ऐसे बच्चों का समय में आपका उमंग था जिसे हम टीचर बने का भी सोचा था, मैम आप कैसे टीचर बने? बच्चों को एक प्रेरणा मिलेगा, आप कितना मेहनत किए?
2: मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि घर से 600 किलोमीटर दूरी पे मुझे स्कूल मिलेगा, जो बहुत कुछ खो दिया इस जॉब के चक्कर में, ना परिवार के साथ रह पाई, ना बच्चों की देखरेख कर पाई, ना अपना भविष्य कहीं संभाल पाई। मैं हकीकत पूछा जाए ना सर, तो मैं मेरे जॉब से बहुत दुखी हूँ कि जहाँ हूँ वहाँ मैं संतुष्ट भी नहीं हूँ, और जिस पोस्ट को लेके यहाँ बैठी हुई उससे भी खुश नहीं हूँ मैं।
1: देखिए मैम, ये तो आपने जो बताया, मैंने और कल लेकर स्कूल में भी वो भी दूसरा
2: टीचर बनने के लिए बहुत मेहनत करी थी, ऐसे ही नहीं पहुंचे थे आरपीएससी से टेस्ट पास करके, इतनी रातों दिन रात दिन एक करके, लेकिन जहां पहुंचे वहां बहुत परेशान हुए।
1: देखिए आपका लेखा यहां पर लिखा हुआ है तो आपको यहां पर ही पालन करना पड़ेगा, कुछ समय बाद ये चेंज हो सकता, हमेशा नहीं रहता।
2: नहीं है सर, ये हम 5 साल का टाइम पीरियड दिया गया था, फिर 10 साल बढ़ा दिया, 15 साल कर दिया, आज 20 साल हो गए यहाँ इतने दूर बैठे हुए।
1: अच्छा,
2: अब तो हमारे भी तो घर परिवार वाले भूल गए हमें कि हमारे कोई बहू भी है, बेटी भी है, कोई जानते ही नहीं है हम लोगों को।
1: लेकिन अच्छा लग रहा है,
2: और हम लोग इन बच्चों के लिए समर्पित है सारे दिन।
1: जी जी,
2: जो पैसे कमाते हैं वो भी हम सारा यही खर्च कर देते हैं, इन्हीं बच्चों के लिए खर्च कर देते हैं। स्कूल है तो ऐसे आर्थिक तंगियों से जूझ रहे हैं कि एक एक चीज के लिए हमें खुद ही अपने पेमेंट से बच्चों की व्यवस्था करनी पड़ती है।
1: जी जी,
2: तो जब उत्सव होते हैं तब भी हम अपने ही पैसों से लाकर स्कूल की व्यवस्था करते हैं, सरकार की तरफ से हम ऐसी गिनी चुनी चीजें मिलती है जो हम बच्चों को दे ही नहीं पाते हैं बिल्कुल भी।
1: तो सभी बातें दिल का बात रखें कि हमारा प्रशासन तक ये पहुंचे, क्योंकि जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे प्रशासन हो चाहे भामाशाह हो, क्योंकि कोई भी जो चीज होता है उसको दिल से इस माध्यम से, ये तो कम्युनिटी रेडियो है, अपना रेडियो है, रेडियो का माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए अपना दुख हो चाहे सुख हो सब तक पहुंचे, जो निवारण हो, कोई दुखी नहीं रहे ये हमारा भावना है। हम दुख रहेंगे तो हमारा बच्चे कैसे रहेंगे सुखी, इसलिए दुख और सुख, हम दुख रहेंगे तो बच्चे भी दुखी रहेंगे, हम सुखी रहेंगे तो बच्चे भी सुखी रहेंगे, इसलिए सभी स्टाफ हो चाहे हमारा बच्चे सुखी रहे ये हमारा भावना है। हाँ, हिसाब किताब किसका कहाँ पर जो भी होता है, कुछ कार्मिक अकाउंट भी होता है, जैसे हम कर्म को देखेंगे तो जरूर हिसाब किताब जब चुक्त हो जाएगा वो तुरंत वहां से किसी हिसाब बच्चों का साथ आपका किसी जन्म में लगाव झुकाव है, इसलिए आज आप बच्चों का साथ हम रूबरू हो रहे, नहीं तो आप कहाँ और हम कहाँ, ये तो हमारे हाथ में नहीं कि आपका हाथ में, आप कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा, इसका मतलब और कुछ दिन थोड़ा इतना सहन किया तो और कुछ दिन सहन करना पड़ेगा लगता मुझे, और हो सकता कल भी आपका प्रमोशन होकर जा सकते आप जहाँ चाहते, क्योंकि ये तो अपना संकल्प का ही पावर है, तो ये अपना अपना जगह में है। लेकिन हमारा कहने का मतलब जहां भी रहे जो भी है वो परिस्थिति आएगा हर जगह में, तो वो परिस्थिति को अपना स्वस्थिति में टिका रहना चाहिए, स्वस्थिति मतलब खुद को कंट्रोल करना, जो भी परिस्थिति है उसको मुकाबला करना सीखना चाहिए, क्योंकि कभी किसका पास क्या भी आता, हर इंसान का पास अलग अलग आता है ट्रबल, बच्चों का पास भी आज रिकॉर्डिंग करने के लिए तो उनका समस्या आ गया है, बोला हम तो नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन समय आया तो बच्चे
2: तो अभी ये आप आए हो तो ये बस हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि देखे मैडम क्या कर ले वे, सर क्या कर ले वे। ऐसे तो खूब गाने गाते हैं, ये कोई कमी थोड़ी छोड़ते हैं।
1: देखिए अभी पहला प्रस्तुत में कितना सुंदर सा आवाज में दिए वर्षा और उनका टीम। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हमारा छोटे छोटे बोरिया भी बैठे तो उनको कौन भूल पाएंगे। और राकेश सर और मैम को भी धन्यवाद देते हैं बच्चों को लेकर आए रेडियो प्रोग्राम में, क्योंकि आकाशवाणी में जब आते हैं बच्चे तो उनका परिवार जब सुनेगा अरे मेरा बच्चा पढ़ाई का साथ साथ ऐसे रेडियो में आते हैं ये कम बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए जाने के लिए बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है। सरकार तो बच्चों के लिए ग्रामांचल बच्चों को एक रेडियो स्टेशन दिया है, ऑल इंडिया रेडियो तो बच्चे नहीं जा पाते हैं कि कमर्शियल रेडियो में जा नहीं पाते, ये सामुदायिक रेडियो कम्युनिटी रेडियो में कम्युनिटी का आवाज के लिए बच्चों को मंच मिलेगा। और हमारा छोटी छोटी नन्हियां परिया तो उपस्थित है तो उनको भी लेंगे, लेकिन अल्प विराम का बात सुनते रहिए मुस्कुराते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: रुक रुक, भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पे चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: चलिए कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए, हमारा साथ नन्हिया परिवार आए, छोटे छोटे बच्चे, टोतल टोतले आवाज में, पहली क्लास के, दूसरी क्लास के, तीसरी क्लास के सब बच्चे आए, सभी अपना अपना नाम बताएंगे खुशी से जब सुनेंगे रेडियो में, आह क्या आवाज है। हेलो, नाम बताइए।
4: मेरा नाम हिना है, मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामिश्रा।
3: अरे क्या बात, मैम जो कंप्लेन कर रहे थे बच्चे, अब पूरा उम्मीद गुस्सा आ गया भाई, मैम का इज्जत को हमको रखना, मैम हमको इस स्कूल से नाराज थे, लेकिन हमारा बच्चे आज नाराज नहीं करेंगे मैम को, नहीं करेंगे, है ना मैम, जो चाहते हैं वो करना है। ओके, हमारा बहुत अच्छा बच्ची है, ऐसे बुलंद आवाज में बोलना है, डरना नहीं, हाँ झिझक नहीं।
4: मेरा नाम दुर्गा, मैं चौथी कक्षा पढ़ती, मेरा विद्यालय का नाम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामिश्रा।
3: क्या बात, एक्सप्रेस पूरा दुर्गा काली सब यहाँ पर मिलेगा। नेक्स्ट।
5: मेरा नाम है गुड़िया, मैं कक्षा पांचवी में पढ़ती हूँ। मेरा नाम है सीमा, मैं कक्षा पांचवी में पढ़ती हूँ, विद्यालय का उच्च माध्यमिक विद्यालय दामिश्रा।
3: वाह।
6: मेरा नाम है रमिता, मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ।
3: कौन बोलता है भाई, ग्रामांचल वाले आदिवासी बच्चे बोल नहीं पाते, झिझक करते, लेकिन बड़े बच्चे शर्माते, लेकिन छोटे बच्चे से सीखो। नाइन्थ क्लास का बच्चे, तीसरी क्लास, दूसरी क्लास का बच्चे कैसे आवाज से बोलते हैं, मैम सही बोल रहे थे, पहले क्लास से आठवीं तक मानते, नाइन्थ हो गया बस पढ़ाई हो गया, ऐसे नहीं करना। हाँ।
7: मेरा नाम है भावना, मैं कक्षा पांचवी में पढ़ती हूँ।
3: वेरी गुड।
8: मेरा नाम है सिंजल, मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ, मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दामिश्रा।
3: हो गया, सभी का हो गया। देखो ये आवाज जब सुन रहे श्रोता मित्र, हो सकता है उनका माँ बाप भी सुन रहे होंगे, उनका बड़ी बहन बा बड़ा भाई बा छोटे काका दादा दादी सुन रहे होंगे, तो सुनेंगे जब उनका आवाज को, तो वो आवाज ही उनका पहचान होगा, क्योंकि रेडियो का माध्यम से, चाहे इंटरनेट का माध्यम से, चाहे FM का माध्यम से, लिंक का माध्यम से, एप्लीकेशन का माध्यम से सुन रहे, जहां पर भी भारत का कोई भी कोने में हम सुन सकते इस कार्यक्रम को, क्योंकि शाम को 7 से 8 बजे हमारा श्रोता सुनते हैं और ये सामुदायिक आवाज। चलिए एक प्रस्तुति सुनाएंगे, सब रेडी बच्चे हैं, शुरू।

0: सरे कह रहे।
1: और एक गीत, अरे वाह क्या ऐसे होना चाहिए। और वाज मोर खुद बोले सर और एक गीत गाओ, मैं हाँ गाओ गाओ क्यों नहीं भाई, क्योंकि एक गीत में हमें बहुत खुशी मिल रहा है, क्योंकि स्कूल बहुत दूर है हमारा घर से, घने दूर है, बहुत दूर है, तब फिर हम कैसे जाओ। सरकार सुन रहा है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए जैसे आंगनबाड़ी जल्दी जल्दी अपना आसपास रख दीजिए, और आज प्राइमरी स्कूल भी साथ में रहेगा पास पास, तो बच्चे पढ़ने के लिए भरवाने के लिए आ जाएंगे, इसलिए वैसे ज्यादा दूर में बच्चे दिक्कत होता है, बारिश का सीजन में दिक्कत होता है, गर्मी के टाइम में भी दिक्कत होता है, इसलिए जितना नजदीक स्कूल मिलेगा बच्चे तुरंत जाएंगे, और सीसी रोड मिलेगा तो अच्छा है, कीचड़ नहीं, आराम से जा पाएंगे। ठीक है चलिए और एक प्रस्तुति हमारा वर्षा सुनाएगी सभी टीम के साथ, फिर और एक गीत, कौन सा गीत गाएंगे वर्षा?
0: हम सब बच्चों को गिनती सिखाएंगे।
1: अरे वाह बहुत अच्छा सुना।
0: हाँ।

0: बच्चों बोलो पास, हमने लाया नाच। थोड़ा हम भी नाचेंगे, थोड़ा तुम भी नाचोगे, थोड़ा हम भी नाचेंगे, थोड़ा तुम भी नाचोगे।
1: क्या बात, ताली बजा भाई बच्चों के लिए। बस ताली में कोई कंफ्यूज नहीं है। और बच्चे, छोटे बच्चे देखो उनके पास कितना उमंग है। वो खुद बोले सर और एक गीत गाओ। मतलब गाओ गाओ क्यों भाई, हाँ हमारे वर्षा के लिए बहुत अच्छा उमंग उत्साह है। घर में कौन कौन है ना?
0: मेरा दादा है, मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है।
1: रोटा कौन बनाता है? रोटा
0: मम्मी।
1: और तुम बनाती कभी?
0: नहीं।
1: तुमको आती नहीं? क्या आती तुमको बताओ देखिए।
0: हमको कविता आता है।
1: और मगरा जाते हैं? मगरा में
0: जी।
1: में क्या मिलता है? बकरी चराने के लिए जाते। देखो हमारा बच्चे माँ बाप का हेल्प करते हैं, बकरा बकरी को मगरा में जाते, घास वगैरह लेकर आते हैं। बहुत अच्छा सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद बड़ों का भी प्रस्तुति सुनेंगे। वर्षा, वर्षा नाम ले रहे, वर्षा रेडी रहे और एक प्रस्तुति के लिए मैम। फिर उमंग उत्साह से आपको फिर दिलाएंगे डोज। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।

0: 5 YouTube वीडियो को लाइक करके 5 लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
2: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
2: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
3: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी मिल रहा है क्योंकि बच्चे का पास थोड़ा सा जब उमंग उत्साह होता है, एक बार गाड़ी स्टार्ट हो जाता है ना तो पिकअप पकड़ता है। तो बच्चे पहले पहले मना कर रहे थे लेकिन जब मैम का डोज पड़ा तो सभी ने बच्चे रेडी हो गए और वंस मोर करके प्रोग्राम रेडी हो रहा है। सभी को धन्यवाद देते हुए अगला प्रस्तुति के लिए रेडी हमारे साथ वर्षा एंड पार्टी आए हैं, तो सुनाएंगे।

0: रहेगा।
1: बहुत अच्छा सुंदर प्रस्तुति के लिए, और लय और ताल का साथ गाते हैं। बच्चों का बल गीत को नहीं देखना, उनका जो भाव और भावना, उनका जो शब्द में गला में सरस्वती का जैसे बैठा हुई ऐसे लग रहा है, क्योंकि उनका सुर लय और ताल का साथ जो गीत गाते हैं तो खुशी लगता है। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम का बाद।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ और एक छात्रा उपस्थित है, तो अपना हम बात को रखेंगे। पहले आप,
1: मेरा नाम पांडरी कुमार, एक कक्षा 9 में।
0: चलिए एक प्रस्तुति सुनाएंगे, सब रेडी बच्चे, शुरू।

0: रही।
1: चलिए इस कार्यक्रम को और साथ देने के लिए और एक प्रस्तुति सुनाओ।
0: मेरा नाम है अंजलि कुमारी, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तामसरा। मैं एक आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ, गलतियों तो क्षमा करना। एक दिन बोले मुझे नानी, मैं कहती तुम सुनो कहानी। एक खेत में जूता पड़ा था, उबड़ खाबड़ बहुत बड़ा था। कोई सीढ़िया बीज उड़ाती, उड़ती उड़ती गई डाल पर। हवा डरा की धूप चलाती, मिट्टी उसको खूब दबाती। मिट्टी की गोदी में रहकर, सूरज को किरणों में जलकर। कहा बीज ने हाय अकेला, पर नडर भले अकेला।
1: अंजलि बड़े होकर क्या बनेगी? अंजलि
0: मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ।
1: और घर में डॉक्टर है कोई?
0: नहीं नहीं, थोड़े गांव में है।
1: गांव में है डॉक्टर? डॉक्टर का काम क्या होता है? मरीज को
0: सुई लगाना।
1: सुई लगाते हैं, इलाज करते हैं। और तुम्हारा अच्छा दोस्त कौन है?
0: मेरा दोस्त सीमा।
1: सीमा, सीमा अच्छा दोस्त है। कौन सा क्लास के सीमा?
0: 9th
1: क्लास। और कौन सा गाँव से आप आते हैं?
0: दामसरा गांव से।
1: चलिए हमारा साथ अब छोटी सी परी भी है, तो वो भी अपना गीत गाएगी, है ना? गाओ
2: ला ला।

0: आएगा।
1: सो यहाँ से कलश निकाल देते सब, कहाँ से सीखते? मोबाइल से ना, घर में कहाँ से सीखते?
2: दुर्गा
1: कहाँ से सीखते?
0: स्कूल में।
1: स्कूल में सब होता है?
0: हाँ,
1: कब?
0: झंडे पे।
1: झंडे पे होता है। और कहाँ से आती तुम? कौन सा फल? भमरिया फल। और कौन कौन है भमरिया फल का? दो चार लोग का नाम बताओ, काका काकी का नाम बताओ।
0: गोवा राम जी।
2: और तुम बताओ?
0: विक्रम।
1: विक्रम जी। और तुम बताओ?
0: धर्मी देवी जी।
1: धर्मी देवी। और तुम बताओ?
0: गीता देवी।
1: गीता देवी। और पापा का नाम?
0: रमेश कुमार जी।
1: क्या करते रमेश जी?
0: खेती।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। अच्छा, धन्यवाद, आभार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। हर बार हम इस कार्यक्रम को लेके आते हैं, कुछ आध्यात्मिक जगत की योगियों को आपसे रूबरू कराते हैं इस कार्यक्रम में। दोस्तों, हर कोई अपना जीवन जीता है, लेकिन ऐसा कौन सा पल होता है या ऐसे कौन से जीवन होता है जिसके लिए हम कहे जीना इसी का नाम है। चलिए दोस्तों, आज की हमारी जो मेहमान हैं आज के कार्यक्रम में, उनसे जानते हैं कि उनको वो पल कब महसूस हुआ कि मुझे ऐसे ही जीना है और इसी को ही जीवन कहते हैं। चलिए स्वागत करते हैं ईश्वर जी को। आप जलगांव महाराष्ट्र से हैं, लेकिन 1992 से आप ब्रह्म कुमारीज के हेडक्वार्टर्स शांतिवन में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक आध्यात्मिक जीवन जीते हुए जिम्मेवारियों को संभालना और उसको बखूबी निभाना क्या होता है, आइए आपके जीवन से जानते हैं। ईश्वर जी, आपको रेडियो मधुबन में और जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
1: थैंक यू। नमस्कार जी। और सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार कि आप अभी सभी सुनेंगे और किस तरह जीना इसी का नाम है, और बहुत अच्छा सुंदर टॉपिक आपने चुना है। मुझे बहुत अच्छी एक सॉन्ग है आध्यात्मिक जी। उसमें है कि इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजू।
0: हाँ।
1: ये राजू ऐसा चीज है जो इंसान को एक जीने की कला सिखलाता है। जो मुस्कुरा के जिए, खुशहाल होके जिए, वही एक जीना है। और दूसरों के लिए जिए और दूसरों के हर कार्य में मदद करे, उसके सुख दुख में मदद करे और हर प्रकार से उसको सहयोग करे और खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी खुशी दे। परमात्मा यही बोलता है कि खुद ना दुखी हो, ना किसी को दुख दो, खुद भी सुखी रहना है, दूसरों को भी सुखी करना है। तो ये जीना इसी का नाम है। तो बहुत अच्छा आपने टॉपिक चुना है। इसके माध्यम से बहुत सारे श्रोताओं को भी एक जागरूकता आएगी कि किस तरह हमारा जीवन होना चाहिए। हमारे जैसे यहाँ पर करीबन 2000 से लगभग यहाँ पर समर्पित लोग सरेंडर है, यहाँ पर डेडिकेट है इस विद्यालय में, और मैं समझता हूँ सारे स्टेट से, सारे जगह से है, और सभी ऐसे मिलजुल के रहते जैसे परिवार में भाई भाई बहन रहते हो, इतना प्यार से रहते। तो ये भी एक जीने की कला सिखाता है राजयोग। और राजयोग के माध्यम से मैं इस राजयोग केंद्र से जुड़ा था 1983 में
0: जी,
1: जब मैं फोर्थ क्लास में था। और हमारे गांव में, जब जलगांव डिस्ट्रिक्ट में भड़गांव तहसील में हमारा गांव है, तो वहां पर हम रहते थे। और हमारे साथ जब मैं फोर्थ क्लास में था तो हमारे पिताजी शरीर छोड़ दिया था, और उसमें हमारी माताजी बहुत दुखी थी। करीबन 6 मास हुआ था, काफी दुख में थी, और क्योंकि हम 3 भाई थे, 2 बहनें थी, और पूरी जिम्मेवारी उसके ऊपर आने से वो काफी मना ट्रेस में थी। तो ऐसे टाइम पे शिवरात्रि के दिन था और एक टीचर वहाँ पर, स्कूल टीचर, उसका ट्रांसफर हुआ और वो पहले इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़ा हुआ था। और उसने वहाँ पर आने के बाद, जैसे हम कहते हैं कि जैसे हमको सुख मिला, हमको अच्छा चीज मिली, तो हम सबको दे और सबको सुखी बनाए। ये इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है कि सबका जीवन सुखी कैसे बने, परमात्मा यही चाहता है। तो उसी उद्देश्य से उन्होंने एक शिवरात्रि के दिन एक प्रदर्शन लगाई, जिसको हम एग्जीबिशन लगाई उन्होंने वहाँ पर। तो उन्होंने बहुत सुंदर एक लगाया था बोर्ड कि स्वर्ग में एक सीट खाली है और सुखमय जीवन जीना है तो ये सच्चा मार्ग है, परमात्मा शिव धरती पर आ गए। तो बहुत अच्छा आकर्षक बोर्ड था वो। तो वो देख के, तो गांव में तो पता था आपको कि गांव में जब लोग आते हैं, ऐसी कोई बात नई चीज आती है तो पूरे गाँव में फैल जाती है। तो ऐसे पूरे गाँव में चर्चा होगी, कोई एक टीचर आया, स्कूल टीचर, और एक कोई आध्यात्मिक ज्ञान दे रहा है, और एक नया ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, और सच्चा ज्ञान है, जीवन जीने की कला सिखाने का ज्ञान है। तो हमारी माताजी को जब मैसेज मिला तो वो भी गई वहां पर। तो उनके साथ मैं और मेरा बड़ा भाई, हम दो लोग वहां पर पहुंचे। तो हमने देखा, जब वो, हम तो छोटे थे उस टाइम, लेकिन हमको जो दिखाया गया था एक कार, उसके अंदर नाक मुंह सब लगा हुआ था। तो मैंने मास्टर जी को सबसे पहले वही पूछा कि भाई कार को हाथ नाक क्यों लगाया
0: जी, तो एक बाल मन में सवाल तो ऐसे ही आता है।
1: तो उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में मुझे कहा, जैसे कार होती है उसको ड्राइवर चलाता है, वैसे आत्मा भी बॉडी को चलाती है, लेकिन ड्राइवर कहाँ बैठता है, मेन इंजन के पास। वैसे आत्मा भी भ्रुकुटी, आंखों के बीच में भ्रुकुटी है मस्तक में, यह आत्मा बैठती, इसलिए यहाँ तिलक करते लोग, जोत जलाते और उसको नमस्कार कर। तो इस तरह आत्मा भी यहाँ बैठ के इस पूरे बॉडी को कंट्रोल करती है, बाकी जो पहिया है वो सब कर्मेंद्रिय हमारे। तो उन्होंने डिटेल थोड़ा ज्ञान सुना, मुझे अच्छा लगा कि ये तो रियल बात है
0: जी।
1: उसके बाद उन्होंने फिर थोड़ा परमात्मा के बारे में बताया, जैसे आत्मा के पिता ज्योति स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है, उसका कर्तव्य क्या है, वो कब आता है, और संसार चक्र में कैसे मनुष्य आत्मा के 84 जन्म होते और किस तरह आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आते आते फिर से रिपीटिशन का ये समय आ गया है, तो उन्होंने बोला फिर कल सुनाएंगे आप। तो ऐसे 3 दिन उन्होंने हमको एक एक चीज डिटेल बताई। हमारे एक ग्रुप था, ग्रुप ग्रुप वाइज समझाते थे वो लोग, एक ग्रुप को फिर दूसरे ग्रुप, ऐसे 4-5 ग्रुप थे। तो हर दिन हमको 1 घंटा जाना पड़ता था, तो 1 घंटे में काफी हमको ज्ञान मिला, आत्मा का मिला, परमात्मा का मिला, संसार चक्र का मिला, कर्मों की फिलॉसफी का मिला। जबकि हम बच्चे थे इतने समझ नहीं पाते थे, लेकिन काफी बातें समझ में आती थी कि क्या है प्रैक्टिकल।
0: तो फिर आप अपनी लौकिक पढ़ाई भी पढ़ते थे?
1: जी, लौकिक पढ़ाई भी पढ़ते थे,
0: मतलब सुबह स्कूल गए फिर शाम को आप आश्रम।
1: शाम के टाइम हम फ्री होते थे तो शाम के टाइम जाते थे, कि गांव में लोग शाम को इकट्ठा होते, तो शाम का ही टाइम था वो, तो शाम के टाइम हम जाते थे रोज। तो ऐसे करते करते फिर उन्होंने बोला कि अभी आपको तो समझा दिया बेसिक नॉलेज हमने, तो अभी आपको कल मुरली सुनाएंगे।
0: अच्छा।
1: तो मुझे लगा मास्टर जी को मुरली बजाना आता होगा। तो हम तो बहुत खुश हुए कि बोला चलो एक संगीत भी मास्टर जी कराता है तो मुरली सुनने जाएंगे जरूर। तो हम सभी गए, तो पहले उन्होंने तो रेड लाइट में मेडिटेशन कराया, परमात्मा की अनुभूति कराई, बाद में फिर कुछ परमात्मा के महावाक्य सुनाए गए, फिर बाद में फिर रेड लाइट में मेडिटेशन करके फिर बोले उठ जाओ जाओ। बोले मैं तो बैठा रहा, मैंने कहा आप मुरली सुनाओ तो मैं जाऊँ। मैंने कहा आप तो मुरली सुनाने वाले थे, मैं बैठा हूँ। तो बोलता नहीं, मुरली इसी को बोलते, परमात्मा का जो महावाक्य जो उसका गायन है कि कृष्ण की मुरली सुन के सब गोप गोपियां दौड़ के आती थी, तो परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया है, इस ज्ञान को जो आत्माएं सुनती है वो जीवन में धारण करती, उनका जीवन श्रेष्ठ बनता है। तो ऐसी कई आत्माएं फिर यहाँ आती है दौड़ दौड़ के। तो ये है बोले ज्ञान मुरली। तो ऐसे धीरे धीरे ज्ञान की बातें समझ में आने लगी, फिर आगे बढ़ते रहे। फिर 1992 में मैं यहाँ पर पहली बार आना।
0: ईश्वर जी, जैसे आप मधुबन में पहली बार आए हैं, लेकिन उससे पहले जैसे आपके जीवन में आप सुबह स्कूल जाते थे फिर शाम को, तो फिर आपने पढ़ाई कहाँ तक किया? और आप बचपन से ही आध्यात्मिक पढ़ाई और लौकिक पढ़ाई दोनों पढ़ रहे थे, तो फिर किस प्रकार से आपको ये मदद किया है?
1: जी, हमें लौकिक पढ़ाई में जो आध्यात्मिक पढ़ाई ने बहुत मदद की, क्योंकि जो आध्यात्मिक पढ़ाई से एक तो माइंड एकाग्र हो जाता है, और दूसरी बात हम बुरे संग से बच जाते हैं। जो परमात्मा के ज्ञान से बचपन से जब जुड़ जाता है व्यक्ति, उसको अच्छी बातें जब सुनने को मिलती है, तो वो बुरे संग से बच जाता है, बुरे खान पान से बच जाता है, और दूसरी बात हमारे पढ़ाई में भी फोकस रहता है। और जैसे मॉर्निंग उठने का हमारा नियम था, मॉर्निंग में जल्दी हम उठते थे मेडिटेशन के लिए, तो उसके बाद फिर 1 घंटा पढ़ते थे, तो जो मॉर्निंग जो पढ़ाई पढ़ते तो पूरा उसमें अंदर चली जाती, तो एक साइलेंस, एक पॉजिटिव वातावरण होता मॉर्निंग के टाइम। तो ये बहुत अच्छा था कि बहुत मजा आता था। कभी कभी मैं परमात्मा के बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग होते तो वहाँ सुनाते थे स्कूल में, उनको भी अच्छा लगता था। तो इस तरह हमारा चलता रहा। मैं
0: लेकिन कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप ईश्वरीय पढ़ाई, मतलब सुबह स्कूल जा रहे शाम को आश्रम जा रहे हैं, और आपको बच्चे है तो खेलने का मन करता है, दोस्तों के साथ घूमना है, ये सभी चीजें।
1: जी,
0: तो कभी ऐसा नहीं लगता कि आपने कोई चीज मिस किया है?
1: नहीं, ज्यादा तो ऐसा मिस नहीं हुआ, क्योंकि दिन में थोड़ा टाइम मिलता था, कभी हम खेत में भी चल जाते, कभी दोस्तों के साथ भी बैठ जाते थे, लेकिन शाम का टाइम हमारा फ्री होता था। तो शाम को जो टाइम है मेजोरिटी 7 बजे के बाद वो टाइम फ्री रहता था हमारा, तो 7 से 9 बजे तक हम फ्री रहते थे। तो उस टाइम हम थोड़ा 1 घंटा ज्ञान भी सुन लेते, 1 घंटा पढ़ाई भी कर लेते, फिर 10 बजे सोते थे। तो ये हमारी दिनचर्या थी। हमारा भाई भी हमारे साथ ज्ञान में चला था, तो काफी वो भी अच्छा आगे प्रोग्रेस किया उसने ज्ञान में भी। फिर वो 1991 में यहाँ पर माउंट आबू से एक सूचना आई थी कि यहाँ पर एक कार सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पर ज्ञान सरोवर लैंड वहाँ खरीदा हुआ था और वहाँ की झाड़ियाँ काटनी थी, और उस टाइम तो सब सेवाधारी मिलके सेवा करते थे। तो उस टाइम वो आया था फर्स्ट टाइम और माता जी के साथ, और उसने जब ये सेवा करके मुझे समाचार सुनाया कि बहुत अच्छी जगह है और बहुत बढ़िया है और बहुत ज्ञान युग का मजा आता है वहाँ पर, तो मेरा भी मन हुआ कि मैं भी जल्दी से जल्दी जाऊँ। तो मैं बीए सेकंड ईयर का एग्जाम दिया, और मैं जस्ट माता जी आ ही रहे थे तो अक्टूबर में यहाँ पर बाबा मिलन के लिए, तो उस टाइम 4 दिन का ही यहाँ पर टाइम मिलता था, क्योंकि दूसरे सेकंड वीक में फिर बाबा आते थे। हर वीक में परमात्मा का अवतरण होता था और हर व्यक्ति को 4 दिन के लिए स्टे होता था यहाँ पर। तो मैं जब फर्स्ट टाइम आया तो 4 दिन के लिए आया था, लेकिन मैं जब यहाँ आया तो यहाँ का वातावरण देख के और यहाँ का हर कोई मुझे फरिश्ता ही नजर आया। इतना यहाँ पर मेरा योग लगता था, इतना मजा आता था लाइफ में, तो मुझे लगा जीना है तो यही जीना है।
0: जी,
1: दुनिया में भाई कोई सर्विस करो, कुछ लोगों के लिए जियो, उससे अच्छा हम बेहद में जिए। कई आत्माओं की सेवा का हमें यहाँ चांस भी मिलेगा, अनेक आत्माओं का, और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का अच्छा अवसर है। तो मैंने निश्चय किया कि मैं अभी थोड़ा दिन रह के रुक के जाऊंगा, तो माताजी ने टिकट तो बना था वापसी टिकट, तो मैंने बोला भाई अभी तो मुझे रहना है थोड़ा दिन, मैं एक दो मास सेवा करके फिर मैं आता हूँ। तो मैं रुक गया, माता ही चले गए। तो इस तरह 92 में यही रहना हो, लेकिन मैं एक साल नहीं गया घर पे, फिर एक साल कंटिन्यू सेवा में रहा
0: जी।
1: और एक साल के बाद फिर मुझे यहाँ संस्था की तरफ से बोला गया कि भैया हम यहाँ पर किसी को ऐसे नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पर माँ बाप की परमिशन चाहिए, टीचर है उसका लेटर चाहिए, और हर प्रकार से सबकी स्वीकृति हो तो हम यहाँ सेवा में रखेंगे, और सेवा में भी जब आप यहाँ पर हर प्रकार से सेवा में सेट होंगे तो हम इसको आपको आगे के लिए परमानेंट करेंगे। तो यहाँ का ये सिस्टम है, पहले इसको ट्रायल बेस पे 5 साल रखा जाता है और उसको हर प्रकार की सेवाओं में डाला जाता है कि व्यक्ति उसके स्वभाव, संस्कार, नेचर या संगठन में कैसे चलता है व्यक्ति, वो अगर सब जगह सेट हो गया व्यक्ति तो उसको आगे के लिए चांस मिलता है सेवा का इस विद्यालय में। तो इस तरह या डेडिकेट सभी प्रकार के जितने भी लोग हैं यहाँ पर 2000 उनको इसी तरह से इनको समर्पित किया जाता है। तो मैं भी एक साल रहा, फिर घर पे जाके लेटर वगैरह सब लेके आया, तो उसके बाद फिर हमको यहाँ पर सरेंडर रूप में रखा गया। दादी तो, प्रकाश पुनते थे उस
0: जी, जी
1: जी।
0: जब आप समर्पित होने के लिए लेटर मांगा घर
1: जी,
0: पे
1: जी,
0: निश्चित रूप से माँ अकेली है, पिताजी नहीं है
1: जी,
0: और माँ को भी तो सहारा चाहिए
1: जी,
0: और हमेशा एक बेटे के लिए तो जिम्मेवारी रहती है माता पिता के प्रति
1: जी।
0: तो आपको इतनी आसानी से छुट्टी मिल गई, आपके भाई बहने रिश्तेदार सभी ने?
1: नहीं, मुझे कोई ऐसी कठिनाई नहीं हुई छुट्टी लेने में, क्योंकि बैकग्राउंड में मेरी माताजी ज्ञान में थी, भाई भी ज्ञान में था, और एक बड़ा भाई था वो सब कारोबार संभालता था, तो नेचुरल घर का जिम्मेवारी वो लोग संभालते थे। मैं पहले भी फ्री रहता था, वो घर में था तो भी पढ़ाई करता था और अपना ज्ञान योग करता था, मैं बहुत इस कारोबार में इन्वॉल्व नहीं था ज्यादा,
0: घर की कारोबार
1: सबसे छोटा मैं था, मेरे से वो लोग बड़े थे तो वो लोग सब कारोबार देखते थे, तो मुझे इजीली उन्होंने छुट्टी दिया। फिर भी माताजी ने सोचा कि एक बार सोच लो आप, ये लाइफ का एक मोड़ है आपका, एक बार फाइनल सोचो आपको क्या करना है, आपको अच्छी सर्विस भी लग सकती है और आपको एक अच्छा जीवन भी आप जी सकते हैं शादी विदी करके, तो उन्होंने दोनों पर्पस मेरे सामने रखा था, लेकिन मुझे यही अच्छा लगा कि ये जीवन जीना इसी का नाम जो है तो यही है। आज भी आप देखते हैं हमारे जो भी समर्पित लोग हैं, आज बाहर से लोग आते हैं, इतने सारे लोग आते हैं, बोले आपको क्या मिला आप इतने खुश रहते हो।
0: सही बात है,
1: क्योंकि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं आप लोग।
0: हाँ जी।
1: सुबह से उठते हो 3:30 बजे से रात को 10 बजे सोते हो तो भी आपके चेहरे पे कोई टेंशन नहीं, कोई ऐसा मुरझाइश नहीं, हमेशा खुश नजर आते हो, तो क्या मिला? तो ये मिला जो हम बताना चाहते हैं आपको, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, परमात्मा की पढ़ाई और परमात्मा की जो शक्तियां मिलती है यहाँ, वो शक्तियां आत्मा को भरपूर कर देती है और वो एक सच्चा जीवन जीने की कला सिखाती, क्योंकि हम बुराइयों से बिल्कुल ही दूर हो जाते और बुरे व्यसनों से भी टोटली दूर हो जाते, और एक अच्छा ही धारण करने से आत्मा फिर से पावरफुल सत्व प्रधानता की ओर बढ़ती है और आत्मा एक शुद्ध आत्मा बन के, और जो भी उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसका व्यवहार भी ऐसा ही होगा।
0: जीवन जी,
1: जीने की कला है।
0: आपके जीवन में रोल मॉडल कौन रहे हैं?
1: रोल मॉडल तो मैं जब यहाँ पर आया माउंट आबू तो मैं तो दादियों को ही देखा, क्योंकि मैं छोटा था सबसे, और बड़ी दादियाँ सब यहाँ पर पांडवन, तब तो ज्ञान स्वरूप भी बाद में बना, शांतिवन भी बाद में बना प्रोग्राम के हिसाब से, और जब वो पांडवन था वहाँ का एक अलग ही माहौल था उस टाइम, तो उस टाइम सब दादियाँ मनोहर दादी से लेके चंद्रमन दादी से लेके हमारी कई सेंटर की दादियाँ भी आती रहती सीजन में बाबा से, जैसे कलकत्ता से पर दादी आते रहते और पंजाब से चंद्रमन दादी आते थे, बॉम्बे की कई दादियाँ थी, संतरी दादी वगैरह सब आते थे, पूना की दादियाँ थी, सब शहरों में जो दादियाँ थी वो साल में 2 बार 2-2, 3-3 में नया रहते थे माउंट आबू, तो सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला, खासकर जगदीश भाई से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वो इतना बड़ा व्यक्ति इतनी बड़ी पोस्ट पे होते हुए सारा साहित्य उन्होंने यज्ञ का लिखा है, लेकिन मैंने देखा बहुत ही निर्वांचित, एकदम उनके लिए कुछ नहीं चाहिए, उनको पर्सनली भी एकदम सिंपल रहते थे, सादगी वाला जीवन था और बहुत ही ज्ञानी विद्वान व्यक्ति था, तो उनके साथ मैं करीबन 4-5 साल रहा वहाँ माउंट आबू में, तो उनकी भी सेवा का चांस मिला, तो उनसे ही बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, और दादियों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि दादियों ने कैसा यज्ञ को आगे बढ़ाया और बाबा ने कैसे इनकी पालना करके इनको दादी तक पहुँचाया है, कैसे इन लोगों ने अपनी अवस्था को संपूर्ण बना के इतना बड़ा यज्ञ का कारोबार संभालते हुए वो कैसे अपने को एकदम न्यारा प्यारा रखते थे और हर एक को प्यार देते, हर एक को भासना होती दादी से कि यही मेरी माँ है, और इतना दादी का प्यार था सब यज्ञ निवासियों से, जब भी दादी चलते फिरते पूछती थी भैया कैसे हो, ठीक हो, कुछ चाहिए, तो हर बार दादी पूछती थी, तो माना एक पूछना भी एक बड़ी बात थी, इतनी बड़ी संस्था के मुख्य हेड और वो हमको आते जाते पूछती है कि भाई कुछ चाहिए, कैसे हो, ठीक हो, तबीयत ठीक है, हर बात से पूछती थी दादी।
0: हर किसी से वो व्यक्तिगत कनेक्शन रखना, हर किसी को ये फील करना कि दादी को, दादी मेरे को अच्छे से जानती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: और दादी मेरे बारे में सोचती है,
1: बिल्कुल
0: ये बहुत बड़ी बात होती
1: नहीं,
0: है।
1: दादी में वो कला थी, दादी गॉड गिफ्ट थी, मानो नेक्स्ट ब्रह्मा के बाद जो मैं देखा दादी को, दादी में हर एक को लगता था कि दादी मेरी है, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चे जैसी होती थी, बड़ों के साथ बड़े जैसी, माँ ग्रस्त ग्रस्त जैसे, मानो उसी हिसाब से उसको पालना भी देती थी और प्यार भी करती थी, और हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का दादी का था। हमने देखा जब हम आए यहाँ पर इंडिया में तो कम सेंटर थे, लेकिन दादी ने पूरे देश विदेश में ऐसी सेवाएं करके आज आप देखते होंगे आज 140 देशों में ब्रांचेस हमारी है, और पूरे वर्ल्ड से इतने लोग आते हैं, चाहे देश का है, चाहे विदेशी आए, चाहे वो धर्मात्मा है, महात्मा है, सन्यासी संत लोग तो रोते रोते जाते थे यहाँ से, दादी इतनी पालना माना दादी की पालना ही अलग थी।
0: हाँ।
1: उनके आंखों में आंसू होते थे,
0: मतलब दूसरे धर्म के लोगों को भी एक अपनापन महसूस होता था, उनको भी एक घर की फीलिंग आती थी उनसे मिलके।
1: जब कुछ सोच के कुछ और आते थे लोग, लेकिन यहाँ के लोग परिवर्तन होके जाते थे, क्योंकि आप जानते होंगे महामंडलेश्वर ये सब संत लोग, उनकी कितनी संस्था के लिए पहले अलग भावनाएं थी, लेकिन जब वो यहाँ आए उन्होंने देखा प्रैक्टिकल, तब उनकी भावनाएं टोटली चेंज हो गई
0: जी। तो ईश्वर भाई आप ये बताइए कि जब बचपन से आपने ज्ञान सुना है, आपने लौकिक पढ़ाई भी किया है, थोड़ा बहुत दुनिया तो देखी होंगे आपने, महाराष्ट्र से जब आप माउंट आबू आते हैं तो कहीं ना कहीं जाना
1: जी,
0: तो आपको वो कौन सी बात थी जिससे निश्चय हुआ कि यही परमात्मा का सत्य ज्ञान है और मुझे इसको फॉलो करना है, वो कौन सी बात थी जिसे आपको निश्चय हुआ?
1: ये बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि भाई ब्रह्मा कुमारी में क्या मिला, क्यों वहां गए, ऐसे कई बार लोग सवाल होता है लोगों का, या तो लोग सोचते हैं ब्रह्मा कुमारी में ऐसी कोई संस्था की, बहुत सारी संस्था है, बहुत सारे बाबा है, ऐसी या एक संस्था होगी और वहां भी कोई बाबा आते होंगे, तो कई लोग डिटेल इसका जानते नहीं, इसलिए वो लोग यहाँ से वंचित हो जाते, और ऐसी लोगों का एक सवाल होता है कि आपको क्या मिला यहाँ पर जाके, आपको क्या प्रेरणाएं मिली, आप क्या मिला आपको, तो मैं समझता हूँ ये जो ज्ञान है सिर्फ सुनने सुनाने का नहीं है, ये प्रैक्टिकल अनुभव करने की बात है। आप जैसे मैंने आपको सुना दिया कि आप सुन लिया, वो नहीं, यहाँ पर हम जब सुनाते किसी को, कोर्स कराते और हम जब मेडिटेशन में अभ्यास करते, मैं बताता हूँ आपको, मैं जब मेडिटेशन में बैठता था, जब सूरज भाई की क्लास होती थी रोज नाइट को शांति स्तंभ पे, तो क्लास के बाद जब मैं योग में बैठता तो मैं उठने का मन नहीं होता था मेरा, ऐसे लगता कि हम बैठे ही रहे रात भर, तो ऐसे परमात्मा की वो जो शक्ति है, जो ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा की जो लाइट माइट आती है आत्मा के अंदर, जो शक्ति आती है, ये सबसे बड़ा अनुभव है आत्मा के अंदर, और जो खुशी है, जो प्यार है, जो परमात्मा से जो आंतरिक सुख मिलता है, जिसको बोलते कि अंतर्द्रिय सुख पूछना गोप गोपियों से पूछो, जो कृष्ण के साथ होती थी, वो सुख यहाँ मिलता है, अतन्द्रिय सुख का अनुभव जो होता है और जो सच्चा सुख मिलता है, उसके बाद दुनिया का सुख उसके आगे सब फीका है। तो मुझे लगता है कि ये जो नेचुरल परमात्मा के साथ का जो अनुभव हमने किया, परमात्मा ने जो भी ज्ञान सुना उसको हमने अंदर धारण करके उससे डायरेक्ट शक्तियों का जो अनुभव किया, तो अनुभव अगर कोई एक बार भी कर ले वो जीवन भर नहीं भूलता, ये सबसे बड़ा एक अनुभव है प्रैक्टिकल
0: जी। आपने जब मेडिटेशन किया पहली बार और ज्ञान सुना, वो परमात्मा की अनुभूति जो है वो आपको
1: जी
0: रियलिटी से महसूस कराए,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आपको अपने आप से जोड़ दिया
1: जी जी।
0: तो आप अभी लगभग 1992 से आप समर्पित हुए हैं, तो कार सेवा के लिए आपने कहा कि एक निमंत्रण आया था उसके
1: जी,
0: लिए आप आए हैं। युवा काल में मेहनत करना कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, उसके बाद आपने क्या क्या सेवाएं की थी
1: जी? यहाँ तो मैं देखता हूँ हम जो कुमार लाइफ जो है हमारी और ये आध्यात्मिक लाइफ है, इसमें ऐसा उमंग होता है जो आदमी कभी बूढ़ा होता ही नहीं, हमेशा युवा रहता है। ये ऐसे एक ऊर्जा होती है सेवा की, और सेवा के कैसा बल होता है जिसमें कोई भी कार्य करना कोई असंभव नहीं है। जैसे मैं स्टार्टिंग में अकोमोडेशन में हूँ, मैं शुरू से जब स्वदर्शन भवन में अर्जुन भाई के साथ में था मैं, तो अर्जुन भाई ने मुझे हर प्रकार का कार्य सिखाया, किस तरह मकान को संभालना है, किस तरह लोगों की सेवाएं करनी है। उसके बाद फिर 1996 में यहाँ पर दादी जी ने ज्ञान सरोवर बनवाया था, क्योंकि 1994 में एक बहुत बड़े प्रोग्राम हुआ था माउंट में, तो उसमें 4000 लोग आ गए थे, तो हॉल में समा नहीं पाए थे वहाँ ओम शांति भवन में, तो इधर उधर सब जगह आंगन में टेंट लगा के लोग बैठे थे, तो दादी को संकल्प आया क्यों ना हम बड़ा हॉल बनाएं जहाँ पर हजारों लोग आके इसका लाभ ले। तो उसके बाद फिर दादी ने ज्ञान सरोवर में सोचा था हॉल बड़ा बनाने का, लेकिन वहाँ पहाड़ी होने के कारण बड़ा हॉल नहीं बन पाया, वो भी 2200 सीट का ही हॉल बना। फिर दादी को प्रेरणा आई कि भाई ये तो उससे काम नहीं चलेगा, या तो चलो विंग्स के वीआईपी प्रोग्राम चलेंगे, लेकिन एक बड़ा हॉल चाहिए जहाँ पर बाबा का बेहद के अन्य आत्माओं को, पूरे दुनिया के लोगों को संदेश मिले और सारी दुनिया से लोग आके इसका लाभ लें, क्योंकि 2,000-3,000 लोग कब तक आते रहेंगे, उसमें तो होता होगा नहीं। तो दादी ने एक प्रेरणा दी दादी को, कि दादी ने बोला भाई शांतिपुर में जो जमीन है अपनी, लैंड है काफी बड़ा, 50-60 एकड़ का लैंड था उस टाइम भी। तो दादी ने बोला कि यहाँ पर एक हम टेम्पररी हॉल बनाएंगे, टेंट का, टोटल टेंट का बनाएंगे, एक मेला वहाँ बनाएंगे और उसमें हम देखेंगे, अगर वहाँ सक्सेस तो फिर वहाँ परमानेंट हॉल बनाएंगे, तो क्या वहाँ का सिस्टम है। तो इसका ड्यूटी दिया गया था गुजरात जोन को फर्स्ट टाइम, 1995 की बात है, 95 एंड की। तो उसमें यहाँ पर पूरा टेंट का हॉल बना था, 20,000 सीटिंग का भंडारा बना था पूरा टेंट का, डाइनिंग किचन रेजिडेंस पूरा टेंट का बना था, खाली वॉशरूम वगैरह थोड़े बना देते टेम्पररी, वो भी टेंट के ही थे सारे। तो इस तरह यहाँ पर 20,000 लोगों को बुलाया गया और वो मेला इतना सक्सेस रहा, एकदम बढ़िया रहा मेला। तो दादी को लगा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पर 20,000 लोग रह के यहाँ पर सेवाएं हो सकती। तो दादी ने यहाँ पर एक 1996 में डायमंड हॉल का फाउंडेशन डाला गया, 20,000 सीटिंग का हॉल का, और दादी ने टारगेट दिया कि मुझे 10 महीने के अंदर यह हॉल चाहिए। तो दादी का जो टारगेट था, तो कई जगह से इंजीनियर आए, कई जगह से साउंड वाले इंजीनियर आए, कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर आए, क्योंकि यहाँ पर दादी ने एक शर्त रखा था कि इस हॉल में कोई पिलर नहीं होना चाहिए, विदाउट पिलर होना चाहिए, जिसमें हम हजारों भाई बहन बैठ के बाबा को
0: डायरेक्टली
1: देख सके, कोई बीच में पिलर नहीं आना चाहिए, ये इसकी विशेषता थी। इसलिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन 10 महीने तक वह हॉल बन के तैयार हो गया था। ये भी दादी का एक सिस्टम था, दादी जब प्रोग्राम मानते थे उसको डेट देती थी कि इस डेट में हमको चाहिए यहाँ का भंडारा, जहाँ पर 5,000 लोग खाना खाते एक टाइम पे, भंडारा किचन डाइनिंग आप देखा होगा। तो वहां पर दादी ने सिर्फ उसको 2 महीने का टाइम दिया था, सोचो आप 2 महीने मुझे बन के तैयार चाहिए, और वो बना के दिया था भरत भाई और रमेश भाई ने, इंजीनियर ने। तो दादी ऐसे माना पूरे विश्वास के साथ बोलती थी कि इस टाइम में होना ही चाहिए। तो दादी ने जब डायमंड हॉल की शुरुआत की, जब डायमंड हॉल बन रहा था, तो मुन्नी बेन ने मुझे बोला कि आप थोड़ा अभी ओम शांति भवन में जाओ और इसमें थोड़ा हॉल कैसे संभालते उसको थोड़ा आप सीखो। वहाँ पर दिवाकर भाई थे, तो उन्होंने काफी मुझे हर प्रकार से सिखाया, तो काफी स्टेज कैसे संभालना है, किस तरह हॉल को संभालना है, किस तरह लोगों को मैनेज करना है, तो सब हम सीखे। एक साल तक हम सीखे, 97 तक तो सीखता रहा मैं, लेकिन उसके बीच में 98 में ये डायमंड हाउस बन के तैयार हो गया था, न्यू डायमंड अब नहीं बना था, सिर्फ डायमंड हाउस और कॉन्टेंट हॉल, ये दोनों काम साथ साथ चल रहा था। तो जब डायमंड हाउस बना तो वहाँ पर यहाँ पर वीआईपी प्रोग्राम चालू हो गए थे, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस चालू हो गई थी। दादी बोलती मकान इतने बन गए थे इसमें कॉन्फ्रेंस शुरू करो। तो जब कॉन्फ्रेंस थी तो मुन्नी बहन बोलती भाई वहाँ तो अपने मकान का ट्रेनिंग लिया है, पहले डायमंड हाउस संभालो आप। तो ड्रामा चेंज हो गया फिर
0: जी।
1: तो डायमंड हाउस से डायमंड हाउस में हमको बुलाया गया, तो मैं ऊपर से फिर शांति बनाया तो डायमंड हाउस का थोड़ा सेटिंग वगैरह किया वीआईपी के हिसाब से, और तब से यहाँ पर वीआईपी प्रोग्राम काफी शुरू हुआ। लेकिन एक गांव का व्यक्ति हो कि लोग मुझे डराते थे माउंट में, अरे भाई तुम डायमंड हाउस क्या संभालेगा, वहाँ तो वीआईपी लोग आएंगे और इतनी बड़ी बिल्डिंग है 250 बेड की, और वहाँ पर कंप्लेंट्स आएगी विदेशियों की कईयों की, तो फिर आपको डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप नहीं जाओ बोले माउंट ही रहो। लेकिन मैंने कहा देखो हमने भगवान को जीवन दिया है, जो हमको ऑर्डर मिलती है वो हमको जाना है। जैसे आर्मी में होता है फॉलो करो, जैसे ये भी रूहानी आर्मी या परमात्मा ने जो हमको सेवा दी वो हमको करना है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया डायमंड हाउस किया, फिर उसके बाद डायमंड हाउस जब सेटअप हो गया तो 2000 में यहाँ पर ओआरसी का निर्माण हो रहा था। दादी ने दिल्ली में ओम शांति रिट्रीट सेंटर जो है आज हमारा, उसका निर्माण हो रहा था। तो दादी ने और मुन्नी बहन ने मुझे बुलाया कि मुन्नी बहन को जिम्मेवारी थी ओआरसी पूरा आपको सजा के सेट करके ओपनिंग करके देना, क्योंकि दिल्ली वालों का तो प्रॉपर ये नहीं था वहाँ पर। बाद में आशा बहन को इन्वॉल्व किया दादी ने, मुख्य बनाया आशा बहन और शुक्ला बहन और गीता बहन, तीन बड़े बड़े जोन इंचार्ज थे वहाँ पर। तो इन तीनों को दादी ने निमित्त बनाया, लेकिन बोले मुन्नी बहन की पूरी जिम्मेवारी है तो इसको पूरा सेट करके ओपनिंग करके देने की। तो आप सोचते होंगे नया कंस्ट्रक्शन है, टोटल नए मकान है, वहाँ पर कुछ है ही नहीं, ना लेबर है, ना स्वीपर है, ना सामान है, कोई भी सामान नहीं। तब मुन्नी बहन ने एक मीटिंग की हम लोगों के साथ की, बोले भाई देखो आप तो पुराने हो गए थोड़े, आप जानते हो, तो आपको जाके ओआरसी का सेटअप करना है पूरा। तो हमने एक टीम बनाया, फिर करीबन हम 15 लोग यहाँ से गए थे यहाँ से, और कम से कम मैं समझता हूँ हर हफ्ते 5-6 ट्रकें हम ले जाते यहाँ से सामान। तो ऐसे मैं समझता हूँ 1,000 ट्रक के सामान वहाँ गया होगा, हर चीज़ यहाँ से गई टोटल। तो इस तरह फिर ओआरसी में 2 साल रहा वहाँ पर करीबन, और पूरा ओआरसी का अकोमोडेशन है, रेजिडेंस है, पूरा गांव गांव से लेबर ढूंढ के लाना, उनको काम सिखाना, स्वीपर लाना, तो हर प्रकार से पूरा सेटअप करके जब सेटअप हो गया टोटल, और जब ओपनिंग के बाद भी मैं रहा वहाँ पर 1.5 साल रहा ओपनिंग के बाद भी, तो वहाँ पर पूरा सेटअप होने के बाद फिर मुन्ने बहन ने बोला भाई अभी न्यू डायमंड बन रहा है तो आप आ जाइए, और एक मकान बन गया आपके लिए।
0: जी।
1: तो इस तरह फिर इसमें मुन्नी बहन के काफी योगदान रहा है, क्योंकि उसने दादी के साथ रह के बहुत कुछ कारोबार सीखा और दादी के कार्य को हल्का किया, दादी जो कार्य देती थी उसको वो पूरी एकदम निश्चित बल होके वो आगे बढ़ाती थी उस कार्य को और संभालती थी, तो इस तरह उसने भी एक टीम वर्क बनाया है पूरा सभी भाइयों को लेके, तो उसने सारा अकोमोडेशन से लेके चाहे ज्ञान सरोवर हो चाहे शांति होने चाहे पांडव होने, पूरा अकोमोडेशन उनके अंडर में है, और वो हर सुचारू रूप से इसको चलाती है और देखती है और हर बात का उसका पूछताछ भी करती है, ऐसे नहीं कि छोड़ देती, एक ही चीज देख, वो मुझे याद है वो कमरे में एक एक चीज आके सेट करती थी, फोटो या लगाओ, घड़ी या लगाओ, बिस्तर ऐसा होना चाहिए, फर्नीचर ऐसा होना चाहिए, तो हम इतना ट्रेनिंग लेने के बाद भी हमको एक एक चीज सिखाती थी कि ऐसा होना चाहिए मकान, ऐसे सफाई होनी चाहिए हर प्रकार से, तो एक बहुत बड़े एक सीखने को मिला यज्ञ में और बहुत कुछ मिला बाद में, तो आप देखते होंगे डायमंड हाउस में तो इतने बड़े बड़े वीआईपीज आते हैं, चाहे एमपी हो, एमएलए है, चाहे राष्ट्रपति, चाहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कितने वीआईपीज यहाँ पर लाइन लगी रहती, वीआईपीज तो आते रहते, तो सबकी सेवा का चांस भी मिलता है, और आप जानते होंगे एक छोटे से गांव से व्यक्ति आया और इतने इतने बड़े लोगों की सेवा कर रहा है, तो इसकी किसकी कमाल है, ये परमात्मा की कमाल,
0: परमात्मा की कमाल है,
1: तो परमात्मा ये सब करा लेता है अपने कार्य को और हमको आगे रखता है, लेकिन भगवान ही कराता है, और बहुत कुछ इसका बेनिफिट, बहुत खुशी मिलती है, बहुत प्यार मिलता है लोगों का, और दुआएं भी मिलती है
0: जी।
1: तो मैं समझता हूँ ये जो जीवन है बहुत ही अच्छे से श्रेष्ठ जीवन बीत रहा है और बीतता रहेगा, और सबका सहयोग भी मिलता है, सबकी दुआएं भी मिलती है।
0: बहुत सुंदर जर्नी रहा भाई जी आपकी, जीवन से हमें आज ये सीखने को मिलता है कि भले आप कितना भी काम करते हैं लेकिन अगर स्व उन्नति करना है तो एक आध्यात्मिकता ही आपके लिए एक रास्ता है, और दूसरा जिन गुणों को हम अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं, चाहे वो एक्यूरेसी है, परफेक्शन है, या फिर डिसिप्लिन में रहना है, संयम में रहना है, इस तरीके की जो वैल्यूज हमारे जीवन में प्रैक्टिकली लेके आना है
1: जी।
0: तो उसके लिए एक निरंतर अभ्यास
1: जी।
0: जो आप एक लंबे समय से करते आए हैं और हम भी आपको देखते हैं, हम भी जब से शांतिवन में हैं तो कितनी एक्यूरेसी के साथ आप हर दिन सुबह मुरली क्लास में भी दिखते हैं, अमृत वेला भी आप दिखते हैं, मेडिटेशन कनेक्ट करते हैं, मुरली क्लास की पहले भी मेडिटेशन में आते हैं, तो ये एक बैलेंस के लिए जो कर्मठता होनी चाहिए वो आपके अंदर बखूबी दिखता है, तो इसीलिए कहते हैं जीना इसी का नाम है। आपका जीवन से आप अपनी इस चीज़ को एक दर्शाया है, बहुत बहुत धन्यवाद आज आप हमारी स्टूडियोज में आए, और हमारे श्रोताओं को जीना इसी का नाम है जो टाइटल है उसके अनुसार आप अपनी जीवन से एक संदेश दिया है, शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू, ओम शांति सभी भाई बहनों, धन्यवाद, थैंक यू
0: जी। दोस्तों फिर मिलेंगे एक अगली कड़ी में एक नए मेहमान एक नए अनुभव के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। जीना इसी का नाम है। कार्यक्रम लेकर के आते हैं हम आपके साथ और कुछ नए अनुभव और कुछ ऐसी बातें जिसे हमें महसूस हो कि हाँ, इसे कहते हैं जीना इसी का नाम है। लेकिन वो बातें होती क्या है और कैसे होती है? अगर हम अपनी जीवन में हमारे रोल मॉडल्स को देखते हैं कि हमें ये व्यक्ति बहुत पसंद है लेकिन उन जैसा बनने के लिए बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसा क्या है जो ऐसा बन सकते हैं और उन्होंने ऐसा क्या मेहनत किया है अपने जीवन में जिसे वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ पाए और वो जो व्यक्तित्व बनना चाहते थे वो बने हैं। चलिए बातचीत करते हैं आज की हमारी मेहमान से। हमारे साथ है चेतन चौधरी भाई जी। आप मूलतः मध्य प्रदेश से हैं, शिवनी डिस्ट्रिक्ट से हैं। दोस्तों, चेतन भाई जी, आप ब्रह्म कुमारीज के मुख्यालय शांतिवन परिसर में पिछले 3 दशक से समर्पित जीवन जी रहे हैं। एक योगी जीवन जीते हुए कार्य कुशलता के साथ आपको दिए हुए जिम्मेवारियों को निभाना और एक्यूरेसी डिसिप्लिन की एक प्रतिबिंब बनना जीवन में देखने की बातें हैं। चलिए देर ना करते हुए हम बातचीत करते हैं और इससे पहले स्वागत करते हैं चेतन जी को आज के इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम है। नमस्कार भाई जी।
1: नमस्कार।
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में, और हमें बेहद खुशी है कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से रेडियो के लिए भी थोड़ा सा समय निकाला और आपके जीवन की अनुभवों को हमारे श्रोताओं के साथ बांटने के लिए आपने तैयार हो गए हैं। शुक्रिया आपको
1: जी।
0: भाई साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी जो बाल्यकाल, आपकी जो लौकिक जीवन है वो कैसा रहा और कहाँ से ये शुरुआत हुई आपकी जर्नी का, और कहाँ तक आपने पढ़ाई किया और ब्रह्म कुमारीज के परिचय में कैसे आए हैं आप?
1: सबसे पहले रेडियो मधुबन के श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम शांति।
0: जी ओम शांति।
1: हम वैसे तो एक गांव के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश में एक मोहवर्रा गांव है, बहुत छोटा गांव, और हमारा पारिवारिक जीवन एकदम ऊंचा भी नहीं था, एकदम नीचा भी नहीं, और हमारे पिताजी माताजी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति से रहते थे और उन्होंने अपने जीवन को बहुत सादगीपूर्ण जीवन बिताया। हमारा भी जीवन जैसे बचपन से ही धार्मिकता की ओर रहा और कभी हमको धार्मिक इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी कि हमें बहुत दुनिया के आडंबर या कोई बातों से हमें इतना नॉलेज नहीं था, तो हमें भगवान में आस्था, देवी देवताओं में आस्था, ये हमारी बनी रहती थी। और हमारे जो चौधरी फैमिली के जितने भी हमारे परिवार थे या सदस्य थे, सभी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति से और गायत्री परिवार को मानते थे, और अभी भी बहुत अच्छा धार्मिक प्रवृत्ति से काफ़ी हमारे जितने परिवार के हैं सब बहुत अच्छा आगे बढ़ते जा रहे हैं और समाज सेवा भी काफ़ी करते हैं।
0: जी, आपकी भाई बहनी और वो क्या करते हैं?
1: हाँ, हम ऐसे 4 भाई हैं। हमारे 2 भाई छोटे ऐसे, वो एक माना दुकान चलाते हैं, किराना का दुकान, और एक अपना जो टेंट हाउस है डीजे आदि बजाने का वो कार्य करते हैं, और हमारे पिताजी भी खेती का कार्य करते थे और हमारे भाई भी खेती का भी कार्य करते हैं और साथ में बिजनेस भी करते हैं छोटा मोटा, और बहुत सुखी परिवार है। अभी तो सभी ज्ञान में चल रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम वो लोग को कोई प्रॉब्लम आती है, बहुत अच्छा सब अच्छा चल रहा है। हमें बहुत खुशी है कि हमें ऐसे परिवार हमें मिला है जो सभी पूरे धार्मिक प्रवृत्ति में, धार्मिक संस्थाओं में सबसे जुड़े हुए हैं।
0: जी चेतन भाई जी, आप ये बताइए कि जब आपकी धार्मिक परिवार में जन्म हुआ और बचपन से ही आप गायत्री मंत्र जपना और सनातन धर्म से जुड़े हुए थे, तो कब और कैसे आपका संपर्क हुआ ब्रह्म कुमारीज के साथ और आपको क्यों लगा कि ये सत्य ज्ञान है, मुझे इसको फॉलो करना चाहिए?
1: जी, हाँ, जब मैं इस ज्ञान से जुड़ने के पहले बहुत भक्ति करता था, इतने छोटी उम्र में भी 10th क्लास पढ़ने के पहले ही करीब 5 वर्ष तक हनुमान जी का उपवास जो शनिवार का होता है वो किया, और सोमवार का अपना उपवास जो शिव जी का होता है वो मैंने शुरू किया। फिर गायत्री परिवार में भी हम जुड़े, तो हमने गायत्री परिवार में भी जुड़कर हम काफ़ी वहाँ पर जो यज्ञ होते थे, जगह जगह वहाँ पर जाना, सबको संदेश देना व्यसन मुक्त होने का या अपने जीवन को ऊंचा बनाने का, मतलब कार्य करते हुए, अपने कारोबार करते हुए भी सभी अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाएं, ये हम कार्य करते थे बचपन से ही। और जैसे हमें भोजन करने के पहले मेरी ये बचपन से ही धारणा थी हमारे घर में और हमी कि जब बिना आरती किए, बिना पूजा पाठ किए हम भोजन नहीं करते थे। रोज़ मंदिर में जाना ये तो हमारा था ही रोज़ कि हमें ज़रूर जाना ही मंदिर में। कभी बाहर गए हैं तो बात अलग है, यदि हम घर पे हैं, गांव में हैं तो मंदिर में हम ज़रूर जाते थे। हम लोग जब भी वहाँ पर गाँव में अखंड रामायण पाठ होता था वहाँ पर भी हम जाते थे, और हनुमान जी के मंदिर में तो मैं जरूर जाता था। मैंने जैसे हनुमान चालीसा तो मुझे अभी भी कंठस्थ याद है और पूरा हमने रोल मॉडल बनाया था, और भगवान राम जो हमारे उनके साथ जो हनुमान जी का जो कर्तव्य दिखाया गया है उसको हम बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते रहे। गायत्री मंत्र तो हमने कई डायरियाँ भर दी थी
0: जी,
1: गायत्री परिवार में जब रहते थे हम। ओम भूर्भुवस्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और जो जहाँ पर भी यज्ञ होता था हम पूरे परिवार सहित जाते थे और जो भी वहाँ पर सेवा होती थी वो सब करते थे।
0: तो फिर ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में कैसे आया?
1: हाँ, ब्रह्मा कुमारी इसके संपर्क में हमने ये सब भक्ति तो हमने बहुत किया, पहले से बैकग्राउंड था, लेकिन एक ललक रहती थी कि क्योंकि कम से कम 10-12 आरती करते रहता था मैं, हनुमान जी की भी करता था, कई देवियों की भी करता था, लेकिन एक सत्य मना एक विजन जैसे परमात्मा एक है ये कहते हैं तो वो मना स्पष्ट नहीं हो पाता था। जिसने जो कहा वो भक्ति हम शुरू कर देते थे या उसको मानना शुरू कर देते थे। तो एक लक्ष्य भी एक नहीं था कि भाई हमें क्या हमारी मंजिल होना चाहिए। और ब्रह्मा कुमारी इसके इसमें हमें तब आया जब मैं बचपन में ही हम लोग कम से कम 3री-4थी क्लास में थे, तब हमारे घर के सामने में एक भैया आकर वो ज्ञान सुनाते थे। तो जैसे ही हमने तो सब भक्ति तो करते थे, लेकिन जैसे वो बाबा शब्द कहते थे, शिव बाबा कहते थे, शिव परमपिता परमात्मा कहते थे, तो एक अजब सी एक अंदर में फीलिंग आती थी। और मैं छोटा बच्चा था, वो दूसरे भैया को सुनाते थे ज्ञान, तो मैं वहाँ ऐसा नीचे जाकर बैठ जाता था और वो बातें सुनता था। तो वो बात इतनी मतलब मेरे मन में अंदर ये हो गई, और ये बस 2-3 दिन ही सुना हमने, ना कोई कोर्स किया कुछ नहीं, और इतना भगवान में शिव बाबा में इतना हमें निश्चय हो गया कि जो पाना था वो पा लिया, और उसके लिए मुझे सब कुछ त्याग करना पड़े वो कोई मैटर नहीं था। इतना हमारे में निश्चय हो गया था कि भाई जिसकी चाह थी वो मिल गया है।
0: तो आपके परिवार में सबसे पहले आपने परिचय लिया?
1: जी सबसे पहले मुझे ही परिचय मिला, फिर बाद में धीरे धीरे माना पूरा परिवार ज्ञान में आया, फिर जो रिलेटिव्स आते थे हमारे घर में उन्होंने को भी हम समझाते थे। तो करीब रिलेटिव जितने भी आए और रिलेटिव से संबंधित करीब 25 बहनें या गांव से संबंधित वो माना ब्रह्मा कुमारी आश्रम से जुड़ी और ब्रह्मा कुमारी बनी।
0: ओ, बहुत बड़ी बात है।
1: जी
0: आप जब 10th क्लास में थे उससे पहले भक्ति भी और इस राजयोग मेडिटेशन भी दोनों को साथ साथ लेकर के चल रहे थे, तो फिर वो कौन सा मोमेंट था आपको लगा कि अभी मुझे भक्ति करने की जरूरत नहीं है, ये जो मैं राजयोग का अभ्यास कर रहा हूँ उससे मुझे जो परमात्मा से मिलन हो रहा है यही सही है और मुझे भक्ति करने की जरूरत नहीं है?
1: जी हाँ, क्योंकि हम ऐसे गायत्री परिवार से जुड़े थे तो बहुत सभी से हमारा मेल जोल बहुत अच्छा था और सभी उसी हिसाब से जानते थे। लेकिन ये जैसे ज्ञान में जुड़ने के पहले लौकिक पढ़ाई जो करते थे हम, वो पढ़ाई में बड़े मुश्किल से हम 3rd डिवीज़न आ पाते थे या बड़े मुश्किल से पास होते थे। लेकिन जैसे ही ये ज्ञान मुझे मिला तो हर क्लास में 1st डिवीज़न हमारा आता था, और स्कूल में भी हमें इनाम मिलना शुरू हो गया, और घर में भी हम जितना कार्य करते थे उससे कई गुना कार्य की क्षमता बढ़ गई। और धीरे धीरे जैसे मुझे जो पाना था, जैसे कोई लक्ष्य हासिल कर लेता है, जैसे कोई पढ़ाई पढ़ लेता है और जिसको नौकरी मिल जाती है और

0: गुरापी क्या है वो सब मालूम हो गया है। तो अभी जैसे हम घरों में जैसे पिताजी को हम भले रोज रोज नमस्कार करें, उनकी आराधना करें, वो चीज़ हमें जब ज्ञान मिल गया तो हमें ये पता चल गया कि ये तो हम ही उनके घराने के हैं, हमें उनकी ऐसी दुनिया में जाना है। तो ये धीरे धीरे निश्चय होता गया और परमात्मा भी निश्चय हो गया और अपने सतयुग की दुनिया में भी निश्चय होता गया, अपने आप में भी निश्चय होता गया कि हम पहले क्या थे, अभी मुझे हमें क्या बनना है, हमें पूरा विश्व कल्याण के कार्य में अपने जीवन को लगा देना है। ये अंदर में ऑटोमेटिक मन में भावना आती गई।
1: जी, तो वो कौन सा साल था जब आपको ये ब्रह्म कुमारी के ज्ञान से परिचय हुआ, और ये कौन सा साल था जब आपको ये महसूस हुआ कि नहीं अभी मुझे वो लक्ष्य को साधन करना है तो मुझे अभी सब कुछ छोड़ के आश्रम जाना है?
0: जी, वैसे तो 1987 में मुझे ये ज्ञान मिल गया था उस समय से, लेकिन धीरे धीरे मुझे 91 में मुझे ये आभास हुआ कि नहीं, अभी मुझे इस जीवन को विश्व कल्याण की सेवा में लगा देना है, भगवान के कार्य के प्रति न्योछावर कर देना है। हालांकि हमारे पिताजी के मना हर प्रकार से कार्य करने का मुझे अनुभव था, भाई भी दो छोटे थे, एक तो बड़े थे, लेकिन वो इतना अनुभव नहीं होता था उनको पिताजी के साथ रहने का।
1: आप घर के बड़े भाई हैं?
0: हाँ, मेरे से एक बड़े भैया हैं।
1: अच्छा।
0: और है ना, लेकिन वो थोड़ा न्यारे रहते थे, लेकिन पिताजी के साथ मेरा बहुत अच्छा ये था कनेक्शन, और उनके साथ जो भी कारोबार करना था करते थे। लेकिन जैसे मैं 91 में मुझे ये आभास हुआ कि भाई नहीं, मुझे अभी इस जीवन को एक केवल इस छोटे से क्षेत्र में नहीं रखना है, मुझे बहुत बेहद कार्य करना है, विश्व का कल्याण करना है, सभी को परमात्मा का सत्य परिचय मिल जाए, जीवन जीने की कला मिल जाए, जीवन जीने की राह मिल जाए, एक सबको उद्देश्य मिल जाए। इस भावना से हम मतलब मेरे जीवन में ऑटोमेटिक ये भावना आती गई, तो ऐसा लगा कि भाई मुझे, और धीरे धीरे वो रास्ता खुलता गया। और फिर हम, वैसे तो बहुत लंबा है इसका, हम यदि बताएंगे तो कैसे है लेकिन हमारे यहाँ तक आने का सफ़र, माउंट आबू तक आने का सफ़र, बहुत कैसे कैसे हम पड़ाव पार करते गए और क्या क्या हुआ
1: जी, तो भाई जी, जैसे आप 91 में तो आश्रम में रहना शुरू किया था।
0: जी जी, हाँ।
1: फिर आश्रम से माउंट आबू आने का कैसा हुआ?
0: हम जैसे मैंने निर्णय ले लिया कि मुझे अपने जीवन को समर्पित कर देना है, तो मैं, हमने कभी सोचा नहीं कुछ नहीं, हमने केवल दीदी, जब हमारे गीता पाठशाला जहाँ पर रहते थे, हम क्लास करते थे, हमारे घर में गीता पाठशाला थी उस समय में, मना जो सिवनी ज़िले में पहली गीता पाठशाला हमारे घर में ही स्थापन हुई, और जितना भाई बहनें या सदस्य गीता पाठशाला में होते थे उससे मना उतने सेंटर पर भी नहीं होते थे, इतनी जनसंख्या थी आती थी, क्योंकि हम जितने भी हमारे सहपाठी थे या जितने भी हमारे संबंधी थे सब बहुत जुड़ते गए इस ज्ञान से, और हमसे भी आगे बढ़ते गए हैं और हमसे भी अच्छा वो अपना रोल निभा रहे हैं इस कार्य में। तो जैसे हम 91 में मैं सेंटर पे चले गया, हमें पता नहीं था कि हम मधुबन भी जा सकते हैं, हमने कहा जहाँ भी जाएं लेकिन हम आश्रम में समर्पित होकर इस कार्य को करेंगे, तो हम सेंटर पे जाकर हम रहने लगे फिर वहाँ पर ही। फिर उसके बाद 93 में फिर हम इंदौर में आ गए, वहाँ पर भी 2 वर्ष रहा। वैसे तो उन्होंने बोला था कि 2 मास वहाँ रहकर और आपको मधुबन भेज देंगे, तो धीरे धीरे जैसे हमारी सेवा की भावना देखते रहे वो लोग, तो उन्होंने फिर मुझे प्रमोट करते गए और फिर हम यहाँ पर आ गए माउंट आबू में।
1: जी, एक छोटे सी गांव, छोटा परिवार से, छोटे सेंटर से, अब इतने बेहद घर में, इतने बड़े कैंपस में, संस्था के हेडक्वार्टर्स में जब आए, आपको कभी चैलेंजेस या कोई ऐसे महसूस नहीं हुआ कि इतने बड़े परिवार में हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे?
0: हाँ जी, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा, मुझे तो ये लगा कि मैं अपने ही परिवार में आ गया हूँ। मेरा ये सौभाग्य रहा कि एक तो बड़ों के साथ रहने का भाग्य मिल गया, और मेरे ऐसा इतना प्यार और इतना स्नेह मुझे यहाँ पर मिलता गया कि कभी कोई चैलेंज का अनुभव ही नहीं कर किए हमने। हमें ये लगा कि हमें जो पाना था वो बहुत ज़्यादा पा लिया, हमने त्याग कुछ भी नहीं किया है, इतना हमें मना मिला है, परमात्मा का सत्य परिचय मिला, इतना अच्छा जीवन मिला, दूसरों के कल्याण करने का भाग्य मिला, सेवा मिली, बड़ों के साथ रहने का भाग्य मिला, पूरे विश्व के आत्मा

0: से मिलने का, उनकी सेवा करने का भाग्य मिला, ये हमेशा चिंतन चलते रहता था। और कभी हमने सोचा ही नहीं कि हमें घर बार का त्याग करना पड़ा, या उन्हों को भी ये संकल्प नहीं आया हमारे घर, उन्हों वो बहुत खुश हुए, वो भी घर वाले हमारे परिवार वाले और हमारे रिश्ते रिलेटिव या जितने भी संबंधी थे सब को बहुत खुशी हुई कि भाई हमारा परिवार से, हमारे एरिया से हमारे भाई जा रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, सभी उसी भाव से मिलते हैं। और हमने कभी चैलेंजेस का या उसका अनुभव नहीं किया, या जो बातें भी आती थी तो हमारे इतना उमंग उत्साह रहता था और भगवान के प्रति इतना प्यार कि कभी वो अनुभव ही नहीं होता था कि भाई कोई बात भी है।
1: सो जैसे आपने कहा कि बचपन से ही आप अपने पिताजी के साथ बहुत करीब रहे, कार्य देखते थे, तो ठीक है एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, आप यहाँ रहते हैं तो कभी भी आपको बुला सकते हैं, लेकिन जब आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि नहीं मुझे अभी माउंट आबू जाना है, वहीं रहना है, तो पिताजी को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये मेरे से बिछड़ के जा रहा है, मैं इसको कैसे छुट्टी दूँ?
0: हाँ, पिताजी को थोड़ा सा हल्का सा लगा, लेकिन उन्होंने के मन में ये था, क्योंकि वो भी इसी ज्ञान को फॉलो करते हैं, उनको भी ये लगा कि भाई इस छोटे घर से मेरा बेटा बड़े घर में जा रहा है, वो भी अपना ही घर है, क्योंकि जितने भी हमारे ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई हैं सभी बाबा के जितने भी घर हैं या मधुबन घर को अपना ही घर समझते हैं, यहाँ पर अपना घर समझ के आते हैं, कई इसी भावना से भी रहते हैं कि हमारा ओरिजिनल एड्रेस माउंट आबू है, जितने भी बीके बन जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर हम सेवा स्थान है, इस भाव से सभी सेवा भी करते हैं। तो उसी भाव को अंदर में था, ज्ञान की बहुत अंदर गहराई रही, इतनी गुह्यता को जानते थे, तो कभी उनको ये नहीं लगा कि भाई मेरे से पिछड़ गए, वो ये लगा कि भाई देखो हमारा लक्ष्य बन गया है कि विश्व का कल्याण हो, सबको सहयोग मिले, हर प्रकार से हमारे द्वारा हर किसी को प्रेरणा मिले, तो क्यों ना हम एक यदि हम करेंगे भगवान को ध्यान दान दे देना अपने पुत्र को, ये उन्होंने बहुत गौरवान्वित अनुभव करते थे अपने आप में वो, तो कभी उनको ये नहीं लगा कि भाई ये हो गया। लेकिन जैसे कारोबार हम संभालते थे तो थोड़ा सा उनको कमी तो महसूस हुई, लेकिन फिर भाइयों ने हमारी संभाल लिया
1: जी,
0: तो उनको ऐसा भी नहीं लगा कि
1: जी। तो चेतन भाई आप ये बताइए कि इतने समय से लगभग आप 30 ईयर्स से
0: जी
1: मधुबन में शांतिवन में संस्था के जो प्रमुख है दादी प्रकाशमणि जी, उनके अंग संग रह करके उनके साथ कारोबार आपने किया है
0: जी।
1: तो ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपने सीखा मधुबन में रहते हुए, चाहे वो कारोबार की बातें हैं या अपनी व्यक्तिगत जीवन की बातें हैं, ये 30 साल की जर्नी में आपने क्या सीखा है यहाँ पर मधुबन में रह के?
0: हाँ, मुझे मधुबन में रहते हुए बहुत कुछ सीखने को मिला। एक तो जो इस देह अलग है और आत्मा अलग है, ये मैंने मधुबन में रह के, भले वहाँ सेंटर पे भी रहा, घर में भी रहे, लेकिन यहाँ आकर मैंने जो अभ्यास किया कि देह अलग है, तो बेहद में मतलब मेरी स्थिति भावना ये रही कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर माध्यम है ये कार्य करने के लिए। जैसे गाड़ी का ड्राइवर अलग है, गाड़ी अलग है, सेपरेट है, तो वो मैं शुरू से ही अभ्यास करता था। और दादी प्रकाशमणि जी के साथ जो रहते थे, जो इस संस्था की मुख्य प्रशासिका रही 69 से लेकर 2007 तक, उनके साथ जब हमने 12 वर्ष रहने का भाग्य मिला हमें उनके साथ, तो उनकी जो बेहद की भावना हमने देखा, या इतना बड़ी संस्था को चलाना इतने देशों में और इतने समर्पित भाई बहनों को चलाना, नहीं तो घरों में यदि एक परिवार को भी चलाना कितना मुश्किल होता है, और दादी जी में इतना सहज भाव हम जब देखते थे, इतना बड़ा कारोबार होते हुए कि परमात्मा के प्रति इतनी लगन, जो ज्ञान जो मुरली चलती है उनके, माना दादी जी 4 बार ज्ञान मुरली पढ़ती थी, ना उनके जो लगन को देखकर और उनकी भावनाओं को देखकर हम सदा ही अनुभव करते थे कि भाई हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं जो उन्होंने किया है, और अपने जीवन को हम ऐसा ही अनुभव करते गए कि भाई मुझे भी बहुतों का कल्याण करना है, मुझे अपना यहाँ पर रहने के बाद मुझे एक तो बेहद एक परिवार की भावना कि मैं अभी बेहद घर से जुड़ा हूँ, जितने भी भाई बहने आते हैं मेरे अपने परिवार के हैं, परमात्मा की संतान हैं, मुझे एक एक की सेवा करनी है, कोई भी चीज़ की आवश्यकता है चाहे स्थूल है सूक्ष्म है उसको जरूर मुझे देना है, या जो भी, या फिर यहाँ पर भी जो समर्पित रहते हैं, तो हम बड़ों के साथ रहने के कारण जो भी स्टॉक हमारे पास रहता है उस द्वारा हर किसी को संतुष्ट करें, ये भावना हमेशा बनी रहती थी। और इससे मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कि हर आत्मा मुझसे संतुष्ट रहे, ये मैं अभ्यास करता था और मैं भी स्वयं संतुष्ट रहने का पुरुषार्थ करता रहा। और यहाँ पर माउंट आबू आने के बाद मेरे जीवन में एक तो जो प्यूरिटी होती है उसकी पावर को मैंने स्वयं अनुभव किया कि यदि संसार की सबसे बड़ी यदि कोई शक्ति है तो पवित्रता है। उसको मैंने प्रैक्टिकल में अपने जीवन में उसको अनुभव किया यहाँ आने के बाद, तो वो बहुत अंदर से एक ताकत और सुकून का अनुभव और शक्तिशाली रहने का, अथक रहने का, वो एक मेरा एक पुरुषार्थ रहा कि और बहुत अचीवमेंट रहा, समझ लीजिए मुझे।
1: जी, इतनी सारी एक प्रकार से अगर हम देखा जाए तो एक सिद्धियाँ है, ये पवित्रता की शक्ति है या फिर दृढ़ता है आपके अंदर जो निरंतर अभ्यास की एक सदाकाल का करने का अभ्यास है। ऐसा नहीं कि आज कर दिया कल नहीं करते हैं, आपको जब भी देखते हैं एक स्थिरता है आपके अंदर। तो ये सारी एक प्रकार से सिद्धियां जो आपने प्राप्त की है, कभी आपको ऐसे चैलेंजेस आए जीवन में, भले जैसे आपने कहा कि कोई चैलेंज आता है तो भी आपको लगता नहीं कि कोई चैलेंज है, लेकिन अगर थर्ड पर्सन के हिसाब से देखते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है कि उसको सामना कर। तो कभी ऐसा कुछ हुआ और आपने उसको कैसे फेस किया?
0: जी जी हाँ, वैसे तो शारीरिक रूप से काफ़ी मेरे पास चैलेंजेस भी आई, काफ़ी पहले बीमारी कुछ ना कुछ हो जाती थी, लेकिन आत्मा में और दिल में इतना उमंग रहता था कि वो चैलेंजेस धीरे धीरे ख़त्म होती गई और उसको मैं अपने जो दिनचर्या को अपना, काफ़ी पहले ध्यान नहीं दे पाता था कि भाई जैसा मिला जिस समय मिला जो मिला वो स्वीकार, लेकिन मुझे ये ध्यान में रहा कि भाई मुझे इस शरीर को चलाने के लिए क्या चीज़ और कब खाना है और क्या खाना है, ये मैंने इस शरीर के लिए ध्यान रखा अपने आप में, और तो काफ़ी उससे मैं इम्प्रूव होता गया और उससे भी मैं निश्चिंत होता गया। बाकी चैलेंजेस कई बार ये आता है कि साथी भाई बहनों का कभी कभी स्वभाव संस्कार, लेकिन मेरे मन में ये सदा ये भावना रहती है कि भाई वो उसका अपना पार्ट है, मुझे तो देने के लिए भगवान ने निमित्त बनाया है, मुझे चाहे गुणों को का दान देना है या सहयोग देना है, लेने की भावना मुझे 1% भी नहीं रखनी है। तो मैं किसी की परिस्थिति या कोई ऐसा कुछ बोल देता है या कुछ कह देता है तो मैं अपने पर ये भी एक लेना हो जाता है, मुझे ना लेना ही नहीं है किसी से कोई चीज़, मुझे देना ही, मुझे देवता बनना है तो देने के संस्कार मुझे धारण करने हैं। तो किसी से कोई बुराई या कुछ ऐसा कुछ कह देता है या कोई ऐसी बात आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है या कोई इल्ज़ाम लगा देता है, लेकिन ये एक रहता है कि भाई उसके साथ मेरा हिसाब किताब रहा होगा उस आत्मा के साथ, तो ये सब बातें को जैसे हम ज्ञान के माध्यम से उसको ना सोल्यूशन करते थे, बातें तो आती ही है। ऐसा नहीं कि भाई जैसे हम गाड़ी से जा रहे हैं
1: तो चढ़ाई भी आएगा
0: है ना, ढलान भी आएगा या पत्थर भी आएगा, खराब भी होंगे, रास्ता जाम भी रहेगा, ट्रैफिक भी रहेगा, कई बातें आती ही हैं। तो ऐसे ही ये जीवन रूपी यात्रा है, इसमें बातें तो आती हैं, ऐसा नहीं कि भाई बातें नहीं आती हैं या परिस्थिति नहीं आती है, आती हैं, लेकिन हम किस
1: अप्रोच के साथ
0: चल रहे हैं या किस लक्ष्य के साथ हमारा कर रहे हैं, तो वो लक्ष्य को ध्यान रखते हैं तो ये सब चीज़ें कम लगती है।
1: बहुत सुंदर। सो भाई जी, आप वर्तमान समय में संस्था में किस कारोबार में हैं और क्या करते हैं आप?
0: जी, वर्तमान समय में हम वैसे अभी दादी प्रकाश मणि जी का जो कॉटेज है वहाँ पर हम रहते हैं, और हमारी आदरणीय मुन्नी दीदी जी हैं जो इस संस्था की जो यहाँ पर अभी तो एडिशनल चीफ हैं, वो उनके साथ रहने का सौभाग्य मिला हुआ है, और जितने भी कारोबार होते हैं जो भी सिस्टम होता है यहाँ का यज्ञ का चारों रूप से चलाने का, वो दीदी जी हमारा माना ध्यान रखती है, तो उनके साथ हम सहयोगी के रूप में पाठ बजा रहे हैं कि जो भी भाई बहने आए सबको सब प्रकार की सुविधा मिले, किसी को कोई तकलीफ ना हो, चाहे रहने की खाने की या कोई चीज़ की आवश्यकता है या उनको गिफ्ट देना है, उनको कोई चीज़ की कोई कमी तो ना ही होती है, या जो यहाँ पर हमारे समर्पित भाई बहने रहते हैं इनको भी कोई चीज़ की कोई आवश्यकता है, तो यहाँ सिस्टम है कि भी जिसको जो चीज़ की आवश्यकता है वो एक पर्ची लिख के देता है और वो चीज़ उसको पूर्ति कर दी जाती है। वैसे तो यहाँ पर हर चीज़ बिना कहे मिल जाती है, ये इस ज्ञान की बहुत बड़ी नवीनता है या इस संस्था की बहुत बड़ी बात है कि मांगना कुछ नहीं पड़ता है, सब कुछ ऑटोमेटिक मिला हुआ है। वैसे ही इस ज्ञान में वैसे आते ही परमपिता परमात्मा के सत्य परिचय को प्राप्त करते ही जन्मते ही इस ज्ञान में एक दूसरा जैसे हमारा जैसे जन्म होता है ना, तो ऐसे ही इस सिस्टम में एक ज्ञान के में जैसे आते हैं तो एक दूसरा नया जन्म होता है हमारा। तो ऐसे जन्मते ही परमपिता परमात्मा से सर्व वरदान, सर्व प्राप्तियां, सर्व प्रकार की खुशियां, खजाने माना वरदान में मिले हुए हैं। केवल हमको स्मृति में लाना है कि हम किसकी संतान हैं। जैसे दुनिया में भी कोई बड़े व्यक्ति का पुत्र होता है तो उसको कितना ये रहता है, अपने आप में नशा रहता है। बहुत रॉयल परिवार के जो होते हैं उनमें कितनी रॉयल्टी रहती है, तो हम भी उचेते उचे भगवान के संतान हैं तो हमारे में भी कितनी रॉयल्टी रहनी चाहिए। हमारा भगवान जो दाता है, सबका पिता है, सबके लिए देने की भावना रखते हैं, लेने की तो भावना नहीं, ऐसे ही हम पिता समान बन जाएं, ये इस भाव को हम अपने आप में जीवन में अपनाते हैं तो बहुत अच्छा रखता है और बहुत अच्छा खुशी का जीवन बीतता है।
1: बहुत सुंदर भाई जी, थैंक यू सो मच। आज अपने समय निकाल करके जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम के द्वारा, आप अपने जीवन को कैसे जिया है उसी को एक उदाहरण बना करके लोगों को ये बताते हैं कि इस तरीके से जो जीते हैं इसे जीवन कहा जाता है। थैंक यू सो मच,
0: बहुत बहुत धन्यवाद सबका
1: जी।
0: ओम शांति।
1: ओम शांति। दोस्तों ये थे चेतन भाई जी, जिनका आपने अभी तक इस आध्यात्मिक जीवन की एक यात्रा में कैसे हमारी लौकिक जीवन भी निखर जाता है और हम कैसे ऐसे एक व्यक्तित्व बनते हैं जिनके जो हमेशा देने वाले बन जाते हैं। ऐसे ही अनुभवों को आप सुनते रहेंगे जीना इसी का नाम है इस कार्यक्रम में। हम फिर मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। यह है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्री। दोस्तों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो प्रायः हम ये भूल जाते हैं कि हम जब भी धनोपार्जन या अपने किसी भी क्रियाकलाप में रहते हैं या पैसे कमाने के लिए जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों में हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना आवश्यक है। कभी कभार हम अपनी तबीयत को दरकिनार करके पैसे कमाने में या धनोपार्जन के कार्य में लगे रहते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि शरीर का ध्यान न रखने के कारण या स्वास्थ्य पर ध्यान न देने के कारण कमाए हुए उन्हीं पैसों को फिर स्वास्थ्य को कमाने में लगाना पड़ता है। एक ऐसा कुचक्र बन जाता है कि अगर हम इसको सही अर्थों में न समझें तो फिर जिंदगी भर किसी बीमारी को अपना मेहमान बना के रखना पड़ता है। ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखने के बारे में सही जानकारी पहले से हो तो शायद हम ये गलतियां करने से बचें। सहज स्वास्थ्य पर रेडियो मधुबन पर हम यही कोशिश करते हैं कि हम सही मार्ग पर आप सबको ले चलें, ताकि हम सभी स्वस्थ रहें और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मार्गदर्शन करने के लिए स्वास्थ्य जगत के ही एक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी, जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं। आइए करते हैं उनसे चर्चा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो हम ये कहावत सुनते आए हैं कि भाई हम वेल्थ के लिए हेल्थ को खो देते हैं और फिर बाद में जब वेल्थ आ जाता है और देखते हैं हेल्थ हमने गवा दिया है, बहुत बड़ा हिस्सा हेल्थ का, तो फिर उसी हेल्थ को रीगेन करने के लिए हम अपना वेल्थ लगाते हैं। यानी पैसे कमाने की होड़ में हम अपना स्वास्थ्य भूल जाते हैं। जब स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है तो कमाए हुए उन्हीं पैसों को फिर स्वास्थ्य को वापस पाने के लिए हमें खर्चना पड़ता है। तो ये बड़ा कुचक्र जैसा लगता है कि हम एक के पीछे दूसरे को खो दे रहे हैं, फिर बाद में उसे पाने के लिए जो कमाया है उसे खोने की जरूरत पड़ रही है। आप क्या राय रखते हैं?
1: ये भैया आपने बोला ना कि सबसे पहले पैसा कमाना बहुत जरूरी है, और जब आदमी इस पैसा कमाने की होड़ में लगा रहता है तो वो भूल जाता है कि पैसा जो हम कमा रहे हैं उसके लिए हम क्या करें, और हम सुख चैन नींद भोजन सब कुछ भूल कर पैसा कमाने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है पैसा कमाना एक अंधी दौड़ है, क्योंकि हम अंधा व्यक्ति की तरह, पागलों की तरह उस पैसे के पीछे भागते चले जाते हैं। और जब हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं तो हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रख पाते। हमें क्या खाना है, क्या खाने से ज्यादा जरूरी चीज कब खाना है, कब नहीं खाना है, इन सब चीजों को भी भूल जाते हैं। हम बहुत सारी जो कहते हैं ना सोशल जो गलतियां हैं, जैसे जिसमें अल्कोहल इनटेक हो गया, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, इन सब की भी हम आदि बन जाते हैं। और जब मैं मरीजों से पूछता हूं कि आप क्यों सिगरेट पीते हैं, आप क्यों अल्कोहल या आप शराब पीते हैं, तो यही बात बोलते हैं, अरे हम नहीं बट बिजनेस के लिए पीना पड़ता है। तो क्या आप बिजनेस के लिए अपने शरीर का किसी अंग को खराब करेंगे? ये बहुत गलत बात है। मैं एक बात हाईलाइट करना चाहूंगा कि जितने भी व्यक्ति जो जीवन में कुछ अचीव किए हैं, जिन्होंने कुछ पाया है, जो सक्सेसफुल हैं, उनमें सबसे कॉमन एक चीज है, वो है डिसिप्लिन। वो हमेशा अच्छा खाते हैं, और अच्छा खाने का मतलब है हेल्दी खाते हैं। दूसरा, कोई भी वॉकिंग, व्यायाम, मेडिटेशन, योगा, इसको रेगुलरली करते हैं। वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी दिनचर्या जल्दी शुरू करें, और वो अपने शरीर का, मन का और अपने रूटीन तीनों का ध्यान रखते हैं। मैं आप व्यापार करने के चलते आप अपने जीवन में भयंकर स्ट्रेस भर लीजिए, उस स्ट्रेस से आपको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाए, आपकी गलत खान पान से, आपके नशा करने से आपकी लिवर खराब हो जाए, आपकी किडनी खराब हो जाए, आपकी पैंक्रियास खराब हो जाए, तो उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। एक बात कही जाती है कि आपके पास जितना भी पैसा क्यों ना हो, आप एक भी क्षण एक्स्ट्रा अपने जीवन में जोड़ नहीं सकते हैं। मगर ये हमेशा कहा जाता है कि यदि आप अच्छा खाएंगे, अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, डिसिप्लिन लाइफ जिएंगे, तो आपको एक लंबा स्वस्थ और मानसिक रूप से खुशहाल जीवन मिलेगा। प्लीज पैसा कमाने की होड़ में अपना शरीर मत थोप दीजिए, क्योंकि थोड़े दिनों बाद आपको वही पैसा अपने शरीर को वापस कमाने के लिए खर्च करना पड़ेगा।
0: ये बात सुनकर समझ में आता है कि जो चीज हमारे पास है उसको वैल्यू देकर, उसकी कीमत को समझकर, उस कीमत के साथ कॉम्प्रोमाइज न करते हुए हमें एक्स्ट्रा कमाई करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि हम जो चीज हमारे पास है उसे दाव पर लगाकर कुछ और हासिल करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो ये रिस्क लेना हमारे लिए हानिकारक तो है ही, मगर साथ साथ हमारे लिए कमाए हुए पैसे को वापस खोने के बराबर हो जाता है। आजकल एक चीज जो अक्सर लोग कहते हैं वो है बीमारियां जो ऐसी हैं जो उम्र के साथ हो रही हैं, या लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे घर में इनको ये बीमारी थी तो हमको भी ये बीमारी हुई है। और बहुत आम रीति से जो चीज सुनने को मिलती है वो है शुगर की बीमारी, यानी डायबिटीज की बीमारी। और डायबिटीज कहते ही लोग कहते हैं कि भाई ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं था, परिवार में है इसलिए हमें भी हो ही गया, हम क्या कर सकते हैं। प्रायः ये भी चीज समझा जाता है कि डायबिटीज में डाइट एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है, कि हमारा आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक तो है ही, मगर खासकर डायबिटीज के मरीजों को अपने आहार के प्रति सजग होने की जरूरत है। और अगर वो अपने खान पान, अपने आहार व्यवहार को और विहार को सही करते हैं तो ठीक हो सकता है, बहुत हद तक हम डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं। और कई जगहों पर तो डायबिटीज को ठीक किया जा सकता है, उसको रिवर्स करने के बारे में भी बातें होती हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि डायबिटीज और डाइट का जो संबंध है उसके बारे में बताएं, क्या डायबिटीज के मरीजों के लिए कोई विशेष डाइट है, कोई डायबिटिक डाइट है, उसके बारे में बताएं।
1: डायबिटीज एक मतलब क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारा ब्लड शुगर जो है वो बहुत बढ़ जाता है। हमारे दिमाग को हमेशा ब्लड शुगर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए, हमारे शरीर के जितने भी अंग काम कर रहे हैं उनको हमेशा शुगर चाहिए, और वो जो शुगर है या शक्करा है वो आपकी कोशिकाओं के अंदर इंसुलिन नामक हार्मोन की वजह से ही अंदर जाती है। एक चीज हमेशा याद रखिए, ये जो इसके डेफिनेशन में ही बोला गया है कि ये क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारा जो शरीर में भोजन से प्राप्त होने वाली जो ताकत है, जो मेटाबॉलिज्म है, उसकी वजह से होने वाली परेशानी। तो यदि हम अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक कर लेंगे तो हमको कोई परेशानी नहीं होगी। यदि हम अपने भोजन को ठीक कर लेंगे, यदि हम अपने रहन सहन को ठीक कर लेंगे, तो हमको हो सकता है जो डायबिटीज है उसके साइड इफेक्ट ना हो। आपने श्री भैया बोला कि बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो हमारे परिवार में चली आ रही है, ये आपको अगर हमको हुई है, अगर मेरे पिताजी को है तो हमको भी होगी। मैं जो लोग भी ये बात बोलते हैं मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि आपको सजग होने की बहुत जरूरत है। कल ही मैंने भैया अपने ओपीडी में एक 16 साल के बच्चे को देखा जिसको डायबिटीज है। उनके बड़े भाई को डायबिटीज नहीं है, जो कि करीब 24 साल के थे, और उनके पिताजी को डायबिटीज है। बड़े भाई ने बोला कि जब मेरे पिताजी को मालूम चला कि डायबिटीज है, मैंने उसी दिन से शुगर खाना बंद कर दिया, प्रोसेस्ड फूड खाना बंद कर दिया और जंक फूड खाना बंद कर दिया, और मैं रेगुलर 45 मिनट्स तक स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन करता हूं, और मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसी के अवैच में देखिए, वो 16 साल का बच्चा उन्होंने जो मेरे पास लेकर आए थे बड़े भाई, उन्होंने बोला कि इसने एकदम हमारी बात नहीं सुनी। इसके भोजन में सिर्फ 3 चीज थी, पिज्जा, बर्गर और नूडल्स, और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक। इस बच्चे ने अपने भोजन में दिन में 2 टाइम यही खाया और इसने कोल्ड ड्रिंक को पानी की तरह पिया। और अब ये सब देखने के बाद 16 साल की उम्र में उस बच्चे की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसको उसका यूरिन पे कंट्रोल खत्म हो गया था और उसके त्वचा में अब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के सेंसेशंस, और जैसे चीटी चलना है, रगड़ झुनझुनाना है, कांपना है, ये सारे उसको सिम्टम्स लगने लगे थे। और उसका अपने यूरिनेशन मतलब पच जो पेशाब का रास है, पेशाब, उस पर कंट्रोल खत्म हो गया था। तो आप देखिए, डाइट, एक ही घर में 2 भाई, दोनों के माता पिता सेम, एक ने अपने भोजन को कंट्रोल कर रखा है, एक्सरसाइज का सहारा ले रखा है, इसीलिए वो अभी तक बचे हुए हैं। और उनका छोटा भाई जिसने इसमें भरोसा, जिसने कोई भी कंट्रोल नहीं किया, वो इस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। अगर मैं कॉमन कहना चाहूं तो डायबिटीज अक्सर थोड़ा मोटे व्यक्तियों को होती है, और जो ओवरवेट और लेस एक्सरसाइज मतलब ओबेसिटी विद लिथार्जी मतलब मोटापा के साथ साथ आप आलसी भी हैं, तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो आपको हाई प्रोटीन और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का भोजन करना चाहिए। हाई प्रोटीन मतलब आप जितने भी, और इसके साथ हाई फाइबर डाइट का आपको भोजन करना चाहिए। सबसे पहली चीज जो आपको छोड़नी चाहिए वो है प्रोसेस्ड वाइट शुगर, जो हमें बाजार में चीनी मिलती है, सबसे पहले उसको छोड़ना चाहिए। और दूसरी चीज, जो भी सामान बाजार में पाम ऑयल से बना है, पामोलिव ऑयल से बना है, उसको हमको अपने भोजन में एकदम एकदम एकदम बंद कर देना चाहिए। हमको हाई फाइबर डाइट मतलब सारे फल, सारी सब्जियां, उसको सैलेड, सलाद, इसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए। सलाद में भी ये बोला जाता है कि यदि आप टमाटर का सेवन बहुत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फलों में डायबिटीज का जो सबसे अच्छा फल माना जाता है वो है जामुन। जामुन में बहुत ज्यादा वो तत्व हैं जो आपके शुगर को नीचे लाते हैं। हाई प्रोटीन डाइट मतलब जो भी दाल आप खाते हैं अच्छे से खाइए, प्रोटीन जिन भी चीजों में आपको मिलता है उनका आप सेवन करिए। और आपको लो कार्बोहाइड्रेट मतलब जो भी चीजें जिसमें जो जैसे मैदा हुआ, आपको छना हुआ आटा हुआ, इन सब चीज की आपको कमी करनी चाहिए। आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आप ये मिक्स ग्रेन मतलब 4-5 तरह का आटा मिला के उसका भी सेवन न करें। आपको सिंगल ग्रेन, सिंगल प्रोटीन एंड लॉट्स ऑफ सैलेड मतलब बहुत सारा सलाद, कोई भी एक दाल, कोई भी एक कार्बोहाइड्रेट मतलब या कोई भी एक अनाज, कहने का मेरा मतलब है, इसको अपने भोजन में करना चाहिए। अगर आप इतना करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और इस डाइट करने से भी अगर आपकी डायबिटीज एकदम शुरुआती दौर में है तो आपका डायबिटीज रिवर्सल हो सकता है।
0: डायबिटीज रिवर्सल की आप ये बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो बहुत सारे लोग इस बात से अचंभित होंगे क्योंकि अक्सर ये चीजें लोग सुनते नहीं हैं। लोग ये समझ लेते हैं कि डायबिटीज मतलब अब जिंदगी भर की बीमारी हो गई है, अब जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, हर दिन हमको ये दवाई शुगर की खानी है, या कई लोग जिनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है तो वो खाने से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लेंगे और उसके साथ ही उनको जीना है, ऐसा ही लोग सोच लेते हैं। तो ऐसे में समझ में आ रहा है कि वास्तविकता में संभव है कि अगर हम अपने भोजन में थोड़ा बहुत बदलाव लाएंगे, इन चीजों का ध्यान रखेंगे, तो ये चीज पॉसिबल है कि हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। क्या चिकित्सा के दृष्टिकोण से हम सभी इस बात को ऐसा मान सकते हैं कि हाँ ये संभव है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, अगर ये हमारे पीढ़ियों में आया है, हमारे माता पिता से हमको मिला है, तो फिर हमें भी इसके साथ ही जीना पड़ता है, ऐसा सोच लेते हैं। क्या एक अवधारणा मात्र है?
1: ये कहा जाता है कि जेनेटिक्स गवर्न, और माता और पिता दोनों को अगर डायबिटीज है तो बच्चों में 90% चांसेस हैं कि वो होंगी, और अगर माता या पिता में से किसी एक को है तो वो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस में भी बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनको अगर थोड़ा बहुत भी उनका ब्लड शुगर गड़बड़ है और उन्होंने अपने को एक्सरसाइज और डाइट कंट्रोल पे रखा है तो उनको कोई परेशानी नहीं होती है। मेरे आरोग्य मंदिर में बहुत सारे पेशेंट पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं। मैंने ये नोटिस किया कि ग्रैंडफादर जो थे और ग्रैंडमदर थे, उनको कोई डायबिटीज नहीं थी। उनके चार बेटों में से जो सबसे छोटा बेटा था, सिर्फ उसको डायबिटीज हुई, और उसके जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, जो जिस बेटे को डायबिटीज हुई, उनके भी बच्चों में डायबिटीज नहीं थी। तो ये मैं ये मानता हूं कि अगर दोनों माता पिता को है तब तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है, पर अगर दोनों में से किसी एक को नहीं है और जो उनका सिबलिंग है या जो बच्चा है या भाई बहन है वो बहुत अच्छे से अपना अगर ख्याल रखते हैं तो उनको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर आप अपने भोजन पे कंट्रोल करते हैं तो बहुत सारे लोग अपने डायबिटीज को सिर्फ अपने भोजन से ही ठीक करने की कोशिश करते हैं।
0: अब ये बात समझ में आ रही है कि हाँ, डायबिटीज को भोजन से ठीक किया जा सकता है। एक और प्रश्न जो डायबिटीज से जुड़ी हुई लोग अक्सर पूछते हैं वो ये है, वो है फास्टिंग के बारे में। ये प्रश्न उठता है कि क्या डायबिटीज के मरीजों को फास्टिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जबकि हम प्रकृति चिकित्सा में देखते हैं कि फास्टिंग एक चिकित्सा के रूप में जो उपवास है वो रेकमेंड किया जाता है। तो डायबिटीज के मरीजों के लिए क्या एडवाइस देंगे?
1: अगर आपको सीवियर डायबिटीज है, मतलब आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 250 से ऊपर है, आपका HbA1c जो है वो करीब 9, 10, 11 तक ऊंचा है, तो प्लीज फास्टिंग मत करिएगा। मैं एक और रिकमेंडेशन देना चाहूंगा कि प्लीज घर पे तो ये एकदम मत करिएगा। आप किसी डॉक्टर की एडवाइस के बिना कभी भी फास्टिंग मत करिएगा, क्योंकि डायबिटीज में शुगर लेवल बढ़ जाता है और जब हम खाते नहीं है तो हमको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपो मतलब जो शुगर है वो कम हो सकती है, और कम शुगर होने की वजह से हमको बेहोशी छा सकती है, कमजोरी छा सकती है, और हमारा जो शरीर है उसके ऊपर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ये कहा जाता है कि आप इसको अगर मेडिकल सुपरविजन में करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको अपने शरीर के बारे में सुनना पड़ेगा। अगर आपको हल्का मतलब बहुत लो डायबिटीज है, बहुत सब कुछ वेल अंडर कंट्रोल है, तो प्लीज फास्टिंग करना आप शुरू कर सकते हैं। और इसमें भी इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की जाती है कि दिन में आप करीब 14 से 16 घंटे तक कुछ मत खाइए, और उसके बाद जो हल्का आपके पास 8 घंटे बचे हैं उसमें आप हल्का भोजन कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सालयों में, आयुर्वेदिक सेंटर्स में लोगों को शहद, नींबू, पानी के साथ फास्टिंग कराई जाती है, जिसमें उनको कोई भी ठोस चीज है या ठोस अन्न है या फल है या सब्जियां हैं वो नहीं दिया जाता है। सिर्फ पानी दिया जाता है, शहद दिया जाता है और नींबू दिया जाता है। इसमें हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस कम रहते हैं, और इसमें जो आपका शरीर है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। पर मैं फिर बोलना चाहूंगा कि अपने ब्लड शुगर को मॉनिटर करिए, और किसी न किसी जानकार व्यक्ति के अंडर में सुपरविजन में ही करना चाहिए। आप अगर फुल 24 आवर्स फास्ट नहीं कर सकते हैं तो इंटरमिटेंट या मतलब थोड़ा लंबे समय तक बिना भोजन के रहिए और फिर आप हल्का भोजन करिए, ये भी आप कर सकते हैं और इससे भी आपके शरीर को बहुत फायदा होगा।
0: जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं डॉक्टर साहब, तो एक सहज सा प्रश्न उठता है कि कितने लंबे देर तक हम उपवास कर सकते हैं एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में, कितना अंतराल एक व्यक्ति कम से कम रखे या ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए, एक आइडिया रहे?
1: ये भैया कहीं भी ये कहा जाता है कि आप दिन में दो भोजन के बीच में 12 से 16 घंटे तक का गैप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग विदेश में करते हैं कि वो रात में 7-8 बजे भोजन कर लेते हैं और फिर अगले दिन जो करीब 9 बजे 9:30 बजे तक सुबेरे तक खाली पेट रहते हैं वो सिर्फ पानी पीते रहते हैं, जिससे उनके शरीर में उनको थोड़ा बहुत फास्टिंग का भी बेनिफिट मिलता रहे। फास्टिंग की सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपके शरीर को तरोताजा करने में बहुत बड़ा उसका रोल है और ये जो भी हमारे खराब सेल्स हैं उनके डिप्लीशन में इसका बहुत, उनको हटाने में फास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। और प्राकृतिक चिकित्सा ये मानता है कि जब हम फास्टिंग या उपवास करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को बहुत आराम मिलता है, हमारे लिवर को बहुत आराम मिलता है और उसकी रीजनरेशन में, उसके ठीक होने में उसको बहुत मदद मिलती है। तो मैं चाहूंगा कि आप अगर 12 नहीं तो करीब 7-8 घंटे तक, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा जितना आप अपने शरीर को बिना कष्ट दिए कर पाए वैसा फास्ट करिए और प्लीज किसी डॉक्टर या चिकित्सक की निगरानी में करिए, उसकी सलाह के साथ करिए और अपने शरीर की सुनिए। अगर आप नहीं रह पा रहे, आपको कमजोरी लग रही है, चक्कर आ रहा है तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए।
0: ये बहुत ही सुंदर सी बात समझ में आ रही है कि जिन चीजों के बारे में हमारी अवधारणा है कि डायबिटीज ठीक नहीं हो सकती, डायबिटीज के लिए जिंदगी भर दवाई ही या इंजेक्शन ही लेते ही रहना पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई और इलाज नहीं है, इस बीमारी के साथ ही जीना है, इन अवधारणाओं को तोड़ा गया है आज की इस चर्चा में। ये समझ में आ रहा है कि हम स्वास्थ्य को वापस हासिल कर सकते हैं, डायबिटीज को भी रिवर्स किया जा सकता है हमारे आहार पद्धति को चेंज करके, मुख्य रीति से अपने आहार को बदलने से हम ये चीजें कर सकते हैं। हम चीनी और प्रोसेस्ड फूड को त्याग दें और फिर अपने भोजन पर थोड़ा बहुत संयम लेके आए तो फिर बहुत कुछ संभव है। और साथ ही साथ फास्टिंग के बारे में भी जो चीजें हम सोचते आए हैं उस पर आज एक नया प्रकाश मिला है कि हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की भी आवश्यकता है, जिससे हम स्वास्थ्य को वापस करने के लिए शरीर की मदद करें। आज समय को देखते हुए यही रुकते हैं, मगर आज डॉक्टर राहुल मोदी जी ने हमें डायबिटीज, डायबिटिक डाइट और डायबिटीज को रिवर्स करने के बारे में और फास्टिंग से इसके संबंध के बारे में हमें जानकारी दी। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: दोस्तों, आज की चर्चा में हमने डायबिटीज के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी सुनी है कि डायबिटीज को हम पलट सकते हैं, इस बीमारी से हर व्यक्ति वापस लौट कर आ सकता है, स्वस्थ होने के लिए कोशिश कर सकता है। जितनी जल्दी हम ये प्रयास करेंगे उतनी जल्दी स्वास्थ्य हमारे लिए संभव है। आज की चर्चा में बस इतना ही, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं। मैया मोरी मैं नहीं माखने खायो, ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: और मनी दीदी आ गए हैं आपका फेवरेट शो लेकर, क्योंकि टाइम हो गया है 9:30 और आपको तो पता है इस वक्त हम दोनों आपसे बातें करने आते हैं।
2: हाँ, और अभी जो सिलसिला चल रहा है बच्चों, वो है आपके प्रश्न उत्तर का, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके प्रश्नों का हम सही सही जवाब दे सके और छोटे छोटे टिप्स बता सके।
1: और ये पॉसिबल होता है केवल एक ही कार्यक्रम, वो है सपनों की सैर।
2: हाँ, जिसमें बच्चे बेझिझक अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और बच्चों की बातें परी और मनी दीदी के साथ होती रहती है।
1: बिल्कुल मनी दीदी, निधि ने पूछा है, मैं जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, क्या करूँ?
2: हाँ निधि, ये आपकी ही प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये बड़ों की भी प्रॉब्लम है। और कहते हैं कि जब भी गुस्सा आए तो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देना चाहिए।
1: हाँ, ये बहुत अच्छा टिप है मनी दीदी। और साथ साथ बच्चों, पानी पी लो तो भी गुस्सा ठंडा हो जाता है।
2: हाँ, और तो और जब गुस्सा आ रहा है तो तुरंत कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए।
1: गहरी सांस लेनी चाहिए और शांत होने के बाद अपनी बात सामने रखनी चाहिए।
2: हाँ, इससे प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाती है।
1: हाँ, तो इसीलिए अब गुस्सा मत करना, गुस्सा आए तो पोस्टपोन कर देना।
2: हाँ, तो चलो, आपको छोटे छोटे टिप्स भी मिल रहे हैं और अब चलो भाई, अब समय भी हो रहा है, परी से कहानी भी तो सुननी है ना, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
1: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
2: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, याद रखिएगा।
1: चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं आज की कहानी। हमने बारिश के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें समझी, तो चलो आज की कहानी का टाइटल क्या है पता है? मूर्खता का फल। बच्चों, एक बढ़ई था, एक बार वो लकड़ी के लंबे लट्ठे को चीर रहा था। उसे इस लट्ठे के दो टुकड़े करने थे। सामने वाले पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। वो काफी देर से बढ़ई के काम को बड़े ध्यान से देख रहा था। बढ़ई ने दोपहर का भोजन करने के लिए काम बंद कर दिया। अब तक लट्ठे का केवल आधा ही भाग चीरा जा चुका था, इसलिए उसने लट्ठे के चिरे हुए हिस्से में मोटी सी गुल्ली फंसा दी। इसके बाद वो खाना खाने चला गया। बढ़ई के जाने के बाद बच्चों सोचो क्या हुआ, बंदर पेड़ से कूदकर नीचे आया। वो कुछ देर तक इधर उधर देखता रहा। उसकी नजर लकड़ी की गुल्ली पर गड़ी हुई थी। वो गुल्ली के पास गया और उसे बड़े उत्सुकता से देखने लगा। बच्चों सोचो बंदर के मन में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग हो रही है उसकी। वो अपने दोनों पांव लट्ठे के दोनों ओर लटकाकर उस पर बैठ गया। इस तरह बैठने से उसकी लंबी पूंछ लकड़े के चिरे हुए हिस्से में लटक रही थी। उसने बड़ी उत्सुकता से गुल्ली को हिला डुला कर देखा, फिर वो उसे जोर जोर से हिलाने लगा। अंत में जोर लगाकर उसने गुल्ली खींच कर निकाल ली। बच्चों क्या हुआ होगा गुल्ली निकालने से? जो ही गुल्ली निकली तो लट्ठे के दोनों चिरे हुए हिस्से आपस में चिपक गए। बंदर की पूंछ उसमें बुरी तरह से फंस गई। दर्द के मारे बंदर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे बढ़ई का डर भी सता रहा था। वो पूंछ निकालने के लिए छटपटाने लगा। उसने जोर लगाकर उछलने की कोशिश भी की तो उसकी पूंछ बच्चों टूट गई। अब वो बिना पूंछ का ही हो गया। तो बच्चों इमेजिन करो बिना पूंछ वाला बंदर कैसा लगेगा और अब वो झाड़ पे लटकेगा कैसे। तो देखा बच्चों कहानी क्या सिखाती है, अनजानी चीजों से छेड़छाड़ करना खतरनाक होता है बच्चों। तो इसीलिए आप भी ऐसा कुछ कारनामे मत करना, वरना आप भी फंस जाओगे, फिर डांट खानी पड़ेगी, है ना बच्चों? तो चलो मनी दीदी भी तेनालीराम की कहानी लेकर आने वाली है। तो अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सपनों की सैर को।

0: मैं अशोक खोसला बोल रहा हूँ और मैं रेडियो मधुबन सुनने वालों सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको। वो सबको बहुत बहुत खुश गवार गुजरे, सब बहुत खुश रहें और आगे भी प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलें, यही शुभकामना है। धन्यवाद। रेडियो मधुबन सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: तेनाली राम की अनोखी दुनिया की किताब लेकर आ गई है मनी दीदी और इसमें हम पढ़ रहे हैं मित्र की पहचान नाम की कहानी, जिसमें तेनाली राम महाराज को उनके मित्रों की पहचान कराने वाला है। और पिछली कड़ी में मैंने आपको बताया था पढ़कर कि तेनाली राम ने देखा कि महाराज अपने मित्रों के साथ ही लगे रहते हैं और राजकाज के कार्यों में तो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो तेनाली राम ने फिर महाराज को अवगत कराया और फिर महाराज ने पूछा उससे कि भाई तुम्हारे मन में क्या बात है इनके प्रति, निसंकोच होकर के बोलो। तो अब आगे तेनाली राम ने क्या कहा वो मैं बिना देर किए आपको पढ़कर सुनाती हूँ। महाराज के स्वर में जिज्ञासा थी। महाराज के बदले स्वर को सुनकर तेनाली राम के मन में विचार उत्पन्न हुआ कि सत्ता कितने आडंबर से अपना दर्पपूर्ण चेहरा बनाए रखती है, किंतु सच का एक झोंका उसे जड़ से हिला देता है। यही महाराज कृष्णदेव राय अभी दो क्षण पहले अपनी मित्रता की बखान करते हुए अपने मित्रों के प्रति अपने कर्तव्य का उल्लेख कर रहे थे और अब वही महाराज कृष्णदेव राय संशय युक्त मन से पूछ रहे हैं क्या वे मित्र नहीं हैं? तो तेनाली राम ने स्थिति अनुकूल पाते हुए उसका लाभ उठाया और बोला, महाराज मित्र अमित्र की पहचान मैंने नहीं की है, किंतु यदि आप चाहें तो वह भी कर सकता हूँ। तो महाराज ने कहा, हाँ तेनाली राम, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि इन दोनों में से मेरा सच्चा मित्र कौन है। महाराज ने कहा, तो ठीक है महाराज। तेनाली राम ने विश्वास भरी दृष्टि से महाराज की आंखों में झांकते हुए कहा, आज रात्रि विश्राम मैं राजभवन में कर सकूं ऐसी व्यवस्था करा दे। मेरे ठहरने का प्रबंध अपने इन दोनों मित्रों के कक्ष के आसपास करा दे। तो महाराज मान गए। तो अब कैसे पता लगाएगा तेनाली राम कौन है सच्चा मित्र, तो वो तो पता चलेगा अगली कड़ी में। तो चलो लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलेंगे इस प्यारे से गाने के बाद। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट है। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज़ किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूँ ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम यू वर्ड भी ये यूज़ करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: चलो बच्चों आ जाओ जल्दी से, अभी तो हम कार्यक्रम के अंतिम मोड़ में पहुंच गए हैं और अभी हमें जानना है उस पहेली का जवाब जो पिछली कड़ी में परी ने पूछा था। परी ने पूछा था, पंख नहीं पर दौड़ता तेज, रेगिस्तान में करता खेल, उड़ नहीं सकता आसमान, बताओ उसका नाम। तो परी क्या है इसका जवाब?
3: बच्चों इसका जवाब तो बहुत आसान था और इसलिए ढेर सारे बच्चों ने सही जवाब हमें भेजा है। इसका जवाब है शुतुरमुर्ग।
2: हाँ शुतुरमुर्ग, हाँ बच्चों तो सही जवाब है शुतुरमुर्ग, तो बजाओ अपने लिए ताली।
3: तो बच्चों ये जवाब तो बहुत आसान था, तो चलो नोट कर लो फिर से आज की पहेली, वही जनरल नॉलेज का सवाल है।
2: हाँ परी बताओ भाई क्या सवाल है आज का?
3: हर दिन खाओ सेहत पाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ, लाल हरे रंग में आए, बताओ कौन सा फल कहलाए?
2: हाँ बच्चों कौन सा फल है? इसका जवाब तो आप लोग को पता ही होगा, कुछ हिंट देने की भी जरूरत नहीं है। तो चलो जल्दी से उठाओ फोन और हमें 9414151415 पर वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दो।
3: हाँ बच्चों हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और चलो अब हम लेते हैं विदा, करते हैं गुड बाय, उसके पहले
2: गुड नाइट,
3: स्लीप टाइट,
2: गुड बाय। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8।

आशियाना में आज के कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करेंगे और घरेलू नुस्खे भला कैसे भूल सकते हैं जरूर देंगे। खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो नए नए व्यंजन जरूर सिखाएंगे। पेन और डायरी लेकर के तैयार रहिएगा, सामान्य जानकारी भी देंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और आज का विचार इस प्रकार है, अपनी संपत्ति का भी त्याग के साथ उपभोग करिए। अपनी संपत्ति का भी त्याग के साथ उपभोग करिए। आज के विचार का विस्तार इस प्रकार है, जैसे मिलावट करने से सोना खोटा हो जाता है, उसी प्रकार बेईमानी भ्रष्ट आचरण की मिलावट से व्यक्ति भी खोटा हो जाता है। खरा वही है जो अंतरात्मा की आवाज पर ईमानदारी की कमाई से संतुष्ट है। किसी का

हीन कर झपट कर नहीं बल्कि अपनी संपत्ति का भी त्याग के साथ उपयोग करिए। किसी के धन को लालची दृष्टि से मत निहारिए। किसी को महल में रहने की इच्छा हो ये बुरी बात नहीं है, परंतु वह आज से ही महल खड़ा करने का कार्य आरंभ कर दे। दूसरे के बने बनाए महल को लोभ की दृष्टि से न देखे। यही त्याग का भाग्य जमा होता है। और अपनी संपत्ति का भी अगर हम त्याग करके उपभोग करते हैं तो वो संपत्ति भी जैसे एक रुपया है, फिर भी उससे हमारा गुजारा चल सकता है, चल जाता है और सदैव हम संतुष्ट रहते हैं। तो ये हुआ आज का विचार, जिस पर जरूर गौर करिएगा और जितनी हमारी आमदनी है उससे हमेशा संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। और एक गीत अब आपको सुनाएंगे, फिर आगे चलेंगे आशियाना के कार्यक्रम का और भी आगे बढ़ाएंगे। एक गीत के बाद तो सुनते रहिए, मुस्कुराते

0: सागर, रेडियो मधुबन के सारे श्रोताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सुन रहे हैं गीत सागर को रेडियो मधुबन पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं घरेलू नुस्खे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में रोगों का प्रभाव पड़ता ही रहता है। हम छोटी मोटी बीमारियों का इलाज स्वयं कर सकते हैं, पर थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे नुस्खे देने जा रही हूँ। दम्मे के रोगियों के लिए आप क्या करेंगे, तुलसी की 10 पत्तियों के साथ वासा बोले तो अड़ूसा के भी आप 10 पत्ते ले लीजिए, और 10 पत्ते ही तुलसी के। फिर आप 250 मिलीलीटर पानी में अच्छी तरह उबालिए और इसका काढ़ा तैयार कर लीजिए, ठीक है। फिर ये काढ़ा 21 दिन तक सुबह सुबह खाली पेट पीना है। इससे दम्मा में काफी राहत मिलेगी, ठीक हो जाएगा दम्मा। पुनः दोहरा रही हूँ, इस नुस्खे को ध्यान से सुनिएगा। दम्मे के रोगियों के लिए है तुलसी की 10 पत्तियां और वासा अड़ूसा के भी 10 पत्ते। इन दोनों को 250 मिलीलीटर पानी में अच्छी तरह उबालिए। उबाल करके इसका काढ़ा बना दीजिए। फिर इस काढ़े को छान करके सुबह सुबह खाली पेट पीना है 21 दिन लगातार। इससे दमा ठीक हो जाएगा। अब अगला नुस्खा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा नुस्खा है। मौसम के अनुसार खांसी होती है ना, उसके लिए तो मौसम के अनुसार खांसी होती है, उसके लिए आप लीजिए सेंधा नमक की लगभग 5 ग्राम की डली, ठीक है। इसको आप चिमटे से पकड़िए, और चिमटे से पकड़ करके आप गैस पर या तवे पर गरम कर लीजिए। जैसे हम पापड़ी सेकते हैं ना चिमटे से पकड़ के, पापड़ी, इसी तरह आप सेंधा नमक की डली को सेकिए, और जब ये डली लाल हो जाए ना, तो गरम गरम डली को तुरंत आप आधा कप पानी में डुबो दीजिए। डुबा करके फिर से तुरंत निकाल दीजिए, ठीक है। ये नमकीन गरम पानी को एक ही बार में पी जाइए, एक ही घुट में। ऐसा नमकीन पानी सोते समय लगातार 2-3 दिन पीने से खांसी, विशेष करके जो बलगम वाली होती है ना, उसमें काफी आराम मिलेगा। फिर आप नमक की डली को सुखा करके रख लीजिए, और फिर अगले प्रयोग में आप इस तरह यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल है ना नुस्खा। पुनः दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मौसम के अनुसार खांसी होती हो तो आप सेंधा नमक की लगभग 5 ग्राम की डली को चिमटे में पकड़ करके आग पर आप सेकिए, या फिर तवे पर भी आप सेक सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, डली एकदम लाल हो जानी चाहिए। फिर इतनी गर्म डली को आधा कप पानी में तुरंत डालिए, और डालते ही निकाल दीजिए। और इस गर्म पानी को, नमक वाले पानी को, आप एक ही घूट में पी जाइए। इससे ये पानी आपको 2-3 दिन रात को सोते समय पीना है। इससे विशेष करके जो बलगम वाली खांसी होगी उसमें तो राहत मिलेगी ही, साथ ही साथ मौसम के अनुसार होने वाली खांसी पर भी कंट्रोल हो जाएगा, और खांसी की तकलीफ ठीक हो जाएगी, ठीक है। फिर इस नमक को आपको सूखा देना है, अगले प्रयोग में फिर से इस नमक को आप यूज कर सकते हैं। और लास्ट नुस्खा भी आप ध्यान से सुनिएगा। गला बैठ जाता है कितनी ही बार, है ना, तो गला बैठ जाता है तो इस कंडीशन में आप मुलेठी के चूर्ण को पान के पत्ते में रखकर खाइए। इससे बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है। या फिर आप सोते समय 1 ग्राम मुलेठी के चूर्ण को मुख में रख करके देर तक चबाते रहे, और वैसे ही मुंह में रख करके सो जाइए, ठीक है। सुबह ही सुबह आप देखेंगे कि गला साफ हो जाएगा, गले का दर्द, अगर सूजन भी होगा तो उसमें भी आराम मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा नुस्खा है, ध्यान से सुनिएगा। पुनः दोहरा रही हूँ, बार बार गला बैठ जाता है तो आप मुलेठी के चूर्ण को पान के पत्ते में रखकर खाइए। इससे बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है। या फिर आप सोते समय 1 ग्राम मुलेठी के चूर्ण को मुख में रख करके कुछ देर हल्के हल्के चबाते रहिए, फिर वैसे ही चबाते चबाते सो जाइए, ठीक है। सुबह सुबह उठेंगे तो आपको लगेगा कि अरे वाह, गला तो साफ हो गया, गले का दर्द भी ठीक हो गया, जो सूजन थी वो भी ठीक हो गई। तो इस तरह ये नुस्खे बहुत ही लाजवाब है और आप आजमा सकते हैं और महंगे भी नहीं पड़ते हैं, ठीक है ना, और साइड इफेक्ट भी नहीं होते इसके। तो चलिए, ये तो हुए घरेलू नुस्खे, अब फिर से सुना देते हैं आपको एक प्यारा सा गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए खुशनुमा जीवन की बातें करते हैं। सविता जी हमारे साथ बने हुए हैं। सविता जी आपका अपने घर में स्वागत है।
2: उषा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, रेडियो मधुबन का भी थैंक्स, और बहुत अच्छी बातें आप कह रही थी, कविता बहुत सुंदर लगी मुझे, जरा एक बार
1: जी,
2: फिर से दोहराइए।
1: ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा
2: जी,
1: कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को
2: जी,
1: अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना
2: होगा। देखिए बात अभी आपने जो की कि अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ेगा, तो इस पर एक कहावत मुझे भी याद आ गई
1: जी, बिल्कुल।
2: पुराने जमाने में कहते थे खुद ही मरने से स्वर्ग प्राप्त होगा, किसी और के मरने से हमको स्वर्ग नहीं प्राप्त होगा, यदि हमें स्वर्ग प्राप्त करना है तो खुद ही मरना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी, अगर अपने रास्ते में हमें उजाले करने हैं, अपने लक्ष्य तक हमको पहुंचना है, तो ये जान लीजिए कि हमको खुद ही मेहनत करनी होगी।
1: तो मरने के नाम से मरने के नाम से दो लाइनें फिर से मुझे याद आ रही है सविता जी,
2: फरमाइए।
1: देखिए नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती, नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती, मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता।
2: वाह वाह, देखिए जिसे तैरना आता है सागर को पार कर लेगा
1: जी, और ठीक उसी तरह परिस्थितियां कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती
2: जी,
1: परिस्थितियां कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती, समस्या तो तब बनती है सविता जी जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता।
2: हाँ, उसका रास्ता ही नहीं मालूम होता है कि हम कैसे निपटें, तब हमें लगता है कि रुई भी जैसे लगता है राई भी पहाड़ बन गई है
1: जी, बिल्कुल।
2: और कुछ लोग ऐसे होते हैं आप देखिए बड़ी से बड़ी परिस्थितियों में पहाड़ को राई बना देते हैं। हाँ, तो ये सब जो बातें हैं कहने का तात्पर्य इन तीनों चारों जो अभी हम लोगों ने बातें की, तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सबसे यही निकलता है कि बिना मेहनत के आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल सविता,
2: कई बार लोग कहते हैं कि मेरे भाग्य में नहीं, मेरे भाग्य खराब है, या कर्म को कोसते हैं, भाग्य को कोसते हैं, लेकिन अपने कर्मों की तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए इसे कहा गया कर्म प्रधान है और कर्म ही पूजा है। पूजा हम कर रहे हैं, कई बार देखिए होता है हमारे जीवन में हम बोलते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, ये किया, या पूजा पाठ भी बहुत करते हैं तो उससे हमें भगवान दे देगा, लेकिन कहा गया कि कर्म करना, जो हम कर्म करेंगे वही वास्तविक पूजा होती है और उसी से ही हमको फल की प्राप्ति होती है। जीवन में कितने भी अंधेरे क्यों ना आ जाएं, दीपक सच में हमें ही जलाना पड़ेगा। जैसे घर में अगर लाइट नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे, हर कमरे को रोशन करने के लिए मोमबत्ती खुद ही जलाएंगे
1: जी।
2: अब कमरे तो अपने आप रोशनी करेंगे नहीं,
1: नहीं
2: उसे
1: करेंगे।
2: हमें ही करना पड़ता है। तो उषा जी बहुत अच्छी बात लगी मुझे ये बात कि हाँ मेहनत हमें करना पड़ेगा और जीवन के अंधेरों से घबराना नहीं है बल्कि उससे लड़ना पड़ेगा।
1: लेकिन सविता जी आजकल हम देखते हैं कि लोग बाग मेहनत से कतराते हैं और देखते हैं कि वो कहते हैं ना कि राम नाम जपना पराया माल अपना,
2: जी
1: ये वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं।
2: हाँ, क्योंकि उनके मन में ये है ना कि रोशनी तो हमें पूरी चाहिए
1: जी,
2: पर दीपक जलाना भी ना पड़े और दीपक बन के जलना भी ना पड़े। देखिए दीपक में कितना परिश्रम करता है दीपक, खुद जल के दूसरों को रोशनी देता है।
1: बिल्कुल
2: ना, तो दूसरों की खुशी के लिए हमें अपनी खुशी की कई बार कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ता है, तब जाकर हम दूसरों के लिए भी दीपक बन पाते
1: जी।
2: और हमारी जो सोच है, समझ है, या हमारे जो कर्म है वो संसार के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं। और जब हम स्वयं ही कहते हैं कि कई बार कहते घर का दीपक घर में ही आग लगा दे,
1: हमारी देखते हम हाँ। अक्सर देखते हैं अपनी इन्हीं आंखों से कि ऐसा भी हो रहा है समाज में,
2: क्या है? हम सोचते हैं हम बहुत समझदार हैं और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें हमारा फायदा तो होता है, ये सत्य है, लेकिन जो हमारे चारों तरफ का माहौल होता है, हमारे आसपास के लोग होते हैं, चाहे फैमिली में हो या हम जहां काम कर रहे हैं वहां हो या पास पड़ोस में, उनको नुकसान पहुंचाते रहते हैं
1: जी।
2: मैंने देखा है कई बार कई लोगों को बहुत अच्छे होते हैं, समझदार होते, बुद्धिमान होते, उन्हें दुनिया की नॉलेज होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, सारी नॉलेज सिर्फ अपने तक ही रखते हैं, मतलब अपने लिए ही उसका उपयोग है और दूसरों को मिसगाइड करते रहते हैं, है ना। और कई बार देखिए घर में ही घर का नुकसान ही कर डालते हैं कई लोग, तो घर के दीपक से घर का ही नुकसान हो जाता है। और कई बार देखिए आप कि जो दीपक होते हैं घर में भी उजाला करते हैं और बाहर भी उजाला करते हैं
1: जी।
2: तो वैसा ही दीपक बनना है हमें।
1: बिल्कुल सविता जी, बाकी कहते हैं कि हम दूसरों को ठगते हैं लेकिन घर में ही हम ठगे जाते हैं
2: कई बार होता है। हाँ
1: होता है, हमारे बच्चे ही हमें धोखा देते हैं फिर।
2: और दीपक भी उषा जी कई तरीके के बताए गए हैं दुनिया में, जैसे कुल दीपक कहा गया जो कुल के नाम को रोशन करे। कई होते हैं दीपक आशाओं के दीपक, जो हमारे मन में इच्छा है, संकल्प है, भाई हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। दुनिया में न जाने कितने लोग कितने प्रकार की आशाओं के दीपक जगा के बैठे हुए हैं। तो यदि हमारी इच्छाओं के दीपक, आशाओं के दीपक अच्छे से जल रहे हैं तो हमें भी खुशी होती है और उससे दूसरों को भी प्रकाश मिलता है। और कई बार हमारे द्वारा दूसरों की इच्छाएं पूरी होती है, आशाएं पूरी हो जाती हैं, तो ये भी एक प्रकार का दीपक जलाया जाता है ना। आशाओं के दीपक है, देखिए कुल दीपक है, उम्मीदों के दीपक है, ऐसे सब जलाते रहते हैं। और इसी दीपक की बात से याद आ रही उषा जी कि हमारे देश भारतवर्ष में बहुत बड़ा त्यौहार दिवाली मनाई जाती है
1: जी,
2: है ना। तो ये इसी का मतलब इसी का एक प्रतीक है कि खुशियों के दीपक जलाना, उम्मीदों के दीपक जलाना, सफलता के दीपक जलाना। तो ये दीपक के रूप में जो कहा गया है कि हाँ भाई दीपक बहुत सुंदर, देखने में भी बहुत सुंदर प्रतीत होता है, तो उसकी जो रोशनी होती है वो बहुत आकर्षण मूर्त होती है, आकर्षित करती है दुनिया को।
1: बिल्कुल सविता जी, पर बात चल रही थी कर्म की, कि कर्म किए बिना कहते हैं कि भोजन भी हमारे सामने आता है लेकिन हाथ से कोए को तो तोड़ना ही पड़ेगा तभी मुंह में रखेंगे और मुंह में जाएगा। बाकी भोजन आ गया सीधा बना बनाया और हम मेहनत ना करें तो थाली भी चली जाएगी।
2: तो वही हाल है ना, दीपक तो जला लिया लेकिन उसमें तेल ही नहीं डाला हमने तो वो बुझ जाएगा। कर्म ही नहीं किया, एक बार तो जला लिया, और जब कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। तो जीवन में कर्म करना अति आवश्यक है और कर्म ऐसा होना चाहिए उषा जी जो कि महान बन जाए, पूजनीय बन जाए, गायन योग्य बन जाए। कर्म तो दुनिया में तमाम लोग करते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, कुछ विकर्म करते हैं, कुछ सुकर्म करते हैं, है ना। लेकिन जो कर्मों का महत्व है, बहुत श्रेष्ठ कर्म हमें करने चाहिए।
1: कर्म का भी ज्ञान होना चाहिए कि हमें किस तरह के कर्म करने हैं जिससे हम भी खुश रहे और हमारे जो आस पास है, हमारे जो संपर्क में आते हैं वो भी सदैव खुश रहे। तो कर्म हमेशा अच्छे ही करने हैं, अच्छे कर्मों के द्वारा स्वयं भी खुश रहेंगे, औरों को भी खुश रख सकेंगे। बाकी तो दुखों का तो कहते हैं कि विस्तार बहुत है, लेकिन कर्म सदैव श्रेष्ठ करने हैं और कर्म करना ही है, कर्म से भागना नहीं है। तो चलिए सविता जी और भी बातचीत करेंगे, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, तो सुना देते हैं एक गीत। सुनते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया चलती गाड़ी में चढ़ने का प्रयास ना करें, यह जानलेवा हो सकता है। रेल के डिब्बों की छत पर बैठकर यात्रा ना करें, क्योंकि ओवरहेड वायर्स में 25,000 वोल्ट का करंट है। इनके संपर्क में आने से आपकी जान को खतरा हो सकता है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: क्या खूब लिखा है किसी ने, गांव को गांव ही रहने दो साहब, क्यों शहर बनाने में तुले हुए हो। क्या खूब लिखा है किसी ने, गांव को गांव ही रहने दो साहब, क्यों शहर बनाने में तुले हुए हो। गांव में रहोगे तो माता पिता के नाम से जाने जाओगे, और शहर में रहोगे तो मकान नंबर से पहचाने जाओगे। तो ये थोड़ी सी सविता जी मेरे को याद आ गई थी, ऐसे ही कॉमेडी शायरी तो मैंने सुना दी।
1: बहुत अच्छी बात कही,
0: क्योंकि अपने सविता जी अपने क्या टॉपिक का नाम ही है खुशनुमा जीवन। कोई भी बात कहो लेकिन खुशी वाली होनी चाहिए,
1: खुशी से
0: और उससे खुश, हाँ उससे खुश रहने चाहिए सुनने वाले भी और हम बोलने वाले भी।
1: और जो अभी आपने सुनाई ये बात हमारी पिछली वाली बात से मिलती जुलती है,
0: बिल्कुल मिलती जुलती
1: है। जैसे उन्होंने क्या कहा कि अगर हम गांव में रहेंगे तो माता पिता के नाम से जाने जाएंगे, क्योंकि माता पिता का नाम होता है वहाँ पे, उनकी जन्मभूमि होती है, उनके कर्म होते हैं, जिस वजह से हमारी भी पहचान बनती है।
0: जी बिल्कुल।
1: और शहर में हमारी पहचान तो होती नहीं, हम क्या हो जाते हैं, मकान नंबर से जाने जाता। और दूसरा, जब हम कर्म ऐसे करेंगे तो शहर में भी हमारा नाम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन यह है कि कर्म का महत्व गांव में भी बताया गया है, और शहर में आके व्यक्ति वो इतने अच्छे नहीं कर पाता, क्योंकि जीवन ऐसा बन जाता है भाग दौड़ का, एक मशीनी जीवन हो जाता है उषा जी, और पत्थर जैसा हो जाता है। कई बार आप देखो एक अपार्टमेंट में रहने वाले अगल बगल क्या हो रहा है उनको नहीं पता होता, लेकिन गांव में ऐसा होता है उषा बन?
0: नहीं, पूरे गांव का पता होगा कि फलानी जगह कौन रहते हैं, अरे वो रहते हैं, और यहाँ अपने बाजू में कौन रहता है वो भी नहीं पता, शहरों में
1: जीवन में क्या बीत रहा है ये भी नहीं पता होता है।
0: जी बिल्कुल।
1: और गांव में आप देखो कई पीढ़ियों तक की बातें लोगों एक दूसरे को बताते हैं कि उनके परिवार के लोग ये थे, वो थे, ऐसे थे, वैसे थे, या आते जाते दरवाजे से भी गुजरते हैं तो दुआ सलाम होती रहती है, राम राम होती रहती है,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन यहाँ तो कोई किसी की शक्ल ही नहीं देख पाता।
0: यहाँ पर तो ऐसा होता है सविता जी की, साथ में भी वो भी अपने घर से बाहर निकले, हम भी हमारे घर से बाहर निकले, लेकिन नजरे मिल गई तो भी ऐसा लग जाता है कि अरे क्यों मिली, चलो अपने रास्ते। इस तरह का माहौल भी है शहरों
1: मतलब
0: में,
1: वो चीजें खत्म हो रही हैं शहर से, और इतनी भागम भाग और सुख शांति, और आप देखो क्या कहते हैं कि मतलब बिल्कुल अजीब सा माहौल। मुझे गांव बहुत पसंद है उषा जी, बचपन से।
0: चलिए सविता जी, गांव पसंद है तो क्यों ना, अपन आबू के आसपास बहुत सारे गांव है, आपको मैं जरूर घुमा के लाऊंगी।
1: नहीं घुमा है मैंने थोड़ा बहुत, लेकिन कभी कभी मुझे, मैं आपको दिल की बात बताती हूँ, सच बात, आप रेडियो में मेरे दिल की भावना जो एकदम सच्चाई से कह रही हूँ। एक बार मैं इधर गई थी गाँव की तरफ ऐसे किसी काम से, तो मैंने देखा वहाँ पे कि जो गांव के लोग थे, आदिवासी बच्चे थे उषा बहन, वो इतना अच्छा खेल कूद रहे थे पूरे, मतलब खेतों में इधर उधर अपने जानवरों को भी चरा रहे थे और बड़े मजे से खेल रहे थे।
0: जी।
1: तो और कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी झोपड़ियाँ बना रखी थी, और मतलब कहीं पहाड़ पर थोड़ा ऊंचाई होती ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़, थोड़े थोड़े ऊंचे पहाड़ रहते वहां पर, एक नीचे कोई, कहीं कोई कहा, और अलग अलग झोपड़ी पास पास में सटके नहीं बनी थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। जानते हैं क्यों अच्छी लगी? मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जब हम शहर में जमीन खरीदने जाते हैं तो कितना नाप जो, कितना सारा पैसा देकर हम लोग छोटे छोटे से फ्लैट खरीदते हैं या जमीन खरीदते हैं, और उसी में ना एकदम दड़बे में कबूतर खाने में सब रहते हैं। कई बार तो एक परिवार में कई लोगों को रहना पड़ता है ना उषा जी, और आप ये देखेंगे कि वहाँ पे मैंने देखा कि कोई नाप जोक नहीं, सब अपनी अपनी मर्जी के मालिक है ऐसा लग रहा था, और प्रकृति का पूरा सुख उठा रहे थे, हवा भी अच्छी, धूप भी अच्छी, बच्चे खुलकर खेल रहे थे, उन्हें कहीं किसी गार्डन की जरूरत नहीं, किसी जगह ढूंढने की जरूरत नहीं कि हम बच्चों को कहाँ खेलने भेजें, और आराम से एक झोपड़ी के बगल दूसरी झोपड़ी नहीं थी, आराम से फैल फैल के मजे से रह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था।
0: बिल्कुल सविता जी,
1: देखो इनको पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते और कितने आराम से प्रकृति का पांचों सुख ले रहे हैं।
0: जी,
1: प्रकृति के पांचों तत्वों का सुख मिल रहा है।
0: कहते हैं शहरों में कितने भी भाग दौड़ करो फिर भी आधी ही मिलती है, और गांव में आप थोड़ा सा भी भाग दौड़ करोगे, मेहनत करोगे, आपको पूरी मिल जाएगी।
1: हाँ।
0: क्योंकि प्रकृति तो नेचुरल वहाँ होती ही है, और शहरों में तो हम देखते हैं कि फ्लैट लेते हैं तो नीचे व्यवस्था देखते हैं, अच्छा यहाँ पर झूला है कि नहीं है, अच्छा यहाँ पर रोशनी किधर से आएगी, यहाँ पे बगीचा है कि नहीं है, वो कितना देखना पड़ता है, और हर चीज की कीमत चुकाई जाती है,
1: मिलती ही नहीं है। मैंने देखा कई बार जिनके पास बहुत पैसा हो भले थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं, ऐसी जगह अपना घर बना ले, लेकिन ज्यादातर लोगों को आप देखो खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार जो होते हैं वो इतनी चीजें नहीं उनको मिल पाती, धूप के लिए तरसना होता है, बच्चे छोटे छोटे से कमरों में बालकनी में ऐसे खेलते रहते, उनको जगह नहीं मिल पाती। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यही सोचती थी कि वास्तव में गांव बहुत अच्छी चीज होती है,
0: गांव का अलहड़ जीवन, बच्चों का शारीरिक अच्छा विकास, ये सब बहुत होता है, क्योंकि खुले मैदान में आप जितना चाहो दौड़ो, भागो, गाओ, नाचो, कोई भी खेल खेलो आप
1: जीवन में,
0: बिल्कुल कोई रोक टोक
1: नहीं, उनको देखने में अच्छा लगता है, बच्चे उनके साथ खेलते रहते दौड़ते रहते, मुझे अच्छे लगते हैं जानवर।
0: लेकिन सविता जी, हम बात कर रहे थे कर्म की कि कर्म करने से लोग आजकल क्या थोड़े से कतराते हैं, ऐसा लगता है कि थोड़ी मेहनत में काफी कुछ मिल जाए, इसके लिए फिर लोग भी कर्म करना शुरू कर देते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, और कर्म तो कर ही रहे हैं, कर्म तो बल्कि पहले से ज्यादा ही हो रहे हैं आप देखिए
0: जी,
1: और कई तरीके से लोग कर रहे हैं लेकिन प्राप्तियां नहीं हो पा रही, जितना हम प्राप्ति चाहते हैं वो हमें मिल नहीं रही। इसी बात को तो मैंने कहा कि देखिए वो जो गांव में रहने वाले लोग वो इतना दिमाग नहीं लगाते, इतना कर्म दुनियावी तौर पे नहीं करते, लेकिन आप देखिए उन्हें वो सब कुछ मिल रहा है, घर भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही, शांति भी मिल रही, हाँ दिखावा नहीं होता उनके पास
0: जी।
1: कम कपड़ों में, कम खाना पीने में, कम मतलब भौतिक चीजें नहीं है उनके पास, ज्यादा विलासपूर्ण चीजें जिसे कहेंगे, लेकिन फिर भी मैंने ये देखा बहुत सुख शांति लगी।
0: कहते हैं कि हम अच्छा शहरों में भले कितनी मेहनत करके, कितने पैसा खर्च करके सारी सुविधाओं को खरीद लेते हैं, फिर भी गांव में जाकर के देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम खाली है।
1: हाँ बहुत, हाँ उनके सामने लगता है। और देखिए हम जो बाहर बहुत कर्म कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ टेंशन भी आ रहा, तनाव भी हम लेके आ रहे हैं।

0: करेंगे तो ही फल की प्राप्ति होगी
1: जी।
0: कर्म नहीं करेंगे तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए कर्म करिए। लेकिन कहते हैं कि कर्म करने के बाद फल ऊपर वाले पर छोड़ देना है, क्योंकि हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं तो उसका परिणाम तो हमको मिलना ही है, उसके फल की प्राप्ति तो होनी ही है। इसलिए ऐसा नहीं कि भाई हमने 2 घंटे मेहनत की और हमको 8 घंटे के पैसे मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। जितना समय आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको जरूर मिलेगा। बाकी ज्यादा कमाने के चक्कर में कोई भी विकर्म नहीं करना है, नहीं तो कहते हैं कि वो हिसाब किताब की लिस्ट में चला जाता है। फिर थोड़े समय हम पूर्व जन्मों के पुण्य के खाते की वजह से या पुण्य कर्मों की वजह से हम खुश रह सकते हैं, लेकिन फिर जब हम विकर्म करते हैं वो भी तो जमा होता है और इसकी भोगना फिर भोगनी पड़ती है, तब काफ़ी तकलीफ होती है, काफ़ी कष्ट सहने पड़ते हैं, दुख होता है। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करिए और जितना मिले उससे खुश रहिए, संतुष्ट रहिए और ऐसी ही आदत डालिए कि भाई हम इतने कैपेबल हैं और इस अनुसार हम रह सकते हैं, बाकी योग्यता कम है और हम ज़्यादा की इच्छा रखते हैं तो फिर दुखी होंगे। तो सविता जी, समय हो रहा है फिर से एक ब्रेक लेने का
1: जी,
0: तो ले लेते हैं एक अल्पविराम। सुनते रहिए,
1: मुस्कुराते रहिए
0: रेडियो मधुबन।

सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। तो आशियाना के किचन में आप सभी पधारिए। आज बनाएंगे आशियाना के किचन में बेसन का केक। ठीक है, केक कितने ही तरह के बनाए जाते हैं और बहुत सारे तरीके के आपको सिखा चुके हैं। आज आपको सिखाएंगे बेसन का केक। इसके लिए सामग्री लिखवा रही हूँ। पेन और डायरी तो आप ले ही लीजिए और लिखिएगा एक कटोरी बेसन। ठीक है, फिर लीजिएगा आप एक कटोरी मैदा। अब लीजिए सूजी आधी कटोरी। एक कटोरी नारियल का बुरादा लेना है, मतलब कसा हुआ नारियल। फिर लीजिए एक चौथाई चम्मच वनीला एसेंस। दो चम्मच शहद ले लीजिए। एक चम्मच बेकिंग पाउडर लेना है और कुछ कटे हुए मेवे लेने हैं आपको। एक कटोरी शक्कर ले लीजिए और एक कटोरी ही मलाई लीजिएगा। तो ये हो गई बेसन के केक की सामग्री, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ। एक नजर डाल दीजिएगा। बेसन कितने बोली थी मैं? एक कटोरी। फिर मैदा, ये भी एक कटोरी। सूजी आधी कटोरी। एक कटोरी नारियल कसा हुआ, जिसको हम नारियल का बुरादा भी कह सकते हैं। फिर आप लीजिए एक चौथाई चम्मच वनीला एसेंस। दो चम्मच शहद। बेकिंग पाउडर लीजिए एक चम्मच। कुछ कटे हुए मेवे ले लीजिए आवश्यकता के अनुसार और एक कटोरी शक्कर लीजिएगा। एक कटोरी ही लेनी है मलाई की। तो ये सारी सामग्री इकट्ठी करिए। तब तक के लिए आपको एक गीत सुनाएंगे, उसके बाद बेसन का केक कैसे बनाया जाता है वो भी जरूर सिखाएंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिजीत सावंत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बन रहा है बेसन का केक। बेसन का केक की सामग्री आप सभी को लिखवा चुकी हूँ, फिर भी एक नजर डाल दीजिएगा, कहीं छूट गया हो तो आप नोट कर लीजिए। बेसन, मैदा, सूजी, कसा हुआ नारियल, वनीला एसेंस, शहद, बेकिंग पाउडर, कटे हुए मेवे, चीनी और मलाई। आइए अब बनाने का तरीका भी आपको सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, शक्कर को पीस लीजिए और फिर मलाई को अच्छी तरह फेंटिए। अब आप मलाई और शक्कर जो पीसी हुई है ना, इन दोनों को मिला करके हल्के हल्के हाथों से फिर से फेंटिए। अब आप मैदा, बेसन और सोडा तीनों को छलनी से छान लीजिए और अब इस मिश्रण में वनीला एसेंस डालिए। बेसन, मैदा, सूजी में एसेंस का मिश्रण डाल करके अच्छी तरह से फेंटिए। इसके अंदर आप कटे हुए मेवे मिला दीजिए, केक पार्ट पर चिकनाई लगा दीजिए और मैदा छिड़क करके मिश्रण डालिए और सारा मिश्रण डाल करके फिर 45 मिनट तक बेक करिए। तो इस तरह बेसन का केक हमारा तैयार हो चुका है। पुनः विधि को दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। केक बाहर से हम लाते हैं, बहुत महंगे महंगे आते हैं और कहते हैं कि भाई हर महंगी चीज़ हर एक के बजट में संभव नहीं होती और इच्छाएं तो सभी रखते हैं। बच्चे की बर्थडे आती है, घर में माता पिता की बर्थडे या किसी का भी जन्मदिन आता है तो ऐसी इच्छा होती है कि भाई केक काटे, केक लावे, बच्चों को केक खिलाए, लेकिन क्या करें, बजट से बाहर है हमारे सारा खर्चा। तो फिर करना भी है, शौक भी पूरा करना है, बजट भी देखना है, तो फिर यही अच्छा तरीका है कि आप घर पर ही केक बनाइए ताकि बजट में भी रहेगा और अपने शौक को भी पूरा कर सकेंगे और बच्चे, बुजुर्ग इन सभी को भी आप खुश रख सकेंगे, है ना। तो इस तरह आप केक बना सकते हैं, बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है। पुनः मैं विधि को दोहरा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा और अच्छी तरह बनाइएगा। शक्कर को आप पीस लीजिए, ठीक है, या फिर पीसी हुई शक्कर भी ले सकते हैं। अब आप मलाई को फेंटिए, ठीक है, मलाई को फेंट ली, अब इसमें पीसी हुई शक्कर मिला दीजिए और फिर दोनों को मिला करके फिर से हल्के हाथों से फेंटिए। फेंटने के बाद अब आप मैदा, बेसन और सोडा इन सभी को आप साथ में ही मिक्स करके छलनी में छान लीजिए। एक एक का नंबर लीजिए ताकि तीनों ही अपने आप मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर अब इस मिश्रण में वनीला एसेंस डालिए। किस में छाना आपने, जो हमने बेकिंग पाउडर और शक्कर ये सब मिक्स किया ना, इसी के अंदर मलाई फेटी थी ना, मलाई के अंदर शक्कर पीसी हुई डाली, इसी के अंदर आपको सोडा, बेसन और मैदा छानना है, ठीक है, ताकि मैं अच्छी तरह बता दूं आप लोगों की भूल ना पड़े। फिर इस मिश्रण में वनीला एसेंस डालिए, ठीक है। बेसन, मैदा, सूजी में एसेंस का मिश्रण डाल दिया, अब आप फिर से अच्छी तरह फेंटिए इन सभी को और फिर लास्ट में कटे हुए मेवे मिला दीजिए। इन सभी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब केक पार्ट पर आप चिकनाई लगाइए तेल या घी की और उस पर आप थोड़ा सा मैदा छिड़क दीजिए और फिर जो मिश्रण तैयार किया है इसको डालिए और डाल करके 45 मिनट तक बेक करिए। तो ये बेसन का केक तैयार हो चुका है, ठीक है। पर भाई जिसका केक का वो कहते हैं ना ओवन हो वो ही केक बनाना, नहीं तो नहीं बनाना। बहुत सारी चीज़ें तो क्या बाटी के कुकर में आपको सिखा देती हूँ, लेकिन केक को आप बाटी के कुकर में नहीं बना सकते। इसलिए अगर ओवन है तो आप ज़रूर बनाइएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको और भी तरीका बताएंगे हम। बहुत सारे तरीके बताते रहते हैं केक बनाने के, तो कोई अलग तरीका बताएंगे जिससे आप बिना ओवन के भी केक बना सकते हैं। लेकिन आज जो मैंने तरीका सिखाया है वो ओवन होगा तो ही बना सकेंगे। तो चलिए, बेसन का केक तैयार हो चुका है। अब आप लीजिए एक स्वच्छ थाली, थाली में आप केक रखिए और पूरी सब्जी जो भी बनाई है वो भी रख दीजिएगा थाली में, तुलसी पत्र और जल के स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए। ऊपर से स्वच्छ कपड़े को ढक करके आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद पूरे परिवार सहित, बच्चों सहित आनंद लीजिएगा बेसन के केक का और साथ ही साथ एक गीत का। तो सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं सामान्य जानकारी। देखिए, खूबसूरती निखारती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तब जो भी खूबसूरत होना चाहते हैं एक्सरसाइज जरूर करिएगा। और हर कोई यही चाहता है कि भाई मैं अच्छी दिखूं, सुंदर दिखूं, तो बस थोड़े से आलस्य को त्याग करके एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आप फिट एंड फाइन रहेंगे। पर आपको एक्सरसाइज ऐसे नहीं कि एक दिन किया, दो दिन किया, चार दिन छोड़ दिया, वो नहीं, आपको रेगुलर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर रेगुलर आप करते हैं तब तो आप अच्छी बात है। बाकी आप कहेंगे उषा जी ने बोला एक्सरसाइज करेंगे तो सुंदर हो जाएंगे, चार दिन, दस दिन या एक महीना तो हमने किया, कोई सुंदर ही नहीं हुए, तो फिर से हमने तो छोड़ दी। तो भाई ये आप करोगे तो मैं इसकी गारंटी नहीं लेती हूँ, ठीक है ना। आप रेगुलर करेंगे, रोज करेंगे, तो आप सचमुच स्वस्थ भी रहेंगे और स्फूर्तिवान भी बने रहेंगे, ठीक है ना। और कहते हैं कि सबसे बड़ी खुशी जब मिलती है तब हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो इसमें बहुत जनों की भी राय है, जैसे कि शोधकर्ताओं ने भी एक्सरसाइज करने और न करने वाली महिलाओं के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि एक्सरसाइज करने वाली महिलाएं शेप में रहने के साथ साथ ही ज्यादा मजबूत खुद को महसूस करती है। फिर दूसरी ओर देखा, एक्सरसाइज न करने वाली महिलाएं अपनी बॉडी शेप और लुक को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं रहती। दोनों ही तरह की सोच का असर महिलाओं के मूड और चेहरे के निखार पर पड़ता है। मेरी प्यारी बहनों, एक्सरसाइज करने वाली बहनें ज्यादा सकारात्मक और खुश होती है। रोजाना ब्रिस्क वॉक या जॉगिंग से त्वचा की रंगत बढ़ती है, ठीक है ना। क्या क्या फायदे है वो मैं आपको बता रही हूँ। दरअसल इस दौरान क्या होता है, दिल तेजी से पंप करता है और रक्त संचार बढ़ता है। ऐसे में त्वचा तक ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचता है जो शरीर के लिए काफी फायदा करता है, मददगार होता है। तो एक्सरसाइज करते समय जो पंपिंग होती है, जो शरीर में उस समय जो एक्सरसाइज होती है अंदर से हमारे शरीर की, सचमुच बहुत ही फायदेमंद है, जरूर आप करिएगा। और एक्सरसाइज के अलावा अन्य गतिविधियां जिससे रक्त संचार बढ़ता है, त्वचा को स्वस्थ रखने में फायदेमंद होती है, वो भी आपको मैं बता रही हूँ। एक्सरसाइज से तो फायदा है ही, लेकिन साथ ही साथ किन किन चीजों से फायदे हैं वो भी आप जानेंगे। अच्छी नींद, देखिए अच्छी त्वचा के लिए पर्याप्त नींद भी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करने से नींद भी अच्छी आती है। नींद के दौरान शरीर कुछ ऐसे हार्मोन का स्त्राव करता है जो उत्तकों को सुधारने या फिर उन्हें फिर से बनाने का काम करता है। और भी आप जानेंगे एलोवेरा, एलोवेरा जेल त्वचा को साफ करने के साथ ही पोषण भी देता है। रात में सोने से पहले ये जेल लगाइए और सुबह उठ करके धो लीजिए इस, और ये आप झाइयों पर भी लगा सकते हैं, तो इससे भी चेहरा चमक उठेगा और फायदा ही फायदा। एक्सरसाइज के साथ साथ ये भी आप कर सकते हैं। फिर आप देखिए आलू, विटामिन सी से भरपूर आलू प्राकृतिक ब्लीच की तरह काम करता है। आलू को पीस करके पेस्ट बनाइए और पूरे चेहरे पर लगा करके 30 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लीजिए। इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं, यह सूर्य की रोशनी से भी राहत देता है, ठीक है ना। तो कितने सारे फायदे हैं एक्सरसाइज के साथ साथ। एक्सरसाइज करते हैं साथ ही साथ ये भी नुस्खे आजमाते हैं तो सचमुच सुंदरता भी बढ़ती है स्किन की, और स्फूर्ति भी आती है, स्वस्थ भी रहते हैं, फिट भी रहते हैं, फायदे ही फायदे हैं। तो जरूर आप एक्सरसाइज करिए। तो ये आपको सामान्य जानकारी दी गई है, ध्यान रखिएगा। और अब आपको फिर से सुना देते हैं गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: घनश्याम मिश्रा, आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहे सुनाते रहे जन जन तक प्यार बरसाते रहे।
1: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही हैं, बहुत ही अच्छे घरेलू नुस्खे दिए हैं, जरूर आप ध्यान रखिएगा। और अगर इस तरह की बीमारी है तो इन नुस्खों को जरूर आजमाइएगा। खुशनुमा जीवन में सविता जी के साथ बहुत ही अच्छी बातें हुई है। श्रेष्ठ कर्म करेंगे और तो प्राप्ति भी श्रेष्ठ होगी, और कर्म तो करने ही है, इसलिए हमेशा कर्म प्रधान बने रहिएगा और कर्म करते रहिए, फल ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। और नए नए व्यंजन में आपको बेसन का केक बनाना सिखाया है तो ज़रूर बना करके खाइएगा। और सामान्य जानकारी भी बहुत ही अच्छी मिली है आप सभी को, एक्सरसाइज करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे और खूबसूरती भी निखरेगी। और जानने योग्य बात आपको बता रही हूँ, तन और मन में संतुलन बना सकता है योग। योग का उद्देश्य शरीर मन और आत्मा के बीच संतुलन अर्थात योग बनाना है। योग के उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुद्रा, ध्यान और श्वसन संबंधी अभ्यास की आवश्यकता होती है। योग की क्रियाओं में जब तन मन और आत्मा के बीच योग बनता है तब आत्मिक संतुष्टि, शांति और चेतना का अनुभव होता है। इसके अलावा योग शारीरिक और मानसिक रूप से भी फायदेमंद है। आज के अनमोल वचन इस प्रकार है, सर्व का सहयोग लेने के लिए पहले स्वयं सहयोगी बनना पड़ता है। अब मैं आपको होली पर एक प्यारा सा गीत सुनाऊंगी, आप लेंगे गीत का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खमा सा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

0: नमस्ते, ओम शांति। मैं हूं हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम है लव यू जिंदगी। जिंदगी पर न जाने कितनी शायरियां लिखी गई, न जाने कितने गीत बने, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जिंदगी को समझना इतना आसान नहीं है। वो गाना तो आपने सुना ही होगा, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। और सच में ये ना जाना कई बार मल्टीपल इमोशंस को ले आता है, और आज हम उन्हीं इमोशंस के बारे में थोड़ा और गहराई से जानने वाले, यानी खुद को बेहतर पहचानने वाले। और उसके लिए जुड़ गए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट। सबसे पहले हम स्वागत कर रहे हैं कल्पना जी का, जो कि ग्लोबल अस्पताल से सीधा जुड़ गई हैं, जो कि साइकोथेरेपिस्ट भी हैं, स्पिरिचुअल काउंसलर भी है, और समय प्रति समय हमें बहुत मदद करते रहते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू। बहुत बहुत खुशी हो रही है श्री जी से, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, हमारे श्रोताओं से मुखातिब होकर भी बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।
3: क्या हुआ, क्या हुआ?
4: कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है।
1: ये क्या होने वाला है, इसके साथ भी बहुत सारे इमोशंस जुड़े रहते हैं, इसीलिए गाने बनते रहते हैं, और तब भी ये सवाल सवाल ही रहता है कि क्या हुआ। और इन्हीं इमोशंस को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। दीदी, आपने इमोशंस आइडेंटिफाई करने के बारे में बहुत सारी बातें की थी कि सही इमोशन कैसे आइडेंटिफाई करें। फिर आपने ये भी बताया था कि किस तरीके से उसका एक मीटर होता है, एक मतलब किस लेवल पे है वो इमोशन, वो भी समझे तो टैकल करने में मदद मिलती है। अब एक सवाल है जो बहुत लोगों के मन में आता है, किसी किसी को ये लगता है कि मेरे अंदर एक सर्टेन इमोशन है ही नहीं। जैसे किसी किसी को लगता है मैं इतना कुछ देख चुका जीवन में कि संवेदना बची ही नहीं है, there is no compassion। तो क्या ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति के बाद कोई इमोशन, एक इमोशन ऐसा हो जो उसके अंदर बिल्कुल मर गया हो या खत्म हो गया हो या हो ही नहीं?
2: ऐसा तो नहीं होता है। इसके पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे माइंड का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। डिफेंस मैकेनिज्म वो सिस्टम है जिस चीज का माइंड को स्ट्रेस होता है, जिस बात से माइंड को तकलीफ होती है या थ्रेट महसूस होता है, उससे डाइवर्ट करने के लिए माइंड कुछ स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम जो है माइंड का, जिस बात से, जिस इमोशंस से आपको बहुत दुख दर्द महसूस होता है, तकलीफ होती है, उससे डाइवर्ट करने के लिए उस चीज के प्रति इम्यून बना देता है। और वो इम्यून बनना, लोग समझते हैं कि वो भावना ही नहीं है मुझ में। जैसे फॉर एग्जांपल, जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स भी अगर हम बार बार लेंगे तो वो हम उसके लिए एंटीबायोटिक एक समय आता है कि हमारे शरीर में वो काम करना बंद कर देंगे। उसी तरह से जब इमोशनल ओवरवेल्म होते हैं हम, किसी इमोशन से हम बार बार हर्ट होते जाते हैं, तब हमारा माइंड अपने डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम से हमें उससे डाइवर्ट करने के लिए उसमें इम्यून कर देता है कि बस अब इस इमोशन का एक्सपीरियंस करना ही।
1: तो यानी वो ऐसा है नहीं कि आपके अंदर वो नहीं है, किसी किसी को लगता है कि नहीं है, लेकिन आपने जैसा कहा कि वो सर्टेन आप इम्यून जैसे आप उससे हो गए, पर उसके एग्जिस्ट नहीं करता आपके अंदर, ये ना समझे इसको, वो इमोशन है ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते या समझ सकते। श्रीनिधि जी, आपसे मैं एग्जैक्टली ऑपोजिट बात पूछना चाहूंगी, क्योंकि एक कई बार ये भी प्रश्न आता है कि मेरे अंदर ये इमोशन इतना ज्यादा है कि बाकी उसके आगे कमजोर पड़ जाते हैं या वो मुझे इमोशन कंट्रोल कर देता है। किसी को लगता है कि मेरे अंदर मतलब इतना ज्यादा प्यार है या इतना ज्यादा जेलसी है कि वो कंट्रोल कर लेती है जैसे, और कोई इमोशन फील ही नहीं करने देती, भले कोई व्यक्ति बीमार है, परेशान है, पर दया नहीं आ रही है, इतना ज्यादा उसके प्रति वो घृणा है या जेलसी है कि वो इमोशन ओवरपावर कर लेता है। तो क्या उस समय कैसे मतलब आप इमोशंस को देखते हैं?
4: एक तो ये चीज रिकॉग्नाइज करने वाली है कि ऐसा हम लोगों के साथ होता है, और सभी लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग कुछ चीजों के लिए इम्यून हो जाते हैं। मैं इसके लिए एक दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा, खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब हम लोग काम करते हैं। पहली बार जब कोई व्यक्ति खून देखता है तो बहुत सारे लोगों को एक स्ट्रेस या एंजाइटी महसूस होता है कि किसी व्यक्ति का खून बह रहा है, फिर उसको कैसे रोके, क्या करें। समझ, ऐसे ही भावनात्मक

0: रूप से आप एक प्रेशर महसूस करते हैं आप खून देखते हुए, आपको वो एक अर्जेंसी, एक सेंस ऑफ एंजाइटी आपकी डेवलप होती है, आप एंक्शियस होते हैं कैसे कैसे हो गया, इसको हम कैसे रोके, इत्यादि सवाल मन में चलते रहते हैं। अब क्लिनिशियन की बात करें, एक नर्स की बात करें, एक डॉक्टर की बात करें, और वो लोग जब हर दिन इन एंड आउट लोगों के घाव को, लोगों के इंजरीज को देखते रहते हैं, तो उनके अंदर वो एंजाइटी अब उत्पन्न ही नहीं होती।
1: ओके।
0: क्योंकि उन्होंने उन घटनाओं को बहुत बार देख लिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो संवेदनशील नहीं है या वो आपके दर्द के प्रति उनकी संवेदनाएं व्यक्त नहीं कर रहे हैं, अपितु वो जो नेगेटिव उतार चढ़ाव होना चाहिए था, भावों में उद्वेग होना चाहिए था, वो नहीं होता।
1: Okay.
0: तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि आपने बार बार अपने आप को इन इमोशंस के लिए इतना एक्सपोज किया हुआ है, आप उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप समझते चलते हैं कि हाँ, इन चीजों में मुझे एंक्शियस होने की जरूरत नहीं, उद्विग्न होने की जरूरत नहीं इत्यादि। और जो बात आप कह रहे हैं उस बात पर भी मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी चीज से इतना ज्यादा परेशान हो गया होता है या उन भावनाओं को महसूस कर चुका होता है, तो उसके अंदर एक प्रकार की भावना शून्यता आने लगती है, वो उन चीजों के प्रति रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। अक्सर हम लोग एक स्टैंडर्ड एग्जांपल देते हैं, सिंपैथी की बात कही जाती है, ऐसी घटनाएं जहां पर देखकर लगता है ओहो ऐसा नहीं होना चाहिए था इनके साथ, हे भगवान ये कैसे हो गया, ओहो ये तो बहुत गलत हुआ, ये हम सिंपैथेटिक होके कोई चीजें कह देते हैं बहुत बार। इसके साथ साथ एक और चीज जो हम कहते हैं वो है एम्पैथी। एम्पैथी भी हम क्लिनिकल क्षेत्रों में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बहुत बार सिंपैथी का अर्थ ये होता है कि हम किसी की संवेदनाओं को समझने के लिए हम अपने आप को उनके शूज में डालने लगते हैं, उनका दर्द महसूस करने की कोशिश करने लगते हैं, हम रेजोनेट करने लगते हैं उनके पेन के साथ, फील दर्द उनको हो रहा होता है और हम भी उनके साथ उसी पेन को रेडिएट कर रहे होते हैं, और सिंपैथेटिक होने का अर्थ कभी कभार हम ऐसा समझ लेते हैं। इसलिए एक और स्टैंडर्ड शब्द यूज किया जाता है और क्लिनिकल एरियाज में हमसे और कस्टम सर्विस में हम इन चीजों को बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जब हम इसको कहते हैं एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे सिंपैथी नहीं रखता, इसका मतलब ये है कि मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ बट मैं आपके दर्द को खुद महसूस नहीं करना चाहता।
1: Okay.
0: मैं भी आपके साथ उस दर्द के फीलिंग्स को रेडिएट नहीं करता, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, सिचुएशंस को समझ रहा हूँ और उसको मैं पॉजिटिवली तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए एम्पैथेटिक तरीके से उस चीज को देखता, ये एम्पैथी है। और आप जो बात कह रहे थे वो एक और प्रकार की पैथी है जिसे हम एपैथी कहते हैं, जिसे मतलब मैं आपके ऊपर क्या हो रहा है इससे मेरे ऊपर जू तक नहीं रहेंगे,
1: इसके
0: हाँ असर ही नहीं पड़ता। अक्सर हिंदी में हम ये चीज कहते हैं, कहावत के रूप में भी लोग कह देते हैं, ऐसे ही मुहावरों के रूप में भी इस्तेमाल होता है, लोग कह देते हैं जो हर दिन मर रहा है उसके लिए रोए कौन। तो बार बार आपने कुछ ऐसी चीजें देख ली हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को शुष्क बना लेते हैं, आप उसके प्रति कोई संवेदना ही नहीं दिखाना चाहते, और ये भी चीज होता है और ये चीज समझने की जरूरत है। और क्या ये चीज अच्छी है या बुरी है, मैं समझता हूँ कल्पना जी बेहतर गाइड कर पाएंगे और हमारे कुछ श्रोता इस बात को समझकर खुद ही देखना चाहेंगे कि हमें एपैथी रखनी चाहिए, एम्पैथी रखनी चाहिए या सिंपैथी।
1: जरूर ये चीज कल्पना जी से जानना चाहेंगे, तीनों शब्दों में से क्या।
2: बिल्कुल श्री जी बहुत सही बात कर रहे थे कि जैसे मैं हूँ काउंसिलर हूँ
1: जी,
2: मुझे क्या रखना चाहिए, एम्पैथी रखनी चाहिए, सिंपैथी रखनी चाहिए, क्या रखना चाहिए। अगर मैं सिंपैथी रखती गई तो लोग जो दुख दर्द लेकर आ रहे हैं वो शायद मुझे अफेक्ट करे, लेकिन एम्पैथी रखती हूँ तो मैं अफेक्ट किए बिना, अपने आप को अफेक्टेड किए बिना उनको हेल्प कर पाती हूँ। तो एम्पैथी में एक डिटैचमेंट होती है, दूसरे के दर्द को हम समझते हैं बट महसूस नहीं करते। महसूस करने का मतलब उनके हाथ में कितना पेन हो रहा होगा, उनको मन में कितनी उलझन होगी, ये मुझे अच्छी तरह से पता चल रहा है बट वो सेम चीज मैं महसूस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे उनको हैंड होल्डिंग करना है, उनको मुझे मदद करनी है। अगर मैं भी महसूस, कोई मेरे सामने बैठ कर रो रहा है और मैं भी रोना शुरू कर दूं तो कौन किसको हेल्प करेगा।
1: सही बात है,
2: सही बात है ना। तो ये श्री जी समझाने की कोशिश करते हैं अपने इमोशंस को समझते समय, जब आपका रोल समझो माता पिता है, बच्चों की कोई प्रॉब्लम है, अगर माता पिता अफेक्टेड हो जाते हैं, वो भी घबरा जाते हैं, तो वो कैसे हेल्प कर पाएंगे बच्चों को। मेरे सामने ऐसे कई माता पिता आते हैं जो वास्तव में डरे हुए होते हैं अपने बच्चों की फेलियर से, परंतु वो बच्चों को कहते कोई बात नहीं बेटा, इस बार फेल हो गए, अगली बार तुम जरूर पास हो जाओगे या अचीव कर लोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। बट जब अंदर से मैं उनको पूछती हूँ कि आपने ऐसा कहा तो आपको कुछ अफेक्ट नहीं हुआ, तो कहा नहीं हम अफेक्टेड हुए लेकिन हमने बताया नहीं, दिखाया नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हमारा बच्चा घबरा जाए।
1: ऐसा कई बार माता पिता करते ही हैं क्योंकि वो दर्द समझते हैं और हमसे ज्यादा बेहतर कई बार समझते हैं, लेकिन वो उठा नहीं पाएंगे, जैसा आपने कहा हेल्प नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशन में अदरवाइज। तो दीदी एम्पैथी कहाँ आती है यहाँ पे, जैसे एम्पैथी की बात हुई, इसके बाद एक और जो शब्द आता है ये, इसका अगर थोड़ा सा मीनिंग आप बताएं।
2: एम्पैथी आप हर रोज इस चीज को यूज करते हैं एक्चुअली, पर हमें नाम देने नहीं आता है। तो ये चीज सिंपथी एम्पथी से ऊपर, एम्पथी को जो हम कहते हैं कि बीच का है, कि जैसे पर्सनालिटीज को जब हम देखते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं
1: जी,
2: कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, है ना, अपने एक्सप्रेशंस को फीलिंग्स को बहुत ओपनली शो करते हैं और कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपने एक्सप्रेशंस अपने फीलिंग अपने इमोशंस को इतना शो नहीं करते हैं
1: जी,
2: या कम बोलते हैं। तो उसके बीच में एक पर्सनालिटी टाइप होता है, उसको कहते हैं एम्बिवर्ट।
1: ओके,
2: मतलब दोनों का बैलेंस रखकर चलने वाले, जहां जरूरत है वहां चुप रहने वाले, जहां जरूरत है वहां एक्सप्रेस करने वाले, उसको कहते हैं एम्बिवर्ट। तो हमारा लक्ष्य ये होता है कि हम बीच में चले, मॉडरेट रहे, है ना,
1: मॉडरेशन बैलेंस कहीं ना कहीं उसमें आ जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसा आपने कहा दीदी, बहुत बार हम करते हैं मगर हम उसका नाम नहीं जानते, तो हम उसे कह नहीं पाते कि ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या ये महसूस कर रहे हैं। तो एक और सवाल है मेरा यहाँ पर कि आपने बताया एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट्स अलग अलग होता है, जैसे मान लीजिए कोई आप एक रेटिंग सिस्टम की भी हमने बात की थी इमोशन की, यूजुअली वैसे तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, मतलब कई बार ये माना जाता है कि जो लड़के होते हैं वो उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं अपने इमोशंस को लेके, लड़कियां ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाती हैं। तो मान लीजिए कोई बहुत रो रहे हैं या बहुत परेशान है, तो समझ में आता है कि हाँ इसकी रेटिंग शायद 8 पे होगी या 9 पे होगी या 7 पे होगी उस इमोशन की जो वो फील कर रहे हैं। पर वहीं पे मान लीजिए एक लड़का है जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, जो सीधे खड़ा है, बहुत पेनफुल सिचुएशन है लेकिन वो सीधे खड़ा है, तो उसमें वो किस अनुसार उसको रेट करे, या सामने वाले को तो कई बार पता भी नहीं चलता कि उसके अंदर किस लेवल तक वो पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
2: राइट, इसको हम एक शब्द से समझ सकते हैं, उसको कहते रेजिलियंस। हर एक की जो टॉलरेंस की सहन करने की शक्ति होती है वो अलग अलग होती है। कुछ लोग थोड़ा सा कट जाए, थोड़ा सा लग जाए, बहुत ज्यादा उसको फील करते हैं और शो करते हैं, बट कुछ लोग उसे सहन कर जाते हैं, उनकी सहन करने की शक्ति कुछ ज्यादा होती है। तो वैसे ही हमारे जो इमोशनल एक्सप्रेशंस हैं या इमोशनल मैच्योरिटी है, वो हर किसी के अलग अलग लेवल पर हो सकती है। किसी को किसी बात के लिए हर्ट हो सकता है, उसी बात को दूसरा व्यक्ति बोल सकता है तो नॉर्मल है, इसमें क्या बड़ी बात है, या फिर उस चीज के प्रति हमारा नजरिया कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, बॉस और उसका एम्प्लॉय, अगर बॉस ने डांटा तो एम्प्लॉय को फील होगा ना, जरूर
1: जी
2: जरूर होगा, मैं तो ठीक था, मैंने तो ठीक किया था, फिर भी डांटा। जब वो एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के पास जाता है और बोलता है कि देखो आज मुझे बॉस ने बिना वजह डांट लिया, तो दूसरा एम्प्लॉय क्या कहेगा, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, वो तो सबको डांटते हैं, जब उनको स्ट्रेस होता है वो सबको डांटते हैं। और तुम्हें बिना वजह नहीं डांटाऊंगा, कोई कारण होगा, उनके माइंड में कोई ऐसी बात चल रही होगी, आपसे उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी।

0: होते हैं। एक बच्चा रिबेलियस हो जाता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत मारा है या एक बार मारा है, इसलिए वो रिबेलियस हो जाता है और वो प्रतिकार करने लगता है माँ बाप को। लेकिन दूसरा बच्चा कहता है, अरे माँ बाप है, उन्होंने जन्म दिया है, हमारी अच्छाई के लिए तो उन्होंने मारा होगा ना, तो वो उसे पॉजिटिवली लेता है। तो ये हर एक की क्या मैं कहें, जेनेटिक्स है, एनवायरमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है।
1: जी
0: सो हमें इसमें लेना क्या है, ये सारे एग्जाम्पल्स सामने रखने का एक ही पर्पस है कि अगर हमें इमोशनल मेच्योरिटी की लेवल पर पहुंचना है तो हमें रिस्पॉन्स करते समय रिएक्टिव नहीं होना है, लेकिन प्रोएक्टिव होके पॉजिटिवली उस चीज के दूसरे साइड को देखते हुए उसे उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना है। प्रोएक्टिव होना है, रिएक्टिव नहीं। रिएक्शन का मतलब है आपने किया, रिफ्लेक्स में मैंने भी कर दिया, नहीं। प्रोएक्टिव का मतलब, अच्छा आपने मुझे ये कहा, ओके इसका एक्सप्लेनेशन ये है और इस वजह से ऐसा हुआ, सो मैंने उसका जवाब दे दिया और मैं पीसफुल रही। तो ये है इमोशनल मैच्योरिटी का लेवल। अच्छा एपथी की बात मैं अभी और कहूंगी, एपथी मैंने कंप्लीट नहीं किया है, बट आगे आप पूछ सकते हैं।
1: तो एक तो ये एस्पेक्ट हो गया जो आपने बताया दीदी, कि किस प्रकार से एक व्यक्ति ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, कम हो रहा है सेम सिचुएशन में। अगर एक एक्सप्रेस ज्यादा कर रहा है, इफेक्ट दोनों बराबर हो रहे हैं, लेकिन एक एक्सप्रेस ज्यादा कर रहा है और एक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, एक रो दे रहा है, आंखों से आंसू ला दे रहा है, पेन 8 नंबर पे है मे बी उसका, दूसरे वाला का भी 8 नंबर पे है, पर वो आंखों में आंसू नहीं ला पा रहा, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो दोनों में से क्या इमोशन को बेटर हैंडल कर कौन रहा है, या फिर वो 8 नंबर का इमोशन आइडेंटिफाई करना क्या जो आंसू आ रहे हैं उसके लिए आसान है, जो रो नहीं रहा उसको तो लगेगा ही नहीं कि इतना पेन, सामने वाले को तो एटलीस्ट नहीं पता चलेगा कि इस लेवल पे वो पेन एक्सपीरियंस कर रहा है।
0: हर एक की पेन बेरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, किसी का तरीका बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होने का होता है और किसी का ओके ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस ना करते हुए वो अंदर ही अंदर हैंडल करते हैं। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि फलाना सप्रेस कर रहा है अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा है तो, और एक व्यक्ति बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर रहा है तो वो सही है, ऐसा नहीं कह सकते हैं।
1: okay.
0: हर एक का अपने अपने इमोशंस को हैंडल करने का अलग अलग तरीका हो सकता है, बट साइकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें तो सही जगह पर सही तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की खुद को ट्रेनिंग देना, ये एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है।
1: ओके आशिंद्री जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें?
2: मैं एग्री करता हूँ कल्पना जी की इस बात से कि हर व्यक्ति उसी अमाउंट ऑफ स्टिमुलस के लिए अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड कर सकता है, और कल्पना जी ने बहुत सुंदर तरीके से ये शब्द का उपयोग किया कि हम रिएक्ट नहीं करें, और मैं समझता हूँ रेस्पॉन्ड एक बहुत ही सुंदर शब्द है अंग्रेजी में, हम हिंदी भाषा में शायद मैं इसको सही तरीके से तर्जुमा ना कर पाऊं, क्रिया के लिए प्रतिक्रिया कर देना, रिएक्ट कर देना हो सकता है, बट रेस्पॉन्ड करने का अर्थ ये है कि आप तुरंत प्रतिक्रिया पे नहीं आते, आप बीच में सोच समझ करके रिस्पॉन्ड करने के लिए सोच सकते हैं। और जैसा कल्पना जी कह रहे थे कि हाँ हो सकता है मेरे लिए ये जो दर्द आज मैं महसूस कर रहा हूँ बहुत ज्यादा दर्द ना हो, चीज को मैं बेहतर हैंडल कर पा रहा हूँ, हो सकता है मैं उस प्रकार के दर्द को अनुभव कर चुका हूँ पहले, कि मैं उस चीज को पहले हैंडल कर चुका हूँ, आज उसी प्रकार के सिचुएशन शायद जैसे आप कह रहे थे कि ये 10 में से 8 नंबर का ये दर्द का माप है और वो माप अभी वापस मेरे पास है, बट क्योंकि मैंने 9, 10 में से 9 डिग्री तक का पेन झेला हुआ है तो शायद मैं इस 8 के लिए इतना ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा या उस तरीके से मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, या फिर मैं बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करना समझ पा रहा हूँ। और एक व्यक्ति जो पहली बार लाइफ के उस सिचुएशन में है, उस प्रकार के दर्द को महसूस कर रहा है, तो वो सकंप करेगा, उसके लिए रोना या उस दर्द को सहन नहीं कर पाना, चिल्लाना या अलग अलग तरीके से वो उस दर्द को प्रकट करने की जो तैयारियां कर रहा है या वो जो चीजें प्रतिक्रिया के रूप में दिखाई दे रही हैं वो हो सकते हैं वो अलग हों, और जैसे

0: जी कह रहे थे, मैं इस बात से 100% वाबस्ता हूँ कि हर एक इंसान अलग है। मेरी दर्द को सहन करने की क्षमता अलग हो सकती है, और मैं सिर्फ दर्द की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई आपका मजाक उड़ाए समझ ले, कई लोग होते हैं वो उस मजाक को भी मजाक में ले लेते हैं, वो अपने ऊपर भी मजाक करना जानते हैं। और कई लोग होते हैं उनको अगर किसी ने उनके लिए कुछ भी कह दिया, आज ये कह दिया कि ओहो क्या कपड़े पहन के आए हो, कहां से आए हो, इसी प्लेनेट से हो क्या, इतना भी अगर कोई कह दे तो उनका पूरा दिन का मूड खराब हो जाता है, वो शायद आधे दिन की छुट्टी लेके वापस घर चले जाएं।
1: इतना
0: और
1: ज्यादा
0: कई लोग ऐसे
1: सुपरफिशियल।
0: होंगे वो बोले अरे कपड़े से क्या लेना देना, मेरे काम से मतलब रखना तुम, ये भी कहने वाले लोग हो सकते हैं। चीज वही है, मगर उस चीज के प्रति हमारी संवेदनाएं कैसी हो सकती हैं उसमें अंतर है। और इस यूनिकनेस को समझने की जरूरत है कि हर व्यक्ति का एक जेनेटिक बिल्ड, जैसे कल्पना जी पहले भी कह रहे थे कि जिस तरीके से परवरिश हमारी हुई है, जिस वातावरण में हम पले बड़े हैं, हमारी शारीरिक मानसिक संरचनाएं जैसी हुई हैं, वो सब कुछ इन चीजों पर असर करती हैं। और इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि सब लोगों को उसी एक पैमाने से नापा जाए।
1: बिल्कुल। और ये बड़ी सुंदर सी बात है, इसलिए हर एक को अपने को समझना जरूरी है। एक कैटेगरी में सबको बांधा नहीं जा सकता, जनरलाइज नहीं किया जा सकता। भावनाओं में भी यही बात है।
0: और कल्पना जी इस बात से एग्री करेंगी कि जब वो एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते, साइकोलॉजी में जब लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, उनके पास काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, तो वो हर मरीज को एक इंडिविजुअल की तरह देखती हैं। वो शायद ऐसा नहीं देखती होंगी कि पहले जैसा मरीज जैसा ये क्यों नहीं है, ऐसा वो नहीं सोचते। वो हर
1: चाहे वो
0: एक
1: सेम सिचुएशन में हो, लेकिन
0: सेम
1: जरा सोच।
0: सिचुएशन में क्यों ना हो।
1: बहुत सुंदर बात है, और मुझे लगता है बहुत कुछ जानना है मुझे आप दोनों से, क्योंकि आज हम बहुत सारे केसेस देखते हैं, बच्चों में देखते हैं कि एक इमोशन इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है, संभाल नहीं पाते, गलत स्टेप भी ले लेते हैं। तो वहां कैसे इमोशंस को हम बैलेंस कर रहे हैं या समझ रहे हैं वो भी जानेंगे। एपैथी क्या है और उसको, उसके बारे में भी जानेंगे, और इस तरह से अपनी भावनाओं को और बेहतर समझने का हम प्रयास करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल, क्योंकि इस एपिसोड में हमें यहीं तक का समय मिल रहा है, इजाज़त लेने का समय आ रहा है, तो अंत में कल्पना जी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हम थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकें, खुद को बेहतर समझ सकें, एक मोमेंट निकाल सकें, तो उसमें क्या मेडिटेशन प्रैक्टिस करें जो हमें हेल्प करे।
2: जी बिल्कुल। मैं अनुरोध करूंगी अपने श्रोताओं से कि वो जहां कहीं भी हैं, केवल 2 मिनट के लिए समय दे अपने आप को और रिलैक्स होकर किसी निश्चित स्थान पर बैठ जाए। गहरी और लंबी सांसें ले, अपने सांसों को भीतर जाते हुए बाहर आते हुए अच्छी तरह से महसूस करें। अपने आप से जुड़ाव महसूस करें। हर सांस के साथ स्वयं को फील करें। थोड़ा सा भीतर जाते हुए महसूस करें कि इस समय मेरे विचार क्या है और मेरी भावनाएं किस तरह की है। अब जब मुझे पता चला है कि मेरे विचार ये है और मेरी ये भावना है, तो मैं थोड़ा सा उन्हें टर्न करूंगा या करूंगी पॉजिटिविटी की तरफ, उस फ्लो को मैं ले जाऊंगी कुछ विचारों के साथ। गहरी और लंबी सांस लेते हुए अपने मन में विचार दोहराएं कि मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं शक्तिशाली हूं। इस विचार को मन में 3 बार दोहराए, मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं शक्तिशाली हूं। जैसे ही मन इस बात को मानने लगेगा, मुझे खुशी का अनुभव भीतर से होने लगेगा, मेरी भावनाएं खुशी का अनुभव करने लगेगी, संतुष्टता का अनुभव, शक्ति का अनुभव। गहरी और लंबी, और अपने आप से वादा करें, मैं अपने विचार और अपनी भावनाओं को समझने का प्रयास सतत करता रहूंगा। मेरे विचार, मेरी भावनाएं समझने के साथ साथ मैं दूसरों के विचार और उनकी भावनाओं को भी समझने का प्रयास करूंगा। मैं लोगों को बदलने से पहले उन्हें समझने का प्रयास करूंगा। गहरी और लंबी सांस ले और मन में विचार करें। मैं सुनूंगा, समझूंगा और औरों को सम्मान भी दूंगा। फिर से एक बार अपने आप को याद दिलाए, मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं, शक्तिशाली हूं। इन विचारों को बीच बीच में दोहराते रहे, अपनी भावनाओं को महसूस करते रहे। धन्यवाद।
1: मुझे लगता है ये जो आपने विचार दिए, इन्हें हम दीवार पर कहीं लगा भी सकते हैं लिखकर, ताकि वो बार बार हमें याद आते रहें और वो अनुभव हम बार बार करते रहें जीवन में, क्योंकि एक बार से नहीं होगा, प्रयास लगातार करना होगा। फिलहाल लेते हैं इजाजत और अपने दोनों एक्सपर्ट्स को करते हैं हम धन्यवाद कि हमें आपने गाइड किया और बहुत सिंपल तरीके से जो हम कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है और किस प्रकार से अपने आप को अलग समझना है, किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना है, ये भी हमने समझा आज। तो इसी के साथ जिंदगी को कहते हैं कि लव यू जिंदगी, और मिलेंगे लव यू जिंदगी के अगले एपिसोड में फिर से एक बार दूसरे सवाल और जवाबों के साथ। रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

उम्मीद की किरणों पर जब धूल की चादर जमने लगे तो उलझने आने लगती हैं। रेडियो सुनने वाले तमाम श्रोता बंधुओं को स्वर्णलता करती है आगाज। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुलदस्ता में। ऐसे उलझनों को सुलझाने के लिए आ जाती हूँ हर सप्ताह लेकर कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें मनोरम गीत, मनोरम फसाने, मनोरम दिल के भाव हम आदान प्रदान करते हैं। साथियों, आज के प्रोग्राम में आप सुनेंगे दिलकश तराने, दिलकश फसाने। और जब जिंदगी में उलझने आने लगती हैं, तब उम्मीद की किरणों को बुझने न दें, उन्हें हमेशा अपने साथ बनाए रखें। इन्हीं शुभ बोलों के साथ सुनते हैं, मुस्कुराते हैं और रेडियो मधुबन पर हम कायम रहेंगे 10 बजे तक, सुनते हुए मुस्कुराते हुए।

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है, वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पड़ती होगी, क्यों ना हम उसे पढ़ाएं।
2: निराशा, स्ट्रेस, वरीज, उलझने ये हमें रोकती हैं उड़ने से, मन को उड़ने से। ये सारी जो बातें हैं वह उड़ने नहीं देती। मन को उड़ाने के लिए हौसला, उम्मीद, इसे अपने साथ पकड़ कर रखें और साथ रहें इस कार्यक्रम में। फ्रेंड्स, एक सादा जीवन हो, एक समस्या रहित जीवन हो, कौन नहीं चाहता। और उस जीवन को पाने के लिए हम सब उड़ते रहना चाहते हैं। उड़ने के लिए हमेशा याद रहे कि हम अपनी उम्मीद को बनाए रखें। साथ रहिएगा अंत तक और सुनते हुए मुस्कुराते हुए इन गीतों का आनंद भी लें और जीवन में खुशियों का खुराक भरते रहें। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोता हैं स्वर्णलता के साथ कार्यक्रम गुलदस्ता में।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

रोशनी की तलाश रहती है। और ऐसे में जो आशावादी होता है, जो आशा की किरणें आपकी जिंदगी में लेकर आता है, जो आशा भरी बातों से आपको मोटिवेट करता है, और बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके इर्द गिर्द होते हैं, जो आपको रोशनी देते रहते हैं, ऐसे लोगों को कोई खोना नहीं चाहता। तो ऐसे लोग अगर आपके जिंदगी में आ रहे हो, उन्हें पहचान लें, उन्हें जाने ना दें, उन्हें दिल से अपने साथ पिरो कर रखें। यही तो कला है। अपने जो नॉर्मल वाले जीवन से जब हम थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं, ऐसे में ऐसे साथी बहुत हेल्प करते हैं। और कौन हेल्प करता है, यह तो हम सब जानते ही हैं। तो रहिए स्वर्णलता के साथ और बिंदास उड़ते रहिए, उड़ाते रहिए, जीवन भर हम सब मिलकर उड़ते रहें।

ओम शांति। मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

तुम्हारी इबादत ही हमारी आदत बदलती है, तुम्हारी आदत हमारी बन जाती है और तुम्ही को पुकारती है, तुम्ही को याद करती है। तुम्ही तो आशा और विश्वास की एक झोली हो, तुम्ही तो आशा और विश्वास की झोली हो, तुम हमारी जिंदगी को रोशनी में लेकर जाते हो, इसीलिए तो तुम याद आते हो, तुम याद आते हो। तो आज के प्रोग्राम में आपके लिए है उलझनों से रोशनी तक जाने के लिए कुछ ऐसे गीत जो सहारा बनकर हमारा साथ दे रही हैं शुरू से लेकर अंत तक। फ्रेंड्स, गीत भी साथ देते हैं और चुनौतियों में अपने अपनों के साथ साथ ऐसे लोग भी साथ देते हैं जिनके पास कुछ अनुभव होते हैं और वह अनुभव समय पर काम आते हैं। ये लोग हमेशा हमें नहीं मिलते, पर चुनौतियों के वक्त में अचानक मिलते हैं, वह आपको साथ देते हैं। तो ऐसे लोगों की हम कदर करें। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पर जाना था और रास्ते में कोई व्यक्ति आपको सही गाइडेंस दे दिया। मान लीजिए आप स्कूल गए, किसी पेरेंट्स से बात करके आपको रोशनी मिल गई। मान लीजिए आप अस्पताल में गए, वहां किसी से बात करके आपको सही रास्ता मिल गया। तो ऐसे लोग क्या आपको याद नहीं आएंगे? क्या आपको इनकी कदर नहीं करनी चाहिए, रखनी चाहिए ना? तो बने रहिए और सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: आशा, विश्वास और आस्था का स्तंभ हो आप, तात मात तुम बंधु भ्रात हो, तुम ही ज्योति प्रकाश हमारे, जिन्हें ही हम अल्लाह खुदा नूरे खुदा गॉडफादर कहते हैं। वह हमें हर पल दिशा दिखाते हैं, पर उनके साथ कौन होते हैं? उनके साथ वह होते हैं जिनको उन्होंने यानी परमात्मा ने हमारे साथ जोड़ा हुआ होता है। जीवन की चुनौतियों में, विपत्ति में या आपदाओं में हमें कई बार समझ नहीं आता कौन हमें हेल्प करने वाला है, पर जब आप उस चुनौती के अंदर अपने आप को लेकर जाते हैं तो सभी समस्याओं का हल वह सामने रख देता है। समस्याओं में हमें एक कदम आगे बढ़ाना ही है, तब देखेंगे ये समस्याएं कैसे छूमंतर हो जाती हैं। उन समस्याओं में होते हुए भी आपको लगेगा कि यह तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सफर तो सभी हैं जो आपको राह दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा हम सफर है खुदा परमात्मा, जिनको हम साजन भी कहते हैं। और भी बातें होंगी आज के कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सदा बने रहिए।

0: याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: कर साहिब से प्रीत इसलिए नहीं कि वह हमें धन धान्य से भरपूर करता है, वह तो है ही, पर वह हमें यह भी सिखाता है कि जब भी विपत्ति आपत्ति आती है तब निर्भय होकर आगे बढ़ो, सामना करो। संसार नश्वर है, नश्वर संसार और दिखावटी रिश्तों के बजाय अपने मन को उस परमात्मा परमेश्वर के प्रेम में, साहिब के प्रेम में लगाना चाहिए। पर हमें दूसरों की मदद भी करनी चाहिए, यह भी परमात्मा हमें सिखाते हैं। सिर्फ हम उसको याद करें यह तो सही है, पर उसकी याद में परमार्थ का कार्य भी करें और उसके द्वारा भेजे गए कई हम सफर, जी हाँ वह तो सबसे बड़ा हम सफर है, पर उसके द्वारा भेजे गए कई हम सफर हमारी राह देख रहे हैं, वह हमारी मदद करते हैं। तो ऐसे मदद करने वालों को भी हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं उनके प्रति, और उनके द्वारा किए गए मदद का रिटर्न कुछ भी नहीं होता सिवाय दुआओं के।

0: This is Uma Shankar Mishra, former director CBI, and you are listening to Brahma Kumari's community radio station. Radio Madhuban, keep listening, keep smiling.
1: मोहे सत डगरिया दिखा दे बैया पढ़ूं, ऐसे हम कहते हैं भगवान को, जो कि सच्चा सच्चा गुरु है। वैसे हम अपने जीवन में आसपास जब देखते हैं तो हमें लगता है कि दिखावटी रिश्ते बढ़ गए हैं और प्रोफेशनल्स जो अपनी दक्षता से समाज में सेवा कर रहे हैं उनके प्रति भी हमारी धारणाएं कुछ आशंका से भरी हुई होती है कभी कभी। पर हम ऐसी आशंकाओं को मन से छुमंतर कर दें, हमेशा के लिए दूर कर दें। दोस्तों, कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं, भले ही वो पैसा लेते हैं, वो लेंगे ही क्योंकि वे स्किलफुल हैं, पर वो जो सेवा दे रहे हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं, वो हम कर नहीं सकते। जो कार्य वो कर रहे हैं, घृणा, भय और जो भी मन की कुरीतियां हैं उनको दूर हटाकर वो जो सेवाएं देते हैं, उन सेवाओं के बदले यह पैसा कुछ भी नहीं। जब हम ऐसी मनोस्थिति को बनाएंगे तब सच्ची सच्ची हमारी जो धारणाएं हैं, मन की जो चेतना में बैठी हुई आशंकाएं हैं, वह दूर हो सकती हैं। तो ऐसा तो करने वाला, सिखाने वाला एक भगवान ही है। उसके संग में हमारे मन की आशंकाएं दूर हो जाती हैं। बने रहिए स्वर्णलता के साथ, कार्यक्रम है गुलदस्ता।

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं।
1: मैया मोरी मैं नहीं मां खायो,
0: ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: प्रिय साथियों, जिनके पास टैलेंट है, स्किल्स हैं, जिनके पास समय आने पर दूसरों को राहत देने की ताकत है, जो इस कार्य में स्किलफुल हो जाते हैं, उनके प्रति हमारा आत्मिक भाव बहुत ही सहजता से बढ़ जाता है और ऐसी आत्माएं हमारे लिए बहुत तोहफे भी लेकर आते हैं राहत के रूप में। रेडियो सुनने वाले सभी श्रोता बंधु हैं स्वर्णलता के साथ कार्यक्रम गुलदस्ता में, और अब हम आखिरी मोड़ पर आ गए हैं और इस आखिरी मोड़ पर हम आपको यही बताना चाहेंगे कि बहुत सारी ऐसी बातें जीवन में आएंगी जिसे बारीकी से जब हम ऑब्जर्व करेंगे उस प्रभु की याद में, उस प्रभु की याद में रहते हुए उसके द्वारा सिखाए गए जो भी नुस्खे हैं, जो भी ज्ञान की बातें हैं, उसको जब हम मैच करते हैं ऑब्जर्वेंट हो करके, तब हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी स्किलफुल बातें भर जाएंगी जो हमारे पास नहीं थी। दोस्तों, दूसरों से सीखने के लिए, दूसरों से समाने के लिए और उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए बहुत सारी बातें होती हैं। तो सच्चा सच्चा हम सफर प्रभु हमें दूसरे ऐसे लोगों को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित करते हैं, सिखाते हैं। तो स्वर्णलता को आज इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगी अगले सप्ताह, और खुदा नूर को हमेशा अपने में समाए रखें ताकि बदलते जीवन को हम समझ पाएं। सुनते हुए मुस्कुराते हुए।

0: अरावली की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम वंदे मातरम। आपकी अपनी उषा के साथ वंदे मातरम सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको ऐसी नारी शक्ति से मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है सुंदर वैष्णवी, और आप आबू रोड में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट में आप पुलिस के पद पर कार्यरत है। आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और पढ़ाई में काफ़ी होशियार रहे हैं, व्यावहारिक है, सभी के साथ बहुत ही प्रेम से रहते हैं, और भी आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं जो हम आपके द्वारा ही जानेंगे। तो सुंदर जी, आपका स्वागत है वंदे मातरम कार्यक्रम में।
1: थैंक यू। मेरा नाम सुंदर विष्णुई है, मेरे पिताजी का नाम गंगाराम जी विष्णुई है। मैं जालौर जिले में सांचौर तहसील में सांकड़ गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी टीचर है। मेरे पिताजी के हम तीन संतान हैं जिसमें मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे से एक बड़ी बहन है और एक मेरा भाई है। मैंने 10th क्लास तक मेरे गांव सांकड़ में ही पढ़ाई की थी और 11th 12th में मेरे गांव में सीनियर स्कूल नहीं होने की वजह से मैंने रानीवाड़ा में पढ़ाई की थी जो मेरे गांव से 20 किलोमीटर दूर था। 2005 में मैंने 12th क्लास पास की थी। उसके बाद में मैंने कॉलेज सांचौर से की थी। हमारे सांचौर में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं थी, प्राइवेट कॉलेज से ही मैंने फॉर्म अप्लाई किया था।
0: जी सुंदर जी, आपकी ये बातें बात की तो हम जरूर सुनेंगे। हम थोड़े बचपन की तरफ आपको ले चलते हैं
1: जी।
0: आप भाई बहन कैसे रहते थे?
1: मैं सबसे छोटी थी मेरे पिताजी के
0: जी,
1: और मेरा भाई मेरे से 15 साल बड़े थे। तो मेरा भाई ज़्यादातर बाहर ही पढ़ाई की थी, 10th तक मेरे साथ में रहे थे तब मैं छोटी थी। मेरी सिस्टर है जो मेरे साथ में रहती थी, मुझे स्कूल भेजती थी।
0: आपके सिस्टर भी बड़े, आप सबसे छोटे रहे?
1: हाँ, मैं सबसे छोटी
0: हूँ। क्या बात है, सभी का प्यार आपने लूटा
1: जी। मेरे भैया ने कॉलेज जालौर से की थी तो वो बाहर ही रहते थे, जब छुट्टियां होती थी तब घर पे आते थे, तो मेरे लिए कुछ छोटी छोटी गिफ्टें लेके आते थे।
0: अरे वाह।
1: ऐसे मुझे जैसे चित्रकला में मेरे लिए ड्राइंग बनाते थे मेरे भैया, उसमें फिर स्कूल में चेक करवाती तो मुझे उसमें वेरी गुड मिलता था। उससे मुझे
0: तो स्कूल में पूछते नहीं कि किसने बनाया ये चित्र?
1: नहीं पूछते थे, पर उनसे सारी लड़कियां मैं बनाती तो फिर उनसे वापस उसी चित्र को बनाती। एक मेरे भैया, मुझे याद है, एक घोड़े का फोटो बनाया था मेरे भैया ने चित्रकला में।
0: अच्छा।
1: तो वो खूब सारी लड़कियों ने उसका उसको देख के सभी ने अपने बुक में वही फोटो बनाया था।
0: हाँ जी। और सबको अच्छा लगा?
1: सबको अच्छा लगा था वो।
0: अच्छा। और आपको किस तरह की हेल्प मिलती थी, और टीचर को कभी पता चला कि आप तो सब कुछ अपने भैया से करवाते हैं?
1: नहीं, ऐसा कोई पता नहीं चला। कभी अच्छा। कभार भैया आता था, एक आध बार ऐसे किया था, बाकी उससे मुझे सीख मिली किस तरह से करना काम, किस तरह से पढ़ाई करनी। अभी मेरे भैया जो 96 में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे उनको पोस्टिंग मिली थी।
0: अच्छा।
1: पहले मेरे भैया टीचर थे, जो टीचर की नौकरी छोड़ के उसमें सेलेक्ट हुए सब इंस्पेक्टर में।
0: अच्छा।
1: जो अभी DYSP की पोस्ट पे है डिस्ट्रिक्ट भीलवाड़ा में मांडलगढ़।
0: अच्छा जी जी जी, बहुत बढ़िया। तो आपके परिवार में सभी जॉब करते भाई बहन आप सभी?
1: मेरे पापा टीचर थे जो रिटायरमेंट हो गए, मैं और मेरे भैया जॉब करते, बाकी बड़ी सिस्टर है जो वाइफ हाउस है।
0: अच्छा, हाउस वाइफ है। जी जी जी, चलिए बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आपके पापा जॉब करते थे इसलिए उन्होंने आपको मोटिवेट किया।
1: जी
0: जी।
1: 2005 में कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई थी उसमें मुझे मेरे भैया ने मार्गदर्शन दिया कि आप भी फॉर्म अप्लाई कर दो, तो मैंने भी फॉर्म अप्लाई किया और उसमें एग्जाम दिया तो रिटर्न में मैं सेलेक्ट हो गई थी। उसके बाद में पुलिस में फिजिकल भी होता है
0: जी,
1: जिसमें दौड़ वगैरह है, गोला फेंकना है, हाइट वेट सारा।

0: था जी, उसमें जी, जी. वो चेक करते हैं. तो उसमें भी मैं फिजिकल में भी पास हो गई थी. फिर मेरा इसमें
1: आपके आपके सर्विस का सफर का तो हम जरूर जानेंगे. आपके बचपन की बातें चल रही, तो आपको और क्या क्या शौक रहा? कभी आप गाना गाना डांस करना स्कूल में करते थे?
0: जी हाँ, स्कूल में डांस करते थे. सिंगल नृत्य भी मैं करती थी, और जैसे गरबा होता तो गरबा भी खेलती थी.
1: अच्छा जी. और पढ़ाई में होशियार थे?
0: हाँ, पढ़ाई में मैं होशियार थी.
1: घर में आप मम्मी को किसी तरह हेल्प करते थे किचन में?
0: हाँ, घर पे मैं झाड़ू निकालना, बर्तन धोना, पानी भरना, खाना बनाना, पूरा काम करती थी. हमारे घर पे गाय भैंस भी रखते थे, तो गाय भैंस को भी चारा डालना, उनको पानी पिलाना, खेत में चराना, मैं पढ़ाई भी करती थी और खेत में गायों को, भैंसों को, उनको भी वो पास में खड़ी रह के चराती थी.
1: मतलब आपने हर प्रकार का कार्य किया हुआ है. छोटे गाँव से आप जी निकले.
0: और कभी जैसे ट्यूबवेल वगैरह नहीं होता, तो पानी भी हमारे दूर से मटके सिर पे ऊंचा के
1: पानी वो भी आप उठा करके लेके आए. क्या बात है. आज आप पुलिस में कार्यरत है, लेकिन आपने सारा स्ट्रगल किया है, सारे कार्य किए हैं. लोग अक्सर कहते हैं ना, अरे तुम तो महिला हो, तुम्हें तो चौका चूल्हा ही संभालना है, क्या करोगी जॉब करके. लेकिन आपने साबित कर दिया कि चौका चूल्हा तो संभालना ही है, सभी को संभालना है. लेकिन इसके साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं, समाज की और देश की सेवा कर सकते हैं, जो आप कर रहे हैं. बहुत ही अच्छी बात है सुंदर जी. आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर समय हो चला है एक गीत सुनने का. तो ये गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं. वंदे मातरम कार्यक्रम सीधा प्रसारण है, आप जुड़ सकते हैं और सुंदर जी से अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं. तो आइए सुन लेते हैं एक गीत. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो. रेडियो मधुबन 107.8 FM.

0: बहू बहू जल्दी तैयार हो जा, हमें डॉक्टर के पास जाना है।
1: जी आई माँ जी।
0: अरे जल्दी कर, इतनी देर से अभी अभी लगा रखा है।
1: जी माँ जी आ गई, चलिए।
0: नमस्ते डॉक्टरनी जी।
2: नमस्ते नमस्ते, बैठिए। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है?
0: डॉक्टरनी साहिबा, हमें अपनी बहू का वो क्या कहते हैं जो टीवी पर देखकर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, अपनी बहू का पता करना है।
2: सोनोग्राफी? मगर क्यों?
0: लड़की हमको नहीं चाहिए ना, इसलिए। अगर पता चल जाएगा तो तुरंत निपटा देंगे।
2: मगर ऐसा करना तो गलत है। और बहू क्या तुम भी यही चाहती हो?
1: जी वो न, न,
0: अरे तू चुप रह बहू, तू क्या जाने।
2: देखिए भ्रूण हत्या एक कानूनन जुर्म है, इससे आपको उम्र कैद भी हो सकती है। और आजकल तो लड़कियां लड़कों से आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जैसे सुनीता विलियम, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी और मैं खुद एक सफल डॉक्टर हूँ।
3: आजकल हमारे समाज में भ्रूण हत्या तेजी से बढ़ रही है, उसे हमें रोकना होगा। यह कानूनी अपराध है, इसके लिए आप सभी को उम्र कैद भी हो सकती है।
4: माँ बन के ममता लुटावे, बहन बन प्रेम निभावे, पत्नी बन जीवन सजावे, बेटी बन खुशियाँ लावे। इतना रूप समाया जिसमें, इतना रूप समाया जिसमें, वो नारी महान तुम्हारा गुण गावे, तुम्हारा गुण गावे सारा जग, आपका ऊंचा मान, आपका ऊंचा मान। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में पुनः आप सभी का स्वागत है। सुंदर जी हमारे साथ बने हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पुलिस विभाग से बिलोंग करते हैं और देखे समाज की सेवा के साथ साथ आज रेडियो मधुबन के स्टूडियो में भी पहुंच चुके हैं और अपने सुंदर से अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप ज़रूर जुड़िएगा, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं खुल करके, ठीक है। क्या है कि सुंदर जी अक्सर लोग पुलिस से दूर भागते हैं, वो डरते हैं कि अरे पुलिस है, चलो हटो यहाँ से। भले गुनाह नहीं किया होता है लेकिन एक छाप ऐसी होती है कि डर लगता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, हमारी बहन है, बहुत ही सॉफ्ट नेचर के है और बहुत ही मिलनसार है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं। आप जुड़ सकते हैं, नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415। और सुंदर जी आपके बचपन की बातें चल रही थी, इस तरह बचपन आपका बहुत अच्छा बीता, पढ़ाई में भी आप अव्वल रहे, तो पढ़ाई के साथ साथ अब आप अपने सफर के बारे में बताइए कि किस तरह आपको ये प्रेरणा आई कि मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है, पुलिस डिपार्टमेंट में।
5: हाँ मुझे
4: जी
5: मुझे मेरे भाई से भी मार्गदर्शन मिला है कि आप, मैं भी एक पुलिस में हूँ, अच्छी जॉब है, आप भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आजकल महिलाएं कहीं पीछे नहीं है, हर डिपार्टमेंट में महिला पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर भाग ले रही है, तो आप ये एक जनता में पुलिस की सेवा दे सकते हैं।
4: जी तो फिर आपका विचार हुआ कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए जी। तो आपको जब पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई के साथ साथ कभी आपको ऐसा लगता था कि मुझे कुछ हटके करना है?
5: नहीं, पहले तो मुझे यूं लगता था कि मैं एक लड़की हूँ, मैं क्या जॉब करूँगी। जैसे लड़के होंगे तो वो जॉब करेंगे, महिला तो घर में ही रहती है।
4: तो आपके आसपास माहौल ऐसा था, इस तरह के आपके अंदर विचार आते थे?
5: जैसे लड़कियां

0: का भी मेरे पे बहुत सपोर्ट था, और भी मेरे परिवारजन में मेरे जैसे मेरे मामा जी का लड़का भी अभी एएसपी है, उनका भी सपोर्ट था कि मेरी मम्मी को बोलते थे कि बुआ जी आप सुंदर को तो आपको जॉब लगाना ही पड़ेगा, ये पढ़ाई कर रही है, तो उनका भी सपोर्ट था, पूरे परिवार का सपोर्ट था मेरे साथ।
1: जी जी, तो इस तरह आपने ग्रेजुएशन किया। जी, ग्रेजुएशन के बाद आपने कंपटीशन फाइट किया।
0: जी,
1: तो इस डिपार्टमेंट में आने के लिए कौन सा कंपटीशन फाइट करना होता है?
0: ये तो पुलिस का ही होता है।
1: जी
0: जी,
1: अच्छा,
0: पुलिस का अपन फॉर्म अप्लाई करते हैं, फिर इसमें रिटर्न पास करना होता है पुलिस के फॉर्म में, तो वही मैंने दर्पण गाइड ला के पढ़ाई की थी, उससे फिर मुझे सफलता मिली।
1: जी जी, इसमें हाइट हेल्थ सब देखी जाती है?
0: हाइट हेल्थ वेट सारा देखा जाता है, लॉन्ग जंप होता है, उसमें दौड़ होती है, हमारे टाइम में 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ होती थी, और अभी है जो 35 मिनट में, लड़कियों के लिए 35 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ होती है।
1: अच्छा, अगर 35 किलोमीटर में आप 5 किलोमीटर दौड़ नहीं की तो आप आउट?
0: आउट।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो हो जाती है, लड़कियां कर लेती है?
0: करती है, आती है, बहुत सारी लड़कियां आई हैं।
1: अच्छा, तो आपने भी इस तरह?
0: हाँ, जब हम 2006 में भर्ती हुए थे उस टाइम हमारे टाइम में 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ करना अनिवार्य था।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो उसके लिए आपने पहले प्रैक्टिस किया, डायरेक्ट आप मैदान में उतर गए?
0: नहीं, मैंने प्रैक्टिस की थी, मेरा घर जो रोड है उस पे ही था, तो मैं सुबह जल्दी उठ के रोड पे दौड़ करती थी, प्रैक्टिस करती थी, गोला फेंकती थी, लॉन्ग जंप भी करती थी, तो ये सारा पहले प्रैक्टिस करना पड़ता था।
1: जी, तो आपके मतलब अड़ोस पड़ोस है, आपके घर वाले, ऐसा तो नहीं लगता कि अरे ये सुबह उठ करके क्या कर रही है, पता नहीं?
0: हाँ, उनको पता था, मेरे जैसे चाचा के घर पे उनको, परिवार वालों को तो सबको पता था, लेकिन जैसे रोड पे दौड़ते तो गाड़ियां वाड़ियां निकलती, तो वो भी सोचते थे कि ये लड़की ऐसे क्यों दौड़ रही है।
1: जी जी, और जैसे कि आपने बताया कि 4-5 लड़कियां आपके साथ में पढ़ाई करती थी और आप सभी अप डाउन करते थे, तो जो आपकी फ्रेंड्स थी 4-5, वो भी कुछ, उन्होंने भी कुछ किया या फिर वो हाउसवाइफ?
0: हाँ, किया, कई मेरे साथ पुलिस में भी है और कई नर्सिंग में है, किसी के प्राइवेट जॉब है, सब अपने पैरों पे खड़ी हुई है।
1: अच्छा, बहुत बढ़िया, जिन्होंने पढ़ाई की
0: जी
1: वो
0: आत्मनिर्भर बने।
1: जी जी, तो आपके मम्मी हाउसवाइफ थे या कुछ काम?
0: नहीं, मेरे मम्मी हाउसवाइफ ही है।
1: फिर भी वो मोटिवेट करते थे आपको?
0: मोटिवेट करते थे।
1: और इतना घर का आप काम करते थे, तो घर के काम के साथ साथ आप कैसे समय निकाल पाते हैं?
0: देखो, काम जैसे सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना, फिर जैसे मम्मी उठ जाती थी तो मम्मी के साथ में जैसे गाय भैंसों का, मम्मी दूध निकालने जाती तो उनकी हेल्प करती थी मैं, और घर पे जैसे चाय बनाना, दूध गर्म करना, खाना बनाना, झाड़ू वगैरह सारा निकालने के लिए मैं पूरा मम्मी का हेल्प करती थी।
1: जी जी, चलिए, वो कहते हैं ना कि पढ़ाई में वही होशियार होते जो ऑलराउंडर हो।
0: जी, और जो भी कार्य मिले करो। खेती बाड़ी भी करते थे, तो उसमें भी पानी पिलाना करना, जैसे गेहूं काटना है, बाजरी काटनी है, उसको वापस तोड़ना करना, वो भी उसमें भी मैं हाथ बंटाती थी।
1: अच्छा
0: जी,
1: मतलब खेती का अनुभव आपको बहुत ही गहरा है, और गाय भैंस दोहना ये भी आपका अनुभव है, और अभी आप इस लाइन में है।
0: जी,
1: तो जैसे आपने कंपटीशन फाइट किया, उसमें भी टफ कंपटीशन रहा होगा, बहुत सारे विद्यार्थी बैठे होंगे, उसमें से चयन होना?
0: जी, बहुत सारे बैठे, उसमें मेरिट रहती है, जैसे 100 नंबर का पेपर होता है तो उसमें से इतने मार्क्स आने जरूरी होते हैं।
1: जी जी, और वापिस उसमें से भी जैसे जनरल वाले तो कट जाते हैं, एक लिमिटेशन होती ना
0: जी,
1: तो आपका नंबर मतलब रैंक कौन सा बना आपका फिर?
0: नहीं, मेरा रैंक तो 75 पे बना था।
1: अच्छा जी जी, जी जी, और बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे?
0: बहुत सारे बच्चे बैठे थे।
1: तो जब आप क्लियर हुए तब आपको एक लग गया कि बस अब मुझे सर्विस करने से कोई नहीं रोक सकता?
0: जी, अभी मुझे कोई नहीं रोक सकता।
1: तो जैसे ही आपका रिजल्ट आया होगा, तो आपके घर में किस तरह का उस समय माहौल रहा होगा?
0: नहीं, बहुत अच्छा लगा उस टाइम, जैसे वो अभी तो फोन पे भी लिंक में आ जाता कि अभी रिजल्ट घोषित होने वाला है सारा, उस टाइम हमारे घर पे लैंडलाइन था, तो मेरे भैया ने फ़ोन किया था, तो मेरे पापा ने फ़ोन पे बात की, तो बोले सुंदर सिलेक्ट हो गई है पुलिस में, तो बहुत खुशी हुई घर वालों ने, पापा ने भी मुंह मीठा कराया, मिठाई मंगवाई घर पे, और बहुत सब बहुत खुश हुए थे।
1: जी जी जी, जी। उसके बाद आपने ये सारे जो प्रोसेस है वो पूरे किए, जैसे कि आप बता रहे थे कि

0: जंप
1: जी
0: ये सब,
1: नहीं,
0: और फिर आप फिजिकल टेस्ट में भी
1: हाँ
0: आप पास हो
1: फिजिकल
0: गए।
1: टेस्ट में भी पास हो गए, फिर इंटरव्यू भी होता है, इंटरव्यू भी हो गया, उस सब सब फाइट कर दिए थे फिर।
0: अच्छा, इंटरव्यू में भी आप सेलेक्ट हो गए।
1: जी
0: तो फिर आपने जॉब कब की?
1: जॉब 2006 में, फिर अप्रैल 30 अप्रैल 2006 को हमने पुलिस लाइन सिरोही में आमद करवाई थी।
0: क्या बात है, अप्रैल महीना ही चल रहा है
1: जी,
0: अभी आने ही वाला है,
1: मार्च
0: खत्म होने वाला है, तो आपका तो बर्थडे आ रहा है,
1: बर्थडे आ रहा है, और
0: सर्विस का
1: 30 अप्रैल को मुझे 20 इयर्स पूरे हो जाएंगे सेवा देते हुए।
0: 20 इयर्स पूरे हो जाएंगे,
1: कंप्लीट हो जाएंगे।
0: क्या बात है, तो अभी एज आपकी क्या होगी?
1: मेरी 38। मैं 18 साल की थी तब मेरी जॉब लग गई थी, 18.5 साल में।
0: तो आप तो उस समय सबसे कम एज वाले रहे होंगे।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: तो सभी को घर महसूस हुआ होगा कि देखो हाँ। इतनी कम एज में आप इस डिपार्टमेंट
1: मेरे
0: में।
1: गांव में मैं पुलिस में, मैं ही एक फर्स्ट लड़की थी जो पुलिस डिपार्टमेंट में एक पद पे तैनात
0: जी, तो गांव वालों ने तो आपका जमकर स्वागत भी किया होगा।
1: जी, बिल्कुल स्वागत,
0: क्योंकि गाँव के लोग तो बहुत इमोशनल होते हैं
1: जी,
0: और जब इस तरह गाँव की बेटी जब पुलिस विभाग में जाती है तो घर में तो महसूस होता ही है। तो इस तरह आपने जॉब शुरू की
1: जी।
0: फिर आपके कितने समय बाद शादी हुई?
1: मेरी देखो सगाई तो पहले हो चुकी थी, हमारे बाल विवाह होता था।
0: अच्छा, हाँ, तो आपके बाल विवाह कितने साल के थे और आपके एंगेजमेंट हो गई?
1: मैं 10-12 साल की थी तब मेरी सगाई हो गई थी।
0: अच्छा।
1: मेरी सिस्टर बड़ी थी तो उनके साथ साथ में हमारा भी ब्याह करवा दिया था।
0: ऐसा बहुत होता है राजस्थान में
1: जी।
0: तो फिर जिनके साथ सगाई हुई उन्हीं के साथ आपकी शादी हुई?
1: हाँ जी, उन्हीं के साथ शादी हुई।
0: अच्छा, तो वो क्या, आपके हस्बैंड क्या?
1: मेरे हस्बैंड के प्राइवेट जॉब है, जो मेरे साथ में ही रहते हैं इधर ही है अभी।
0: अच्छा, आबू में।
1: और मेरा ससुराल मेरे गांव में ही है
0: जी।
1: जी, और 5th तक तो हम साथ में ही पढ़े थे, गांव में एक ही स्कूल होती थी बड़ी
0: जी,
1: तो वो भी स्कूल आते थे और मैं भी जाती थी।
0: तो जब आपको ऐसे जॉब लग गई और ससुराल वालों को भी पता चला होगा कि हमारे बहू को जॉब लग गई, तो उनको फिर क्या ऐसा तो नहीं लगा कि अब पता नहीं है सगाई रखेंगे या नहीं रखेंगे?
1: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, हुआ तो भी वो अभी तो हमें नहीं बताएंगे। अच्छा लगा था उनको भी कि भाई चलो अपने पैरों पे खड़ी हो गई बहू।
0: जी जी जी, और पहले तो क्या है, जो वचन दे दिया वो दे दिया, जबान की वैल्यू रहती थी। तो आपको ऐसा तो नहीं लगा कि अरे मेरे हस्बैंड तो अभी जॉब लगे नहीं और मेरी जॉब लग गई, आपको अंदर से?
1: नहीं, मुझे ऐसा तो कुछ नहीं लगा था, पर यूं लगा था कि भाई इनकी भी गवर्नमेंट जॉब होती तो अच्छा रहता, लेकिन देखो अपने नसीब की बात होती है, क्या पता मेरे पति के लिए ही मेरी जॉब लगी हो उनके नसीब से।
0: पॉजिटिव भी हम ले सकते हैं
1: जी,
0: जी जी जी। तो इस तरह आपने बहुत ही अच्छा सकारात्मक तरीके से सोचा है, तो बहुत बढ़िया। तो जैसे कि आप 18 साढ़े 18 की एज में आप जॉब लग गए, और कहते हैं ना कि देखिए पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, पुरुषों के साथ काम करना इसका मतलब लड़कियों के लिए थोड़ा चैलेंजेस रहता है। तो आपके साथ भी ऐसा चैलेंज रहा कि कभी किसी ने आपको गलत नजर से भी देखा हो, कभी आपको कुछ गलत बात भी कही हो?
1: पुलिस में आने के बाद पुलिस अपना एक परिवार हो जाता है, पुरुष और महिला हम हमारे जैसे सेवा देते हुए रात को भी कहीं ऐसे घटना हो जाए तो रात को भी बाहर निकलना पड़ता है। हम महिला अकेली है और जेंट्स के साथ में भी जाते तो भी हमें वैसा कोई भी ऐसे मतलब अनकंफर्टेबल हम नहीं समझते हैं, सब एक परिवार की तरह रहते हैं, और एक महिला होने के नाते स्टाफ वाले भी हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं।
0: बहुत बढ़िया
1: जी,
0: ऐसा ही होना चाहिए
1: जी।
0: तो आपके फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ हुई थी उस समय जब पहली बार आप जॉब लगे तो?
1: जी, एक साल की तो हमारे ट्रेनिंग हुई थी जोधपुर में, हुई थी आरपीटी ट्रेनिंग सेंटर जोधपुर में, एक साल वहाँ पे जैसे पुलिस के बारे में अनुशासन है, जैसे फिजिकल फिट कैसे रहते हैं, पीटी परेड वगैरह, पुलिस के कैसे रैंक है, क्या पद है। पहले तो ऐसे लगता था जैसे घर पे थे तब एक कांस्टेबल आता तो भी पुलिस लगता था, और एक एसपी साहब आते तो भी पुलिस ही लगता था। अब उनकी रैंक वाइज भी कौन है, सब इंस्पेक्टर है, कौन डीवाई एसपी है, कौन एसपी है, कौन आईजी है, उनके बारे में जानकारी हुई
0: जी। जी जी, नहीं मैं ये पूछ रही हूँ आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ, आबू में ही आए सीधे या
1: नहीं,
0: कहीं दूसरी जगह?
1: मेरी फर्स्ट पोस्टिंग रेवदर में रही थी।
0: अच्छा
1: जी, पुलिस थाना रेवदर में 2000 जुलाई 2008 से।
0: अच्छा, वहाँ पर रहे, फिर उसके बाद आपके आबू में ट्रांसफर हुआ।
1: जुलाई 2008 से मेरी 2016 तक पुलिस थाना रेवदर में रही थी, और 16 से 2022 एंड तक मेरी सीओ कार्यालय रेवदर में रही थी जी, और 2 जनवरी 2023 में मैं आबू रोड पुलिस थाना आबू रोड सदर थाने में आई थी।
0: अच्छा जी, तब से आप इधर है?
1: अब इधर है।
0: तो सुंदर जी, चलिए आपके अनुभव और भी सुनेंगे, लेकिन समय हो गया फिर से एक गीत सुनने का। तो एक गीत सुन करके पुनः लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। सुंदर जी के अनुभव बहुत ही सुंदर है और हम और भी इनके अनुभव सुनेंगे। आप चाहे तो फोन कॉल्स भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सुनते एक गीत, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नारी है तो जीवन में उजियारा है, नारी है तो घर आंगन लगता है प्यारा है। जिस घर में नारी का सम्मान रहे, जिस घर में नारी का सम्मान रहे, वो धरती पर स्वर्ग से न्यारा है, वो धरती पर स्वर्ग से न्यारा है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में सुंदर जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुंदर जी के काफ़ी अनुभव हमने सुने हैं और इसी कड़ी में हम और भी आगे बढ़ेंगे। तो सुंदर जी, जैसे कि आप बता रहे थे कि इस तरह फाइट करके आप पुलिस डिपार्टमेंट पे आए, फर्स्ट पोस्टिंग आपकी रेवदर में रही, फिर आप धीरे धीरे ये तीसरी बार, मतलब बीच में आप और कहीं थे?
1: हाँ, सीओ कार्यालय रेवदर में थी।
0: अच्छा, फिर आप आबू में आए हैं।
1: आबू में आए।
0: और जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट में तो है ही है, लेकिन आप कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, मतलब ये भी कोई, इसका पहले तो आप अर्थ बताइए कि ये क्या चीज है और इसमें आप कार्यरत है तो आप किस तरह का कार्य संभालती है?
1: जी, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट सरकार ने दिसंबर 2024 में महिला व बच्चों की सुरक्षा के लिए गठित की थी, जो ऑल राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये टीम बनाई हुई है। हर जिले में है, अपने सिरोही जिले में 4 महिला कांस्टेबल सिरोही जिले में है, और 4 आबू रोड में है, 2 माउंट में है, 2 शिवगंज में है।
0: अच्छा, तो आपका कार्य है महिलाओं के साथ किस तरह घर परिवार में कोई शोषण तो नहीं हो रहा है, मानसिक शारीरिक आर्थिक यौन हिंसा, तो आप कैसे पता लगाते हैं? क्या महिलाएं आपको सामने चल करके फोन करते हैं या फिर आप खुद घर घर में जाते हैं?
1: नहीं, जैसे हमारा कार्य ये होता है कि बच्चियों व महिलाओं की सुरक्षा, हम स्कूल में जाते हैं, बच्चों से रूबरू मिलते हैं, बच्चों के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं हो, उनके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हो, कई उनके जैसे फ्रेंडशिप बनाने के लिए उनको परेशान करते हो, और हमारे जैसे कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के पैम्पलेट छपाए हुए हैं, जिसमें एक तो सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है राजकोप सिटीजन ऐप, और जो जहाँ भी ज़्यादा महिला भीड़ भाड़ होती है उनको, महिलाओं को ऐप डाउनलोड करवाते हैं। राजकोप सिटीजन ऐप का उसकी उपयोगिता मैं बताती हूँ।
0: जी, आप ऐप भी बता दीजिए, हमारे श्रोता बंधु भी सुन रहे होंगे तो वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो
1: राजकोप सिटीजन ऐप अपन प्ले स्टोर से जाके उसको इंस्टॉल करेंगे तो राजकोप सिटीजन ऐप, उस पर पुलिस का लोगो आता है, उसको अपन इंस्टॉल करने के बाद में उसमें अपने मोबाइल नंबर डालेंगे तो 6 अंकों का OTP आता है। ये एक गवर्नमेंट का ऐप है जो OTP आता है उसमें, बाकी अपन कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें OTP नहीं मांगते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में उसमें अपन भाषा जो भी लेनी होती है लैंग्वेज चॉइस करते हैं, हिंदी या इंग्लिश। उसके बाद में अपने को इमरजेंसी हेल्प या नॉन इमरजेंसी हेल्प दोनों तरह से अपन हेल्प ले सकते हैं। फिर उसमें अपनी लोकेशन चालू रखनी होती है।
0: अच्छा।
1: हाँ, जैसे ही अपन लोकेशन को प्रेस करेंगे तो अपने पास ऑप्शन आ जाएगा कंप्लेन करने का, उसमें अपन लिखित में टाइपिंग करके भी कंप्लेन कर सकते हैं, और उसमें कैमरा है तो अपन फोटो भी खींच के भेज सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं और वॉइस से भी भेज सकते हैं। जैसे लोकेशन का मतलब, जैसे अपन यहाँ बैठे हैं, अपने साथ कुछ घटना हो रही, तो अपन जैसे ही उस कंप्लेन को सबमिट करेंगे तो उसमें अपना मोबाइल नंबर और लोकेशन पूरी डिटेल आ जाती है, तो ये कंप्लेंट सीधा जयपुर जाती है, कंट्रोल रूम जयपुर। जयपुर से वो लोकेशन देखते हैं कि ये लोकेशन कौन सी जगह का है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, कौन से थाने के अंतर्गत आता है, तो उस थाना देख के, अपनी लोकेशन देख के जैसे ही उस थाने के अंतर्गत आएगा, जैसे अपन यहाँ बैठे तो आबू रोड सदर थाना लगता है, तो आबू रोड सदर थाने वाले स्टाफ को कॉल करेंगे और तुरंत 5 मिनट के अंदर ही पुलिस को आना ही पड़ता है। ये ऐप बहुत उपयोगिता है, इसको हर महिलाओं को अपने मोबाइल में डाउन करके रखना चाहिए,
0: चाहे रात का समय हो, दिन का समय, किसी भी समय आपके साथ कोई भी घटना घटित होती हो,
1: 24 घंटे कोई भी घटना हो, जैसे घर में भी कोई परेशानी हो, महिला कहीं और रास्ते में, कहीं जैसे रात को सफर कर रही है, यहाँ बस खराब हो गई है और खुद को अनकंफर्टेबल समझ रही है कि मुझे यहाँ डर लग रहा है, तो भी आप उस हेल्प की मदद ले सकते हो, जो भी नजदीकी पुलिस होगा तुरंत आके उसको सुरक्षित जगह पे पहुंचाएगा।
0: अच्छा, तो चलिए, हमारे श्रोता बंधु शायद आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो
2: दीदी, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शांति।
0: हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
2: बात अच्छे है, और हमारे सुंदर जी भी बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, सुन रहे गाने तो बहुत अच्छा लगा, और कई सारी बातें सुनी हमने
0: जी,
2: और काफी वो सेवा कर रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में है और जो महिलाओं की सेवा भी करते हैं, महिलाओं का एक रक्षक भी है
0: जी।
2: तो कई सारी में सेवा कर रहे हैं, तो हमारे तरफ से तो भी नमस्ते हैं।
1: नमस्ते।
2: और अच्छी सेवाएं आप कर रहे हैं, सेवा की महिला की सुरक्षा, लोगों को कोई कोई प्रॉब्लम हो तो आप सॉल्व कर देते हो और काफी जानकारी भी देते हो, कई सारी बातें से आप बता रहे हैं। तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जो आप कोई महिला कई जगह पे कोई प्रॉब्लम होता है और महिलाएं सुरक्षित नहीं होती है वहाँ पहुंच जाते हैं तुरंत, तो ये भी एक अच्छी सेवा कर रहा है। हमारी तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं है कि आप भी ऐसे कार्य करते रहे, देश की सेवा करते रहे, लोगों की सेवा करते रहे, महिलाओं की सेवा करते रहे। कहीं ना कहीं महिलाओं को आप बहुत उपयोगी बने हैं, तो ये भी अच्छी बात है।
1: थैंक यू।
0: आपको कुछ पूछना है क्या? कुछ हाँ जी पूछ सकते हैं आप।
2: हाँ वो तो मैं समझ रहा था, महिलाएं की जो बात आपने बताई, क्यों अभी तो मैं थोड़ा बाहर हूँ, सफर में हूँ, फिर भी कार्यक्रम बैठे बैठे सुन रहा हूँ, बस में बैठे बैठे।
0: अच्छा।
2: तो हाँ इसीलिए तो फिर भी मैं कार्यक्रम सुना तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपसे और हमारे सुंदर जी से बात कर लूँ।
0: चलिए बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई, आप अक्सर जुड़ते ही है, हम भी सोच रहे थे कि आप जरूर जुड़ेंगे।
2: क्योंकि मैं जा रहा हूँ बाहर, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम रहता है बात करने
0: जी का। जी सफर में तो रहता ही है, वो सभी जानते हैं। जी
2: ठीक है
0: जी, नमस्ते, आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। अगर आपको भी कुछ पूछना हो तो आप जुड़ सकते हैं रेडियो मधुबन से, नंबर है 94-14-15-14-15। और सुंदर जी हमारे साथ बने हुए हैं, सुंदर जी के बहुत ही अच्छे अनुभव हम सुन रहे हैं। तो मधु जी आप हाँ बता रहे, सुंदर जी आप बता रहे थे कि इस तरह यूनिट बनाई गई है, तो ये महिलाओं की है या भाई लोगों की भी है, पुरुषों की भी है?
1: नहीं, महिलाओं की भी है और पुरुषों की भी है।
0: अच्छा।
1: जैसे पुरुषों को भी समस्या होती है तो भी उनका हम उनकी समस्या को सुनते हैं, उनकी समस्या का निराकरण करते हैं।
0: अच्छा, वो आप लोग ही संभालते हैं?
1: जी हम भी संभालते हैं। और जैसे हमारे लेवल की नहीं है और कोई गंभीर वाला मामला है तो थाना अधिकारी को भी हम उनसे मिलवाते
0: जी,
1: हैं, उनकी बात सुनते हैं, जो भी कार्रवाई होती है उनके अनुसार रिपोर्ट दर्ज की जाती है।
0: अच्छा, तो इस तरह का कभी केस आया कि अचानक आपको फोन आया हो महिला के साथ किसी तरह का शोषण हो रहा हो, ऐसा होता है?
1: जी हमारे पास बहुत सारे फोन आते हैं, हमारे जैसे मैंने बताया कि हमारे मोबाइल नंबर और पैम्पलेट दिए हुए हैं, उसके एक ऐप जो अभी ऐप बताया उसके साथ में एक महिला गरिमा हेल्प नंबर भी है 1090 1090। जैसे कहीं भी नेट का इशू होता है तो आप 1090 या अपने बड़े वाला मोबाइल न हो कि पेड वाला मोबाइल हो तो उसके थ्रू भी आप 1090 से कंप्लेन करके आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। हमारे साथ ऐसे कॉल तो आते ही रहते हैं, दिन में दो चार फोन तो आ ही जाते हैं।
0: जी जी जी,
1: कहीं भी बैठे रहो
0: तो हर कोई दुखी है, हर किसी के साथ देखते हैं कि अधिकांश शोषण हो ही रहा है किसी भी प्रकार का, कोई सुरक्षित नहीं है, तो फिर आप पहुंच जाते हैं, जैसे आपको फोन आता है पहुंचने की कोशिश करते
1: हैं? हम जितना जल्दी हो पहुंचने की कोशिश करते हैं। महिलाओं के साथ देखो यहाँ पे आबू रोड में थोड़ा आदिवासी एरिया है
0: जी।
1: तो जैसे आदिवासी में क्या होता है, लोग कहीं भी छेड़छाड़ की घटनाएं कर देते हैं, दारू पी के परेशान करते हैं, यहाँ लड़कियों का पीछा करते हैं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, ऐसी घटनाएं खूब सारी होती रहती है। तो महिलाओं की हर बात जल्दी से सुन के उनके न कि उनको थाने बुलाते हैं, बिल्कुल उनके घर पे जाके आपस में घरेलू बात भी होती है तो परिवार वालों को बुला के बिठा के उनकी समझाइश करते हैं, तो महिलाओं को मतलब

0: न्याय की बात करके उनको न्याय मिलता भी है और हमारी पूरी सपोर्ट रहती है, कोई कोई भी महिलाएं परेशान नहीं हो।
1: जैसे आपने बताया है कि आबू में आदिवासी एरिया ज्यादा है, तो आपको भी कहीं ना कहीं तो एक डर तो अंदर रहता होगा, क्योंकि धमकी देते हैं ना ये भी अगर आप महिलाओं का सपोर्ट करेंगे तो। पर पहले हम अपने श्रोता बंधु से बात करना चाहेंगे। हेलो
2: हेलो उषा बहन जी, सुप्रभात, नमस्कार।
1: हाँ जी सुप्रभात, नमस्कार कंचन भाई, कैसे हो आप?
2: बस बहन जी, बहन जी को भी बहन जी का नाम भूल गए।
0: नमस्ते नमस्ते, ओम शांति।
1: आप अपना नाम भी बता दीजिए, आपका नाम भूल गए वो।
0: मेरा नाम सुंदर जी है।
2: हाँ सुंदर जी, सुंदर जी। बस बहन जी बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। उसी दिन जो महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, उसी दिन आप थे शायद?
0: जी, बिल्कुल थे,
1: पूरी टीम थी।
2: हाँ मैंने देखा था मोबाइल में, और आपने बाद में जो बताई बातें बताई जो महिलाओं के बारे में, तो मुझे बहुत अच्छी लगी बेटी। मैंने रिकॉर्डिंग भी कर लिया था वो सब। और क्या है कि महिलाओं को तो खूब जरूरी है बहन जी। अभी भी जो आदिवासी की बात थी ना, तो हम आदिवासी एरिया में भी है, अभी खेत में है, हमारा भागीदार आदिवासी वनवासी है
0: जी।
2: तो यहाँ ऐसी बातें बन जाती है बहन, ठीक है? आपने जो बताया कि ऐसा बहुत होता है, लेकिन क्या है कि महिलाओं का संगठन है यहाँ आदिवासी में
1: जी।
2: तो एक बहन को ऐसा होता है तो सभी बहने इकट्ठे हो जो होके इसको बोलते हैं और ये करते हैं, डांटते हैं।
1: बहुत बढ़िया, एकता तो होनी चाहिए, महिलाओं का संगठन होना बहुत जरूरी है।
2: हमारे अपने नहीं है बहन जी, हम जो
1: जी जी आदिवासी लोगों
2: तो
1: के जी
2: एक दूसरी बहन की ईर्ष्या एक करते हैं
1: जी जी जी।
2: तो ठीक हुआ है, ऐसा होना ही चाहिए था,
1: सही बात है।
2: लेकिन जो ये एरिया है ना वनवासी आदिवासी का, ये तो हमने देखते है, पहले तो चढ़ोतरा होता
1: जी,
2: अब बंद कर दिया है।
1: अच्छा,
2: लेकिन कोई ऐसा मदद हो जाता था महिला का, ऐसा देते थे ना, तो ट्रैक्टर भर भर के महिलाएं कुहाड़ी धारिया ऐसा लेके वहां जाते थे गांव में, और इसका घर तो पूरा नष्ट कर देते थे।
1: अच्छा,
2: ये करते थे। अब नहीं ऐसा होता, अब तो एक दो बार पुलिस ने सबको गिरफ्तार करके पुरुषों को अंदर डाल दिया था, और ऐसा हुआ था एक दो का मर्डर भी वहाँ हो गया था डर के मारे जेल में। तो उन्होंने सभी बंद कर दिया कि भाई शांति से रहना, ऐसा कोई करना नहीं, अब वरना हम साथ नहीं देंगे। तो ये चढ़ोतरा तो अब बंद हो गया।
1: अच्छा, ओके।
2: लेकिन पूरा संगठन है इन महिलाओं का
1: जी जी,
2: जो हमारे नहीं होता। क्या है जी?
0: मैं कहना चाहूंगी कि चढ़ोतरा अभी पूरी तरह से तो बंद नहीं हुआ है, लेकिन कहीं कहीं होता भी है। अभी दो चार महीने पहले भी हुआ था गिरवर साइड में जी,
2: उस तरफ हुआ होगा, लेकिन हमारे तो यहाँ सभी लड़की लड़के लड़के को लड़कियों को पढ़ाते हैं ना
0: जी जी,
2: तो ये सब अपना घर का ख्याल रखते हैं
0: जी जी।
2: क्या है कि भाई इसमें कोई ये नहीं है
0: जी जी जी,
2: ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। और सबको बोलते हैं कि भाई शांति से रहना, ऐसी वैसी हरकत नहीं करना है, वरना हम साथ नहीं देंगे। पहले तो पूरा साथ देते थे
0: जी,
2: अब अपना घर बिगाड़ के कौन कौन जाए बेटी जेल में
0: जी।
2: तो ये सर समझदार थोड़े थोड़े हाथों हो गए हैं, ठीक है
1: जी, बहुत बढ़िया।
2: ऐसे ऐसे एरिया में थोड़ा होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो सदंतर बंद कर दिया है।
0: नहीं, बिल्कुल बढ़िया किया ऐसा, जैसे ज्यादा शिक्षा है तो लोग जागरूक भी हो रहे हैं, तो ये सारा सिस्टम बंद होने वाला ही है। पर थोड़ा इधर टाइम लगेगा।
2: आम का पेड़ काट देते थे, कोई इंजन कुएं पे रखा होता तो ये अंदर कुएं में डाल देते थे उस सुखा के, ऐसा बहुत नुकसान करते थे लोग। एक दो बार पुलिस ने ये ऐसा किया तो ये इसका परिणाम अच्छा है। कोई ऐसी बातें तो नहीं बनती, और कोई होती है तो आपस में ये कर देते हैं कि भाई
1: बातचीत करके निपटा देते हैं जी।
2: हाँ, ये इसको लक्की दे दो, ये ऐसा है तो लक्की की क्या इच्छा है बोलो, तो ऐसा करके इसको दे देते है।
1: ठीक है कंचन भाई, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत आभार आपका।
2: जी खेत में हूँ अभी बहन जी, तो मैंने सुरेश भाई की बात सुनी तो मैंने सोचा कि भाई भी थोड़ी बात
1: जी जी बहुत बढ़िया।
2: और महिलाओं को जरूरी है बहन जी, जो इस दिन आपने बात की थी ना
1: जी,
2: हमारे भी एक क्या हुआ था मैं बात बताऊँ।
1: कंचन भाई आपकी बात हम, क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत कम है और बहन जी की बहुत सारी बातें है, तो हम आपकी बात कल आशियाना में सुनेंगे, ठीक है जी। बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे कंचन भाई मंडाली से, और अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेकर पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम वंदे मातरम में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में सुंदर जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुंदर जी के काफ़ी अनुभव हम सभी ने सुने हैं, बहुत ही सुंदर आपने अपने बातें बताई है। चलिए हम इधर उधर की बात न करते हुए सीधे ट्रैक पर चलते हैं। सुंदर जी, जैसे कि आप बता रहे थे कि आप महिलाओं की भी इस तरह हेल्प करते थे, और इस तरह एक घटना आपने कुछ सुनानी चाहिए, लेकिन हमारे श्रोता बंधु का फोन आ गया तो उनसे बात करने लग गए।
1: जी, जैसे कई फोन आते तो हम जैसे निकलते हैं, कई लड़कियों की शिकायत होती है, महिलाओं की शिकायत होती है, तो एक दो किस्से हैं जो मैं आपको सुनाऊंगी।
0: जी जी, लेकिन शायद हमारे श्रोता बंधु बात करना चाहते हैं और आपकी आवाज नहीं पहुंची। हाँ जी, नमस्ते।
2: भूरा राम बोल रहा हूँ, उर से मैडम।
0: हाँ भूरा राम जी, राम राम, कैसे हो?
2: राम राम है। उषा बहन जी और सभी मनोवन भाइयों को और सुंदर बहन जी को भी मेरा राम राम है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: समझने की बात सुंदर बहन जी ने समझाई है लोगों को, और लोगों को मालूम नहीं रहता है, जो थोड़े अनपढ़ रहते तो उनको ये इतना कानून का मालूम नहीं रहता जितना आप सुंदर बहन जी ने बताई है। लेकिन ये जो आदिवासियों के जो रिवाज है बहुत गलत होते हैं। मेरे सामने एक घटना घटी, आपको बताऊं क्या?
0: छोटी सी हो, शॉर्ट में बताइएगा। आप और से
2: मैं बताता हूँ कि कुत्ता पैदा है अपना दरवाजे पे, कोई दूसरा
0: जी,
2: और आदिवासी की औरत वो सांस लेने आई, जो
1: जी
2: सांस लेने के लिए आई
1: जी,
2: तो उसको कुत्ता काट लिया। अभी वो कुत्ता बाहर का था, लेकिन वो काट लिया, लेकिन वो नहीं माने कि कुत्ता तुम्हारे से, वो घर वाले का।
0: अरे कुत्ता काट लिया, इसमें क्या करेंगे? और घर वाले थोड़े ना, कुत्ता पाल रखा था क्या उन्होंने?
2: नहीं पाला नहीं था, वो बाहर का बैठा था, लेकिन वो आदिवासियों के मतलब एक रिवाज है कि कुछ भी जिसका वो बेचारे के उनको माने नहीं, और वो तो एक थे दो चार बने, वो तो ज्यादा हो गए ना, उनसे बेचारे 50,000 की मांगनी की तो देना पड़ा। बोलो कोई जाम वाला भी नहीं कर सकता, कोई पुलिस नहीं कर सकते।
0: अच्छा, इसमें
2: परंपरा है तो सुंदर बहन जी बता, अच्छा बना रहे हैं कि ऐसे ऐसे जो घटना होती है थोड़ा उसके अंकुश रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बेचारे लोग डरते
1: हैं। हाँ ऐसा ही है आदिवासी में, जैसे जिसके घर पे कोई घटना हो गई तो जुर्माना उनसे ही वसूल करना पड़ता है।
0: तो सुंदर जी, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती?
1: पुलिस तो क्या करे, राजीनामा करा सकती है दोनों पार्टियों को बुला के, तो कंप्लेन वगैरह भी की थी क्या थाने में?
0: थाने में कंप्लेन की थी भूरा राम जी?
2: नहीं नहीं, थाने में तो वो क्या करे बेचारे, अभी उनको जो है तो पैसे देने के बाद में क्या करेंगे?
0: नहीं तो पैसे देने के पहले कंप्लेन करनी चाहिए ना, रिपोर्ट लिखानी चाहिए
1: जी।
2: हाँ पर वो तो है ना, ऐसा है कि फिर वो लोग ऐसे डरते के नजदीक के रहते तो फिर बाद में वो थाने में जाके तो फिर उनका तो विश्वास खुद।
0: अच्छा, बदला ले लेते हैं
2: कभी भी आके, ये मतलब
0: जी जी जी, लोग इस तरह डरते हैं,
2: मतलब लोगों में डर है, ये मतलब कहने का मतलब, एक दफे ऐसा पुलिस का ये उदाहरण है तो डर मिट जाता है, मेरा बोलने का मतलब ही है।
0: जी जी, मतलब कुत्ता काटता है तो भी वो दोष जिसके घर के बाहर काटते हैं उनके ऊपर आ जाता है, ये तो थोड़ा ज्यादा ही हो गया, बहुत ज्यादा हो गया।
2: हाँ कुत्ता तेरे घर पर बैठा, मतलब ये तेरा मतलब जान बुझ गया।
1: हाँ जी
0: जी,
2: ऐसी ऐसी घटना होती है, मतलब जो मतलब मतलब ही नहीं होता है।
0: तो ये पैसे लूटने का धंधा है इसका मतलब?
2: हाँ बस, तो और इसमें ऐसी ऐसी
0: जी
2: झूठा भी इंजाम दे के बोले तो आगे वाले को ये कर देते और कर, लेकिन उनके समाज में एकता है, मतलब एक प्रसाद से तो
1: नहीं, इसमें
2: तो
1: जैसे
2: फिर वो लोग डर जाते हैं आगे से।
1: इसमें जैसे इनके जाति के जैसे शिक्षित लोग है ना, उनको समाज में बैठ के ये बात करनी चाहिए कि भाई ऐसी घटना होती है तो ऐसा आरोप लगाना गलत है।
2: पर वो तो समझे तब ना, वो ऐसा मतलब ये तो क्या होता है कि थोड़ा अपने पुलिस वाले भी और सब मतलब उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसी घटना जाके बैठा के समझावे
1: जी,
2: तो थोड़ा समझे नहीं, तो ये तो अभी बहुत पुरानी रीति चलती आई है, बाप दादा ने किए थे तो उनसे डबल ये बच्चे लोग भी करते हैं, मतलब कोई कम नहीं होने के सवाल ही नहीं होता।
1: सही है, नहीं जैसे ऐसी कोई बात हो ना तो पुलिस को सूचना देना जरूरी है, बिना सूचित तो पुलिस को क्या पता चलता है, वो बात है।
2: लेकिन ऐसा बोलते बेचारा सादा सादा आदमी डर जाते
1: हैं। हाँ डर की वजह से पुलिस के थाने में जाने से ही लोग डरते हैं कि कुछ और घटना नहीं कर दे हमारे साथ में।
2: मतलब वहाँ तो कर देंगे, लेकिन दूसरे के बाद में ये थोड़ा सोचा कभी भी मतलब अटक कर सकती है जाता ऐसा है
0: जी। जी जी, चलिए बहुत बहुत आभार बुरा राम जी। तो ये थे भूरा राम जी, और से देखे कैसी घटनाएं घटती है, आश्चर्य होता है। लेकिन आज हमारे इन बातों में ही समय चला गया सुंदर जी, अब शायद और भी हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं। चलिए ठीक है, नहीं है तो बस आपसे तो काफी कुछ अभी जानना बाकी है, सुनना बाकी है, जो हम अगली बार जरूर सुनेंगे। लेकिन कार्यक्रम के अंत में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, विशेष करके बहनों को, और मैं तो कहूँ कि आदिवासी समाज को क्या कहना चाहेंगे आप?
1: मैं यही कहना चाहूँगी कि महिला एक पुरुष को भी कंधे से कंधे मिला के चल सकती है। महिला के बिना तो पूरा संसार अधूरा है। महिला कहीं पीछे नहीं है। हर जॉब में आप देखो, पुलिस है, हेलीकॉप्टर चलाने के लिए महिला, एरोप्लेन चलाती है, ट्रेन चलाती है, कहीं भी महिला पीछे नहीं है। महिलाओं को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। और आदिवासी समाज की बात करूँगी तो आदिवासी समाज में शिक्षा का मतलब बहुत कमी है। अभी तो फिर भी लड़कियां हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में भी आ रही है, काफ़ी लोग ऐसे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हर महिला अपने परिवार से शुरू करेगी कि मैं मेरे परिवार में जैसे
0: बदलाव लाऊंगी,
1: कोई भी मेरे परिवार में नशा नहीं करेंगे
0: जी। बहुत सुंदर मैसेज दिया है आपने कि आदिवासी समाज में भी जागरूकता आ सकती है। एक नारी शिक्षित होगी तो पूरे परिवार में परिवर्तन लाएगी, और ऐसा ही करना है। तो सुंदर जी, आपका बहुत बहुत आभार, आप रेडियो मधुबन के स्टूडियो में पधारे और आपने अपने जीवन के सुंदर से अनुभव सभी के साथ शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आज का आपके रविवार की छुट्टी थी वो हमने ले ली पूरी
1: जी। हमारे तो छुट्टी तो रहती नहीं है, 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है।
0: जी जी जी, उसमें भी थोड़ा समय हमने ले लिया है, लेकिन हमारे श्रोता बंधु ने भी सुना है,
1: जानकारी सुनना लोगों में बहुत जरूरी है।
0: तो बहुत बहुत आभार आपका। आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदे मातरम, और वंदे मातरम में सुंदर जी वैष्णव हमारे साथ बने हुए थे। आपके जीवन के अनुभव आप सभी ने सुने हैं कि कैसे आपने पढ़ाई की, कैसे आप इस फील्ड में आए, कैसे आपने कंपटीशन फाइट किया और इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो मैं ऐसी नारी शक्ति के लिए यही कहना चाहूंगी, जब जब इतिहास ने करवट ली, हर युग में नारी आगे आई, झांसी बनकर रण में उतरी, मीरा बन भक्ति अपनाई। तो ऐसी नारी शक्ति को रेडियो मधुबन सलाम करता है, वंदन करता है, नमन करता है। प्यारी बहनों, अगर आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर करना चाहते हो तो नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल कर सकते हैं, और आप भी अपने जीवन के अनुभव शेयर कर सकते हैं। हम सुंदर जी से अगले रविवार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM।
3: मैं हूं अवधेश पंडित, जीएम फाइनेंस बेसिल, और आप

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

जन शांति। आज 15 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से कर्मेंद्रिय जीत बनने की प्रेरणा दी है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो, और जब बेहद का वर्षा ले रहे हो तो उसके लिए योग्य बनना है, और योग्यता आएगी जब हम अपने कर्मेंद्रिय को जीत, विकारों के ऊपर जीत प्राप्त करेंगे। बाबा कहते हैं, तुम सभी एक बाप के बच्चे हो तो कभी भी आपस में क्रिमिनल असॉल्ट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ बाबा कहते हैं, तुम बच्चों में योग बल एकत्रित करना है, जिस योग बल से ही आत्मा पर चढ़ी कट उतरेगी। इसलिए बच्चों को कभी भी योग में गफलत नहीं करनी चाहिए। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सके। तो बाबा कहते, जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो तुम बच्चे बाप के साथ सहज अपने घर जाएंगे, और सभी आत्माएं तब तक घर से नीचे आ गई होगी, फिर घर का रास्ता वापस खुलेगा। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी, इसीलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है? उत्तर है, बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो, तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है, परंतु माया भी कम नहीं है। बाबा बच्चों को सावधान भी करते हैं, बच्चे माया भी कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं ये भूल जाते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने सारे जहां को पा लिया, जमीन तो क्या आसमान को पा लिया। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफी है। बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है। यह भी बच्चे जानते हैं कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिला था, अब वह नहीं है, फिर से मिल रहा है। देखते हो, अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है, रावण द्वारा नरक का श्राप मिल रहा है। श्राप से मनुष्य दुखी होते हैं, वर अर्थात वर्षे से सुखी होते हैं। श्राप से दुखी होते हैं, वर अर्थात वर्षे से सुखी होते हैं। अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं, वह है बेहद का निराकार बाप, और प्रजापिता ब्रह्मा है बेहद का साकार बाप। शिव बाबा है बेहद का निराकार बाप, और ब्रह्मा बाबा है बेहद का साकार बाप। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बिगर कोई होता नहीं। बेहद का साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा के बिना और कोई होता नहीं। बल गांधी जी को बापूजी कहते थे, परंतु कायदे सिर सारे मनुष्य सृष्टि का तो वह बापूजी हो न सके। गांधी को भी बापूजी कहते थे, लेकिन बाबा कहते सारे मनुष्य सृष्टि का बापूजी तो वो हो न सके। सारे निराकारी वर्ल्ड का बापूजी है शिव, निराकारी दुनिया का बापूजी है
शिव, अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया है। इसलिए बनाया है, वर्षा देने लिए। मधुबन आते हैं किसके लिए? बच्चे मधुबन आते हैं किसके लिए? शिव बाबा से मिलने के लिए। परंतु वह निराकार है, सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं। इसलिए कहा जाता है बाप दादा। सिर्फ शिव बाबा कहने से मनुष्य भी नहीं समझेंगे, निराकार कैसे आएंगे, वर्षा कैसे देंगे। इसीलिए कहा जाता है बाप दादा, अर्थात शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। दादे का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। वह निराकार सबका बाप भी है, सबका दादा भी है। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है जरूर। बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है। वह बाप ही सबका दुख हरता सुख करता है। कौन? शिव बाबा। सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी हो ना सके। नाम है स्वर्ग, वह है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था। आज सबसे पुराना है तो जरूर नया भी था, तब तो अभी सबसे पुराना हुआ है। सतयुग कलयुग भारत को ही कहा जाता है। बरोबर भारत स्वर्ग था। ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, ये बुद्धि में है। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो झट बुद्धि में आएगा कि इन्हों को ये वर्षा कैसे मिला। हमारी बुद्धि में तुरंत आ जाएगा कि लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा कैसे मिला, ये पूज्य कैसे बने, कब राज्य किया, किस द्वारा राज्य पाया, ये सारा बुद्धि में आएगा। आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फेरते थे, ऑक्यूपेशन का कुछ भी पता नहीं था। अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है सो भी नंबरवार। बाबा कहते अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है सो भी नंबरवार। तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो क्या फीलिंग आएगी? बाबा कहते तुम जब लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो क्या फीलिंग आएंगी? हर्षित होंगे। इसलिए बुद्धि में है इन्होंने ये प्रारब्ध कैसे पाई थी। संगम युग पर ही पाई, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है। संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। यह भी जानते हो बहुत जन्म के अंत के जन्म में बरोबर यह ब्रह्मा था। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। यह लक्ष्मी नारायण ही अगले जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे, अकेला तो नहीं होगा। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, जरूर प्रजा पिता भी होगा। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया है वह हम साक्षी हो देखते हैं। बाबा कहते इस समय हम साक्षी हो देखते हैं कि कल्प पहले किन्होंने पुरुषार्थ किया था। एक होता है राजाई घराना, दूसरा होता है प्रजा घराना। तो जो आत्माएं राजाई घराने का पुरुषार्थ करती वो भी देख रहे हैं, और जो प्रजा घराने में जाने का पुरुषार्थ करते उसको भी देखते। उसमें भी कोई बहुत शाहूकार होते हैं, कोई कम। राजाओं में भी कोई बहुत शाहूकार कोई कम शाहूकार होते हैं। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसको भी समझा सकते हो कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। अब फिर से वही अपना राज्य भाग्य
ले रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है, इतना सहज है, अंबा कौन है यह भी नहीं जानते। तुम कहेंगे यह तो जगत अंबा है। कल्प पहले भी जगत अंबा जगत पिता थे, उन्हों के बच्चे हम थे। जगत पिता जगत अंबा के बच्चे हम थे। संगम पर बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। जगत अंबा के बच्चे भी ढेर है, परंतु इतने सभी को तो बिठा नहीं सकते। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर बच्चों को ज्ञान

हम ही देंगे। उनको न मनुष्य न देवता कहा जाता है, उनको परमात्मा ही कहा जाता है। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी बता सकते हो, राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना अभी स्थापन हो रहा है, सूर्यवंशी घराना, राजाई घराना, प्रजा घराना और चंद्रवंशी घराना सब कुछ अभी स्थापन हो रहा है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। ब्रह्मा का नाम कितना बाला है। ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से जानते हो हम एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन है। फिर हम क्रिमिनल असॉल्ट कर नहीं सकते, भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। बाप ने ये युक्ति रची है। ड्रामा अनुसार तुम भी ब्रह्मा कुमार, हम भी ब्रह्मा कुमारी। बाबा कहते बाबा ने ही ये युक्ति रची है ड्रामा में कि कभी भी एक बाप के बच्चे हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं, तो कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं हो सकता। वास्तव में सारी दुनिया बीके हैं, ब्रह्मा के बच्चे तो सारी दुनिया है, परंतु जानते नहीं है। शिव बाबा के बच्चे भी सारी दुनिया है। हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। हमने शिव बाबा को जाना है तो हम उसकी मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वो जानते नहीं है, माया भी कम नहीं है। जब हम वर्षा लेते हैं तो बाबा कहते माया भी कम नहीं है, चारों तरफ विघ्न डालती रहती है। हम भाई बहन है, एक बाप से वर्षा लेते हैं ये भूल जाते हैं। यह तो अच्छी रीति समझते हो, सतयुग में एक ही धर्म रहता है, बाकी सब धर्म खत्म हो जाने हैं, यह भी बच्चे जानते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। बाबा ने कितने अनेक कल्प कल्प के अंत में ये बात समझाई है। हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता है, तिथि तारीख भी लिखी हुई है। यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते हैं। कैसे वर्षा लेते हैं? पवित्रता की धारणा करते हैं इस युक्ति से कि हम एक बाप के बच्चे हैं और बाबा से वर्षा लेते हैं। लक्ष्य तो मिला हुआ है ना, बाप को याद कर बाप से वर्षा लेना है। याद अर्थात योग बल से ही कट निकलेगी, इसमें कोई गफलत ना हो, इसलिए मुरलियां मिलती है। निश्चय बुद्धि पक्का है तो भल कहां भी चला जाए। बाबा कहते अंदर में निश्चय बुद्धि पक्का है तो कहां भी चला जाए। समझो मुरली नहीं मिलती तो भी बुद्धि में तो है ना। हम बाबा का बन गया, बाबा ने समझाया है। तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, अब तुम बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये महामंत्र एक बाप ही बतलाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का महामंत्र एक बाप ही बतलाते हैं, और कोई बतला न सके। बाप ही कहते हैं। क्या कहते हैं? मीठे मीठे बच्चे, याद के बल से ही तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये अक्षर है परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता। अब तुम समझते हो बरोबर, कल्प पहले भी बाबा ने ये अक्षर कहा था कि देह के सब धर्म को छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये सब देह के धर्म है ना, बाबा कहते ये सब देह के धर्म है ना, सबका बाप एक ही है। सब आत्माएं उस एक बाप को पुकारती है। पोप भी गॉड को याद करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। इन मनुष्य की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ तो यह आपस में लड़े नहीं,
पोप भी भगवान को कहते हैं, याद करते हैं कि ओ गॉड फादर रहम करो, इन मनुष्य की क्रोधी बुद्धियों को पलटाओ, तो ये आपस में लड़े नहीं, याद तो बाप को ही करेंगे ना, और कोई को याद नहीं करते हैं, शिव बाबा को ही पुकारते हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेंगे फिर तो इस छीछे रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे। एक बार पावन हो गए तो बाबा कहे इस छीछी दुनिया में रह नहीं सकेंगे, तो जरूर नई दुनिया चाहिए। कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ही ना, कलयुग से बदलकर सतयुग तो होगा ही ना, परंतु इतना भी नहीं समझते हैं, इतनी छोटी सी बात भी मनुष्य नहीं समझते हैं। बाबा एक एग्जाम्पल देते हैं, एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा। अरे सदैव कलयुग ही कैसे चलेगा, कलयुग कोई अच्छा है क्या, समझते थोड़ी है, सिर्फ भावना है, औरों को ले आते हैं। बाबा कहते यहां लाते भी है, सिर्फ भावना है इसलिए ले आते हैं, उनको तीर नहीं लगता, और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो भी कुछ ना कुछ दलाली मिल जाएगी। अगर वो आत्मा को भले भावना ना है, परंतु अगर किसी को ले आए और उनको तीर लग जाए, तो उन्होंने जो श्रेष्ठ कर्म किया उसकी कुछ ना कुछ बाबा कहते दलाली मिल जाती है, उस आत्मा को लाने वाले को मिल जाती है। स्वर्ग में तो आ जाएंगे, बाप से थोड़ा भी आकर सुनते हैं तो भी स्वर्ग में जरूर चले जाएंगे, फिर भी हेवनली गॉड फादर के सामने आकर बैठे हैं। बाप समझाते हैं मैं सबका बाप हूं ना, कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा। अरे आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आऊंगा, बाबा कहते अगर आत्माएं आ सकती है, एक दूसरे में प्रवेश कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं आऊंगा। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा सकती है तो मैं नहीं आ सकता हूं, पूछते बाबा, नहीं तो मैं कैसे आऊं, अगर नहीं आ सकते हैं परमात्मा तो कैसे आएंगे। पुकारते भी है हे पतित पावन बाबा, आकर पतित से पावन बनाओ। बाप कहते मैं आता ही भारत में हूं, कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार आता हूं। तुम जब 84 जन्म पूरे करते हो तो मैं आता हूं, तुम बच्चों को निश्चय है बाबा आया है फिर से वर्षा देने। बाप कहते मेरा धंधा ही है पुरानी दुनिया को बदलकर नई दुनिया स्थापन करना, ये बाबा का धंधा है, इसलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश, फिर तुम पालना करेंगे, वहां जाने के बाद फिर पालना करेंगे। रोशनी मिली है ना, काली का मंदिर देखेंगे तो समझेंगे ये झूठा चित्र है, काली बरोबर जगदम्बा है परंतु ऐसे भयानक रूप नहीं है। बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है, बाबा कहते काली के आगे बलि चढ़ाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं परंतु जानते कुछ नहीं है। जगत अंबा के मंदिर में लाखों आते हैं, सदैव जैसे मेला ही है, छोटी सी मूर्ति रखी है ना, नाम रख दिया है जगत अंबा। अब जगत अंबा तो एक होनी चाहिए, सिंध में काली का मंदिर कैसे बनाया था, बाबा स्मृति दिलाते हैं सिंध में काली का मंदिर कैसे बनाया था। एक बार किले में बम फटा तो एक फकीर ने कहा काली माता गुस्से हुई है, बस उसने जाकर वहां काली का मंदिर बना दिया। अब काली है कौन कुछ भी नहीं जानते हैं, तुमको अब नॉलेज मिली है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसको तुम ना जानो।
समझते हो बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है, कब? बाबा कहते हैं दुनिया में पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करते हैं। तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब बाप कहते हैं रावण राज्य खत्म होना है। यह है विकारी गृहस्थ व्यवहार, देवी देवताओं के लिए गाते रहते हैं। ये किसको पता नहीं कि इन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है? सत्ययुग है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। शास्त्रों में फिर दिखा दिया कि वहां भी विकार थे, परंतु वह तो है ही वॉइसलेस वर्ल्ड। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है, यह बातें और किसकी बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे। एक ही धर्म था, फिर वृद्धि को पाया है, चक्र भी पूरा लगाना पड़े, तब कहेंगे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया, समुद्र का तो चक्कर लगा न सके। सतयुग में थोड़े हैं तो कितनी थोड़ी जमीन लेते हैं, सतयुग में थोड़े हैं तो कितनी थोड़ी जमीन लेते हैं। अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी होनी है, ऊपर में थोड़ी आत्माएं जो है वह भी आती रहती है, मनुष्य बढ़ते ही रहते हैं। जब वहां से भी आत्माएं आना पूरी होगी, बाबा कहे जब वहां से भी आत्माएं आना पूरी हो जाएगी तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है, उनका आना तुम्हारा जाना होगा। थोड़े थोड़े आते रहते हैं, समझ की बात है ना। हम पहले पहले जाकर वहां रहेंगे, हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए, हमारे होते कोई रहना नहीं चाहिए। जब ऊपर परमधाम में जाएंगे तो वहां और कोई रहना नहीं चाहिए। ये विस्तार की बातें हैं। बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं अच्छा अपने प्यारे बाबुल को याद करो। कितना प्यार से बाबा कहते अच्छा अपने प्यारे बाबुल को याद करो, तुमको फायदा है बाप को याद करने में। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य बहुत पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, मून में भी जाते हैं। यह है साइंस का घमंड, अति में जाते हैं। मून में कुछ खड़ा थोड़ी है, तुम तो सूर्य चांद से भी पार जाते हो तो भी घमंड नहीं, वो मून तक जाते हैं तो भी घमंड में आ जाते हैं। यह नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है, समझते हो। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ये सब बतलाते हैं। बाप ही कहते हैं मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूं, ये मेरा पार्ट है। भक्ति मार्ग में भी ये हमारा पार्ट है तो ड्रामा ना। जैसे तुम पाठधारी हो मैं भी पाठधारी हूं, मेरा काम है तुमको पतित से पावन बनाना। जो कुछ करते हैं तो उनकी महिमा होती है ना, इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, परंतु उनको ऐसा लायक किसने बनाया? ये सुखधाम के मालिक थे, अभी तो अनेक प्रकार के कितने दुख है। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, बल्कि इसके पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती है तो क्या करेंगे? बिरला के पास कितने पैसे हैं? बाबा बिरला को याद करते कितने पैसे हैं? एक जन्म में पैसा देखने में आता है, परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख नहीं हो। हर एक को इस दुख की दुनिया में दुख जरूर है ही, किसी न किसी प्रकार का दुख सभी को होता है। अभी तो ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने हैं, कोई काम भी नहीं आएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापिस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को प्यार से याद करना है, एक बाबुल को बहुत प्यार से याद करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की रोशनी मिली है इसलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। कहां भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्वमान में स्थित रह विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले देह अभिमान मुक्त भव। स्वमान में स्थित रह विश्व द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले वे अभिमान मुक्त भव। पढ़ाई का मूल लक्ष्य है देह अभिमान से न्यारे हो देही अभिमानी बनना। इस देह अभिमान से न्यारे अथवा मुक्त होने की विधि है सदा स्वमान में स्थित रहना। संगम युग के और भविष्य के जो अनेक प्रकार के स्वमान है उनमें किसी एक भी स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। स्वमान में स्थित रहने से देह अभिमान मिटता जाएगा। जो स्वमान में स्थित रहता है उन्हें स्वतः मान प्राप्त होता है। सदा स्वमान में रहने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं और विश्व उन्हें सम्मान देती है। आज का स्लोगन है, जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। जैसा समय वैसा अपने को मोल्ड कर लेना, यही है रियल गोल्ड बनना। आज का अव्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमो गुण है उसे भस्म करो। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद, इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देगा। अच्छा ओम।